मीडियम वेव 241.54 मीटर अर्थात 1242 किलोहर्ट्स, न्यूज ऑन एआईआर ऐप डीटीएच डीआरएम 1233 किलोहर्ट्स और वेब्स ओटीटी पर ये आकाशवाणी वाराणसी है। आज गुरुवार है, शक संवत 1948 के आषाढ़ मास की 18वीं तिथि, तदनुसार 9 जुलाई सन 2026। स्टूडियो की घड़ी में सुबह के 5:57 होने वाले हैं। आरंभ हो रही है आज की प्रातःकालीन सभा।

0: हम आकाशवाणी के वाराणसी केंद्र से बोल रहे हैं। सुबह के 6 बजने वाले हैं। अब आप समाचार सुनेंगे आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से।
1: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं मुकेश कुमार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज मेलबर्न में ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री एंथनी अल्बनीज के साथ बातचीत करेंगे। दोनों नेताओं के बीच व्यापार, रक्षा, प्रौद्योगिकी, शिक्षा और जनसंपर्क मजबूत करने पर चर्चा होने की संभावना है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का भारत ऑस्ट्रेलिया मुख्य कार्यकारी अधिकारी मंच को भी संबोधित करने का कार्यक्रम है। श्री मोदी मेलबर्न में प्रवासी भारतीयों से भी बातचीत करेंगे। श्री मोदी ऑस्ट्रेलिया की 3 दिन की यात्रा पर कल शाम मेलबर्न पहुंचे थे। प्रधानमंत्री ने मेलबर्न में भारतीय समुदाय का गर्मजोशी से स्वागत के लिए आभार व्यक्त करते हुए इसे अविस्मरणीय बताया। हमारे संवाददाता ने बताया है कि स्वागत समारोह में स्थानीय कलाकारों ने सांस्कृतिक कार्यक्रम प्रस्तुत किए।
2: सांस्कृतिक प्रस्तुति की शुरुआत ऑस्ट्रेलिया के पारंपरिक वाद्य यंत्र डिडजेरिडू और भारतीय तबले की अनूठी जुगलबंदी से हुई। कार्यक्रम का समापन ऑस्ट्रेलिया इंडिया ऑर्केस्ट्रा की प्रस्तुति से हुआ। कलाकारों ने एआर रहमान की प्रसिद्ध गीत माँ तुझे सलाम की सिम्फनी प्रस्तुति देकर दर्शकों का मन मोह लिया।

0: मेलबर्न से सुहास राम की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से आनंद पाठक।
1: ऑस्ट्रेलिया में भारत के उच्चायुक्त नागेश सिंह ने बताया कि एक दशक में श्री मोदी की ऑस्ट्रेलिया की तीसरी यात्रा द्विपक्षीय संबंधों में महत्वपूर्ण प्रगति दर्शाती है। उच्चायुक्त ने कहा कि दोनों देशों के बीच कई क्षेत्रों में सहयोग में वृद्धि भारत ऑस्ट्रेलिया संबंधों की मजबूती और विविधता दर्शाता है। विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री जितेंद्र सिंह ने कहा है कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस देश में कृषि अर्थव्यवस्था को नई गति दे सकता है। उन्होंने कहा कि एआई के उपयोग से प्रत्येक किसान सालाना लगभग 5,000 रुपए की बचत कर सकता है। नई दिल्ली में कल 17वें

0: कृषि नेतृत्व सम्मेलन में डॉक्टर सिंह ने कहा कि कृषि स्टार्टअप भारत के कृषि क्षेत्र का भविष्य है। केंद्र सरकार ने किसानों के हितों के लिए तमिलनाडु के किसानों से खोपरा और तोतापुरी आमों की खरीद को मंजूरी दे दी है। केंद्रीय कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय ने कहा कि इससे उत्पादकों को बेहतर मूल्य मिलेगा और उन्हें बाजार में उतार चढ़ाव की कीमतों से राहत मिलेगी। आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री एन चंद्रबाबू नायडू ने किसानों के हितों की रक्षा और उनका विश्वास बहाल करने के लिए तंबाकू कंपनियों को न्यूनतम समर्थन मूल्य पर तंबाकू की खरीद प्रक्रिया तत्काल शुरू करने का निर्देश दिया है। अमरावती में अधिकारियों और व्यापारियों के साथ तंबाकू खरीद की समीक्षा करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि तंबाकू की कीमत 200 रुपए प्रति किलोग्राम से कम नहीं होनी चाहिए। उन्होंने कंपनियों से नीलामी प्रक्रिया में तेजी लाने का भी निर्देश दिया। उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन आज ओडिशा के दौरे पर रहेंगे। इस दौरान उपराष्ट्रपति भुवनेश्वर स्थित ओडिशा कृषि और प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय में खुले समुद्र में मत्स्य पालन के लिए प्राधिकरण पत्र जारी करेंगे। श्री राधाकृष्णन ओडिशा डीप सी फिशिंग मिशन दस्तावेज का भी विमोचन करेंगे। इसके बाद उपराष्ट्रपति भुवनेश्वर स्थित राष्ट्रीय विज्ञान शिक्षा और अनुसंधान संस्थान खुर्दा के 15वें दीक्षांत समारोह में भाग लेंगे। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष IMF के चालू वर्ष में 7% की वृद्धि दर के अनुमान के साथ भारत विश्व की सबसे तेजी से बढ़ती अर्थव्यवस्था के रूप में अपना स्थान बरकरार रखे हुए है। IMF द्वारा कल जारी की गई प्रमुख अर्धवार्षिक रिपोर्ट वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक अपडेट के अनुसार अगले वर्ष भारत के सकल घरेलू उत्पाद GDP में 6.4% की मामूली वृद्धि का अनुमान है। राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी NTA ने CSIR UGC NET जून 2026 परीक्षा के लिए प्रवेश पत्र जारी कर दिए हैं। ये परीक्षा 17 और 18 जुलाई को आयोजित की जाएगी। परीक्षार्थी अपना प्रवेश पत्र आधिकारिक वेबसाइट www.csirnet.nta.in पर डाउनलोड कर सकते हैं। अमरीकी सेना ने कहा है कि वह ईरान पर फिर से हवाई हमले कर रही है। ये हमले एक दिन पहले होर्मुज जलडमरू मध्य में ईरान द्वारा जहाजों पर किए गए हमलों के बाद शुरू हुए। मौसम विभाग ने कहा है कि अगले 2-3 दिन में दक्षिण पश्चिम मानसून के उत्तरी अरब सागर के शेष हिस्सों राजस्थान, हरियाणा और पंजाब में पहुंचने की संभावना है। वहीं राजधानी दिल्ली में रात से वर्षा जारी है। इसके साथ ही समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: मीडियम वेव 241.54 मीटर अर्थात 1242 किलोहर्ट्ज पर ये आकाशवाणी का वाराणसी केंद्र है। 6:05 हुए हैं। खेती की बातें कार्यक्रम में भिंडी की खेती विषय पर किसान भाइयों को जानकारी दे रहे हैं दिनेश कुमार सिंह।
2: किसान भाइयों, आज हम भिंडी की खेती के बारे में चर्चा करेंगे। अगर आप इसकी खेती करना चाहते हैं तो इस समय बुआई कर सकते हैं। VRO 6 VRO 5 IIVR 10 परवनी क्रांति, ये सब इसकी उन्नतशील प्रजातियां हैं। इनमें से जो भी प्रजाति मिल जाए लेकर बुआई करें। भिंडी की खेती के लिए वे सभी प्रकार की मिट्टी उपयुक्त रहती हैं जो कि कार्बनिक खादों से भरपूर हों। चूंकि यह बरसात की फसल है अतः पानी के निकास की पूरी व्यवस्था होनी चाहिए। मिट्टी को 2-3 बार जोतकर खूब भुरभुरा बना लेते हैं। बुआई के 15-20 दिन पहले प्रति हेक्टेयर की दर से लगभग 300 कुंटल सड़ी हुई गोबर की खाद खेत में मिला देना चाहिए। इसके अलावा भिंडी में 1 हेक्टेयर खेत में 100 किलोग्राम नत्रजन यानी लगभग 220 किलोग्राम यूरिया, 50 किलोग्राम फास्फोरस यानी लगभग 300 किलोग्राम सिंगल सुपर फास्फेट और 50 किलोग्राम पोटाश यानी 75 किलोग्राम म्यूरेट ऑफ पोटाश की आवश्यकता होती है। यूरिया की आधी मात्रा, सिंगल सुपर फास्फेट एवं म्यूरेट ऑफ पोटाश की पूरी मात्रा अंतिम जुताई के समय कुंड में मिला देते हैं। नत्रजन की शेष आधी मात्रा को 2 बराबर भागों में बाँट कर खड़ी फसल में प्रयोग करते हैं। जब खेत तैयार हो जाए तो फिर बुआई करनी चाहिए। 1 हेक्टेयर खेत में बोने के लिए 8 से 10 किलोग्राम बीज की आवश्यकता होती है। बोने से पहले बीज को थीरम नामक दवा से शोधित कर

0: लेना चाहिए। 2.5 ग्राम दवा 1 किलोग्राम बीज को शोधित करने के लिए पर्याप्त होती है। इसके बाद फिर बुआई करते हैं। बुआई 60 सेंटीमीटर की लाइन से लाइन की दूरी पर करनी चाहिए तथा एक बीज से दूसरे बीज की दूरी लगभग 30 सेंटीमीटर रखते हैं। आइए अब कुछ चर्चा सिंचाई एवं निकाय गुड़ाई के बारे में करें। यह तो हम सब जानते ही हैं कि यह बरसात वाली फसल है। अगर समय समय पर बारिश हो रही है और खेत में नमी है तो सिंचाई करने की कोई ज़रूरत नहीं। हाँ, यदि बारिश नहीं होती है और खेत की नमी में सूख जाए तो सिंचाई अवश्य करनी चाहिए। यदि भरपूर बारिश हो रही है और खेत में ज़्यादा पानी लग जाता है तो इस पानी को बाहर निकालना चाहिए ताकि पौधों में जड़ों के पास हवा का संचार हो सके और पौधे पूरी वृद्धि कर सकें। बरसात की फसल है और उसमें खरपतवार ना उगें, भला यह कहाँ हो सकता है। खरपतवारों को नियंत्रित करना बहुत ही ज़रूरी है। भिंडी के बीज 4-5 दिन में जम जाते हैं। खरीफ की वर्षा होने से पूर्व यदि एक निकाई गुड़ाई कर दी जाती है तो इससे खरपतवारों का प्रकोप काफ़ी कम होता है। समय समय पर निकाई गुड़ाई करते रहना चाहिए। बुआई के 25 दिन बाद फूल आने शुरू हो जाते हैं और बोने के लगभग 40 से 45 दिन बाद भिंडी में फल आना प्रारंभ हो जाता है। 1 एकड़ में ठीक से देखभाल करने पर लगभग 35 से 40 कुंटल तक भिंडी की पैदावार मिल सकती है। तो इस तरह से इन सब बातों को ध्यान में रखकर भिंडी की खेती करनी चाहिए।
1: भिंडी की खेती, अभी इस विषय पर किसान भाइयों को जानकारी दे रहे थे दिनेश कुमार सिंह। कार्यक्रम था खेती की बातें। मीडियम वेव 241.54 मीटर अर्थात 1242 किलोहर्ट्ज पर यह आकाशवाणी का वाराणसी केंद्र है। निवेदित हैं भक्ति रचनाएं आराधना के अंतर्गत। प्रभु श्री राम सृष्टि के आधार हैं, अद्भुत रचनाकार हैं, राम सकल संसार हैं, राम ओमकार हैं।

प्रेम में वो ताकत है जो गैरों को भी अपना बना ले। सामाजिक भाव सद्गुणों में प्रेम का सर्वोच्च स्थान माना गया है।

हम दूसरों के साथ ऐसा कोई व्यवहार न करें जो स्वयं के लिए भी अच्छा न हो। हम सब एक ही ईश्वर की संतान हैं। ईश्वर हमें सद्बुद्धि और शक्ति दें।

नटवर नागर प्रेम के सागर किशन कन्हैया हम सभी के जीवन में प्रेम वात्सल्य का संचार करें।

0: आप सुन रहे थे भक्ति रचनाएं आराधना के अंतर्गत। आज इसमें जिन गायक कलाकारों ने अपने स्वर दिए वो थे अनुराधा पौडवाल, जगजीत सिंह, चित्रा सिंह, ओम व्यास और बलवंत राय भट्ट। हम आकाशवाणी के वाराणसी केंद्र से बोल रहे हैं। आइए सुने विचार बिंदु।
1: विश्वविख्यात काशी हिंदू विश्वविद्यालय के संस्थापक महामना पंडित मदन मोहन मालवीय ने जीवन पर्यंत जिन भावनाओं व आदर्शों का पालन किया तथा सर्वजनों को जिसकी शिक्षा और व्याख्या जीवन पर्यंत करते रहे वह था सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कचित् दुःख भाग भवेत्। उसी प्रकार राष्ट्रपिता महात्मा गांधी का सबसे प्रिय भजन जो प्रतिदिन प्रार्थना सभा में गाया जाता था वो था वैष्णव जंतु तेणे कहिए जे पीर पराई जाने रे। इन दो महापुरुषों के अमूल्य दार्शनिक व पूर्णतः व्यवहारिक विचारों में जनमानस अथवा मानवता की सेवा और उनकी पीड़ा दुख दूर करने की लालसा सर्वथा निहित है। विश्व के अनेकानेक धर्मों का जो सार है वह है मानवता की सेवा तथा दुखियों व पीड़ितों की पीड़ा का निवारण। हमारे मनुष्यों ने सहस्त्रों वर्षों से जो स्वर्णिम विचार हमें दिए हैं उसमें तो केवल मानव ही नहीं वरन पशु पक्षियों, पेड़ पौधों, पहाड़ों, नदियों, यहाँ तक कि अंतरिक्ष, पर्यावरण आदि के प्रति श्रद्धा व सेवा का भाव ओम शांति शांति शांति के रूप में व्यक्त किया है। शांति का अर्थ होता है मानव समाज के ऐसे आचरण का जिससे प्रकृति का संतुलन बना रहे वो बिगड़ने न पाए। इस लक्ष्य की प्राप्ति में सत्य पथ, करुणा, पवित्र विचार, त्याग आदि जीवन के शाश्वत मूल

0: की नितांत आवश्यकता होती है। इन विचारों से ओत प्रोत मनुष्य ही संसार के कल्याण के विषय में सोच सकता है और उसे कार्यान्वित करने हेतु मानवता की सेवा में सतत प्रयत्नशील रह सकता है। यदि हम दृष्टि डालें तो पूरे विश्व में और विशेषकर अपने देश में ऐसे सामाजिक व धार्मिक संगठनों की न्यूनता नहीं है जिनका मुख्य ध्येय मानव समाज की सेवा ही होता है। ऐसे अनेकानेक संस्थाओं में रामकृष्ण मिशन, डिवाइन लाइफ सोसाइटी, आनंदमयी आश्रम, सत्य साई संस्थान, स्वामी अवधूत राम कुष्ठ आश्रम, मदर टेरेसा संचालित संस्थाएं आदि का नाम उल्लेखनीय है। एक प्रकरण का उल्लेख करना उचित होगा। एक दिन दक्षिणेश्वर में स्वामी रामकृष्ण परमहंस ने किसी अति दीनहीन मनुष्य के दुख को देखकर स्वामी विवेकानंद से कहा कि हमें केवल सहानुभूति व्यक्त करने से ही सांत्वना नहीं मिलेगी वरन इसकी सेवा करने से, क्योंकि जीव शिव है, अतएव हर एक दुखी प्राणी को हमें भगवान के रूप में देखना चाहिए। अब इस प्रसंग को यहाँ छोड़ते हुए अपने बाल्यकाल जीवन के अनुभव को उद्धृत करना उचित समझता हूँ। अच्छी प्रकार स्मरण है कि स्कूल में हमें स्काउटिंग के प्रशिक्षण में सिखाया जाता था कि हम अपनी डायरी में नित्य प्रतिदिन ये उल्लिखित करें कि हमने कोई सेवा कार्य या किसी को मदद करने का कार्य किया अथवा नहीं। इसके लिए हमारे स्कूल व घर के वातावरण में सत्य बोलना, दया भाव रखना, बड़ों का आदर करना, दीन दुखियों की सेवा करना आदि जीवन के आदर्श पर काफ़ी जोर दिया जाता था। दुख की बात है कि आज के युग में हमारे जीवन में जो उपभोक्ता संस्कृति का परिवेश हुआ है उससे हमारे नैतिक स्तर का ह्रास तेजी से हुआ है। हमें याद है कि वर्षों पहले हम दरिद्र नारायण सेवा के बारे में बहुधा सुना करते थे, अब ये सेवाएं लुप्त प्राय होती जा रही हैं। इससे भी क्षोभ का विषय है कि मानवाधिकार के नाम पर बहुसंपन्न और बहुबली राष्ट्र अपना विचार अपने आयुधों के बल पर अन्य देशों पर थोपने में लग गए हैं। विडंबना यह है कि यह दुष्कर्म मानवता को नरसंहारी आयुधों से बचाने के नाम पर विश्व सेवा का रूप दिया जा रहा है। पुरातन काल से चले आ रहे हमारे वसुधैव कुटुंबकम की भावना के तहत जो सेवा भाव तथा मानवीय भावनाएं निहित हैं उसी में विश्व का कल्याण है। अतएव भारतवर्ष का संदेश अहिंसा परमो धर्म को निभाने के लिए हमें मानवता की सेवा की भावना से ओतप्रोत होना पड़ेगा।
1: आप सुन रहे थे विचार बिंदु। हम आकाशवाणी के वाराणसी केंद्र से बोल रहे हैं। मीडियम वेव 241.54 मीटर अर्थात 1242 किलोहर्ट्ज पर। प्रस्तुत है स्वास्थ्य चर्चा। आज इसमें विषय है बरसात के मौसम में होने वाली समसामयिक बीमारियां और होम्योपैथिक उपचार। विशेषज्ञ हैं डॉक्टर अनिल कुमार गुप्ता।
2: श्रोताओं, मैं डॉक्टर अनिल कुमार गुप्ता, वरिष्ठ होम्योपैथिक चिकित्सा अधिकारी, राजकीय होम्योपैथिक जिला चिकित्सालय। श्रोताओं, हम लोग अभी बात कर रहे थे बरसात में होने वाली बीमारियां, हमने उससे होने वाली बीमारियों पर बातचीत कर चुके हैं, उसके क्या लक्षण होते हैं हम उस पर बातचीत कर चुके हैं। इसी कड़ी में हम अब अगले स्टेप पे चलते हैं, बचाव के। अब इस पे बचाव क्या क्या किया जाए, जिससे हम सावधानियां क्या क्या बरती जाए जिससे हम बरसात में होने वाली बीमारियों से बचे रहें और स्वस्थ रहें और सुरक्षित रहें। पहला तो हाइड्रेटेड रहें, दिन भर में कम से कम 2.5 से 3 लीटर मिनिमम पानी जरूर पिए, और पानी की एक इस समय विशेषकर बरसात में ध्यान रखें वो स्वच्छ हो। स्वच्छ होना देखने से नहीं स्वच्छ होना हो चाहिए, उसमें बैक्टीरिया और विषाणु इस तरीके की चीज़ें नहीं होनी चाहिए। या तो आरओ का पानी पिए। खाना इस समय जो होता है, जो डाइजेस्टिव सिस्टम होती है उसकी जो डाइजेशन करने की जो क्षमता होती है वो बहुत कम हो जाती है, इसलिए कोशिश करें खाना जो है हल्का सुपाच्य लें। अपने भूख से जो भूख आपकी है 80% उससे कम ही खाना खाएं, और उस खाने में जो है कोशिश करें कि अपने साथ साथ उसमें सलाद और प्रोबायोटिक्स जैसे दही और इस तरीके की चीज़ें जो फर्मेंटेड कुछ आती हैं उनको जरूर शामिल करें। खाने में अपने फाइबर का सेवन, फल और सलाद अवश्य शामिल करें, और अपनी इम्यूनिटी को इस समय स्ट्रांग रखें। इम्यूनिटी को स्ट्रांग रखने के लिए आप संतुलित भोजन तो ले ही लें, साथ में अदरक, हल्दी, तुलसी, अजवाइन इस तरीके का भी चीज़ों का काढ़े के रूप में, चाय के रूप में सेवन करेंगे तो आपकी इम्यूनिटी इससे आपकी स्ट्रांग रहती है। मच्छरों से बचाव होना जरूरी है, क्योंकि मच्छरों से भी कई बीमारियां इस बरसात में होती हैं, तो मच्छरों से बचाव के लिए कुछ कॉमन से प्रोटोकॉल होते हैं। अगल बगल जो है आप साफ सफाई का ध्यान रखें, पानी न लगने दें, कूलर वगैरह के या टायर वगैरह छत वत पे पड़े हैं, अगल बगल नाली वाली में पानी है तो वहाँ से पानी साफ कर दें, उसमें

0: मच्छर रोधी जो है लार्विसाइडल कुछ दवाइयाँ आती हैं वो डाल दे, सफाई का विशेष ध्यान रखें। ये तो जो मैं अब बोलने जा रहा हूँ पॉइंट, ये हर सीजन के लिए बेस्ट है, लेकिन बरसात में तो और भी बेस्ट हो जाता है क्योंकि आपका इम्यूनिटी और अच्छा करना है। व्यायाम, योग, ध्यान, प्राणायाम, साइकिलिंग, रनिंग, जुम्बा, जिस तरीके से आप समझ सके, कम से कम आधे घंटे अपने लिए, अपने शरीर के लिए, अपने स्वास्थ्य के लिए जरूर दें। ये बहुत ही जरूरी है आपके उत्तम स्वास्थ्य के लिए और आपको इन बीमारियों से बचने के लिए। उसके साथ साथ तनाव, एक बहुत बड़ा एक डिप्रेशन, तनाव, एंजाइटी, एक खुश रहे, मस्त रहे, और जो चीजें आप आपके हाथ में हो उसके अच्छे से करें, और भरपूर नींद लें, 8 घंटे की कम से कम प्रॉपर स्लीप ले, वो बहुत जरूरी है। और जहां भी आप सोए हवादार कमरा रहे, और मच्छरों से बिल्कुल बहुत ज्यादा बचाव का ध्यान रखें। स्वच्छता, बरसात हो और स्वच्छता की बात ना हो यह असंभव सी बात है। तो पहले तो आप व्यक्तिगत स्वच्छता की बात ध्यान रखें कि अपने पूरे शरीर को दिन भर में 2 बार नहाएं, और नहाने के बाद जो अपने नाखून वगैरह उनको अच्छे से काट के रखें, कपड़े स्वच्छ पहने और धुले हुए रहें, और पाउडर कम से कम एक नहा डाल के रखें, टेलकम पाउडर, इस समय डस्टिंग पाउडर बहुत जरूरी होता है। आसपास अपने घर में झाड़ू वगैरह सही से लगा रहे, कहीं गंदगी न रहे। तो हो गई, हम अपना ध्यान रख लिए, अपने घर का ध्यान रख लिया, मोहल्ले में निकलिए, अगल बगल मोहल्ले में भी जाके देखिए, क्योंकि वो जो वहाँ का मक्खी मच्छर होगा वो भी आप ही घर आके परेशान करेगा, वहाँ का भी विषाणु और कीटाणु जो होगा वो आपको आके परेशान करेगा, ग्रसित करेगा। तो इसलिए वहाँ भी कोशिश करें अगल बगल लोगों से मिलके सामूहिक योगदान करके अगल बगल सफाई का विशेष ध्यान रखें। इसमें आपको आपके जो लोग हैं अगल बगल के पड़ोसी वो तो हेल्प करेंगे ही करेंगे, आपके साथ हमारी सरकार, नगर निगम, इस तरीके के लोग भी लगातार आपके साथ कंधे से कंधा मिला के स्वच्छता के लिए लगे हुए हैं, तो उनका साथ दें। क्योंकि मैं एक होम्योपैथी चिकित्सा विशेषज्ञ हूँ, तो मैं होम्योपैथी की बरसात से संबंधित कुछ कॉमन बीमारियों में जो है जो दवाइयाँ हमारी कॉमन चलती हैं उन पर बात करना बहुत जरूरी समझता हूँ इस सीजन में। आप सोचिए कि जो हमारे यहाँ इस तरीके की भी लिखी हुई है कि बरसात के सीजन में कोई भी बीमारी हो, अगर वो ह्यूमिडिटी के साथ अगर हो रही है, उसमें सीजन की कुछ कॉमन सी दवाइयाँ हैं। अब आप सोचिए होम्योपैथी चिकित्सा विधा कहाँ तक पहुंची हुई है, जिसमें आरटी, डलका मारा, नेट्रमसल, थूजा, ब्राइनिया, बेलाडोना, इस तरीके की कॉमन दवाइयाँ आ रही हैं जो इस सीजन में बहुत ही किसी भी तरीके की बरसात के सीजन में होने वाली बीमारियों में बहुत ही लाभकारी होता है। बस ध्यान इतना ही रखें कि होम्योपैथिक चिकित्सा कोई ऐसा नहीं है कि ये लोगों के दिमाग में होती है, काम नहीं करेगी तो नुकसान नहीं करेगी, तो अपने मन से ले लिया, कहीं से स्टोर से ले लिया, किसी की बात से ले लिया और खाना शुरू कर दिया, ये कभी ना करें, बहुत ही नुकसानदायक हो जाएगा। कोशिश करें अपने पास के सरकारी चिकित्सक या जो भी क्वालिफाइड होम्योपैथिक चिकित्सक है उसकी सलाह से, होम्योपैथिक चिकित्सा का चिकित्सक की सलाह से आप होम्योपैथिक चिकित्सा की दवाइयाँ अपने लिए इन बीमारियों से बचने के लिए इस्तेमाल करें और इनसे ठीक होने के लिए इस्तेमाल करें।
1: आप सुन रहे थे स्वास्थ्य चर्चा, हम आकाशवाणी के वाराणसी केंद्र से बोल रहे हैं। प्रस्तुत है श्रीरामचरितमानस से संगीतमय पाठ।

रानी कैकेयी को पूर्ण रूप से अपने प्रभाव में आई देख मंथरा ने शुभ संवाद सुनाया कि उसने ज्योतिषियों से पूछकर ये जान लिया है कि अंततो गत्वा भरत ही राजा होंगे, किंतु उसके लिए रानी को कुछ उपाय करना पड़ेगा। रानी कैकेयी उपाय जानने को आतुर हो जाती हैं। कहती हैं, तेरे कहने से तो मैं कुएं में छलांग लगा सकती हूँ, पति और पुत्र का भी त्याग कर सकती हूँ। यदि तू मेरे ऊपर आने वाले दुख के निवारण के उपाय बता सकती है तो मैं वो उपाय क्यों नहीं करूँगी। मंथरा अपने स्वामिनी को उन दो वरदानों का स्मरण दिलाती है जो राजा दशरथ के पास धरोहर के रूप में थे। अब समय आ गया है कि दोनों

वरदान मांगकर वो अपनी छाती ठंडी कर लें। मांग लो अपने पुत्र के लिए राज्य और राम के लिए वनवास, लेकिन ध्यान रखना, राजा से जो मांगो वो देने के लिए जब सौगंध खा लें तभी मांगना, अन्यथा काम बिगड़ जाएगा। रानी कैकेयी मंथरा के वचन सुनकर कृतकृत्य हो जाती हैं। कुबरी मंथरा उन्हें अपने प्राणों से भी अधिक प्रिय लगने लगती है। कहती हैं, यदि विधाता मेरा मनोरथ पूरा कर दें तो हे सखी, मैं तुम्हें अपनी आंखों की पुतली बना लूं। ऐसा कह मंथरा द्वारा प्रेरित हो वो कोप भवन में चली जाती हैं।

अभी आप सुन रहे थे श्रीरामचरितमानस से संगीतमय पाठ। आज की इस कड़ी के गायक कलाकार थे ए हरिहरन व साथी। हम आकाशवाणी के वाराणसी केंद्र से बोल रहे हैं, 6:50 हुए हैं। आइए नजर डालते हैं आज के शेष प्रमुख कार्यक्रमों पर। संदेश टू सोल्जर्स, ये कार्यक्रम आप सुनेंगे 4:00 से, जिसे हम आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से रिले करेंगे। उर्दू कार्यक्रम आप सुनेंगे 9:30 पर, जिसे हम लखनऊ केंद्र से रिले करेंगे। शास्त्रीय संगीत के कार्यक्रमों में आज रात्रि 10:30 पर और 7:31 पर सुनिएगा पंडित हरिप्रसाद चौरसिया का बांसुरी वादन, और इसी कार्यक्रम में दोपहर 12:45 पर सुनिएगा आशीष कुमार मिश्र का उपशास्त्रीय गायन। आपकी पसंद, ये कार्यक्रम हम लेकर आएंगे रात्रि 10:00 से, और कहकशां आप सुनेंगे दिन में 2:30 से। गैर फिल्मी गीत गजल का कार्यक्रम अंजुमन का प्रसारण होगा रात्रि 9:30 पर। सुगम संगीत में रात्रि 8:00 और दोपहर 12:30 पर कलाकार होंगी सुहानी शुक्ला। किसान भाइयों के कार्यक्रम कृषि जगत में आज शाम 6:30 पर सुनिएगा डॉक्टर विनोद कुमार से अपने सवालों के जवाब। किसान भाई सुनेंगे, कार्यक्रम होगा हेलो कृषि जगत। इस कार्यक्रम में लोकगीत प्रस्तुत करेंगे नंदलाल राम व साथी। इन्हीं के गाए लोकगीत आप सुन सकते हैं 9:50 पर और दिन 1:45 पर।

युवा साथी युवाणी सुनेंगे शाम 5:15 पर, जिसमें आकर्षण होंगे आज की बात, मेरी पसंद, यूथ डायरी, रोजगार सूचना और अल्पसंख्यकों के कल्याण हेतु 15 सूत्रीय कार्यक्रम। धरती के गीत कार्यक्रम आप सुनेंगे शाम 5 बजे से। इसमें आज आप सुनेंगे कुमायूनी गीत। ग्रामीण महिलाओं का कार्यक्रम अंगनैया दिन में 1:15 पर, जिसमें महिलाएं चर्चा के अलावा डॉक्टर विजय यादव से बातचीत सुनेंगी। विषय होगा महिलाओं में स्वच्छता और स्वास्थ्य के प्रति जागरूकता।

0: एनसीईआरटी द्वारा प्रायोजित कार्यक्रम दोपहर 12 बजे से, फरमाइशी गीत एक्सप्रेस दिन में 11 बजे से, झनकार आप सुनेंगे सुबह 10 बजे से, सदाबहार फिल्मी गीतों का कार्यक्रम मधुरिमा का आनंद लीजिएगा सुबह 8:45 पर, रोज की तरह गुड मॉर्निंग बनारस आप सुनेंगे सुबह 7 बजे से। फिल्म संगीत का आनंद लीजिएगा शाम 6:10 पर, 7 बजे, 7:31 पर रसरंग में, और रात्रि 8:15 पर रसमाधुरी के जरिए। ये थे आज के शेष प्रमुख कार्यक्रम। 6:55 होने वाले हैं। संस्कृत में समाचार आप सुनेंगे आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से बस कुछ ही पलों में।
1: इयम् आकाशवाणी सम्प्रति वार्ताः श्रूयन्ताम् प्रवाचिका ऋचा झा। अथ वार्ताः। प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदी त्रिराष्ट्र यात्रायाः द्वितीये चरणे ऑस्ट्रेलिया देशस्य मेलबोर्न नगरं सम्प्राप्तवान्। ह्यः तस्य आगमन समये ऑस्ट्रेलिया देशस्य नगरावासन मन्त्री क्लेयर ओ नील इत्येषा प्रधानमन्त्रिणः मोदिनः स्नेहपूर्वकं स्वागतम् अकरोत्। प्रधानमन्त्री अवदत् यत् इयं यात्रा भारत ऑस्ट्रेलिया समग्र सामरिक सहभागितायाः ऊर्जां वर्धयिष्यति इति। सामाजिक संचार पटले एकस्मिन् सन्देशे श्रीमोदी अवदत् यत् असौ ऑस्ट्रेलिया देशस्य समकक्षेण एन्थनी एल्बनीज इत्यनेन सह संवादम् आचरिष्यति। असौ एतदपि कथितवान् यत् भारत ऑस्ट्रेलिया सहभागित्वस्य महत्वपूर्ण स्तम्भेन भारतीय प्रवासिना सह संवादाय अवसरः अपि प्राप्स्यामि इति। यात्रावधौ श्रीमोदी तृतीये भारत ऑस्ट्रेलिया वार्षिक सम्मेलने भागं ग्रहीष्यति। असौ भारत ऑस्ट्रेलिया मुख्य कार्यकारी मंचे अपि भागं ग्रहीष्यति, यत्र सः उभय देशयोः प्रमुखानां व्यापार नेतृणां समागममपि सम्बोधयिष्यति। भारत म्यांमार देशौ द्वैपाक्षिक सुरक्षा सहकारिता विषये चर्चां कृतवन्तौ। द्वैपाक्षिक संवाद व्यवस्थायाः अन्तर्गते प्रगतिं च समीक्षितवन्तौ। भारत म्यांमार देशयोः मध्ये 23तमं द्विदिवसीय राष्ट्रिय स्तरीय सम्मेलनम् अद्य ह्यः नवदिल्ल्यां सम्पन्नम्। गृहमन्त्रालयः अवदत् यत् भयोत्पादनं विद्रोहः मादकद्रव्याणां क्रयविक्रयणं शस्त्राणां क्रयविक्रयणं मानवव्यापारं वन्यजीवानां क्रयविक्रयणम् इत्यादीनां संघटितानां अपराधप्रकाराणां निवारणार्थं सहकारिता विषये उभयपक्षौ चर्चां कृतवन्तौ। भारत रूस देशाभ्यां ह्यः संयुक्त राष्ट्र ब्रिक्स यूरेशियन समूह शंघाई सहयोग संघटनानि समेत्य बहुपाक्षिक मञ्चेषु आतंकवादरोधी सहयोगम् इतोपि सुदृढीकरणस्य प्रतिबद्धता पुनरुद्घाटिता। भारत रूस आतंकवाद निरोधक संयुक्त कार्य समूहस्य चतुर्दशोपवेशनम् ह्यः नवदिल्ल्याम् आयोजितमासीत्। द्वौ देशौ सीमापारे आतंकवादं समेत्य आतंकवादस्य सर्वेषां रूपाणां अभिव्यक्तिनां च निन्दां कृतवन्तौ। भारतीयान्तरिक्ष अनुसन्धान संघटनं मध्यप्रदेशस्य श्योपुर नगरस्य एरियल डिलीवरी रिसर्च

0: and Development Establishment इत्यस्य ड्रॉप जोन इत्यत्र गगनयान उपक्रमस्य कृते महत्वपूर्णम् एकीकृतम् IMAT इति परीक्षा सफलतया आयोजिता। भारतर्तु विज्ञान विभागेन उक्तं यत् आगामिषु त्रिषु दिनेषु नैऋत्य प्रावृषे उत्तर अरब सागर राजस्थाने गुजरात हरियाणा पंजाब इत्येतेषां शेष भागेषु अग्रे गन्तुं स्थितिः अनुकूलः अस्ति। अद्य अरुणाचल प्रदेश असम मेघालय बिहार पूर्व राजस्थान मध्य प्रदेश उप हिमालयीय पश्चिम बंगाल सिक्किम पश्चिमोत्तर प्रदेशानां केषुचित् भागेषु प्रचंड वृष्टिः भविष्यति इति ऋतु विभागेन पूर्वानुमानितम्। जम्मू कश्मीर प्रशासनेन ह्यः श्री अमरनाथ जी यात्रामुद्देश्य एका नवीना निर्देशिका प्रसारिता, यस्यां सर्वहि तीर्थयात्रिभिः पंजीकरण प्रक्रियायाः अथ सुरक्षा मार्गदर्शिकानां निष्ठापूर्वकं दृढतापूर्वकञ्च पालनं कर्तुं समादिष्टम्। आकाशवाण्याः जम्मू वार्ताहरैः विज्ञापितं यत् सर्वोच्च न्यायालयस्य निर्देशानुसारं निर्धारिता यात्रणां प्रतिदिनस्य संख्या सीमा सम्प्रत्योपि पूर्णतो प्रवृत्ता वर्तते। श्रद्धालवः परामृष्टाः यत् यात्रा प्रारम्भात् एव पूर्वमेव अग्रिम पञ्जीकरणं करणीयम्, अथ अनुमतिपत्रे उल्लिखिते दिनांके एव यात्रा आरम्भणीया। प्रशासनेन स्पष्टीकृतं यत् अनुपदमेव पञ्जीकरणस्य सुविधा अत्यन्तं सीमितसंख्यासु एव उपलब्धा अस्ति। इति वार्ताः।
1: ये आकाशवाणी वाराणसी केंद्र है। प्रस्तुत है कार्यक्रम गुड मॉर्निंग बनारस।

हेलो एंड अ वेरी गुड मॉर्निंग। मैं स्तुति हाजिर हूँ आप सभी का फेवरेट शो लेकर, जिसका नाम है गुड मॉर्निंग बनारस। भाई, सुबह की इस प्यारी सी शुरुआत में अगर आपने अपने घर की खिड़की खोली होगी तो यकीनन मिट्टी की भीनी भीनी खुशबू ने आपका भी स्वागत किया होगा। बनारस में हल्की हल्की बारिश ने मौसम को जैसे एक नई मुस्कान दे दी है। कहीं छतों पर गिरती बूंदों की टप टप, कहीं पेड़ों पर ठहरती बारिश, तो कहीं चाय की दुकान पर उठती अदरक वाली चाय की भाप, बस यही तो है मॉनसून का असली जादू। बनारस, बारिश हमेशा ना हमें एक बात सिखाती है कि जिंदगी में हर मौसम हमेशा एक जैसा नहीं रहता। कभी धूप होती है, कभी बादल और कभी तेज बारिश, लेकिन हर मौसम अपने साथ कुछ नया लेकर आता है। लेकिन बनारस आजकल ना एक बात बहुत ज्यादा देखने को मिलती है कि हम लोग छोटी छोटी बातों को लेकर इतना परेशान हो जाते हैं कि हमारे पास जो बड़ी बड़ी खुशियां है ना, हमारी आंखों के सामने होकर भी हमें दिखाई नहीं देती। किसी का मैसेज देर से आ गया, ऑफिस में किसी ने तारीफ नहीं की, सोशल मीडिया पर किसी पोस्ट पर कम लाइक्स आए, या फिर किसी ने हमारी बात का जवाब हमारी उम्मीद के मुताबिक नहीं दिया और बस पूरा दिन खराब। जरा सोचिए, हर दिन हम अपनी खुशियों को दूसरों पर निर्भर कर देते हैं। क्या ये सभी बातें सच में इतनी बड़ी हैं भी कि हमारी मुस्कान छीन लें? कभी कभी हम उस चीज के पीछे भागते रहते हैं जो हमारे पास नहीं है, और जो हमारे पास है उसकी कद्र करना ही भूल जाते हैं। एक मजबूत छत है, दो वक्त का खाना है, परिवार है, कुछ अच्छे दोस्त हैं, चलने के लिए पैर हैं, सोचने के लिए दिमाग है, और भाई सबसे बड़ी बात, आज का दिन हमारे पास है। यकीन मानिए बनारस, दुनिया में न जाने कितने लोग ऐसे हैं जो इन छोटी छोटी खुशियों के लिए तरसते हैं। ये बदलता मौसम हमें

याद दिलाता है कि खुशियाँ बहुत बड़ी नहीं होती। कभी बालकनी में बैठकर चाय पी लेना, कभी बिना किसी वजह के अपने माता पिता से बातें कर लेना, कभी बच्चों के साथ बारिश में भीग लेना, अपनी पसंद के गाने सुन लेना, या बस आधे घंटे के लिए सही शांत मन से मेडिटेशन कर लेना। यही छोटी छोटी बातें मिलकर जिंदगी को खूबसूरत बनाती हैं। जिंदगी एक ही बार मिलती है, ये बात से मैं पूरी तरह सहमत नहीं हूँ। आपको क्या लगता है? ये बात पूरी तरह सही नहीं लगती मुझे। सही बात तो शायद ये है कि जिंदगी आप हर दिन जी सकते हैं, मगर मौत सिर्फ एक बार आती है। इसलिए हर सुबह अपने आप में एक नया मौका है, नई शुरुआत का, नई उम्मीद का, नई मुस्कान का। अगर कल अच्छा नहीं था तो क्या हुआ, आज बेहतर हो सकता है। अगर पिछले हफ्ते बहुत तनाव में गुजरा तो आज खुद से एक वादा कीजिए कि मैं छोटी छोटी बातों में उलझकर अपनी बड़ी खुशियों को नजरअंदाज नहीं करूंगा या करूंगी, और अपने आज को फुल ऑन जीना है अच्छे से और खुश होकर। और जो आपके पास है वो बहुत कीमती है। इसी तरह करेंगे और भी बहुत सारी बातें। बनारस कहीं जाइएगा मत, बने रहिए मेरे साथ ओनली ऑन आपकी वाणी आकाशवाणी, और सुनिए ये ब्यूटीफुल सा ट्रैक।

वेलकम बैक बनारस। तो अब बढ़ते हैं आगे और आपको बताते हैं क्या चल रहा है अपने शहर बनारस में खास। बाढ़ के मौसम से पहले गंगा को स्वच्छ और प्रदूषण मुक्त बनाए रखने के उद्देश्य से नमामि गंगे और नगर निगम की ओर से गंगा के दूसरे छोर स्थित रेतीले तट पर विशेष स्वच्छता अभियान चलाया गया। अभियान के दौरान स्वयं सेवकों और नगर निगम की टीम ने श्रमदान करते हुए लगभग 1000 किलोग्राम कचरा एकत्र किया, जिससे सुरक्षित तरीके से निस्तारित करने के लिए नगर निगम की नाव के माध्यम से प्रसंस्करण केंद्र भेजा गया। स्वच्छता अभियान के दौरान रेतीले किनारों पर फैली पॉलिथीन, प्लास्टिक की बोतलें, पुराने कपड़े, डायपर, पूजन सामग्री, निर्माल्य तथा अन्य ठोस अपशिष्ट को हटाया गया। अभियान का उद्देश्य बाढ़ के दौरान इन अपशिष्ट पदार्थों के गंगा में बहकर प्रदूषण फैलाने की आशंका को रोकना था। अभियान के दौरान गंगा पार मौजूद श्रद्धालुओं और पर्यटकों को भी स्वच्छता के प्रति जागरूक किया गया। स्वयं सेवकों ने सबका साथ हो गंगा साफ का संदेश देते हुए लोगों से अपील की कि गंगा तट पर भ्रमण या पूजन अर्चन करने के बाद कचरा इधर उधर ना छोड़ें और स्वच्छता बनाए रखने में सहयोग करें। नमामि गंगे काशी क्षेत्र के संयोजक और नगर निगम के स्वच्छता ब्रांड एम्बेसडर राजेश शुक्ला ने कहा कि गंगा के उस पार भी बड़ी संख्या में पर्यटक और श्रद्धालु पहुंचते हैं। लोग यहां शांति और आध्यात्मिक सुकून की तलाश में आते हैं, लेकिन अनजाने में अपने पीछे गंदगी छोड़ जाते हैं। उन्होंने कहा कि सदियों से मां गंगा मानवता को जीवन देती आई है, इसलिए उन्हें स्वच्छ रखना प्रत्येक नागरिक की जिम्मेदारी।

जिम्मेदारी है। वहीं मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ मंगलवार को 2 दिवसीय दौरे पर वाराणसी पहुंचे। सर्किट हाउस में उन्होंने जनप्रतिनिधियों और वरिष्ठ अधिकारियों के साथ विकास परियोजनाओं, कानून व्यवस्था और आगामी श्रावण मास की तैयारियों की विस्तृत समीक्षा की। बैठक में मुख्यमंत्री ने स्पष्ट किया कि विकास कार्यों की गुणवत्ता और समयबद्धता से किसी भी स्तर पर समझौता नहीं किया जाएगा। जन सुविधाओं से जुड़े मामलों में सभी विभाग बेहतर समन्वय के साथ कार्य करेंगे। साथ ही मुख्यमंत्री ने जनपद में संचालित प्रमुख परियोजनाओं की समीक्षा करते हुए एकीकृत मंडलीय कार्यालय का निर्माण 18 माह के भीतर पूरा करने का लक्ष्य तय करने को कहा। दाल मंडी सड़क चौड़ीकरण परियोजना के संबंध में उन्होंने शेष भवनों का नियमानुसार मुआवजा वितरण कर शीघ्र ध्वस्तीकरण की कार्यवाही पूरी करने के निर्देश दिए। जल जीवन मिशन की समीक्षा करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि इस योजना में धन की कोई कमी नहीं है, इसलिए कार्यों में किसी प्रकार की ढिलाई स्वीकार नहीं होगी। उन्होंने पाइपलाइन बिछाने के साथ साथ खोदी गई सड़कों की तत्काल मरम्मत कराने पर विशेष जोर देते हुए कहा कि जनता को किसी प्रकार की असुविधा नहीं होनी चाहिए। वहीं बैठक में वाराणसी रोपवे परियोजना की भी समीक्षा की गई। मंडल आयुक्त एस राजलिंगम ने मुख्यमंत्री को बताया कि परियोजना का कार्य अगस्त तक पूरा होने की संभावना है। मुख्यमंत्री ने निर्धारित समय सीमा के भीतर परियोजना पूरे करने के निर्देश दिए। इसी प्रकार निर्माणाधीन आनंद काशी, रुद्र काशी और काशी स्पोर्ट्स सिटी जैसे परियोजनाओं की प्रगति की जानकारी लेते हुए उन्होंने सभी आवश्यक प्रक्रियाएं समय पर पूरे करने के निर्देश दिए। मुख्यमंत्री ने गंगा में नाव संचालन व्यवस्था की समीक्षा करते हुए स्थानीय नाविकों के साथ बैठक आयोजित करने और छोटी नावों का नगर निगम के माध्यम से पंजीकरण कराने का निर्देश दिया। उन्होंने नाविकों को लाइफ जैकेट सहित अन्य सुरक्षा उपकरण उपलब्ध कराने और नदी में सुरक्षित नौकायन सुनिश्चित करने पर जोर दिया। मुख्यमंत्री ने शहर में अंडरग्राउंड केबलिंग और पाइपलाइन कार्यों के दौरान जगह जगह सड़कें खोदकर छोड़ देने की शिकायतों पर नाराजगी जताई। उन्होंने निर्देश दिया कि ऐसे कार्य शुरू करने से पहले संबंधित विभागों की संयुक्त बैठक हो और सड़कों का रेस्टोरेशन समय पर कराया जाए। उन्होंने कहा कि खराब सड़कों के कारण दुर्घटनाओं की संभावना नहीं रहनी चाहिए। बैठक में आगामी श्रावण मास की तैयारियों पर विशेष चर्चा हुई। मुख्यमंत्री ने निर्देश दिया कि प्रशासन, पुलिस, नगर निगम, लोक निर्माण विभाग, विद्युत विभाग, परिवहन और रेलवे के बीच बेहतर समन्वय स्थापित कर श्रद्धालुओं को सुरक्षित और सुगम दर्शन सुनिश्चित किए जाएं। उन्होंने श्री काशी विश्वनाथ मंदिर में काशीवासियों के लिए अलग दर्शन व्यवस्था सुनिश्चित करने के निर्देश दिए। इस पर्व पूर्व मंत्री और विधायक डॉक्टर नीलकंठ तिवारी ने मुख्यमंत्री का आभार व्यक्त करते हुए इसे स्थानीय लोगों की लंबी समय से चली आ रही मांग बताया। मुख्यमंत्री ने यह भी कहा कि मैदागिन से गोदौलिया तक बैरिकेडिंग इस प्रकार की जाए कि स्थानीय व्यापारियों को किसी प्रकार की असुविधा ना हो। इस मार्ग पर पर्याप्त एम्बुलेंस, पेयजल, स्वच्छता, खोया पाया केंद्र, स्वास्थ्य सेवाएं और आपदा प्रबंधन की समुचित व्यवस्था रखने के निर्देश भी दिए। साथ ही मुख्यमंत्री ने गंगा के बढ़ते जलस्तर को देखते हुए जल पुलिस को पूरी तरह सतर्क रहने, लाइफ जैकेट का अनिवार्य उपयोग सुनिश्चित करने और सीसीटीवी के माध्यम से लगातार निगरानी रखने के निर्देश दिए। उन्होंने जर्जर भवनों के समीप बैरिकेडिंग में विशेष सावधानी बरतने और बैरिकेड्स को इस प्रकार लगाने को कहा कि किसी श्रद्धालु को चोट न पहुंचे। उन्होंने श्रावण मास में मंदिर व्यवस्था में लगे कर्मचारियों की ड्यूटी में नियमित बदलाव करने का भी निर्देश दिया ताकि वीआईपी दर्शन के नाम पर किसी प्रकार की अनियमितता या शिकायत सामने न आए। मुख्यमंत्री ने पुलिस अधिकारियों को सीमावर्ती क्षेत्रों में विशेष सतर्कता बरतने, फुट पेट्रोलिंग बढ़ाने और प्रत्येक 6 माह में पुलिस कर्मियों की ड्यूटी बदलने के निर्देश दिए। उन्होंने IGRS और मुख्यमंत्री हेल्पलाइन पर प्राप्त शिकायतों का गुणवत्तापूर्ण और समयबद्ध निस्तारण सुनिश्चित करने को भी कहा। आगे आपको बता दें, बनारस की विकास प्राधिकरण की महत्वाकांक्षी आनंद काशी आवासीय योजना में जन सहभागिता का दायरा लगातार बढ़ रहा है। इसी क्रम में संयुक्त राज्य अमेरिका में रहने वाले एक प्रवासी भारतीय ने अपनी मातृभूमि के विकास में योगदान देने के लिए विशेष रूप से वाराणसी पहुंचकर
लैंड पूलिंग योजना में भागीदारी की। इस पहल को जन सहयोग आधारित शहरी विकास

विकास मॉडल का प्रेरणादायी उदाहरण बताते हुए वाराणसी विकास प्राधिकरण ने भूमि उपलब्ध कराने वाले भूस्वामियों को सम्मानित किया। बीडीए द्वारा विकसित की जा रही आनंद काशी आवासीय योजना कल्लीपुर के अंतर्गत लैंड पुलिंग योजना के माध्यम से स्थानीय और प्रवासी भूस्वामियों का सहयोग लगातार मिल रहा है। इसी क्रम में अमेरिका में निवासरत अमित कुमार ने वाराणसी आकर योजना में अपनी सहभागिता सुनिश्चित की। उनके साथ दिनेश कुमार सिंह और जावित्री देवी ने भी योजना के विकास के लिए अपनी भूमि उपलब्ध कराई। वहीं वाराणसी रिंग रोड फेज 2 के निर्माण कार्य को गति देने के लिए भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण ने महत्वपूर्ण यातायात व्यवस्था लागू की है। इसके तहत रिंग रोड फेज 2 पैकेज 2 के संदह रेवसा खंड में दोनों कैरिजवों पर प्रतिदिन रात 8 बजे से सुबह 8 बजे तक सभी प्रकार के वाहनों का आवागमन पूरी तरह प्रतिबंधित रहेगा। ये व्यवस्था 30 सितंबर 2026 तक प्रभावी रहेगी। NHAI के अनुसार गंगा पुल के लेफ्ट हैंड साइड कैरिजवे पर शेष निर्माण कार्य तेजी से चल रहे हैं। निर्माण कार्यों को सुरक्षित और निर्धारित समय सीमा के भीतर पूरा करने के लिए राइट हैंड साइड कैरिजवे का उपयोग भारी निर्माण मशीनों उपकरणों और निर्माण सामग्री के आवागमन के लिए किया जा रहा है। ऐसे में निर्माण स्थल पर सामान्य यातायात संचालित करना सुरक्षा की दृष्टि से संभव नहीं है। प्राधिकरण ने स्पष्ट किया है कि निर्माण कार्यों को निर्बाध रूप से पूरा करने के उद्देश्य से संदह रेवसा खंड के LHS और RHS दोनों कैरिजवे पर प्रतिदिन रात्रिकालीन ट्रैफिक ब्लॉक लागू किया जाएगा। इस दौरान किसी भी प्रकार के वाहन को इस मार्ग से गुजरने की अनुमति नहीं मिलेगी। प्राधिकरण का कहना है कि ये अस्थायी व्यवस्था निर्माण कार्यों को सुरक्षित सुचारू और समयबद्ध तरीके से पूरा करने के लिए की गई है। परियोजना पूरी होने के बाद रिंग रोड पर यातायात और अधिक सुगम होने के साथ क्षेत्रीय संपर्क व्यवस्था को भी मजबूती मिलेगी। तो ये था बनारस, अपने शहर बनारस यानी काशी का हाल समाचार। अब आपको बताते हैं क्या है आज सेहत के पिटारे में। जी हाँ, रसोई में हरा धनिया लगभग हर घर में इस्तेमाल होता है। इसकी ताजी पत्तियाँ खाने का स्वाद और खुशबू बढ़ाने के लिए सब्जियों, दाल, रायता और सलाद में डाली जाती हैं। हालांकि ज्यादातर लोग पत्तियाँ इस्तेमाल करने के बाद इसके डंठलों को बेकार समझकर कूड़ेदान में फेंक देते हैं। लेकिन बनारस, अगर आप भी ऐसा करते हैं तो अब अपनी ये आदत बदलने का समय आ गया है। जी हाँ, दरअसल धनिये के डंठलों में पत्तियों जितना ही नहीं बल्कि कई बार उससे भी अधिक गहरा स्वाद और तेज सुगंध होती है। इसके अलावा इनमें विटामिन सी, विटामिन ए के एंटीऑक्सीडेंट्स और फाइबर जैसे कई पोषक तत्व भी पाए जाते हैं जो शरीर के लिए फायदेमंद होते हैं। अगर आप हरे धनिये की चटनी बना रहे हैं तो केवल पत्तियों का ही नहीं बल्कि साफ किए हुए उनके डंठलों का भी इस्तेमाल करें। डंठलों से चटनी का स्वाद और खुशबू दोनों ज्यादा बेहतर हो जाते हैं, साथ ही चटनी का टेक्सचर भी अच्छा आता है। इसके अलावा धनिये के डंठलों को बारीक काट कर सूप, दाल या सांभर में मिलाया जा सकता है। पकने के बाद ये आसानी से नरम हो जाते हैं और भोजन में ताजगी के साथ हल्का हर्बल फ्लेवर भी जोड़ते हैं। और यही नहीं, सब्जियों का स्टॉक या शोरबा तैयार करते समय धनिये की डंठल भी डालें। इससे स्टॉक में प्राकृतिक खुशबू और स्वाद बढ़ जाता है। बाद में इन्हें छानकर अलग किया भी जा सकता है। तो देखा बनारस, कभी कभी ये छोटी छोटी सी टिप्स ना हमारे रोजमर्रा के जीवन में काफी लाभदायक साबित होती हैं। तो ये था आज का सेहत का पिटारा। अब इसी के साथ मुझे यानी स्तुति को दीजिए अनुमति, मिलूंगी आप सबसे फिर एक नई सोच के साथ। तब तक के लिए खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए और अपने आसपास वालों को भी खुश रखिए। नमस्कार।

0: गुड मॉर्निंग बनारस।
1: अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम गुड मॉर्निंग बनारस। ये आकाशवाणी वाराणसी केंद्र है। अब से कुछ ही देर में आप सुनेंगे प्रादेशिक समाचार हमारे लखनऊ केंद्र से।

0: बोले कि मैं दुनिया में किसी से नहीं डरूंगा, केवल भगवान से डरूं। मैं किसी के प्रति बुरा भाव न रखूं, मैं किसी के अन्याय के समक्ष झुकूं नहीं, मैं असत्य को सत्य से जीतूं और असत्य का विरोध करते हुए मैं सभी कष्टों को सह सकूं। महात्मा गांधी।
1: मन का धर्म है मनन करना, मनन में ही उसे आनंद है, मनन में बाधा प्राप्त होने से उसे पीड़ा होती है। रविन्द्रनाथ ठाकुर।
0: अपने ज्ञान पर जरूरत से ज्यादा यकीन करना मूर्खता है। सबसे मजबूत कमजोर हो सकता है और सबसे बुद्धिमान गलती कर सकता है। APJ अब्दुल कलाम।
1: जैसे सूर्य सबको एक सा प्रकाश देता है, बरसात सबके लिए बरसती है, उसी तरह विद्या वृष्टि सब पर बरकरार होनी चाहिए। महात्मा गांधी।
0: आकाश की तरफ देखिए, हम अकेले नहीं हैं, सारा ब्रह्मांड हमारे लिए अनुकूल है और जो सपने देखते हैं, मेहनत करते हैं, उन्हें प्रतिफल देने की साजिश करता है। APJ अब्दुल कलाम। निरंतर विकास जीवन का नियम है और जो व्यक्ति खुद को सही दिखाने के लिए हमेशा अपनी रूढ़िवादिता को बरकरार रखने की कोशिश करता है, वह खुद को गलत स्थिति में पहुंचा देता है। महात्मा गांधी।
1: मानव का दानव होना उसकी हार है, मानव का महामानव होना उसका चमत्कार है और मनुष्य का मानव होना उसकी जीत है। डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन।
2: आकाशवाणी गोरखपुर से प्रादेशिक समाचार। नमस्कार, समाचार बुलेटिन के साथ मैं वेद प्रकाश पाठक। पहले मुख्य समाचार। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने वाराणसी से मुख्यमंत्री शिक्षक कैशलेस चिकित्सा योजना का किया शुभारंभ। विद्यार्थियों की यूनिफॉर्म और स्टेशनरी के लिए जारी किए 1,320 करोड़ रुपए। मुख्यमंत्री ने चित्रकूट में 951 करोड़ रुपए की 124 विकास परियोजनाओं का किया लोकार्पण और शिलान्यास। कहा, इको टूरिज्म का नया केंद्र बन रहा है चित्रकूट। श्रीराम जन्मभूमि मंदिर के चढ़ावे में कथित अनियमितता के मामले में पुलिस की कार्रवाई जारी। 3 आरोपियों को रिमांड पर लेकर की गई पूछताछ। और वाराणसी हवाई अड्डे के नए टर्मिनल पर बनाया जा रहा है देश का पहला 6 लेन वाला अंडरपास। अब समाचार विस्तार से। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कल वाराणसी से मुख्यमंत्री शिक्षक कैशलेस चिकित्सा योजना का शुभारंभ किया। इस योजना से प्रदेश के 12 लाख शिक्षक, शिक्षणेत्तर कर्मचारियों और उनके आश्रितों को स्वास्थ्य सुरक्षा मिलेगी। मुख्यमंत्री ने 1,10,00,000 विद्यार्थियों की यूनिफॉर्म, जूते मोजे, स्वेटर, स्कूल बैग और स्टेशनरी के लिए अभिभावकों के खाते में करीब 1,320 करोड़ रुपए की धनराशि का अंतरण भी किया। इस अवसर पर 10,00,000 शिक्षकों और संविदा कर्मियों को सामाजिक सुरक्षा कवच प्रदान करने के लिए भारतीय स्टेट बैंक के साथ MOU किया गया। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि उत्तर प्रदेश देश का पहला राज्य है जहां इस योजना को लागू किया गया है।
3: हर एक शिक्षक को भी, शिक्षा मित्र को भी और अनुदेशक को भी एक नई गारंटी दी जा रही है, जिसमें अस्थायी शिक्षक और कार्मिकों को जिनका वेतन 10,000 रुपए से अधिक है उन्हें 10,00,000 का ग्रुप टर्म इंश्योरेंस कवर, जिसमें 1 करोड़ का पर्सनल एक्सीडेंट कवर, 1 करोड़ का स्थायी दिव्यांगता कवर, 1.6 करोड़ का ईयर एक्सीडेंट इंश्योरेंस कवर के साथ ही किसी अनहोनी की दिशा में शिक्षक या कार्मिक के बच्चों की शिक्षा और पुत्रियों के विवाह के लिए भी एड ऑन कवर इसमें प्रदान किया जाएगा। यह एक नई सामाजिक सुरक्षा की गारंटी मिली है।
2: प्रदेश के अन्य जिलों में भी मुख्यमंत्री

0: शिक्षक कैशलेस चिकित्सा योजना के शुभारंभ के मौके पर कार्यक्रमों के आयोजन किए गए। इस अवसर पर सिद्धार्थनगर जिले में आयोजित कार्यक्रम को डुमरियागंज के सांसद जगदम्बिका पाल ने संबोधित किया। श्री पाल ने कहा कि प्रदेश सरकार की इस पहल से शिक्षकों की बहुप्रतीक्षित मांग पूरी हुई है। उन्होंने कहा कि इससे प्रदेश के लाखों परिवारों को लाभ होगा। मुख्यमंत्री शिक्षक कैशलेस चिकित्सा योजना के लिए आभार जताते हुए जौनपुर के शिक्षक राजेश पांडे ने कहा कि प्रदेश सरकार ने इस योजना के माध्यम से शिक्षकों को बड़ी सौगात दी है।
1: उत्तर प्रदेश सरकार ने बेसिक शिक्षा परिषद से जुड़े हुए समस्त शिक्षकों और शिक्षणेत्तर कर्मचारियों के लिए मुख्यमंत्री कैशलेस चिकित्सा योजना की जो शुरुआत की है, यह बहुत ही सराहनीय पहल है। इसके लिए पूरे शिक्षा विभाग की तरफ से सरकार को, माननीय मुख्यमंत्री जी को हार्दिक धन्यवाद ज्ञापित करता हूं। यह योजना लाखों लाख शिक्षकों और शिक्षणेत्तर कर्मचारियों के चिकित्सा संबंधी समस्याओं और उनकी चिंताओं का समाधान करेगा।
0: वाराणसी के बाद मुख्यमंत्री ने मिर्जापुर में पहुंचकर मां विंध्यवासिनी देवी का दर्शन पूजन किया और विंध्य कॉरिडोर का निरीक्षण किया। श्री योगी ने विंध्य मंडल के जनप्रतिनिधियों और अधिकारियों के साथ विकास कार्यों की समीक्षा की। समीक्षा बैठक में मुख्यमंत्री ने कहा कि विकास परियोजनाओं से संबंधित सभी प्रस्ताव 15 जुलाई तक शासन को भेज दिए जाएं। श्री योगी ने कहा कि 15 अगस्त तक स्वीकृत योजनाओं के लिए धनराशि उपलब्ध कराने की प्रक्रिया पूरी कर ली जाए। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कल चित्रकूट में 951 करोड़ रुपए की लागत वाली 124 विकास परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास किया। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि केंद्र और प्रदेश सरकार समाज के हर वर्ग के विकास के लिए काम कर रही है। उन्होंने कहा कि चित्रकूट में अब निवेश आ रहा है, जिससे जनपद के विकास को गति मिल रही है।
2: अब निवेश यहाँ भी आ रहा है, क्योंकि अब भय नहीं है, अब तो निवेश का वातावरण है। 4 लेन की सड़कें हैं, एक सुंदर चित्रकूट हम सबके सामने है और वह आज हम सबको यहाँ पर देखने को मिल रहा है। आज तो यहाँ पे हम लोग एक पर्यटन के नए केंद्र के रूप में, यानी ये आध्यात्मिक टूरिज्म तो था ही, अब इको टूरिज्म के भी एक नए केंद्र के रूप में इसको विकसित करने के लिए हम लोगों ने यहाँ पे रानीपुर टाइगर रिजर्व को भी यहाँ पे के लिए आगे बढ़ाने का कार्य प्रारंभ किया है।
0: प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी गोरखपुर से सुन रहे हैं। यह समाचार बुलेटिन हमारे यूट्यूब चैनल AIR न्यूज गोरखपुर और एक्स हैंडल AIR न्यूज _GKP पर भी उपलब्ध है। अयोध्या में श्रीराम जन्मभूमि मंदिर के चढ़ावे में कथित अनियमितता मामले की जांच कर रही पुलिस टीम ने कल 3 आरोपियों अनुकल्प मिश्रा, लोकुश मिश्रा और करुणेश पांडे को रिमांड पर लेकर पूछताछ की। पुलिस तीनों आरोपियों को लेकर 14 कोसी परिक्रमा मार्ग भी पहुंची। वहीं श्रीराम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट के कोषाध्यक्ष गोविंद देवगिरी से कल कई साधु संतों ने मुलाकात की। मुलाकात के बाद महंत राजकुमार दास ने कहा कि आगामी दिनों में ट्रस्ट में बड़े परिवर्तन होंगे, जिसकी जानकारी जल्द ही ट्रस्ट द्वारा साझा की जाएगी। केंद्रीय नागरिक उड्डयन मंत्री के राम मोहन नायडू ने कहा है कि वाराणसी हवाई अड्डे के नए टर्मिनल पर देश का पहला 6 लेन वाला अंडरपास बनाया जा रहा है। एक सोशल मीडिया पोस्ट में कल उन्होंने बताया कि 450 मीटर लंबा यह अंडरपास देश की अगली पीढ़ी के बुनियादी ढांचे का हिस्सा है। वहां ऊपर विमानों के संचालन के दौरान नीचे सड़क यातायात सुचारू रूप से चल सकेगा। राज्यपाल आनंदीबेन पटेल की अध्यक्षता में लखनऊ स्थित ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती भाषा विश्वविद्यालय का कल 11वां दीक्षांत समारोह आयोजित हुआ। कार्यक्रम में राज्यसभा सांसद डॉ. सुधांशु त्रिवेदी मुख्य अतिथि के रूप में शामिल हुए। समारोह में 1246 विद्यार्थियों को उपाधियां प्रदान की गईं। इस अवसर पर अपने संबोधन में राज्यपाल ने भाषा विश्वविद्यालय में शुरू होने जा रहे नए कोर्सेज के बारे में चर्चा की।
3: ख्वाजा मोहिद्दीन चिश्ती भाषा विश्वविद्यालय में पूर्व से संचालित भाषाओं के साथ साथ अब जर्मन, जापानी और चीनी जैसी अंतर्राष्ट्रीय भाषाओं का अध्ययन प्रारंभ किया जा रहा है। यह पहल विद्यार्थियों के लिए विश्व के ज्ञान द्वार खोलने के साथ साथ उन्हें वैश्विक अवसर

0: से भी जोड़ेगी। इसके साथ ही अवधी भाषा में स्नातक पाठ्यक्रम प्रारंभ करने का प्रयास विशेष रूप से अभिनंदनीय है।
1: प्रदेश में 12 जुलाई को होने वाले पौधरोपण महाअभियान को लेकर वन विभाग ने सारी तैयारियां पूरी कर ली हैं। इस अभियान के तहत 35 करोड़ पौधे लगाने का लक्ष्य रखा गया है। इसके लिए प्रदेश की 2600 से अधिक नर्सरियों में 57 करोड़ 62 लाख पौधे तैयार किए गए हैं। प्रयागराज पहुंचे प्रदेश के उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य ने कहा कि सरकार के प्रयासों से प्रदेश के वन क्षेत्र में बड़े पैमाने पर वृद्धि हुई है।
2: पूरी दुनिया इस समय ग्लोबल वार्मिंग के संकट से जूझ रही और इस बार 35 करोड़ जब हमारे यहाँ पेड़ लग जाएंगे, जब से 9 साल में हम लोग 275 करोड़ पेड़ लगाने का रिकॉर्ड, 35 करोड़ का इस बार का लक्ष्य है, उससे ज्यादा ही लगते हैं जितना लक्ष्य होता है, तो यह हम लगाने का काम करेंगे। उत्तर प्रदेश एक ऐसा राज्य है, वन आच्छादन का जो क्षेत्र है वो घटा नहीं, वो बढ़ा है।
1: राजधानी लखनऊ सहित प्रदेश के कई अन्य जिलों में कल हुई बारिश ने लोगों को गर्मी से राहत दी। वहीं गोरखपुर सहित कई पूर्वी जिलों में हल्की बूंदाबांदी का क्रम जारी है। इस अंचल में हल्की हवाओं के चलने के बावजूद उमस का असर कायम है। इस बीच मौसम विभाग ने 3 दिनों तक प्रदेश के अधिकांश जिलों में भारी बारिश का अलर्ट जारी किया है। और अंत में इस बुलेटिन के मुख्य समाचार एक बार फिर। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने वाराणसी से मुख्यमंत्री शिक्षक कैशलेस चिकित्सा योजना का किया शुभारंभ। विद्यार्थियों की यूनिफॉर्म और स्टेशनरी के लिए जारी किए 1,320 करोड़ रुपए। मुख्यमंत्री ने चित्रकूट में 951 करोड़ रुपए की 124 विकास परियोजनाओं का किया लोकार्पण और शिलान्यास। कहा, इको टूरिज्म का नया केंद्र बन रहा है चित्रकूट। श्रीराम जन्मभूमि मंदिर के चढ़ावे में कथित अनियमितता के मामले में पुलिस की कार्रवाई जारी। 3 आरोपियों को रिमांड पर लेकर की गई पूछताछ। और वाराणसी हवाई अड्डे के नए टर्मिनल पर बनाया जा रहा है देश का पहला 6 लेन वाला अंडरपास। इसी के साथ प्रादेशिक समाचारों का यह बुलेटिन समाप्त हुआ। अगला समाचार अब से थोड़ी देर बाद सुबह 8 बजे प्रसारित होगा। नमस्कार।
3: तब तक लड़ना मत छोड़ो जब तक अपनी तय की हुई जगह तक न पहुंच जाओ। यही अद्वितीय तुम हो। जिंदगी में एक लक्ष्य रखो, लगातार ज्ञान प्राप्त करो, कड़ी मेहनत करो और महान जीवन को प्राप्त करने के लिए दृढ़ रहो। APJ अब्दुल कलाम। असंतुष्ट व्यक्ति के लिए सभी कर्तव्य नीरस होते हैं। उसे तो कभी भी किसी वस्तु से संतोष नहीं होता, फलस्वरूप उसका जीवन असफल होना स्वाभाविक है। स्वामी विवेकानंद।
4: एक सैनिक के रूप में आपको हमेशा 3 आदर्शों को संजोना और उन पर जीना होगा, सच्चाई, कर्तव्य और बलिदान। जो सिपाही हमेशा अपने देश के प्रति वफादार रहता है, जो हमेशा अपना जीवन बलिदान करने को तैयार रहता है, वो अजेय है। अगर तुम भी अजेय बनना चाहते हो तो इन 3 आदर्शों को अपने हृदय में समाहित कर लो। सुभाष चंद्र बोस।
5: मीडियम वेव 241.54 मीटर अर्थात 1242 किलोहर्ट्ज पर यह आकाशवाणी वाराणसी है। 7:32 हुए हैं। शास्त्रीय संगीत के कार्यक्रम में आइए सुने बांसुरी वादन। कलाकार हैं पंडित हरिप्रसाद चौरसिया। राग है बैरागी। आपके साथ तबले पर संगत कर रहे हैं साबिर खान।

0: आप सुन रहे थे बांसुरी वादन, कलाकार थे पंडित हरिप्रसाद चौरसिया, राग था बैरागी, आपके साथ तबले पर संगत कर रहे थे साबिर खान। इसी के साथ शास्त्रीय संगीत अब यहीं संपन्न हुआ। 8 बजने को है समाचार प्रभात दिल्ली केंद्र से।
1: कैच द रेन, बारिश के पानी की एक एक बूंद को हमें बचाना है, तो मेरा खास आग्रह है वर्षा का बूंद बूंद पानी हम मिलकर के बचाएं।
2: जल है तो हम है, आइए घरों ऑफिसों में रेन वाटर हार्वेस्टिंग तकनीक अपनाएं, रिचार्ज पिट और शाफ्ट बनवाएं, अनुपयोगी बोरवेलों को ठीक करें, जलाशयों से गाद निकालें, अधिक से अधिक पेड़ लगाएं। इस बारिश आइए जुड़े कैच द रेन अभियान से।
3: नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार प्रभात के साथ मैं मुनीश शर्मा। मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मेलबर्न में भारत ऑस्ट्रेलिया सीईओ फोरम को संबोधित किया। प्रधानमंत्री ने कहा, अनिश्चितता, सप्लाई चेन में रुकावट और ऊर्जा संकट वाले दौर में भारत और ऑस्ट्रेलिया का भरोसेमंद साझेदार के तौर पर आगे बढ़ना स्वाभाविक और जरूरी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज मेलबर्न में ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री एंथनी अल्बनीज के साथ वार्ता करेंगे। केंद्र सरकार ने तमिलनाडु के किसानों के हित में खोपरा और तोतापुरी आमों की खरीद को मंजूरी दी। उत्तर प्रदेश सरकार ने राज्य में शिक्षकों और गैर शिक्षण कर्मचारियों के लिए नकदी रहित स्वास्थ्य योजना शुरू की। भारत दुनिया की सबसे तेजी से बढ़ती प्रमुख अर्थव्यवस्था बना रहेगा। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष ने 2026 में 7% की विकास दर रहने का अनुमान जताया। राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप द्वारा युद्ध विराम खत्म होने की घोषणा के बाद अमरीका ने ईरान पर नए हमले किए और भारत के अर्णव पापरकर ने विंबलडन जूनियर्स 2026 में सिंगल्स क्वार्टर फाइनल में पहुंचकर इतिहास रचा। पिछले 36 वर्षों में सिंगल्स क्वार्टर फाइनल में पहुंचने वाले भारत के पहले खिलाड़ी बने। और अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री एंथनी अल्बनीज ने आज सुबह मेलबर्न में भारत ऑस्ट्रेलिया सीईओ फोरम में भाग लिया। दोनों नेताओं ने भारत और ऑस्ट्रेलिया के उद्योग जगत के प्रमुखों से भी मुलाकात की। इस अवसर पर प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि विश्व इस समय अनिश्चितता, आपूर्ति श्रृंखला में व्यवधान और ऊर्जा संकट के दौर से गुजर रहा है। ऐसे समय में भारत और ऑस्ट्रेलिया के लिए स्वाभाविक और विश्वसनीय साझेदार के रूप में आगे बढ़ना स्वाभाविक है और आवश्यक भी। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि पिछले कुछ वर्षों में दोनों देशों ने अपनी शक्तियों का लाभ उठाते हुए भविष्य की साझेदारी के लिए एक मजबूत ढांचा तैयार किया है। प्रधानमंत्री ने कहा कि 2022 में रिकॉर्ड समय में संपन्न हुए आर्थिक सहयोग और व्यापार समझौते से दोनों देशों के आर्थिक संबंधों में मजबूती आई है।
1: साल 2022 में रिकॉर्ड समय में किए गए एक्टा समझौते से हमारी आर्थिक

0: साझेदारी और सशक्त हुई है। इसके लागू होने के बाद भारत से ऑस्ट्रेलिया को एक्सपोर्ट डबल हुआ है और दोनों देशों के बिजनेसेस को नए मार्केट एक्सेस इसका लाभ मिला है। अब हम व्यापक सीका समझौता करने की तरफ आगे बढ़ रहे हैं। इन प्रयासों से दोनों देशों की सरकारों ने एक नया रनवे तैयार किया है। अब इस पर इन्वेस्टमेंट और इनोवेशन का विमान उड़ान भरने के लिए तैयार है।
1: प्रधानमंत्री मोदी ने विनिर्माण, स्वच्छ ऊर्जा, महत्वपूर्ण खनिज, खनन, अवसंरचना, शहरी विकास, विमानन, रसद, उन्नत प्रौद्योगिकी, एआई, खाद्य प्रसंस्करण और डिजिटल अर्थव्यवस्था क्षेत्रों में भारत में उपलब्ध विशाल अवसरों का उल्लेख किया। श्री मोदी ने ऑस्ट्रेलिया के निवेशकों को भारत में दीर्घकालिक निवेश के अवसरों का लाभ उठाने के लिए आमंत्रित किया।
0: भारत आपके फंड्स को सेफ, स्टेबल और सस्टेनेबल ग्रोथ का अवसर देता है। हमारा प्रयास रहेगा कि आपका ट्रस्ट भी बढ़े और आपका कैपिटल भी बढ़े। एजुकेशन और स्किल्स दोनों देशों के बीच नेचुरल सिनर्जी है। डिकिन यूनिवर्सिटी और वुलोंगोंग यूनिवर्सिटी ने किप सिटी में कैंपस खोलकर एक नया अध्याय शुरू किया। यह भारत के प्रति उनके कॉन्फिडेंस का प्रतिबिंब है। हमारा साझा लक्ष्य होना चाहिए कि हम स्टूडेंट मोबिलिटी को टैलेंट पार्टनरशिप में बदले।
1: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज मेलबर्न में ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री एंथनी अल्बनीज से बातचीत करेंगे। दोनों नेताओं के बीच व्यापार, रक्षा, महत्वपूर्ण प्रौद्योगिकी, शिक्षा और जनसंपर्क मजबूत करने पर चर्चा होने की संभावना है। श्री मोदी मेलबर्न में प्रवासी भारतीयों से भी बातचीत करेंगे। श्री मोदी ऑस्ट्रेलिया की 3 दिन की यात्रा पर कल शाम मेलबर्न पहुंचे थे। ऑस्ट्रेलिया में भारत के उच्चायुक्त नागेश सिंह ने कहा है कि एक दशक में श्री मोदी की ऑस्ट्रेलिया की तीसरी यात्रा द्विपक्षीय संबंधों में हुई महत्वपूर्ण प्रगति को दर्शाती है।
2: तीसरा एनुअल लीडर्स समिट भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच में, इस वर्ष और पिछले सालों में जो आपने देखा कि जो एक पूरे विश्व में एक हल्का सा तनाव है, चाहे युद्ध का है, जो डिस्प्यूट्स हैं, जियोपॉलिटिकल चैलेंजेस हैं, उस संदर्भ में इंडिया ऑस्ट्रेलिया रिलेशनशिप एक स्टेबिलिटी प्रोवाइड करती है हमारी रिलेशनशिप को उस क्षेत्र में जिसको हम लोग इंडो पैसिफिक बोलते हैं।
1: ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे सोशल मीडिया हैंडल @AIRNewsHindi को फॉलो कर सकते हैं।
0: एक प्रकार से पीएम जय अब गरीबों की जय बन गई है।

0: भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के तहत लगभग 60 करोड़ लोग बने हैं 5 लाख रुपए के मुफ्त उपचार के हकदार। अब तक 12 करोड़ से भी ज्यादा मुफ्त उपचार किए जा चुके हैं, जिससे गरीब परिवारों के चिकित्सा खर्च में लगभग 2 लाख करोड़ रुपए की बचत हुई। आज ही आयुष्मान ऐप डाउनलोड कर आयुष्मान कार्ड बनाएं। ज्यादा जानकारी के लिए 1-4555 पर कॉल करें।
1: समाचार प्रभात में आपका फिर स्वागत है। केंद्र सरकार ने किसानों के हितों की रक्षा के लिए तमिलनाडु के किसानों से खोपरा और तोतापुरी आमों की खरीद को मंजूरी दे दी है। केंद्रीय कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय ने कहा है कि इससे उत्पादकों को बेहतर मूल्य मिलेगा और उन्हें बाजार में उतार चढ़ाव की कीमतों से राहत मिलेगी। ब्यौरा हमारे संवाददाता से।
2: केंद्रीय कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय ने कहा है कि स्वीकृत खरीद का कुल MSP मूल्य 1000 करोड़ रुपए से अधिक है। इसके अलावा बाजार हस्तक्षेप योजना MIS के तहत इस वर्ष तमिलनाडु में 96,000 मीट्रिक टन से अधिक तोतापुरी आमों की खरीद को भी मंजूरी मिल गई है। यह खरीद MIS के तहत की जाएगी, जिसमें बाजार हस्तक्षेप मूल्य 1000 रुपए प्रति क्विंटल से अधिक निर्धारित किया गया है। अनुपम मिश्र के साथ सकलेन अख्तर, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
1: आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री एन चंद्रबाबू नायडू ने किसानों के हितों की रक्षा और उनका विश्वास बहाल करने के लिए तंबाकू कंपनियों को न्यूनतम समर्थन मूल्य पर तंबाकू की खरीद प्रक्रिया तत्काल शुरू करने का निर्देश दिया है। अमरावती स्थित सचिवालय में अधिकारियों और व्यापारियों के साथ तंबाकू खरीद की समीक्षा करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि तंबाकू की कीमत 200

0: रुपए प्रति किलोग्राम से कम नहीं होनी चाहिए। उन्होंने कंपनियों से नीलामी प्रक्रिया में तेजी लाने का निर्देश दिया। उत्तर प्रदेश सरकार ने राज्य में शिक्षकों और गैर शिक्षण कर्मचारियों के लिए नकदी रहित स्वास्थ्य योजना शुरू की है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने वाराणसी से मुख्यमंत्री शिक्षक नकदी रहित चिकित्सा योजना का शुभारंभ किया, जिसके तहत 15 लाख से अधिक शिक्षण कर्मचारियों को 5 लाख रुपए तक का चिकित्सा उपचार मिलेगा। और ब्यौरे के साथ हैं हमारे संवाददाता।
1: इस योजना के तहत राज्य भर के शिक्षकों और उनके परिवारों को 5 लाख रुपए तक की कैशलेस चिकित्सा सुविधा मिलेगी। प्राथमिक और माध्यमिक शिक्षा से जुड़े लगभग 15 लाख शिक्षक और गैर शिक्षण कर्मचारी इस योजना से लाभान्वित होंगे। नियमित शिक्षकों के अलावा इस योजना से शिक्षा मित्रों, प्रशिक्षकों, रसोइयों और कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालयों के पात्र कर्मचारियों को भी लाभ मिलेगा। शिक्षकों और उनके परिवारों को सामाजिक सुरक्षा कवर प्रदान करने के लिए भारतीय स्टेट बैंक के साथ एक समझौता ज्ञापन पर भी हस्ताक्षर किए गए हैं। इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने कहा कि सरकार ने शिक्षकों के स्वास्थ्य और सामाजिक सुरक्षा की रक्षा करने के अपने वायदे को पूरा किया है। उत्तर प्रदेश प्राथमिक शिक्षा विभाग के कर्मचारियों के लिए ये व्यापक सामाजिक सुरक्षा और बीमा कार्यक्रम देश में अपनी तरह की पहली पहल है। इस योजना के तहत 10,000 रुपए से ज्यादा मासिक वेतन पाने वाले संविदा कर्मचारियों को 30 लाख रुपए से 80 लाख रुपए तक का व्यक्तिगत दुर्घटना बीमा कवर मिलेगा। सुशील चंद्र तिवारी, आकाशवाणी समाचार, लखनऊ।
0: भारत दुनिया की सबसे तेजी से बढ़ने वाली प्रमुख अर्थव्यवस्था बना हुआ है। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष IMF ने वर्ष 2026 के दौरान इसकी 7% की वृद्धि दर का अनुमान लगाया है। IMF ने यह भी अनुमान जताया है कि अगले वर्ष में भारत की GDP वृद्धि दर कुछ घटकर 6.4% रह सकती है। अमेरिका ने ईरान पर फिर हवाई हमले किए हैं। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान पर होर्मुज जलडमरू मध्य में वाणिज्यिक जहाजों पर हमला करने का आरोप लगाते हुए कहा है कि अमेरिकी हमले जवाबी कार्रवाई में किए गए। उन्होंने चेतावनी दी कि अगर ईरान ने फिर हमले किए तो अमेरिका इसका और कड़ा जवाब देगा। मौसम विभाग ने अरुणाचल प्रदेश, असम, मेघालय, बिहार, पूर्वी राजस्थान, मध्य प्रदेश और पश्चिम बंगाल तथा हिमालय के निचले इलाकों, सिक्किम और पश्चिम उत्तर प्रदेश में दिन में तेज बारिश का ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। उत्तराखंड में भी आज इसी तरह के मौसम की संभावना है। इधर राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली और आसपास के क्षेत्रों में रात से ही बारिश हो रही है। दिन में भी शहर में ऐसा ही मौसम रहने का अनुमान है। मौसम विभाग ने उत्तराखंड के देहरादून, हरिद्वार, उधम सिंह नगर, नैनीताल और चंपावत जिलों में अगले 36 घंटों के दौरान तेज बारिश का ऑरेंज अलर्ट जारी कर दिया है। हमारी संवाददाता ने बताया कि राज्य में कल रात से ही मूसलाधार बारिश हो रही है। केरलम के 5 उत्तरी जिलों में कहीं कहीं तेज बारिश की संभावना का येलो अलर्ट जारी किया गया है। मलप्पुरम, कोझिकोड, वायनाड, कन्नूर और कासरगोड जिलों में येलो अलर्ट पहले से ही जारी है। इन जिलों में कल रेड और ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया था। भारत के अर्णव पापरकर ने विंबलडन जूनियर्स 2026 में लड़कों के सिंगल्स क्वार्टर फाइनल में पहुंचकर इतिहास रच दिया है। पिछले 36 वर्षों में सिंगल्स क्वार्टर फाइनल में पहुंचने वाले वे भारत के पहले खिलाड़ी हैं। 18 वर्षीय पापरकर ने प्री क्वार्टर फाइनल में जापान के रियो ताबाता को मात्र 52 मिनट में 6-2, 6-1 से हराया। पापरकर का अगला मुकाबला आज शाम 5 बजे क्वार्टर फाइनल में अमेरिका के जॉर्डन ली से होगा। और अब आज के समाचार पत्रों की सुर्खियों के साथ हैं मुकेश कुमार।
2: धन्यवाद मुनीश। देश की राजधानी से प्रकाशित सभी हिंदी समाचार पत्रों ने ईरान अमेरिका युद्ध विराम खत्म होने के, अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के ऐलान और बारिश के चलते देश में प्रभावित जनजीवन के समाचारों को सुर्खियों में जगह दी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की इंडोनेशिया यात्रा का समाचार भी कई अखबारों ने अपने पहले पन्ने पर प्रमुखता से प्रकाशित किया है। अमर उजाला ने इंडोनेशिया के प्रम्बानन मंदिर में पूजा अर्चना करते प्रधानमंत्री का चित्र सबसे ऊपर छापा है। खबर को शीर्षक दिया है, इंडोनेशिया के सबसे बड़े हिंदू मंदिर में मोदी ने की पूजा। वीर अर्जुन ने इस खबर को प्रधानमंत्री के इस बयान के साथ प्रकाशित किया है कि सांस्कृतिक विरासत हमें जोड़ती है। देश बंधु की सुर्खी है, इंडोनेशिया के सबसे बड़े शिव मंदिर में पहुंचे मोदी। ऑस्ट्रेलिया में भारतीय समुदाय से स्वागत स्वीकार करते हुए प्रधानमंत्री का चित्र भी

0: कुछ अखबारों ने प्रकाशित किया है। दैनिक जागरण ने अपने संपादकीय में दिल्ली के रोहिणी इलाके में एक निर्माणाधीन इमारत के ढहने के समाचार को देश भर में भवन निर्माण संबंधी अनियमितताओं के मामले से जुड़ी स्थिति का विश्लेषण प्रकाशित किया है। पत्र का कहना है कि नियमों का उल्लंघन कर लोग 5 से 6 मंजिला भवन बना रहे हैं। स्थिति को सुधारने के लिए अधिकारियों की जिम्मेदारी तय होनी चाहिए ताकि ऐसी अप्रिय घटनाओं की पुनरावृत्ति न हो। लोक सत्य ने नौकरी पेशा पेंशन धारकों के लिए खुशखबरी शीर्षक से पीएफ खाते में 8.25% की दर से ब्याज देने की सरकार की घोषणा को प्रकाशित किया है।
1: और अंत में लीजिए सुनिए इस बुलेटिन के मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मेलबर्न में भारत ऑस्ट्रेलिया सीईओ फोरम को संबोधित किया। प्रधानमंत्री ने कहा, अनिश्चितता, सप्लाई चेन में रुकावट और ऊर्जा संकट वाले दौर में भारत और ऑस्ट्रेलिया का भरोसेमंद साझेदार के तौर पर आगे बढ़ना स्वाभाविक और जरूरी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज मेलबर्न में ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री एंथनी अल्बनीज के साथ वार्ता करेंगे। केंद्र सरकार ने तमिलनाडु के किसानों के हित में खोपरा और तोतापुरी आमों की खरीद को मंजूरी दी है। राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप द्वारा युद्ध विराम खत्म होने की घोषणा के बाद अमरीका ने ईरान पर नए हमले किए और भारत के अर्णव पापरकर ने विंबलडन जूनियर्स 2026 में सिंगल्स क्वार्टर फाइनल में पहुंचकर रचा है इतिहास। इसके साथ ही समाचार प्रभात का अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
2: आकाशवाणी प्रेजेंट्स मॉर्निंग न्यूज। Good morning. I'm Shagun Chopra. The headlines. Prime Minister Narendra Modi addresses India-Australia CEOs Forum in Melbourne, says it is natural and essential for India and Australia to move forward as trusted partners in a world marked by uncertainty, supply chain disruptions and energy crisis. Prime Minister Modi to also hold talks with his Australian counterpart Anthony Albanese in Melbourne today. Centre approves procurement of Khopra and Totapuri mangoes from farmers in Tamil Nadu to safeguard farmers' interests. Uttar Pradesh government launches cashless health scheme for teachers as well as non-teaching staff in the state. IMF projects India to remain world's fastest growing major economy with 7% growth this year. US launches new strikes on Iran after President Donald Trump said ceasefire is over. And India's Arnav Paparkar creates history by becoming first Indian in 36 years to reach boys singles quarterfinals at Wimbledon Juniors 2026. And now the news in detail. Prime Minister Narendra Modi and his Australian counterpart Anthony Albanese participated in the India-Australia CEO Forum in Melbourne this morning. Both leaders also met the leading business leaders from India and Australia. Speaking on the occasion, Prime Minister Modi said the world is currently navigating a period marked by uncertainty, supply chain disruptions and energy crisis. He said that in such times, it is both natural and essential for India and Australia to move forward as natural and trusted partners. The Prime Minister further said economic cooperation and trade agreement concluded in record time in 2022 has further strengthened the economic ties between the two countries.
3: साल 2022 में रिकॉर्ड समय में किए गए एक्टा समझौते से हमारी आर्थिक साझेदारी और सशक्त हुई है। इसके लागू होने के बाद भारत से ऑस्ट्रेलिया को एक्सपोर्ट डबल हुआ है और दोनों देशों के बिजनेसेस को नए मार्केट एक्सेस इसका लाभ मिला है। अब हम व्यापक सी का समझौता करने की तरफ आगे बढ़ रहे हैं। इन प्रयासों से दोनों देशों की सरकारों ने एक नया रनवे तैयार किया है। अब इस पर इन्वेस्टमेंट और इनोवेशन का विमान उड़ान भरने के लिए तैयार है।
2: Prime Minister Modi also noted the complementarities between the Indian and Australian economies, underlining vast opportunities available in India across a number of sectors.
3: हमारी पार्टनरशिप केवल दोनों राजधानियों या कुछ शहरों तक सीमित नहीं रहनी चाहिए। हमें हमारे राज्यों, छोटे बड़े शहरों, विश्वविद्यालयों, उद्योगों सभी के स्टेक होल्डर्स बनाना होगा। वेस्टर्न ऑस्ट्रेलिया की क्रिटिकल मिनरल स्ट्रेंथ, उसको हम उड़ीसा और गुजरात की मैन्युफैक्चरिंग कैपेबिलिटी के साथ जोड़ सकते हैं। क्वींसलैंड और टेस्मेनिया की क्लीन एनर्जी और एग्रीकल्चर एक्सपर्टीज पंजाब और तमिलनाडु

0: growth informs a scorching summer has spurred demand for seasonal appliances, putting India's consumer durable sector on track to post a robust double-digit growth. And with that, it's back to you, Shagun.
1: Thank you, Sarabjit. And now, before we end the bulletin, the headlines once again. Prime Minister Narendra Modi addresses India-Australia CEOs Forum in Melbourne, says it is natural and essential for India and Australia to move forward as trusted partners in a world marked by uncertainty, supply chain disruptions and energy crisis. Prime Minister Modi to also hold talks with his Australian counterpart Anthony Albanese in Melbourne today. Centre approves procurement of copra and Thottapuri mangoes from farmers in Tamil Nadu to safeguard farmers' interests. Uttar Pradesh government launches cashless health scheme for teachers as well as non-teaching staff in the state. IMF projects India to remain world's fastest growing major economy with 7% growth this year. US launches new strikes on Iran after President Donald Trump said ceasefire is over. And India's Arnav Paparkar creates history by becoming first Indian in 36 years to reach boys' singles quarterfinals at Wimbledon Juniors 2026. For details of these stories and more, log on to our website www.newsonair.gov.in and News on AIR app. And with that, we end the morning news. Have a nice day.
2: आकाशवाणी से पेश है खबरनामा। आदाब, खबरनामे के साथ मैं फैसल खान। पहले इस वक्त की अहम खबरें। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी और ऑस्ट्रेलिया के उनके हममंसब एंथोनी अल्बनीज आज सुबह मेलबर्न में भारत ऑस्ट्रेलिया के सीईओज़ फोरम में शरीक हुए। दोनों लीडरों ने भारत और ऑस्ट्रेलिया के सरकर्दा कारोबारी रहनुमाओं से भी मुलाकात की। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी आज मेलबर्न में ऑस्ट्रेलिया के अपने हममंसब एंथोनी अल्बनीज के साथ भी मुज़ाकरात करेंगे। मरकजनी किसानों के मुफादात के तहफ्फुज़ के लिए तमिलनाडु में किसानों से खोपरा और तोतापुरी आमों की खरीदारी को मंजूरी दे दी है। उत्तर प्रदेश हुकूमत ने रियासत में असातिज़ा के साथ गैर तदरीसी अमले के लिए सेहत की कैशलेस स्कीम शुरू की है। बैलोकमी मालियाती फंड की जानिब से इस साल के दौरान भारत की शरे तरक्की 7% रहने के तखमीने के साथ भारत दुनिया की सबसे तेजी से बढ़ती हुई बड़ी मईशत के तौर पर अपना ताज बरकरार रखे हुए है। अमेरिका ने ईरान पर फिर से हवाई हमले शुरू कर दिए हैं। ये हमले सदर ट्रंप के उस बयान के बाद किए गए हैं जिसमें कहा गया था कि ईरान के ताजा हमलों से जंगबंदी खत्म हो गई है। और विंबलडन जूनियर्स 2026 में भारत के अर्नब पापरकर ने एक तारीख रकम की है और वो 36 साल में ऐसे पहले भारतीय खिलाड़ी बन गए हैं जो लड़कों के सिंगल्स के क्वार्टर फाइनल में पहुंचे हैं। अब खबरें तफसील से। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने आज सुबह मेलबर्न में ऑस्ट्रेलिया के अपने हमनसब एंथोनी अल्बनीज के साथ भारत ऑस्ट्रेलिया के सीईओज़ फोरम और इक्तसादी रोडमैप बिजनेस रिसेप्शन में शिरकत की। दोनों रहनुमाओं ने भारत और ऑस्ट्रेलिया के सरकर्दा कारोबारी रहनुमाओं से भी मुलाकात की। इस मौके पर इजहार ख्याल करते हुए वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने कहा कि दुनिया इस वक्त एक गैर यकीनी सूरत हाल से दोचार है। सप्लाई चेन में रुकावट के अलावा तवानाई के बहरान से भी दोचार है। वज़ीर आज़म ने कहा कि ऐसे वक्त में ये भारत और ऑस्ट्रेलिया के लिए फितरी और लाजमी है कि वो एक भरोसेमंद शराकतदारों की हैसियत से आगे बढ़ें। वज़ीर आज़म ने मजीद कहा कि माशी ताउन और तिजारती समझौता 2022 में एक रिकॉर्ड मुद्दत में मुकम्मल हुआ और इससे दोनों मुल्कों के दरमियान माशी ताल्लुकात मजीद मुस्तहकम हुए हैं।
3: साल 2022 में रिकॉर्ड समय में किए गए एक्टा समझौते से हमारी आर्थिक साझेदारी और सशक्त हुई है। इसके लागू होने के बाद भारत से ऑस्ट्रेलिया को एक्सपोर्ट डबल हुआ है और दोनों देशों के बिजनेसेस को नए मार्केट एक्सेस इसका लाभ मिला है। अब हम व्यापक सीका समझौता करने की तरफ आगे बढ़ रहे हैं। इन प्रयासों से दोनों देशों की सरकारों ने एक नया रनवे तैयार किया है। अब इस पर इन्वेस्टमेंट और इनोवेशन का विमान उड़ान भरने के लिए तैयार है।
2: वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने बहुत से शोबों में भारत में दस्तियाब वसी मौके का जिक्र

0: करते हुए भारत और ऑस्ट्रेलिया की मईशतों के दरमियान तकमील को भी वाजे किया।
1: न्यू साउथ वेल्स और विक्टोरिया की फाइनेंस, एजुकेशन, मेडिकल टेक और इनोवेशन इकोसिस्टम महाराष्ट्र, कर्नाटका, तेलंगाना के साथ मिलकर ग्लोबल सॉल्यूशंस बना सकते हैं। साउथ ऑस्ट्रेलिया की डिफेंस, स्पेस और मैन्युफैक्चरिंग कैपेबिलिटी उत्तर प्रदेश और केरलम के साथ नए अवसर बना सकते हैं। मेरा सुझाव है कि हम आने वाले समय में कुछ फोकस स्टेट टू स्टेट और सेक्टर टू सेक्टर पार्टनरशिप की पहचान करें और उन्हें आगे ले जाने के लिए रणनीति बनाए।
0: जनाब मोदी ने मुल्क में तवील मुद्दती सरमायाकारी के लिए मौके का फायदा उठाने की गरज से ऑस्ट्रेलिया के सरमायाकारों को मधु किया और साथ ही साथ भारत में ऑस्ट्रेलिया की यूनिवर्सिटियों की बढ़ती हुई मौजूदगी का भी खैर मकदम किया।
1: भारत आपके फंड्स को सेफ, स्टेबल और सस्टेनेबल ग्रोथ का अवसर देता है। हमारा प्रयास रहेगा कि आपका ट्रस्ट भी बढ़े और आपका कैपिटल भी बढ़े। एजुकेशन और स्किल्स दोनों देशों के बीच नेचुरल सिनर्जी है। डिकिन यूनिवर्सिटी और वुलोंगोंग यूनिवर्सिटी ने किप सिटी में कैंपस खोलकर एक नया अध्याय शुरू किया। यह भारत के प्रति उनके कॉन्फिडेंस का प्रतिबिंब है। हमारा साझा लक्ष्य होना चाहिए कि हम स्टूडेंट मोबिलिटी को टैलेंट पार्टनरशिप में बदले।
0: सीओज फोरम के बाद वज़ीर-ए-आज़म मोदी ने इक्तिसादी रोडमैप बिजनेस से मुतालिक तकरीब से भी खिताब किया, जिसमें दोनों मुल्कों के 200 से ज्यादा सीओज और कारोबारी रहनुमाओं ने शिरकत की। भारत और ऑस्ट्रेलिया के दरमियान फितरी तालमेल के बारे में इजहार ख्याल करते हुए उन्होंने इस बात को उजागर किया कि मुश्तरका जमहूरी कदरें भारत बहरुल काहिल के लिए एक मुश्तरका विजन, अवाम से अवाम के दरमियान वसी ताल्लुकात और मजबूत सियासी मफाहमत ने दोनों मुल्कों के दरमियान कारोबारी शराकतदारी के लिए एक जबरदस्त बुनियाद की राह हमवार की है, जिससे दोनों मुल्क मिलकर आगे बढ़ेंगे और खुशहाली लाएंगे। अब हम मेलबर्न में अपने नामा निगार के पास चलते हैं, जो वज़ीर आज़म के दौरे के बारे में मज़ीद तफसील से आगाह कर रहे हैं।
2: भारत ऑस्ट्रेलिया सीईओ फोरम ने मुतबादिल सिफारती रास्तों से हटकर एक मजबूत मुस्तकबिल के लिए महफूज इक्तिसादी इंजन की तरफ एक फैसलाकुन तब्दीली की निशानदेही की है। वज़ीर आज़म मोदी ने लामरकजी इक्तिसादी सिफारतकारी के एक नए दौर का इशारा देते हुए बराह रास्त मुल्क से मुल्क के कॉरिडोर का मुतालबा किया है, जो ऑस्ट्रेलिया के खाम मसाइल को बराह रास्त भारत के बड़े पैमाने पर साफ सुथरी तवानाई, चिप मैन्युफैक्चरिंग और डिजिटल बुनियादी ढांचा पाइपलाइन से जोड़ते हैं। मेलबर्न से सुहास राम की रिपोर्ट के साथ खबरनामे के लिए मैं हुसैन अख्तर।
0: वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी आज बाद में मेलबर्न में ऑस्ट्रेलिया के अपने मनसब एंथोनी अल्बनीज के साथ मुज़ाकरात करेंगे। तवक्को है कि दोनों रहनुमा तजारत, दिफा, अहम टेक्नोलॉजी, तालीम और अवाम से अवाम के दरमियान ताउन को मुस्तहकम करने पर तवज्जो मरकूज करेंगे। जनाब मोदी ऑस्ट्रेलिया के 3 रोजा दौरे पर कल शाम मेलबर्न पहुंचे। वो ऑस्ट्रेलिया के वज़ीर आज़म के दावत पर उस मुल्क का दौरा कर रहे हैं। मरकज ने तमिलनाडु में किसानों से खोपरा और तोतापुरी आम की खरीदारी को मंजूरी दे दी है, ताकि किसानों के मुफादात का तहफ्फुज़ किया जा सके। ज़राअत और किसानों की बहबूद की वजारत ने बताया कि इससे किसानों के लिए बेहतर कीमत को यकीनी बनाया जा सकेगा और मार्केट में उतार चढ़ाव की वजह से मजबूरी में कम कीमत पर फरोख्त करने से उनका तहफ्फुज़ किया जा सकेगा। पेश है एक रिपोर्ट।
3: ये मंजूरी तमिलनाडु के जरिए पेशकर्दा तजवीज पर मुबनी है। इस मंजूरी के तहत 87,000 मैट्रिक टन से ज्यादा खोपरा रियासत में फरोख्त किया जा सकेगा। मंजूर शुदा खरीदारी के कम से कम कुल इमदादी कीमत की कदर 1,000 करोड़ रुपए से ज्यादा है। मजीद ये कि इस साल के दौरान तमिलनाडु में 96,000 मैट्रिक टन से ज्यादा तोतापुरी आमों की खरीदारी को मार्केट इंटरवेंशन स्कीम MIS के तहत मंजूरी हासिल हुई। खरीदारी MIS के तहत की जाएगी। इंटरवेंशन स्कीम का मकसद इस बात को यकीन बनाना है कि तोतापुरी आम की काश्त करने वाले किसानों को उनकी पैदावार की मुनसिफाना और मुनासिब कीमतें हासिल हो सकें और मार्केट की कीमतों में अचानक गिरावट की वजह से नुकसान पर फरोख्त करने से उनका तहफ्फुज किया जा सके। इस इकदाम से तवक्को है कि कीमतों में इस्तेहकाम लाया जा सकेगा और किसानों की आमदनी का तहफ्फुज किया जा सकेगा। सकलीन अख्तर की रिपोर्ट के साथ खबरनामे के लिए मैं नरगिस अलीम।
0: ये खबरें आकाशवाणी से नशर की जा रही हैं। उत्तर प्रदेश हुकूमत ने रियासत में असातिज़ा के साथ साथ गैर तदरीसी अमले के लिए कैशलेस हेल्थ स्कीम शुरू की है। وزیراعلی

0: योगी आदित्यनाथ ने वाराणसी से चीफ मिनिस्टर्स टीचर्स कैशलेस मेडिकल स्कीम का आगाज किया, जिसके तहत 15 लाख से ज्यादा तदरीसी अमले को 5 लाख रुपए तक का मेडिकल कवर फराहम किया जाएगा। मजीद तफसील हमारे नामानिगार से।
1: इस स्कीम के तहत रियासत भर के असतजा और उनके खानदानों को 5 लाख रुपए तक की कैशलेस तिब्बी सहूलियात मैसर आएंगी। बुनियादी और सेकेंडरी तालीम से वाबस्ता तकरीबन 15 लाख असतजा और गैर तदरीसी अमला इस स्कीम से फायदा उठा सकेंगे। बाकायदा असतजा के अलावा इस स्कीम से शिक्षा मित्र, इंस्ट्रक्टर्स, कुक्स और कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालयों के अहल अमले को भी फायदा पहुँचेगा। असतजा और उनके अहलखाना को समाजी तहफ़ फ्राहम करने के लिए स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के साथ एक मीटिंग में मुफाहमतनामे पर दस्तखत भी किए गए। तकरीब से खिताब करते हुए वजीर आला ने कहा कि हुकूमत ने असतजा की सेहत और समाजी तहफ़ को यकीनी बनाने के अपने वादों को पूरा किया है। उत्तर प्रदेश के महकमा बुनियादी तालीम के मुलाजमीन के लिए ये जामे समाजी तहफ़ और इंश्योरेंस प्रोग्राम भारत में अपनी नौयत का पहला दाम है। लखनऊ से सुशील चंद तिवारी की रिपोर्ट के साथ खबरनामे के लिए मैं फहीम अहमद।
0: इम्तिहान मुनक़िद कराने वाली कौमी एजेंसी NTA ने CSIR UGC नेट जून 2026 के लिए एडवांस सिटी इंटीमेशन स्लिप जारी कर दी है। ये इम्तिहान इस माह की 17 और 18 तारीख को मुनक़िद किया जाएगा। तलबा को मशवरा दिया जाता है कि वो इम्तिहान के लिए अलॉट किए गए शहर के बारे में जानने के लिए ऑफिशियल वेबसाइट www.cisirnet.nta.nic.in से अपनी स्लिप डाउनलोड करें। बैनुल अक़वामी मालियती फंड IMF की जानिब से रवां कैलेंडर साल के दौरान भारत की तरक्की की शरह 7% रहने के तखमीने के साथ ही भारत दुनिया की सबसे तेजी से बढ़ती हुई मईशत के तौर पर अपना ताज बरकरार रखे हुए है। IMF की फ्लैगशिप छमाही रिपोर्ट वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक अपडेट ने अगले कैलेंडर साल में भारत की मजमुई घरेलू पैदावार की शरह मोतदिल होकर 6.4% रहने का तखमीना लगाया है। भारत के महकमे मौसमियात IMD ने आज अरुणाचल प्रदेश, आसाम, मेघालय, बिहार, मशरकी राजस्थान, मध्य प्रदेश, जेली हिमालयी, मगरबी बंगाल, सिक्किम और मगरबी उत्तर प्रदेश में शदीद से शदीद तरीन बारिश के लिए ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। महकमे मौसमियात ने आज दिन में साहली कर्नाटक, मशरकी उत्तर प्रदेश, गंगाई, मगरबी बंगाल, गुजरात, हरियाणा, चंडीगढ़ और दिल्ली में भी शदीद बारिश की पेशगोई की है। इस दौरान आज सुबह कौमी राजधानी के मुख्तलिफ हिस्सों में औसत बारिश हुई, जिससे शहरियों का काफी राहत मिली। अमेरिका ने ईरान पर फिर से हवाई हमले शुरू कर दिए हैं। ये हमले सदर डोनाल्ड ट्रंप के उस बयान के बाद किए गए, जिसमें कहा गया था कि ईरान के ताजा हमलों से जंगबंदी मौसर तौर से खत्म हो गई है। सदर ट्रंप ने ईरान पर इल्जाम लगाया कि वह अब नए हुरमुज में तिजारती जहाजों पर हमले कर रहा है। उन्होंने कहा कि अमेरिका के ताजा हमले जवाबी कार्रवाई में किए गए हैं। उन्होंने इस बात के लिए भी खबरदार किया कि अगर ईरान ने मजीद हमले जारी रखे तो वाशिंगटन और ज्यादा सख्ती से जवाबी कार्रवाई करेगा और ईरानी हमलों का सख्त जवाब देगा। भारत के अर्णब परकर ने 36 साल में विमंडल जूनियर्स 2026 में लड़कों के सिंगल्स क्वार्टर फाइनल में पहुंचने वाले पहले भारतीय खिलाड़ी बनकर तारीख रकम की है। 18 साल पापरकर ने क्वार्टर फाइनल में महज 52 मिनट में जापान के रियो तबाता को 6-2, 6-1 से हराया। ये थी खबरें, अब अखबारात के आईने के साथ हैं फहीम अहमद।
1: शुक्रिया फैसल। राजधानी दिल्ली से शाये होने वाले आज के तकरीबन सभी उर्दू अखबारात ने वजीर आजम नरेंद्र मोदी के 3 रोजा सरकारी दौरे की खबर को अव्वलियत के साथ शाये किया है। रोजनामा इंकलाब ने सुर्खी लगाई है, वजीर आजम नरेंद्र मोदी इंडोनेशिया का कामयाब दौरा मुकम्मल करने के बाद ऑस्ट्रेलिया पहुंचे। वजीर आजम का यह दौरा भारत ऑस्ट्रेलिया के ताल्लुकात को एक नई समत देगा। रोजनामा प्रताप ने कई रियासतों में मूसलाधार बारिश की खबर को नुमाया तौर पर शाया करते हुए सुर्खी लगाई है, मानसून ने पकड़ी रफ्तार, दिल्ली NCR में बारिश शुरू, मुंबई से उत्तर प्रदेश तक संगीन सूरत हाल। वजीर दाखिला ने 3 रियासतों के वज़राए आला से फोन पर बात करके मुतासर इलाकों का जायजा लिया। रोजनामा इनकलाब ने अपने आलमी सफ़े पर एक अहम खबर को सुर्खी बनाया है, मशरक वस्ता में फिर जंग के खतरात, सदर ट्रंप ने ईरान के साथ जंगबंदी मुआहदा खत्म किया। अखबारात की अहम बैनुल अक़वामी खबरें इस तरह है, विजय दिवस से पहले फौज ने कारगिल के जाबाजों को याद किया, नायब सदर जमहूरिया

0: आज एक रोजा दौरे पर उड़ीसा जाएंगे।
1: आखिर में खास खास खबरें एक बार फिर। ऑस्ट्रेलिया के उनके हम मनसब एंथोनी अल्बानीज आज सुबह मेलबर्न में भारत ऑस्ट्रेलिया के सीओज फोरम में शरीक हुए। दोनों लीडरों ने भारत और ऑस्ट्रेलिया के सरकर्दा कारोबारी रहनुमाओं से भी मुलाकात की। वजीर आजम नरेंद्र मोदी आज मेलबर्न में ऑस्ट्रेलिया के अपने हम मनसब एंथोनी अल्बानीज के साथ भी मुज़ाकरात करेंगे। मरकज ने किसानों के मफादात के तहफ़ के लिए तमिलनाडु में किसानों से खोपरा और तोतापुरी आमों की खरीदारी को मंजूरी दे दी है। उत्तर प्रदेश हुकूमत ने रियासत में असातिज़ा के साथ साथ गैर तदरीसी अमले के लिए सेहत की कैशलेस स्कीम शुरू की है। अमेरिका ने ईरान पर फिर से हवाई हमले शुरू कर दिए हैं। ये हमले सदर ट्रंप के बयान के बाद किए गए हैं, जिसमें सदर ट्रंप ने कहा कि ईरान के ताजा हमलों से जंगबंदी खत्म हो गई है। इसके साथ ही यह खबरनामा खत्म हुआ।
2: मीडियम वेव 241.54 मीटर अर्थात 1242 किलोहर्ट्ज पर यह आकाशवाणी का वाराणसी केंद्र है। स्टूडियो घड़ी में सुबह के 8:45 होने वाले हैं। प्रस्तुत है सदाबहार फिल्मी गानों का कार्यक्रम मधुरिमा। कार्यक्रम का आगाज करें, सुनवाए आपको पहला गाना। आइए सुन लेते हैं यह संदेश।
3: कम ब्याज पे लोन चाहिए, वो भी ऐप से।
4: अनजान ऐप से बचें।
5: RBI कहता है
4: जानकार बनिए, सतर्क रहिए।
6: अपने बिजनेस को बढ़ाने के लिए लीजिए आकाशवाणी का सहयोग और दीजिए उसे बुलंदियों के पंख।
7: आपका बिजनेस लोकल है या राष्ट्रीय, आकाशवाणी देती है उपभोक्ताओं तक पहुंचने का हर विकल्प।
6: और अब तो आप घर, दफ्तर या दुकान पर बैठे बैठे कर सकते हैं आकाशवाणी के किसी भी केंद्र के लिए विज्ञापनों की बुकिंग।
7: आकाशवाणी के विभिन्न चैनलों पर विज्ञापन देना सुलभ और सस्ता।
6: बुकिंग है तो संपर्क करें
8: 0542227658
9: 0542227658।

0: मुक्त भारत अभियान।
1: निक्षय मित्र तो हम सबका साथ निभाते, टीबी रोगी व परिजन को पोषण, जांच, इलाज और आजीविका संबंधी सहायता पहुंचाते। जब मिल जाएगा सबको अपना निक्षय मित्र तैयार, तब पक्की हो जाएगी हमारी जी और टीबी की हार।
2: निक्षय मित्र, इस अभियान ने एक बड़े चैलेंज से निपटने में टीबी के मरीजों की बहुत मदद की है। आपको जानकर हैरानी होगी, हमारे देश में 10-12 साल के बच्चे भी निक्षय मित्र बनकर टीबी के खिलाफ लड़ाई को आगे बढ़ा रहे हैं।
0: जन-जन का रखे ध्यान, टीबी मुक्त भारत अभियान।
1: अधिक जानकारी के लिए नजदीकी आयुष्मान आरोग्य मंदिर जाएं। स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा जनहित में जारी।
3: श्रोताओं, स्वास्थ्य संबंधी फोन इन कार्यक्रम आरोग्यम आप सुनते हैं प्रत्येक रविवार दिन में 11:30 बजे। इस रविवार दिनांक 12 जुलाई 2026 को प्रसारित होने वाले कार्यक्रम का विषय है संक्रामक रोगों से बचाओ। इस विषय पर जानकारी देने के लिए हमारे डॉक्टर होंगे डॉक्टर संजय चौरसिया। कार्यक्रम की रिकॉर्डिंग होगी गुरुवार 9 जुलाई 2026 को प्रातः 10 बजे से 11 बजे के बीच। हमारा फोन नंबर है 222-1052। वाराणसी का एसटीडी कोड है 0542। आपके फोन कॉल्स का हमें इंतजार रहेगा। तो सुनते रहिए आरोग्यम, आकाशवाणी वाराणसी के साथ।

0: Madhurima, the sound of melody. Madhurima.
1: सदाबहार फिल्मी गानों का कार्यक्रम मधुरिमा हम पेश कर रहे हैं। पहला गाना लता मंगेशकर की आवाज़ में, राजा मेहदी अली खां की रचना है, संगीत दिया है मदन मोहन ने।

अब आइए सुनते हैं शिव हरि के संगीत निर्देशन में आनंद बख्शी का लिखा गाना। आवाज़ दी है लता मंगेशकर ने, फिल्म का नाम है चांदनी।

0: कार्यक्रम मधुरिमा के बाकी गाने इस छोटे से अंतराल के पार।
1: डेंगू, मलेरिया, चिकनगुनिया जैसे रोग संचारी रोग होते हैं। इनसे बचने के लिए घर के दरवाजे और खिड़कियों पर जाली लगवाएं, मच्छरदानी का प्रयोग करें, पानी की टंकी को ढक कर रखें, पूरी बांह वाले कपड़े पहनें, कूलर की नियमित सफाई करें और अनुपयोगी वस्तुओं में पानी न जमा होने दें।
2: अधिक जानकारी के लिए टोल फ्री हेल्पलाइन नंबर 1800-1805-145 पर कॉल करें।
1: राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन उत्तर प्रदेश द्वारा जनहित में जारी।
3: आकाशवाणी वाराणसी से प्रत्येक सोमवार से शुक्रवार तक दिन में 12 बजे सुनिए NCERT द्वारा

0: प्रायोजित कार्यक्रम।
1: श्रोताओं, स्वास्थ्य संबंधी फोन इन कार्यक्रम आरोग्यम आप सुनते हैं प्रत्येक रविवार दिन में 11:30 बजे। इस रविवार दिनांक 12 जुलाई 2026 को प्रसारित होने वाले कार्यक्रम का विषय है संक्रामक रोगों से बचाओ। इस विषय पर जानकारी देने के लिए हमारे डॉक्टर होंगे डॉक्टर संजय चौरसिया। कार्यक्रम की रिकॉर्डिंग होगी गुरुवार 9 जुलाई 2026 को प्रातः 10 बजे से 11 बजे के बीच। हमारा फोन नंबर है 222-1052। वाराणसी का एसटीडी कोड है 0542। आपके फोन कॉल्स का हमें इंतजार रहेगा, तो सुनते रहिए आरोग्यम आकाशवाणी वाराणसी के साथ।
2: संदेश हुआ पूरा। कार्यक्रम मधुरिमा में आपका एक बार पुनः स्वागत। आइए सुने प्रेम गीत। फिल्म का गाना सुरेश वाडकर और अनुराधा पौडवाल की आवाजों में। इंदिवर के बोल हैं जगजीत सिंह का संगीत।

खोल बने अंगारे। आइए सुने इस फिल्म का गाना मुकेश की आवाज़ में। आनंद बख्शी के बोल हैं कल्याण जी आनंद जी की तर्ज।

0: मधुरिमा द साउंड ऑफ मेलोडी मधुरिमा
1: हम आकाशवाणी के वाराणसी केंद्र से बोल रहे हैं। सुबह के 9:15 होने वाले हैं। हमारे अगले कार्यक्रम की प्रतीक्षा कीजिए।

0: ये आकाशवाणी का लखनऊ केंद्र है। जिले की हलचल।
1: जिले की हलचल आकाशवाणी लखनऊ से प्रस्तुत है। जिले की हलचल आज सुनिए लखनऊ और रामपुर जिलों की हलचल। पहले सुनते हैं लखनऊ जिले की हलचल। आलेख और स्वर है मुमताज अली का।
2: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 19 जून 2026 को नई दिल्ली के विज्ञान भवन में आयोजित एक विशेष कार्यक्रम में प्रधानमंत्री विकसित भारत रोजगार योजना PMVBRY के तहत लगभग 2400 करोड़ रुपए की प्रोत्साहन राशि वितरित की। लखनऊ भी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए इस कार्यक्रम से जुड़ा। लखनऊ में यह कार्यक्रम इंदिरा गांधी प्रतिष्ठान में आयोजित किया गया। इस राज्य स्तरीय कार्यक्रम का शुभारंभ प्रदेश के उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक और कैबिनेट मंत्री अनिल राजभर ने दीप जलाकर किया। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, प्रधानमंत्री विकसित भारत रोजगार योजना सिर्फ एक रोजगार योजना से कहीं अधिक है। यह एक ऐसी पहल है जिसका उद्देश्य पहली नौकरी में प्रवेश करने वाले युवाओं की आकांक्षाओं को मजबूत करना और उद्योग व कार्यबल के बीच एक मजबूत सेतु का निर्माण करना है।
3: हमारी सोच सोशल सिक्योरिटी फॉर एवरी वर्कर की है। हमारी सोच सिक्योर एम्प्लॉयमेंट की है। हमारी सोच सोशल सिक्योरिटी फॉर एवरी वर्कर की है। इसलिए आज टेक्नोलॉजी के माध्यम से EPFO की व्यवस्था को आधुनिक बनाया गया। पेंशन व्यवस्था को भी सरल और सुलभ बनाया गया। लाखों नए कर्मियों को हेल्थ इंश्योरेंस और सस्ते उपचार की व्यवस्था से भी जोड़ा गया।
2: लखनऊ स्थित मौसम विज्ञान केंद्र अब क्षेत्रीय मौसम विज्ञान केंद्र के रूप में कार्य कर रहा है। इसकी घोषणा मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने 8 जून 2026 को लखनऊ में आयोजित एक कार्यक्रम में की। इस अवसर पर भारत सरकार के विज्ञान प्रौद्योगिकी और पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय के राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार डॉक्टर जितेंद्र सिंह भी मौजूद रहे। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि आज लखनऊ इंडिया मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट के एक प्रमुख क्षेत्रीय केंद्र के रूप में अपनी पहचान स्थापित कर रहा है। यह विकसित भारत की संकल्पना को वैज्ञानिक दृष्टिकोण के साथ आगे बढ़ाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। भारत सरकार के विज्ञान प्रौद्योगिकी और पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय के राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने कार्यक्रम को संबोधित करते हुए कहा कि जो काम पिछले 65 वर्षों में नहीं हो पाया उसे बीते एक दशक में पूरा करने का प्रयास किया गया है। उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड दोनों राज्यों में आधुनिक मौसम उपकरणों की स्थापना से अब सटीक और समय पर पूर्वानुमान लगाना संभव हो सकेगा। योजना भवन लखनऊ में 25 जून 2026 को केंद्रीय कृषि एवं किसान कल्याण और ग्रामीण विकास मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के साथ हाई लेवल समीक्षा बैठक में कृषि और ग्रामीण विकास की स्थिति पर विस्तृत चर्चा की। बैठक के दौरान केंद्रीय मंत्री श्री चौहान ने रबी विपणन वर्ष 2026-27 के लिए गेहूं चना मसूर जैसी फसलों की MSP पर खरीद अवधि 24 जून से 8 जुलाई 2026 तक बढ़ाने की मंजूरी का पत्र मुख्यमंत्री को सौंपा। इसके साथ ही प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण के नए चरण के तहत UP के लिए 6,18,482 पक्के मकानों की स्वीकृति का अनुमोदन पत्र भी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को दिया। केंद्रीय रेल और खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय के राज्य मंत्री रोनी सिंह बिट्टू 1 जुलाई 2026 को लखनऊ स्थित अनुसंधान अभिकल्प और मानक संगठन RDSO पहुंचे। उन्होंने जानकारी दी कि स्वदेशी ऑटोमेटिक ट्रेन प्रोटेक्शन सिस्टम कवच अब भारतीय रेलवे के 3,500 किलोमीटर से अधिक नेटवर्क पर तैनात हो चुका है। यह प्रणाली ट्रेन की टक्कर रोकने और यात्री सुरक्षा बढ़ाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रही है। भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन के 4 जुलाई 2026 को प्रथम लखनऊ आगमन पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, प्रदेश अध्यक्ष पंकज चौधरी, उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य और ब्रजेश पाठक, प्रदेश संगठन महामंत्री धर्मपाल सिंह, प्रदेश उपाध्यक्ष डॉक्टर नीरज सिंह, लखनऊ महानगर अध्यक्ष आनंद द्विवेदी सहित कैबिनेट मंत्रियों, जनप्रतिनिधियों और विधायकों ने पुष्पगुच्छ भेंट कर भव्य स्वागत किया। एयरपोर्ट से भारतीय जनता पार्टी प्रदेश कार्यालय तक निकली अभिनंदन यात्रा में 42 स्थानों पर राष्ट्रीय अध्यक्ष का भव्य स्वागत किया गया। लखनऊ दौरे के दूसरे दिन श्री नवीन ने 5 जुलाई 2026 को राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन NDA के सहयोगी दलों के साथ महत्वपूर्ण बैठक की। बैठक में 2027 उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव की रणनीति पर चर्चा हुई। नितिन नवीन ने दावा किया कि 2027 में प्रचंड बहुमत से लगातार तीसरी बार सरकार बनेगी। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस पर 21 जून 2026 को लखनऊ के विभिन्न स्थानों पर

0: अभ्यास किया गया। योगाभ्यास कार्यक्रमों में अधिकारियों, कर्मचारियों, विभिन्न राजनीतिक दलों के नेताओं और समाज के संभ्रांत नागरिकों के साथ गणमान्य लोगों ने भी भाग लिया। 22 जून 2026 को लखनऊ के अलीगंज क्षेत्र में एक व्यवसायिक इमारत में आग लगने से 15 लोगों की जान चली गई। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, रक्षा मंत्री और लखनऊ के सांसद राजनाथ सिंह, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ सहित विभिन्न नेताओं ने दुर्घटना पर गहरा शोक व्यक्त किया। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने घटनास्थल का निरीक्षण करने के बाद घायलों से अस्पताल में जाकर मुलाकात। मामले की जांच के लिए गठित 2 सदस्यीय विशेष जांच दल SIT ने रिपोर्ट तैयार कर ली है। यह जांच रिपोर्ट जल्दी मुख्यमंत्री को सौंपी जाएगी। मुख्यमंत्री ने इस घटना की जांच की जिम्मेदारी पर्यटन विभाग के अपर मुख्य सचिव अमृत अभिजात और ADG जोन लखनऊ प्रवीण कुमार को सौंपी थी। 23 जून 2026 को दिल्ली स्थित राष्ट्रपति भवन में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने पद्म पुरस्कारों का वितरण किया। पुरस्कार प्राप्त करने वालों में लखनऊ के प्रसिद्ध रंगकर्मी डॉक्टर अनिल कुमार रस्तोगी भी शामिल थे। लखनऊ के कलाकार को पद्म पुरस्कार मिलने पर शहरवासियों ने प्रसन्नता व्यक्त की है। पूरे विश्व में ताजियादारी और अदादारी के लिए मशहूर लखनऊ में मुहर्रम महीना शोक के साथ मनाया जा रहा है। इमाम बारगाहों, इमाम बाड़ों और घरों में मजलिसों का दौर जारी है। 26 जून 2026 यानी 10 मुहर्रम को ताजियों को जुलूस की शक्ल में करबला तक ले जाकर दफन किया गया। पहली मुहर्रम को शाही दरी का जुलूस अपने रवायती अंदाज में निकला। 7 मुहर्रम को मेहदी और 8 मुहर्रम को अलम फातह अफराद के बाद 9 मुहर्रम को अलम शबे आशूर का जुलूस गमगीन माहौल में निकाला गया।
1: लखनऊ जिले की हलचल के बाद आइए सुनते हैं रामपुर जिले की हलचल। आलेख और स्वर है शन्नू खान का।
2: रामपुर में उत्तर प्रदेश शिक्षक पात्रता परीक्षा UPTET शांतिपूर्ण, पारदर्शी एवं नकल विहीन वातावरण में संपन्न हुई। परीक्षा जनपद के केंद्रों पर शासन के दिशा निर्देशों के अनुरूप कड़ी सुरक्षा एवं प्रशासनिक निगरानी के बीच आयोजित कराई गई। परीक्षा में 92% उपस्थिति दर्ज हुई। जिलाधिकारी अजय कुमार द्विवेदी ने बताया कि परीक्षा के सफल संचालन के लिए सभी परीक्षा केंद्रों पर सेक्टर मजिस्ट्रेट, स्टैटिक मजिस्ट्रेट एवं पुलिस अधिकारियों की तैनाती की गई थी। सभी अधिकारियों ने अपने दायित्वों का पूरी सतर्कता एवं जिम्मेदारी के साथ निर्वहन किया, जिससे परीक्षा पूरी तरह शांतिपूर्ण एवं व्यवस्थित ढंग से संपन्न हुई। जिलाधिकारी अजय द्विवेदी ने स्कूल चलो अभियान के द्वितीय चरण की शुरुआत के कार्यक्रम को संबोधित करते हुए कहा कि वर्तमान समय में शिक्षा केवल रोजगार प्राप्त करने का माध्यम नहीं, बल्कि बेहतर जीवन जीने, सरकारी योजनाओं का लाभ लेने, बैंकिंग, डिजिटल सेवाओं तथा दैनिक आवश्यकताओं को सहज रूप से पूरा करने के लिए भी अत्यंत आवश्यक है। प्रत्येक बच्चे को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा से जोड़ना समाज की सामूहिक जिम्मेदारी है। जिलाधिकारी ने कहा कि शिक्षा बच्चों के सर्वांगीण विकास एवं व्यक्तित्व निर्माण का आधार है। उन्होंने कहा कि विद्यालयों का वातावरण बच्चों के लिए आकर्षक एवं प्रेरणादायी होना चाहिए। इस अवसर पर जिलाधिकारी एवं मुख्य विकास अधिकारी ने मिशन कायाकल्प के अंतर्गत उत्कृष्ट कार्य करने वाले ग्राम प्रधानों तथा नामांकन अभियान में उल्लेखनीय योगदान देने वाले शिक्षकों एवं आंगनवाड़ी कार्यकर्त्रियों को प्रशस्ति पत्र देकर सम्मानित किया। रामपुर में उद्योग व्यापार प्रतिनिधि मंडल ने जिला शासन को एक अनुरोध पत्र सौंपा। इस अवसर पर संगठन के युवा राष्ट्रीय अध्यक्ष नीतीश अग्रवाल ने कहा कि PPE मॉडल पर प्रस्तावित मेडिकल कॉलेज संचालन के लिए 100 बीघा भूमि ग्राम जगतपुर व ग्राम बेनजीर में अधिग्रहण की कार्रवाई की गई है। कॉलेज स्वीकृत हो चुका है, लेकिन भूमि अधिग्रहण कार्रवाई पूर्ण न होने से मेडिकल कॉलेज शुरू नहीं हो पा रहा है। मेडिकल कॉलेज शुरू न होने से आम जनता समय से बेहतर इलाज न मिल पाने से परेशान है। संगठन ने मांग की है कि भूमि अधिग्रहण की कार्रवाई जल्द पूरी होनी चाहिए। 12वें अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के अवसर पर जनपद योग में दिखाई दिया। जिला प्रशासन एवं आयुष विभाग के संयुक्त तत्वाधान में पनवड़िया स्थित सांस्कृतिक सद्भावना मंडप में जनपद स्तरीय भव्य योग कार्यक्रम का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में जन प्रतिनिधियों, अधिकारियों, पुलिस कर्मियों, विद्यार्थियों एवं आमजन की उत्साहपूर्ण सहभागिता रही। योग प्रशिक्षकों के निर्देशन में सभी प्रतिभागियों ने कॉमन योग प्रोटोकॉल के अंतर्गत विभिन्न योगासनों, प्राणायाम एवं ध्यान का अभ्यास किया। मुख्य अतिथि कृषि शिक्षा एवं अनुसंधान राज्य मंत्री बलदेव सिंह औलख ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सतत प्रयासों के परिणाम स्वरूप योग को वैश्विक पहचान मिली है और आज विश्व के अनेक देशों में अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस उत्साहपूर्वक मनाया जा रहा है। पूर्व केंद्रीय मंत्री मुख्तार अब्बास नकवी ने कहा कि भारत की प्राचीन योग, आयुर्वेद एवं यूनानी चिकित्सा परंपरा को विश्व मंच पर प्रतिष्ठित करने में प्रधानमंत्री की महत्वपूर्ण भूमिका रही है। योग हमारी हजारों वर्षों पुरानी सांस्कृतिक विरासत का प्रतीक है, जो आज पूरे विश्व को स्वस्थ जीवन का मार्ग दिखा रहा है। जिलाधिकारी अजय कुमार द्विवेदी एवं पुलिस अधीक्षक सोमेंद्र कुमार मीणा ने तहसील सदर के परिसर में एक पेड़ माँ के नाम अभियान के अंतर्गत पौधारोपण किया। इस अवसर पर उन्होंने कार्यक्रम में आए लोगों को पौधे वितरित कर पर्यावरण संरक्षण का संदेश भी दिया। इस मौके पर जिलाधिकारी ने कहा कि प्रत्येक व्यक्ति अपनी माँ के सम्मान में कम से कम एक पौधा अवश्य लगाए तथा उसके वृक्ष बनने तक उसकी देखभाल एवं संरक्षण भी सुनिश्चित करे।
3: जो माननीय प्रधानमंत्री जी का संकल्प

0: एक पेड़ माँ के नाम, उसको ज़रूर अपनाएं और सभी लोगों से उम्मीद करूंगा कम से कम एक पेड़ जरूर अपने संरक्षण में उसको बड़ा करें।
1: रामपुर में पल्स पोलियो अभियान का उद्घाटन मुख्य चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर दीपक सिंह द्वारा किया गया। डॉक्टर दीपक सिंह द्वारा शहरी प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र शाहबाद गेट स्थित पोलियो बूथ पर फीता काटकर एवं बच्चों को पोलियो की दो बूंद पिलाकर अभियान की शुरुआत की गई। मुख्य चिकित्सा अधिकारी ने इस मौके पर कहा कि पोलियो जैसी गंभीर बीमारी से बच्चों को सुरक्षित रखने के लिए प्रत्येक अभिभावक जन्म से 5 वर्ष तक के बच्चों को पोलियो की खुराक जरूर पिलाएं।
2: ये था आकाशवाणी लखनऊ के क्षेत्रीय समाचार एकांश द्वारा प्रस्तुत जिले की हलचल का आज का अंक।
3: जिले की हलचल कार्यक्रम समाप्त हुआ।
4: मीडियम वेव 241.54 मीटर अर्थात 1242 किलोहर्ट्ज पर ये आकाशवाणी का वाराणसी केंद्र है। सुबह के 9:25 हुए हैं। आइए सूचना दे दें खोए हुए व्यक्तियों के संबंध में। कार्यालय पुलिस अधीक्षक जनपद चंदौली से ये पहली सूचना आई है। खोए हुए व्यक्ति का नाम है उम्मत परवीन। इनके पिता का नाम है मुबारक अली। ये निवासिनी हैं ग्राम कमालपुर थाना धीना जनपद चंदौली के। ये पिछले 3 जून 2026 दिन 1 बजे से लापता हैं। उम्मत परवीन के बारे में जानकारी की बातें इस प्रकार हैं। उम्र 18 वर्ष, कद सामान्य, रंग गोरा, चेहरा गोल है। ये लापता होने के समय सूट सलवार पहने हुए हैं। उम्मत परवीन के संबंध में कोई भी जानकारी या सूचना हो तो अपने निकटतम थाने या फिर कार्यालय पुलिस अधीक्षक जनपद चंदौली को सूचित करें। यहीं से प्राप्त एक और सूचना के अनुसार ये हैं लक्ष्मीना देवी। इनके पिता का नाम है श्यामा चौहान। ये निवासिनी हैं ग्राम दिनदासपुर थाना सकलडीहा जनपद चंदौली की। ये पिछले 26 मई 2026 से लापता हैं। लक्ष्मीना देवी के बारे में जानकारी की बातें इस प्रकार हैं। उम्र 25 वर्ष, कद लगभग 5 फीट, रंग गंदुम सांवला, चेहरा गोल है। ये लापता होने के समय लाल रंग की साड़ी पहने हुए हैं। लक्ष्मीना देवी के बारे में कोई भी सूचना या जानकारी हो तो अपने निकटतम थाने या फिर कार्यालय पुलिस अधीक्षक जनपद चंदौली को देने की कृपा करें। कार्यालय पुलिस अधीक्षक जनपद चंदौली से ही प्राप्त एक और सूचना के अनुसार ये हैं इंदु यादव। इनके पिता का नाम रामलाल यादव। ये निवासिनी हैं ग्राम गोरखा थाना धीना जनपद चंदौली की। ये पिछले 6 मई 2026 से लापता हैं। इंदु यादव के बारे में जानकारी की बातें इस प्रकार हैं। उम्र 20 वर्ष, कद 5 फीट 3 इंच, रंग सांवला, चेहरा अंडाकार है। ये लापता होने के समय लहंगी कुर्ती पहने हुए हैं। इंदु यादव के बारे में कोई भी सूचना या जानकारी हो तो अपने निकटतम थाने या फिर कार्यालय पुलिस अधीक्षक जनपद चंदौली को सूचित करें।

कार्यालय पुलिस अधीक्षक जनपद चंदौली से ही एक और सूचना आई है। खोए हुए व्यक्ति का नाम है चंदन। इनके पिता का नाम है अंबिका प्रसाद। ये निवासी हैं इंदिरा नगर थाना चकिया जनपद चंदौली के। ये पिछले 12 अप्रैल 2026 सुबह 9:30 से लापता हैं। चंदन के बारे में जानकारी की बातें इस प्रकार हैं। उम्र 30 वर्ष, कद 5 फीट 3 इंच, रंग सांवला, चेहरा गोल है। ये लापता होने के समय काले रंग का टी शर्ट और पैर में चप्पल, नीले रंग का जींस पहने हुए हैं। चंदन के बारे

में कोई भी सूचना या जानकारी हो तो अपने निकटतम थाने या फिर कार्यालय पुलिस अधीक्षक जनपद चंदौली को देने की कृपा करें। इसी के साथ ही खोए हुए व्यक्तियों के संबंध में सूचनाएं अब समाप्त हुई। ये आकाशवाणी का वाराणसी केंद्र है। सुबह के 9:30 होने वाले हैं। उर्दू कार्यक्रम आप सुनेंगे आकाशवाणी के लखनऊ केंद्र से बस कुछ ही पलों में।

इसे ठीक करने की कोशिश की, लेकिन नुकसान इतना ज्यादा था कि वांग की पलकें हमेशा के लिए पूरी तरह झपकना बंद हो गईं। समाइन, अमेरिका के नेब्रास्का में एक बेहद चौंकाने वाला मामला सामने आया है, जहां मुबैना तौर पर एक पालतू कुत्ते ने शॉटगन से फायरिंग कर दी। इस हादसे में सड़क पर मौजूद एक खातून जख्मी हो गई। ये वाकया नेब्रास्का के स्कॉट सबलफ इलाके का है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक ये वाकया गुजरे मई माह का है, जब एक शख्स अपनी पिकअप ट्रक लेकर एक गैस स्टेशन पर रुका। वो गाड़ी में अपने पालतू कुत्ते और एक दूसरे पैसेंजर को छोड़कर पास की दुकान से कुछ सामान लेने चला गया। मालिक के जाते ही गाड़ी की पिछली सीट पर बैठा कुत्ता अचानक उछल कूद करने लगा। इसी दौरान उसका पैर वहां रखी एक लोडेड शॉटगन पर पड़ गया, जिससे ट्रिगर दबा और दनादन गोलियां चलने लगीं। गोलियां गाड़ी के दरवाजे को चीरते हुए सीधे बाहर निकल गईं। उसी वक्त पास के ट्रैफिक सिग्नल पर एक खातून अपनी गाड़ी में ग्रीन सिग्नल होने का इंतजार कर रही थी। गोली गाड़ी के दरवाजे को पार करती हुई खातून के हाथ में लगी। मौके पर मौजूद एक शख्स ये नज़ारा देख कर सन्न रह गया, क्योंकि गाड़ी के अंदर से एक कुत्ता फायरिंग कर रहा था। सामाइन कहते हैं कि जिंदगी में कब कौन सा लम्हा इंसान की तकदीर बदल दे, इसका अंदाजा किसी को नहीं होता। कुछ ऐसा ही हुआ है बहरीन में रहने वाले भारतीय नज़ात कृष्ण कुमार श्यामला रविंद्रन के साथ। बरसों से लॉटरी खरीदते आ रहे कृष्ण कुमार को इस बार एक टिकट करोड़पति बना गया। उसके लिए उन्होंने कोई पैसा भी खर्च नहीं किया था। एक प्रमोशनल ऑफर के तहत मिली मुफ्त टिकट ने उन्हें करीब 52 करोड़ रुपए का मालिक बना दिया। दरअसल 43 साल कृष्ण कुमार पिछले 23 बरसों से बहरीन में रह रहे हैं। तमाम जिद्दोजहद के दरमियान उन्होंने मुस्तकबिल में कुछ बड़ा हासिल करने की उम्मीद से अबू धाबी बिग टिकट लॉटरी में हिस्सा लेना शुरू कर दिया। पिछले 7 सालों में वो हर महीने टिकट खरीदते रहे। किस्मत ने आखिरकार इस साल उनका साथ दिया। 4 जून को निकले अबू धाबी बिग टिकट ड्रॉ में उनका टिकट फातह करार दिया गया और उन्हें 2 करोड़ दिरहम का जैकपॉट मिला, जिसकी भारतीय करेंसी में कीमत लगभग 52 करोड़ रुपए है। दिलचस्प बात यह है कि ये टिकट उन्हें एक खास प्रोफेशनल स्कीम के तहत मुफ्त मिला था। समय न्यूजीलैंड में एक खातून के साथ एक ऐसा वाकया पेश आया जिसने मेडिकल साइंस को हैरान कर दिया और उस खातून की जिंदगी में 13 साल बाद उजाला भर दिया। ये अनोखी दास्तान न्यूजीलैंड के ऑकलैंड की लीजा रेट की है। जब लीजा महज 11 साल की थी, तब उनके दिमाग में एक ट्यूमर हो गया था। इस ट्यूमर ने उनकी आँखों की नसों को इतना दबा दिया था कि उन्होंने अपनी देखने की कुव्वत पूरी तरह खो दी थी। लेकिन नवंबर 2000 की एक रात में उनकी जिंदगी हमेशा के लिए बदल गई। लीजा रात को सोने से पहले अपने गाइड कुत्ते को गुड नाइट कहने के लिए नीचे झुकी, तभी उनका तवाजुन बिगड़ गया और उनका सर पास रखी कॉफी टेबल से जोर से टकरा गया। सर में दर्द होने की वजह से लीजा उस वक्त तो सो गई, लेकिन अगली सुबह जब उनकी आँख खुली तो वो दंग रह गई। उन्हें धुंधला ही सही, लेकिन सामने की चीजें साफ नजर आ रही थी। समाइन सोचिए, एक ऐसा जानवर जिसकी 5 आंखें हों, हाथी जैसी सूंड हो, लेकिन साइज में वो आपकी उंगली के बराबर हो। सुनने में ये आपको किसी साइंस फिक्शन फिल्म का एलियन लग सकता है, लेकिन आज से करीब 50.5 करोड़ साल कब्र समंदरों में सच में ऐसा एक अजीब गरीब जानवर राज करता था। इसका नाम ओपिबीनिया है। कैम्ब्रियन दौर का ये अनोखा जानवर आज के किसी भी जानवर से मेल नहीं खाता। साइंसदान के मुताबिक ओपिबीनिया के सर पर डंठल जैसी 5 आंखें होती थीं, जो देखने में छोटे मशरूम या बल्ब जैसी लगती थीं। इनमें से 2 आंखें आगे, 2 पीछे और 1 बिल्कुल बीच में हुआ करती थी। इसके चेहरे के आगे एक लंबी और बेहद लचीली सूंड थी, जो इसके पूरे जिस्म की लंबाई की करीब 1/3 थी। उसका मुंह सीधे आगे नहीं, बल्कि सूंड के नीचे सिर के पिछले हिस्से में नीचे की तरफ होता था। ओपिबीनिया के पास जमीन पर चलने के लिए पैर नहीं थे। पानी में तैरने के लिए इसके जिस्म के दोनों तरफ 15 जोड़ी फ्लैप या पंख बने हुए थे। भले ही इसकी बनावट किसी हॉरर फिल्म के मॉन्स्टर जैसी लगती हो, लेकिन हकीकत में इसका साइज बहुत छोटा था। सामाइन, समंदर की गहराइयों में रहने वाला मेंटिस श्रिम्प पहली नज़र में बिल्कुल आम सा जानवर महसूस होता है। इसे देखकर शायद ही कोई अंदाज़ा लगा पाएगा कि इसके अंदर कितनी हैरान कर देने वाली ताकत और अनोखी खूबियाँ छिपी हुई हैं। साइज में छोटा होने के बावजूद ये समंदर के सबसे ख़तरनाक और दिलचस्प शिकारी जानवरों में गिना जाता है।

रफ्तार, ताकत और देखने की कुव्वत ऐसी है कि बड़े बड़े समंदरी जानवर भी इससे दूरी बनाकर रखना पसंद करते हैं। जेंटिस श्रिंप असल में एक तरह का समंदरी क्रस्टेशियन है जो एस्टोमेटोपोडा की जमात से मुंसलिक है। साइंसदान अब तक इसकी 250 से भी ज्यादा नस्ल की पहचान कर चुके हैं और माना जाता है कि अभी भी कई नस्लें ऐसी हैं जिनकी मुकम्मल मालूमात सामने नहीं आई है। इसका रंग बेहद खूबसूरत होता है लेकिन ये खुले में ज़्यादा वक्त गुजारना पसंद नहीं करते। ज़्यादातर वक्त ये समुंदर की तलहटी में बने अपने छोटे छोटे बिलों के अंदर छिपे रहते हैं। सामईन, अमेरिका के मैसाचुसेट्स के मछुआरे माइकल पैकेट के साथ पेश आए सच्चे वाकये ने पूरी दुनिया को हैरान कर दिया है। बात साल 2021 के जून माह की है जब सुबह केप कॉड के ठंडे समंदर में 56 साल तिजारती गोताखोर माइकल रोज की तरह लॉबस्टर पकड़ने के लिए पानी में उतरे। वो सतह से करीब 45 फीट नीचे थे तभी अचानक पानी में एक जोरदार हलचल हुई। पैकेट को पीठ पर एक जबरदस्त झटका लगा और अगले ही लम्हे में चारों सिमत अंधेरा छा गया। उस खौफनाक पल को याद करते हुए पैकेट ने बताया कि उन्हें महसूस हुआ कि किसी बड़ी शार्क ने उन पर हमला कर दिया है और उसने उन्हें दबोच लिया है। वो बस अपनी मौत का इंतजार कर रहे थे लेकिन अगले ही लम्हे में पैकेट को एहसास हुआ कि मामला कुछ और है। वो समझ गए कि वो शार्क नहीं बल्कि बड़ी हम्प बैक वेल के मुंह के अंदर समा चुके हैं। वो करीब 30 से 40 सेकंड तक वेल के मुंह में फंसे रहे। फिर अचानक वेल को भी ऐसा महसूस हुआ कि उसने कुछ ऐसा मुंह में डाल लिया है जो उसका खाना नहीं है। वेल तेजी से समंदर की सतह पर आई, उसने अपना सर झटका और पैकेट को हवा में उछालते हुए वापस पानी में फेंक दिया। ये मुआवजा ही था कि इतने बड़े हादसे के बाद भी पैकेट की कोई हड्डी नहीं टूटी, बस कुछ खरोचें और मामूली चोटें आईं। डॉक्टरों ने उन्हें उसी दिन अस्पताल से छुट्टी दे दी। सामाइन, अब बात दुनिया के इकलौते ऐसे कस्बे की जहां एक ही छत के नीचे रहने वाले शौहर और बीवी दो अलग अलग जबानों में बात करते हैं। ये हैरान करने वाली हकीकत साउथ नाइजीरिया के क्रॉस रिवर सूबे में वाक़े उबांग नाम के एक छोटे से कस्बे की है। यहाँ के बाशिंदे सतियों से एक बेहद अजब रवायत बातें आ रहे हैं। यहाँ मर्द और ख्वातीन एक ही चीज़ को पुकारने के लिए पूरी तरह से अलग अल्फाज और बोलियों का इस्तेमाल करते हैं। जाहिर है अब आपके जहन में ये सवाल आ रहा होगा कि अगर जबानें इतनी अलग हैं तो ये आपस में बातचीत कैसे करते हैं। दरअसल अलग अलग बोलने के बावजूद यहाँ के मर्द और ख्वातीन एक दूसरे की ज़बान को बहुत आसानी से समझ लेते हैं। बचपन से ही दोनों ज़बानों को सुनते रहने की वजह से इन्हें दोनों बोलियाँ पूरी तरह समझ में आ जाती हैं। सामाइन, 19 साल एक लड़के की कहानी इन दिनों खूब सुर्खियों में है। बिना किसी बड़े कॉलेज की डिग्री या अमीर बैकग्राउंड के इस लड़के ने अपने दम पर एक ऐसा आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस AI बिजनेस खड़ा किया है जिससे वो हर महीने 1 करोड़ रुपए कमा रहा है। इस कामयाब नौजवान का नाम है आयुष सिंह। उनकी ये इंस्पायरिंग कहानी टॉपमेट के शरीक बानी दिनेश सिंह ने शेयर की है जो अब तेजी से वायरल हो रही है। दिनेश सिंह ने बताया कि जब कोरोना का दौर था तब आयुष महज 13 साल के थे और उनके कुनबे पर माशी बुहरान आ गया था। उस वक्त उनके पास कोई महंगी कोचिंग नहीं थी, बस एक पुराना लैपटॉप, रुक रुक कर चलने वाला इंटरनेट और कुछ पुराने कोर्सेज थे। लेकिन आयुष के अंदर कुछ नया सीखने की जिद थी। इसी जिद के दम पर उन्होंने खुद से मशीन लर्निंग जो AI का एक हिस्सा है उसे सीख डाला। आयुष की लगन का असर ये हुआ कि कुछ ही महीनों में वो गैर मुल्की स्टार्टअप के साथ काम करने लगा। कमाल की बात यह है कि जब वो सिर्फ 14 साल के थे तब दुनिया के सबसे मशहूर इदारे मैसाचुसेट्स इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी ने उनके बनाए कोर्स की तारीफ की और लोगों को इसे पढ़ने का मशवरा दिया। सामान्य दुनिया में कई ऐसी चीज़ें हैं जिनकी कीमत सुनकर लोग हैरान रह जाते हैं। सोना, हीरा और नायाब धातु के बारे में तो आप अक्सर सुनते हैं लेकिन क्या कभी आपने किसी परिंदे के घोंसले के बारे में सुना है जिसकी कीमत लाखों रुपए तक पहुंच जाती है। सुनने में ये अजीब लग सकता है लेकिन ये बिल्कुल सच है। स्विफ्टलेट नाम का एक छोटा सा परिंदा ऐसा घोंसला बनाता है जो दुनिया के सबसे महंगे कुदरती मसनूआत में गिना जाता है। स्विफ्टलेट आमतौर पर जनूब मशरकी एशिया के कुछ ममालिक में पाया जाता है। देखने में ये कोई बहुत खास परिंदा तो नहीं लगता लेकिन इसकी एक अनोखी आदत इसे आम परिंदों से अलग बना देती है। जहां ज़्यादातर परिंदे अपने घोंसले बनाने के लिए
سوکھی ٹہنیاں، گھاس، پتیاں یا دوسری قدرتی

अपनी चीजों का इस्तेमाल करती हैं, वहीं स्विफ्टलेट अपना घोंसला अपने ही राल यानी सलाइवा से तैयार करता है। जब घोंसला बनाने का वक्त आता है तब वो किसी पत्थर या गार की दीवार पर अपने राल को लगाता है। वो राल धूप और हवा के रास्ते में आकर सख्त होने लगती है और कई दिनों की मेहनत के बाद एक कटोरे जैसी शक्ल का घोंसला तैयार हो जाता है। यही घोंसला बाद में दुनिया भर में काफी ऊंची कीमत पर बेचा जाता है। इन घोंसलों को इकट्ठा करना भी आसान काम नहीं होता। स्विफ्टलेट अक्सर गहरी, अंधेरी और खतरनाक गारों में अपना घोंसला बनाती है। कुछ ममालिक में इन घोंसलों की मांग बहुत ज्यादा है, खासतौर पर चीन, हांगकांग, मलेशिया और सिंगापुर जैसे इलाकों में इन्हें एक खाने की अशिया की शक्ल में देखा जाता है। वहाँ इन घोंसलों से बर्ड नेस्ट सूप नामी मशहूर पकवान बनाया जाता है। माना जाता है कि ये सूप सेहत के लिए फायदेमंद होता है और जिस्म को ताकत देने में मदद करता है। सामाइन, गर्मी के दिनों में अगर आप किसी गांव, खेत या तालाब के आसपास जाएं, तो अक्सर भैंसों को कीचड़ में आराम से लेटा हुआ देखेंगे। बहुत से लोग इसे देखकर सोचते हैं कि शायद भैंसों को गंदगी पसंद होती है या वो साफ सफाई का ख्याल नहीं रखती, लेकिन सच बात इससे बिल्कुल अलग है। भैंसों का कीचड़ में लेटना कोई आदत या शौक नहीं, बल्कि उनके जिस्म की बड़ी ज़रूरत है। दरअसल कीचड़ भैंसों के लिए किसी कुदरती हिफाजती खिलाफ से कम नहीं होता। ये उन्हें गर्मी से बचाता है, जिल्द की हिफाजत करता है और कई तरह के कीड़ों और जरासीम से भी दूर रखता है। आसान अल्फाज में कहें तो कीचड़ भैंसों के लिए एक तरह का कुदरती स्पा है जो उन्हें सेहत और आरामदेह बनाए रखने में मदद करता है। सामाइन, अगर आपको लगता है कि इंसानों के अलावा कोई और जानवर बड़ी बड़ी तामीर नहीं कर सकता, तो बीवर के बारे में जानकर आपकी सोच बदल सकती है। ये छोटा सा जानवर अपनी अनोखी मेहनत और इंजीनियरिंग के हुनर के लिए पूरी दुनिया में मशहूर है। यही वजह है कि इसे कुदरत का सबसे हुनरमंद इंजीनियर भी कहा जाता है। बीवर देखने में भले ही आम लगे, लेकिन इसके काम गैरमामूली होते हैं। ये सिर्फ पेड़ काटने वाला जानवर नहीं है, बल्कि पूरे वाटरशेड की बनावट बदलने की कुव्वत रखता है। इसकी एक्टिविटी दरियाओं और आसपास के माहौल पर इतना गहरा असर डालती हैं कि कई बार किसी इलाके का पूरा नक्शा ही बदल जाता है। इस जानवर के सबसे खास हथियार इसके मजबूत और लगातार बढ़ते रहने वाले आगे के दांत हैं। ये दांत इतने धारदार होते हैं कि बीवर आसानी से बड़े पेड़ों के तनों को कुतर सकता है। घंटों की मेहनत के बाद जब कोई पेड़ गिर जाता है, तो वो इसकी लकड़ियों, टहनियों और शाखों को इकट्ठा करना शुरू कर देता है। यही सामान बाद में उसके बड़े तामीरी काम में इस्तेमाल होता है। सामाइन, इन दिनों चीन की एक ऐसी दुकान सुर्खियों में है जिसे देखकर अच्छे अच्छे खतरों के खिलाड़ियों के पसीने छूट जाते हैं। ये कोई आम किराने की दुकान नहीं है, बल्कि चीन के हुनान सूबे के शिनी युझाई नेशनल जियोलॉजिकल पार्क में जमीन से 393 फीट यानी करीब 120 मीटर ऊपर एक बिल्कुल सीधी चट्टान पर लटकी हुई लकड़ी का एक छोटा सा केबिन है। इस दुकान से खरीदारी करना हर किसी की बस की बात नहीं, इसके लिए फौलादी जिगरा होना चाहिए। यहाँ जाने के लिए आपको बाकायदा ट्रेकिंग गियर, रस्सियाँ और मेटल केबल्स पहनकर खड़ी चट्टानों पर चलना पड़ता है। इस दुकान तक पहुँचने में 1.5 घंटे का वक्त लग जाता है, इसलिए ड्यूटी के दौरान यहाँ के स्टाफ पानी पीने से भी बचते हैं ताकि वॉशरूम जाने की ही नौबत ना आए। इस दुकान को चलाना किसी कड़े इम्तिहान जैसा है। सामाइन, इंसान ने आज कितनी भी तरक्की क्यों ना कर ली हो, लेकिन आज भी वो समंदर के बहुत छोटे हिस्से के बारे में ही जान पाया है। समंदर की अथाह गहराइयों में कई ऐसे जानवर हैं जो अपनी अजब बनावट और अनोखी लाइफस्टाइल की वजह से साइंसदान और नेचर लवर को हैरान कर देते हैं। इन्हीं अनोखे जानवरों में से एक है रेड लिप्ड बैटफिश। पहली नज़र में इसे देखकर ऐसा महसूस होता है कि जैसे किसी ने इसके होठों पर चमकीली लाल लिपस्टिक लगा दी हो। यही अनोखी खासियत इसे दुनिया की सबसे दिलचस्प समंदरी मछलियों में शामिल करती है। ये मछली पैसिफिक समंदर में वाकई गालापागोस जजीरे के आसपास के समंदरी हलकों में पाई जाती है। इसका नाम बैट फिश इसलिए रखा गया क्योंकि इसका सर चौड़ा और चपटा होता है, जो कुछ हद तक चंगादड़ की शक्ल की याद दिलाता है। इसके बदन की बनावट पूरी मछलियों से काफ़ी अलग होती है, जिससे ये समंदरी जानवरों की दुनिया में फौरन पहचान ली जाती है। तो सामाइन, ये थी इस माह की कुछ अजब गजब खबरें।
امید ہے ان خبروں سے آپ کے علم اور معلومات

0: इस देवी गीत के बाद आइए सुने खेमटा, आवाज एक बार फिर से नंदलाल राम और साथियों की।
1: अपने देशवा के

नंदलाल राम और साथियों के गाए इस खेमटा के साथ ही लोक संगीत का ये कार्यक्रम अब यहीं संपन्न हुआ। मीडियम वेव 241.54 मीटर अर्थात 1242 किलोहर्ट्ज पर ये आकाशवाणी का वाराणसी केंद्र है। सुबह के 10 बजे हैं, आइए सुने फिल्म संगीत का कार्यक्रम झनकार। पहला गाना बाबुल सुप्रियो और अलका याग्निक की आवाज़ों में, फिल्म का नाम है अंदाज़।

अब आइए सुनते हैं राजा फिल्म का गाना उदित नारायण और अलका याग्निक की आवाज़ों में। गीत के बोल लिखे हैं समीर ने, संगीत दिया है नदीम श्रवण ने।

अब आइए सुनते हैं अलका याग्निक की आवाज़ में समीर का लिखा गाना। धुन तैयार की है नदीम श्रवण ने, फिल्म का नाम है राजा हिंदुस्तानी।

अब आइए सुनते हैं उदित नारायण और पूर्णिमा की आवाज़ों में फिल्म प्यार दीवाना होता है का ये गाना, गीत रविंद्र रावल के, संगीत बाबुल बोस का।

अब आइए सुनते हैं ये दिल आशिकाना फिल्म का ये टाइटल सॉन्ग, कुमार सानू और अलका याग्निक की आवाज़ें, समीर के बोल, नदीम श्रवण का संगीत।

अब आइए सुनते हैं उदित नारायण और अलका याग्निक की आवाज़ों में अरुण भैरव का लिखा गाना। संगीत दिया है अनु मलिक ने, फिल्म का नाम है मुझसे शादी करोगी।

अजब प्रेम की गजब कहानी। आइए सुने इस फिल्म का गाना, नीरज श्रीधर और सुजैन डिमेलो की आवाज़ें, इरशाद कामिल के बोल, प्रीतम का संगीत।

अब आइए सुनते हैं बंटी और बबली फिल्म का गाना, जावेद अली, शंकर महादेवन और अलीशा चिनाई की आवाज़ों में। रचना गुलजार की है, संगीत है शंकर एहसान लॉय का।

Dime, dime, dime, dime.

कार्यक्रम के आखिर में आइए सुनते हैं दलेर मेहंदी और ऋचा शर्मा की आवाज़ों में इरशाद कामिल का लिखा गाना। प्रीतम ने इसकी धुन तैयार की है। फिल्म का नाम है एक्शन रिप्ले।

अभी आप सुन रहे थे सदाबहार फिल्मी गीतों का कार्यक्रम झनकार। ये आकाशवाणी का वाराणसी केंद्र है।

0: पीएमवेव 241.54 मीटर अर्थात 1242 किलोहर्ट्स, डीटीएच डीआरएम 1233 किलोहर्ट्स और मोबाइल ऐप न्यूज ऑन एआईआर के साथ साथ वेव्स ओटीटी प्लेटफॉर्म पर भी ये कार्यक्रम आप सुन सक रहे हैं। स्टूडियो की घड़ी में दिन के 11 बज चुके हैं। थोड़ी देर में लेकर आ रहे हैं आपके लिए कार्यक्रम फरमाइशी गीत एक्सप्रेस।
1: फिर एक बार विविध भारती वाराणसी अब नए अंदाज में FM 100.6 पर सुबह 10 से 11 और शाम 5 से 7 बजे तक स्थानीय कार्यक्रमों के साथ, यानी काशी कनेक्ट, बनारस बीट्स, बनारस डायरी और वाराणसी वाइब्स, साथ ही और भी बहुत कुछ जिसमें शामिल होती हैं आपकी बातें। साथ ही सुनते रहिए आकाशवाणी वाराणसी, मीडियम वेव 241.54 मीटर यानी 1242 किलोहर्ट्ज, डीटीएच डीआरएम, न्यूज ऑन एआईआर ऐप और वेब्स ओटीटी पर। कहीं भी कभी भी आकाशवाणी वाराणसी, जहां है आप वही हमारा साथ।

तो लीजिए श्रोताओं, हाजिर हैं आपके ईमेल संदेशों पर आधारित हमारा ये कार्यक्रम फरमाइशी गीत एक्सप्रेस लेके। आज इस कार्यक्रम में आपकी रेडियो सखी आपका इस कार्यक्रम में स्वागत करती है। तो आइए शुरू करते हैं ये कार्यक्रम। कार्यक्रम का पहला गीत दाग फिल्म से। किशोर कुमार की आवाज है, साहिर के लिखा गीत है, कल्याण लक्ष्मीकांत प्यारे लाल का संगीत है और फरमाइश आप सब श्रोताओं की। कासम कॉलोनी सनावत से यूनुस खत्री, शफी खत्री, इद्रीश खत्री, नूर मीना, इरफान मीना और कासिफ मीना ने इस गीत की फरमाइश की। साथ में हैं मोरटक्का माफी जिला खंडवा से हमारे किसान श्रोता जगन्नाथ पटेल, कमला पटेल, अंतिम पटेल, ज्योति पटेल, शुभम पटेल, देवी किशन, भावना, मन मानस और कनिका पटेल जी। इसी गीत के लिए जिला नांदेड़ इताला महाराष्ट्र से हमारे श्रोता फरमाइश करते हैं। शंकर लाल जायसवाल, गणेश लाल जायसवाल, शुभम प्रसाद जायसवाल, अपर्णो जायसवाल और कुमारी दुर्गेश्वरी जायसवाल। और इसी गीत को ममता मारकंडे, संजय मारकंडे, बेबी किट्टी, बड़ा बम चौक खंडवा से सुनना चाहते हैं। साथ में हैं आपके परिवार के अन्य लोग भी हैं। ये दादा बाबू रोड गिरीडीह झारखंड से हमारे श्रोता हैं मोहम्मद यासीन अनजान, साइमा नवाज, हसन नवाज, बाबू अहद, मिफ्रा नवाज और बेबी चाहत। तेलंगाना भोंगीर से मोहम्मद बुरहानुद्दीन जी ने भी इस गीत को सुनने की फरमाइश की। छत्रपति संभाजी नगर से राजेश साबे पाटिल, राजदीप राजेश, राशि राजेश और श्रीमती शीतल राजेश ने भी ये गीत सुनना चाहा। और इसी गीत के लिए हमारे श्रोता फरमाइश करते हैं टाउनशिप सेक्टर 8 भिलाई नगर से अशोक श्याम कुमार, प्रमिला श्याम कुमार, चिन्नू आसमा, साथ में हैं दीप श्याम कुमार, अनुश्री श्याम कुमार। बड़ी गैबी चौराहा वाराणसी से हमारे श्रोता हैं अरुण कुमार मालवी दर, श्री त्रिभुवननाथ मालवी एवं समस्त मालवी परिवार। और ये हैं छत्तीसगढ़ चूड़ी लाइन मुंगेली से मोहम्मद इशाक खतीजा बेगम, मोहम्मद अशफाक आफरीन कौसर, मोहम्मद अल्ताफ नीलोफर फातिमा जी। छत्तीसगढ़ रायपुर से मोहम्मद इमरान इरशद परवीन, मोहम्मद हसनैन रजा और साथ में है गौसिया

फातिमा। ज्योति नगर नोखा राजस्थान से हमारे श्रोता हैं, पुखराज बड़गुजर, कैलाश मिस्त्री, गोर्धनधरा से फरसाराम सोलंकी, श्यामलाल चौहान, घनश्याम भार्गव, बाबू गौरी और हसन सिक्का। जैन मंदिर वाली गली कुरावली से हैं राशिद हुसैन अंसारी, नसरीन अंसारी, नौरीन अंसारी, आसना अंसारी और मोहम्मद कैफ अंसारी। पटेल नगर मुगल सराय से हैं सुनील कुमार सिंह और गढ़नोखा छत्तीसगढ़ से हैं महाराज कीर्तनपुरी गोस्वामी, लक्ष्मी देवी गोस्वामी, योगेशपुरी, ट्विंकल, डिंपल, मीनाक्षी, निशा, तुलसी और दिशा गोस्वामी। और ये डोंगर गांव छत्तीसगढ़ से हमारे श्रोता हैं राष्ट्रपाल गजभिये, राधिका गजभिये, बेबी अनिष्का और तन्मय गजभिये। तो आप सबकी फरमाइश पर डाक फिल्म का ये गीत आप सबके लिए।

आप जुड़े हैं आकाशवाणी के वाराणसी केंद्र के साथ, सुन रहे हैं कार्यक्रम फरमाइशी गीत एक्सप्रेस। कार्यक्रम का अगला गीत है मुकद्दर का सिकंदर फंसी। लता मंगेशकर और किशोर कुमार की आवाजें हैं, अनजान का लिखा गीत, कल्याण जी आनंद जी का संगीत और पसंद आप सब श्रोताओं की। जमानिया जिला गाजीपुर से सुरेश जायसवाल, उर्मिला जायसवाल, दीपक जायसवाल और स्वाति जायसवाल। गमहरिया जमशेदपुर से विपिन जायसवाल, स्वाति जायसवाल, देव कुमार जायसवाल, आर्य कुमार जायसवाल। जमानिया रेलवे स्टेशन से एसपी जायसवाल, डिंपल जायसवाल, आशुतोष जायसवाल। इसी गीत को शिवाजी नगर वडाली देशमुख महाराष्ट्र से सुनना चाहते हैं राजेश खोबरखेड़े, शिवसागर खोबरखेड़े, इंदिरा ताई खोबरखेड़े, सुनैना, दीपाली, स्वराज और तनुज। रजईपुर पोस्ट उगापुर भदोही से पप्पी यादव, ललितचंद यादव, बबलू यादव, सुनील यादव, लवकुश यादव। पानीपत हरियाणा से अनिल कटारिया, मंजू कटारिया, नरेश महलूत्रा और साथ में ज्ञानभूषण शर्मा। पलारी रोहासी छत्तीसगढ़ से मुकेश साहू, नंदनीश साहू, मनीष साहू, मयंक साहू, जानकी साहू। रवि रेजिडेंसी राजकोट से हेमा जाटो, सुधा कुमारी, संध्या कुमारी। बिहारी पुरम वीरगांव से हैं संजय तामुरिया, अजीता और प्रेम तामुरिया। दिलदार नगर गांव पश्चिम मोहल्ला जिला गाजीपुर से जनार्दन पांडे, लक्ष्मीकांत पांडे, बबलू तिवारी, रामनिवास सिंह कुशवाहा। और इसी गीत को टोरोवाल जिला नवाशहर पंजाब से सुनना चाहते हैं गगनदीप थांती, तृप्ता कुमारी थांती, डॉक्टर प्रियंका थांती, डॉक्टर प्रशांत थांती, डॉक्टर प्रियम थांती, बेबी वमिका और वाणी थांती। उमरी नांदेड़ महाराष्ट्र से बालुआपाड़ घड़बले, ज्योति घड़बले, शिव सुंदर घड़बले और आराध्या घड़बले। जलालाबाद वेस्ट से सुरेश गगनेजा, पूनम गगनेजा, विशाल, प्रिया, दिशानी और निमित आहूजा। हनुमानगढ़ राजस्थान से रज्जाक मोहम्मद, समीम बेगम, इमरान खान और इरफान खान के साथ साथ जीशान खान। पिहरा बाजार झुमरी तलैया गिरिडीह से शिवानी कुमार सिन्हा, प्रियंका कुमारी सिन्हा, अभय कुमार सनातनी। और कस्बा बड़ाला जिला अंबाला हरियाणा से रवि कुमार राहुल, रंजीत कौर, जयप्रकाश राहुल, प्रियंका, बीजेंद्र कुमार, जयजान, नूर, नमन, सिमरत, मन्नत, गुरकीरत राहुल और गुरशब्द राहुल। साहूनगर यवतमाल महाराष्ट्र से राहुल मनवर, सरला मनवर, विशाल, चेतन मनवर और रोशनी मनवर के साथ साथ बेबी प्रियांशी। इंदिरा चौक दिल्ली से हैं अजीम वकार, माहिरा अजीम, नीलिमा अजीम। और ये है गोविंद्र वैष्णव, दिव्या, सुमन, कोयल, परी, कीर्तिका, रमेश चंद्र डांगी। ग्राम लसुड़िया, तहसील नरसिंहगढ़, जिला राजगढ़, मध्य प्रदेश से। तो आप सबकी फरमाइश पर आइए सुनते हैं मुकद्दर का सिकंदर फिल्म से ये गीत।

मुकद्दर का सिकंदर फिल्म के बाद अब आइए सुनते हैं कार्यक्रम का अगला गीत किशोर कुमार और लता मंगेशकर की आवाज़ों में। आपकी कसम फिल्म का ये गीत है जिसे लिखा है आनंद बख्शी ने, संगीत राहुल देव बर्मन।

कहें और फरमाइश आप सबकी। अनई जिला बनारस से ही मास्टर अब्दुल मजीद अंसारी, नौरीन अंसारी और आफिया परवीन, हुस्ना तबस्सुम अंसारी कमच्छा वाराणसी से, चंद्रा नगर अम्बाला से हैं कृष्णा कुमारी, बीना कुमारी, सोनाली और डोली कुमारी, ग्राम धरदेई सरगांव छत्तीसगढ़ से हैं चंदूलाल पटवा, श्रीमती सुनीता पटवा, साथ में हर्ष कुमार पटवा, विनीत कुमार पटवा, कुमारी क्रिस्टी पटवा, संजय नगर ऐशबाग लखनऊ से एडवोकेट वारिस अली खान, इस्लामोनिशा शकील अहमद, शहनाज खान, बेबी नुसरा खान, तेलंगाना निज़ामाबाद से हैं शेख अल्लाह बख्श बेगम राबिया शेख, शेख रहीम मुन्ना दानिश आसिफ शेख, मदरसा गेट भावपुर मड़ियाहू जिला जौनपुर से हैं इरशाद अहमद अंसारी, कामरान इरशाद, अरमान इरशाद, नावेद इरशाद और अजरा तबस्सुम। लच्छनपुर छत्तीसगढ़ से हैं विश्वनाथ साहू, पंकज साहू, रिंगनी छत्तीसगढ़ से हैं दिनेश वर्मा, करुणा वर्मा, धरहरा बजड़िया वाराणसी से ऐनुल हक अंसारी, मल्लू अंसारी, सेराजुद्दीन अंसारी, एजाजुर रहमान अंसारी, सलीम आज़ाद अंसारी और इकबाल अंसारी, साथ साथ में हमारे श्रोता श्रवण कुमार। बाघामुड़ा कोमा खान छत्तीसगढ़ से प्रज्ञानंद देवांगन, नंदिनी देवांगन, प्रकाश देवांगन, गायत्री यशवर्धन, यशस्वी देवांगन और ये हमारे श्रोता हैं। चंद्रनगर सहारनपुर से कौशल्या जोशी, अजिता जोशी और दुर्गा कुमारी। जैन मंदिर वाली गली कुरावली से राशिद हुसैन अंसारी, नसरीन अंसारी, नौरीन अंसारी, आसना अंसारी, मोहम्मद कैफ अंसारी। किशनगंज बिहार से हैं रविंद्र मोहन दास, आशा देवी और अनुराग मोहन। सोनवर्षा खानपुर चुनार मिर्ज़ापुर से हैं अनीश राजभर, मनीष राजभर, आशीष राजभर और आकाश राजभर। धानौरा विटाली तहसील नांदूरा जिला बुलडाड़ा महाराष्ट्र से हैं भगवान पाटिल और सचिन पाटिल। परभड़ी महाराष्ट्र से रूपेश संघई, महेश संघई, प्रगेश संघई, प्रीतेश संघई और पूर्वरा संघई परिवार। तहसील रोड गंज डुंडवारा से हैं के एच राही, गुड़िया बेगम, वकील प्रेमी और हमाद जमीर।

मेहरा जी, चौटाला हरियाणा से हैं दारा पंडित, संजय शर्मा, प्रियंका शर्मा। चमन पार्क दिल्ली से हैं डॉक्टर सोनम, डॉक्टर सना और आदिबा। अहमदनगर बजड़िया वाराणसी से हैं बदरुद्दीन अंसारी, मुश्ताक सुलेमानी, सलीम आज़ाद और मल्लू अंसारी। बटिंडा रोड मड़ी डबल वाली से राजेंद्र नारंग, अंजू नारंग, मोहित नारंग और तानिया नारंग। ये है पलेरा टीकमगढ़ मध्य प्रदेश से तारा देवी विश्वकर्मा, विजेंद्र विश्वकर्मा, सोनाली विश्वकर्मा, सोनम विश्वकर्मा और आशीष विश्वकर्मा। चांदनी चौक पंडरिया छत्तीसगढ़ से पवन कुमार सेन, प्रभा देवी सेन, लकी, विक्की, नानू, रविंद्र और रौनक सेन। सादुल शहर राजस्थान से हैं राजकुमार रेवाड़, चंद्रकला रेवाड़, कोली नांदेड़ महाराष्ट्र से नारायण गायकवाड़ और साई गायकवाड़। पूना जंक्शन मस्तानपुरा से हैं अनंता भगत, अरुणा भगत, सुलोचना भगत और चेतन भगत। सादुल शहर राजस्थान से है राजकुमार रेवाड़, चंद्रकला रेवाड़, ग्राम भोईना पार लाटाबोर, जिला बालौद। छत्तीसगढ़ से देवनारायण साहू, योगिता, गीतिका, चंचल रानी और उमाबाई के साथ साथ गंगाराम साहू। दिल्ली नानक लोई से हैं राजेंद्र जटोलिया, उषा जटोलिया, कृष्णा जटोलिया, पूजा जटोलिया, कोमल जटोलिया, आरव जटोलिया। वृंदावन कॉलोनी से है दीपक गुप्ता, सुनीता, निशी और आशुतोष। तो आप सबकी फरमाइश पर आइए सुनते हैं आपकी कसम फिल्म का ये गीत।

गीत एक्सप्रेस आज ही कार्यक्रम आपकी सेवा में लेकर हाजिर है आपकी रेडियो सखी किरण सिंह। कार्यक्रम के अगले गीत की तरफ बढ़ा जाए और आपको सुनवाया जाए लता मंगेशकर की आवाज में इंतकाम फिल्म का एक गीत। गीत लिखा है राजेंद्र कृष्ण ने, संगीत लक्ष्मीकांत प्यारे लाल का है और सुनने की ख्वाहिश है गम्हरिया जमशेदपुर से रोहन जायसवाल, आर्य जायसवाल, बबरी बाजार चंदौली से विजय जायसवाल, सरोज जायसवाल, आरामनगर कदमा जमशेदपुर से मुराहू जायसवाल, देवंती जायसवाल, चकिया बाजार चंदौली से सुंदर जायसवाल और सुमन जायसवाल के साथ ही ऊपर कोट मोहल्ला चौखंडी बुलंदशहर से मोहम्मद सईद अब्बासी, निगहत परवीन अब्बासी, शहनवाज अब्बासी, सरफराज अब्बासी, फरदीन अब्बासी, सुहान अब्बासी, अरजान अब्बासी, अबान अब्बासी और अब्बासी परिवार के सभी सदस्य। इसी गीत को जिला खरगोन सनावद मध्य प्रदेश से मास्टर अशोक वर्मा, अर्चना वर्मा, अनुज वर्मा, आयुषी वर्मा, रमेश चंद्र वर्मा, शेख मूसा भाई जान और भाई राजकुमार ने भी सुनना चाहा। गंज डुंडवारा उत्तर प्रदेश से इस गीत की फरमाइश मास्टर खिल्लू परवेज बेगम, इमराना नाज, नवाजे शेख, दानिश शेख और अमन आफरीदी ने भी की। बोरना आदलपुर गोंगावा से ये गीत संजय बामनिया, माया काना और कृष्णा ने भी सुनना चाहा। इसी गीत की फरमाइश की नगर पंचायत गंगापुर वार्ड नंबर 3 जवाहर नगर से बुनकर आरजू बानो, आलिया बानो, नेहा बानो, सिमरन बानो, सना बानो, सानिया बानो, मनीषा बानो और गुड़िया बानो ने। तेलंगाना बोंगिर से इस गीत को सुनना चाहते हैं मोहम्मद बुरहानुद्दीन, फजान लल्ला, फरहान लल्ला, समीरा और आजमीन गुड़िया। मदरा गेट मड़ियाहो जौनपुर से इरशाद अहमद अंसारी, कृष्णा पार्क दिल्ली से सुखविंदर सिंह जोड़ा, सीटी दीवाना, रामगढ़ कैंट से महेंद्र मोदी ठाकुर साहब, ग्राम घूरो पोस्ट नियमताबाद से वंश नारायण प्रजापति, सितारा देवी प्रजापति, रिया कुमारी प्रजापति, अनुराग कुमार प्रजापति, किशन कुमार प्रजापति और आपके मम्मी पापा। कोटवा नारायणपुर बाबा पट्टी बलिया से इस गीत की फरमाइश की ओम प्रकाश राय, श्रीमती उषा राय, अमित राय, हैप्पी राय ने। दुबिया नेवादा जिला गाजीपुर से प्रतीक राय, श्रीमती रोशनी राय, प्रांजल राय। शेरपुर जिला गाजीपुर से अवधेश राय और श्रीमती प्रीति राय के साथ साथ नवनीत राय ने। तो आइए सुनते हैं आप सबकी फरमाइश पर इंतकाम फिल्म का ये गीत।

और बताते चले इस गीत के लिए रघुनाथपुरा जिला श्री गंगानगर राजस्थान से लालगिरी गोस्वामी हेमलता ने भी फरमाइश की। जेल रोड दिल्ली से लाल बाबू दीवाना, दिव्या भारती, डुमराव से वलीउल्लाह अंसारी, आर्यनगर कोहका भिलाई छत्तीसगढ़ से उत्तम सिंह जंगेल, मोरस जंगेल, अनिल कुमार, अजीत कुमार, आयुषी जंगेल और नंदिनी जंगेल ने भी ये गीत सुनना चाहा। ग्राम धंधा ग्राम सुखरी कला से अमित जंगेल, शकुन जंगेल, आरुषि ओशिका, आदित्य जंगेल और अंजलि जंगेल ने भी फरमाइश की। नई दिल्ली टैगोर गार्डन से रविंद्र सिंह छाबड़ा, स्वीटी दीवाना, इंद्रजीत कौर छाबड़ा और समस्त छाबड़ा परिवार की भी फरमाइश है ये गीत।

और कार्यक्रम का अगला गीत छाया फिल्म से, तलत महमूद और लता मंगेशकर की आवाज़ें हैं, राजेंद्र कृष्ण के का लिखा ये गीत है और सलील चौधरी का संगीत है इस गीत में, और पसंद आप सब श्रोताओं की। ग्राम व पोस बिरखेरा जिला हमीरपुर उत्तर प्रदेश से मलखान सिंह पाल, सुधांशु पाल, हिमांशु पाल। उच्ची भट्टी बिलासपुर छत्तीसगढ़ से हैं मुकेश गोस्वामी, शिवन्या गोस्वामी, मधु गोस्वामी, अनु गोस्वामी और आशा गोस्वामी। और ग्राम बहुआरा पोस दिलदार नगर जिला गाजीपुर से अकलू राम और केदार राम। और ये मुबारकपुर ऊंची तकिया आजमगढ़ उत्तर प्रदेश से हमारे श्रोता हैं।

फरमाइशी गीत एक्सप्रेस कार्यक्रम का ये अगला गीत है हेमंत कुमार की आवाज़ में। मजरूह सुल्तानपुरी का लिखा ये गीत है, सचिन देव बर्मन का संगीत। जी हाँ, ये है 16 साल फिल्म का गीत। इस गीत के लिए जिन श्रोताओं ने हमें फरमाइश की वो हैं पानीपत हरियाणा से अनिल कटारिया, मंजू कटारिया, नरेश मल्होत्रा और ज्ञान भूषण शर्मा ने। ऑरेंज सिटी नागपुर से ये गीत विट्ठल जाधव, अनसुईया जाधव और पवन राजे जाधव ने भी सुनना चाहा। साथ में ग्राम चरौदा बार नवापारा, जिला बालौदा बाजार छत्तीसगढ़ से हमारे श्रोता हैं नंद कुमार ठाकुर, प्रमिला ठाकुर, प्रियंका ठाकुर, दीपक और खुशबू के साथ ज्योति ठाकुर। राम रतन टॉकेज कुंडलवाड़ी से हैं गंगाधर सावनकर और विजय लक्ष्मी सावनकर। दमदम एयरपोर्ट से वसंत कुमार सिन्हा, अजय कुमार गुप्ता, बड़ी बहू रिम्मी और तनुश्री गुप्ता। खदान कोठी बोरोपारा चौक बसबेरिया वेस्ट बंगाल से हमारे श्रोता हैं मुन्नी देवी शाह, जयप्रकाश शाह और वसंत लाल साव जी। और साथ में हमारे रजईपुर पोस्ट उगापुर भदोही से श्रोता हैं पप्पी यादव, ललित यादव, बबलू यादव, सुनील यादव और लवकुश यादव। किशनगंज बिहार से रवि मोहनदास, राघव कुमार, आशा देवी और भानु प्रिया। छत्तीसगढ़ रिंगनी से हैं दिनेश वर्मा, करुणा वर्मा। तेलंगाना मोंगीर से हैं मोहम्मद बुरहानुद्दीन और यूसुफुद्दीन। पदमपुर जिला श्री गंगानगर राजस्थान से मेहर अरोड़ा, कीर्ति भूमिका और ममता अरोड़ा। गांव डाकघर निम्नाबाद जिंद हरियाणा से जसबीर सिंह अरोड़ा, जितेंद्र कौर, गुरप्रीत सिंह, लवप्रीत कौर और करमजीत कौर। इसी गीत के लिए हलौद बाजार लाहौर से कमलनाथ पटेल, राकेश कुमार पटेल, समीर पटेल, राजकुमारी पटेल का भी हमें ईमेल मिला। भोपालगढ़ राजस्थान से धर्मेंद्र छिपा, कपिल छिपा, पूजा परिहार। सिंधी बुजुर्ग महाराष्ट्र से किशोर वर्तड़कर, शुभम वर्तड़कर, पुन्नू वर्तड़कर। और पन्ना टॉकीज नेफा नगर मध्य प्रदेश से सुदर्शन शाह, पल्लवी शाह, प्रखर शाह, कुशल शाह, नीति शाह, सुरभि शाह, अश्विन शाह, मंगलाबेन शाह और राजेंद्री शाह ने भी हमें इस गीत के लिए ईमेल किया। राहुल नगर अमरावती से सिद्धार्थ गोंडा ने, अर्चना गोंडा ने, प्रणय प्रसिद्धि, महेश रामटेके और प्रतिभा गोंडा ने भी हमें ईमेल किया। और सेक्टर 67 मोहाली चंडीगढ़ से टीरी मल्होत्रा, ऋतिक मल्होत्रा, प्रतीक

मल्होत्रा, अनिल शर्मा, जयवीर सिंह, डॉक्टर अमनदीप, कालका से शुभचंद बाजार, साहिल बाजार और बिट्टा बाजार, सिद्धेश्वर नगर यवतमाल से रामटेके, यशोधरा रामटेके और श्रव्या रामटेके, बटिंडा रोड डबलवाली से राजेंद्र नारंग, अंजू नारंग, मोहित नारंग और तानिया नारंग, अहमदनगर बजरनीहा।

अहमदनगर बजरनिया से हैं बदरुद्दीन अंसारी, मुश्ताक सुलेमानी, सलीम आज़ाद और मल्लू अंसारी। और ये हैं ग्राम कुंडावला तारापोस लार रोड स्टेशन देवरिया उत्तर प्रदेश से रतिना त्रिपाठी, राखी आर्या, इंद्री, ओमनाथ, नारंग, शिवांग, रोली, अदिति और माताजी निर्मला त्रिपाठी। तो आप सबकी फरमाइश पर 16 साल फिल्म का ये गीत सुनते हैं।

वडिंगखेड़ा पंजाब से मिंटू टोमस, पिंकी लवली, आरती अरोड़ा। बागपत उत्तर प्रदेश से संजय ढिंगिया, नमन ढिंगिया। और इसी गीत की फरमाइश आई वार्ड नंबर 1 पोफाली से जयराम सिंगड़कर, दिशांत कुमार सिंगड़कर, साथ में अर्पिता जी। भानमेड़ा मंगलवार से हेमंत पटौदी, उमंग पटौदी, मोक्ष पटौदी, भरतराम पटौदी और जयंत पटौदी। कलानौर से हैं नरेंद्र शर्मा, किरण शर्मा, नितिन और मयंक शर्मा। एयरपोर्ट रोड वंदना नगर इंदौर मध्य प्रदेश से नारायण खर्चे, ललिता खर्चे, गणेश खर्चे, कीर्तिका खर्चे, परी खर्चे, खुशी खर्चे, वंदना खर्चे और स्वाति प्रयाग चौधरी। एकता कॉलोनी रोहतक से सीताराम कांगड़ा, बबीता बोत, निखिल कांगड़ा और तन्वी बोत। इसी गीत को सुनना चाहते हैं पांडर कवड़ा से अनिल बुरांडे, उषा बुरांडे, अनुश्री और धनश्री बुरांडे। बलहार शाह से हैं सूरज लोड़े, प्राची लोड़े, एकलव्य लोड़े। बाजार रोड मुंगीसापुर से हैं मोहम्मद जाकिर मंसूरी, कमरू निशा, साबिस्ता पलक, लुबीना यश मंसूरी। बिलासपुर छत्तीसगढ़ से छन्नूलाल, अनीता, पुष्पा, रंजन और हेमंत नामदेव। और खैल बाजार पानीपत से नरेंद्र मल्होत्रा, नीटू, लक्ष्य मल्होत्रा, लाडो कोयल मल्होत्रा, पापा जी नानकचंद मल्होत्रा। ग्राम पजौनिया जिला जालौन से सत्येंद्र कुमार चंसौलिया, आदर्श सार्थक आलौकिक चंसौलिया। संबलपुर कांकेर से फागुराम यादव, ज्योति यादव और ओजस्वी यादव। तो आप सबकी फरमाइश पर आइए सुनते हैं जंगली फिल्म के इस गीत को।

और अब इस कार्यक्रम की आखिरी फरमाइश पूरी करते हैं और बताते हैं कि किन श्रोताओं ने इस गीत को सुनना चाहा। मोहम्मद रफ़ी की आवाज़ में जंगली फिल्म का ये गीत, हसरा जयपुरी की रचना, शंकर जयकिशन का संगीत और पसंद आप सब श्रोताओं की। कुम्हार गली कोलगांव से पांडु चंदन, उषा चंदन, प्रतीक्षा चंदन और प्रथमेश चंदन के साथ साथ पांडुरंग कुम्हार। मजनू का टीला से कमल बालूजा, मधु बालूजा, उमंग मलिक, आकांक्षा मलिक और माही मलिक।

आज जंगली फिल्म के इस गीत के साथ ही आज का ये कार्यक्रम यही संपन्न करने की दीजिए अनुमति अपनी रेडियो सखी किरण सिंह को। नमस्कार।

अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम फरमाइशी गीत एक्सप्रेस। ये आकाशवाणी का वाराणसी केंद्र है। कुछ ही पलों में सुनिए हमारा NCERT द्वारा प्रायोजित कार्यक्रम।

0: उमंग सीआईईटी प्रस्तुत करता है
1: उमंग उमंग उमंग उमंग।
2: कीजिए स्वीकार। नमस्कार, विमलेश का उमंग कार्यक्रम में
3: और अजीत का भी जोहर। गांव गणेश धाम परसुली पोस्ट खेरथा बाजार जिला बालोद छत्तीसगढ़ से जितेंद्र दास मानिकपुरी, मिलव दास, जय दास, देवेश दास, धनवंतीन बाई और मोतीम बाई मानिकपुरी जी ने सुविचार भेजा है। लिखते हैं,
2: तन और मन के स्वास्थ्य के लिए योग एक बेहतरीन टॉनिक है।
3: बहुत बहुत धन्यवाद आप सबका इस सुंदर विचार के लिए। जी हाँ, सच है, तन और मन के स्वास्थ्य के लिए योग एक बेहतरीन टॉनिक है। आइए अब सुनते हैं श्रोताओं के नाम जिन्होंने हमें भेजा है संदेश।
2: ग्राम चरौदाबार नवापारा अभ्यारण्य जिला बालोद छत्तीसगढ़ से नंद कुमार ठाकुर, प्रमिला ठाकुर, खुशबू और ज्योति ठाकुर।
3: और छत्तीसगढ़ रूपापाली बसना से हीरालाल जगत, देवेश, ब्रिजेश जगत और एकता लावण्य कश्यप।
2: पलारी छत्तीसगढ़ से नितेश कुमार देवांगन।
3: और माँ महामाया चौक मेघापारा लोरमी से रामकुशल पटेल, संतोषी पटेल, दीपांशु पटेल, दिव्या पटेल, दीपांजलि पटेल, दीपक पटेल और टेकलाल पटेल।
2: और छत्तीसगढ़ पलारी से ही प्रकाश वर्मा, निखिल वर्मा, प्रिंस वर्मा और यशस्वी वर्मा।
3: बहुत बहुत धन्यवाद श्रोताओं संदेश भेजने के लिए। एक बार फिर से आपका स्वागत है श्रृंखला ये भी जानिए की अगली कड़ी में। श्रोताओं, जैसा कि आप जानते हैं, इस सप्ताह हम बात कर रहे हैं पेड़ पौधों की अनूठी और रहस्यमयी दुनिया के बारे में।
2: पिछले दो दिनों में हमने जाना था पेड़ पौधों के बीच के संचार की व्यवस्था के बारे में। आज हम बात करेंगे एक और रोचक विषय पर।
3: जी हाँ श्रोताओं, आज हम जानेंगे दुनिया के कुछ ऐसे पेड़ों के बारे में जो हजारों हजार वर्षों से जीवित हैं। आपको ये जानकर आश्चर्य होगा कि ये पेड़ मिस्र के पिरामिडों से भी पुराने हैं। और भारत में सिंधु घाटी की सभ्यता जब अपने विकास के प्रारंभिक चरण में थी, उससे भी पुराने ये पेड़ हैं।
2: जी, ऐसे तो बहुत से वृक्ष हैं, लेकिन सबसे अधिक ज्ञात वृक्षों में से एक है ग्रैन एबियलो। वैज्ञानिक अनुमान के अनुसार इसकी आयु 5000 वर्ष से भी अधिक मानी जाती है। ये लैटिन अमेरिका के चिली देश में है। ये नॉन क्लोनल पेड़ है। अजीत जी, श्रोताओं को ये भी बता दें कि नॉन क्लोनल पेड़ किसे कहते हैं।
3: विमलेश जी, वैज्ञानिक वर्गीकरण के अनुसार नॉन क्लोनल पेड़ उसे कहते हैं जिसका एक ही तना होता है। इसके तने से कई और नए तने नहीं निकलते हैं, यानी ये अपना क्लोन नहीं बनाते हैं। सरल उदाहरण से समझिए, यदि एक आम का पेड़ एक गुठली से उगा और 200 वर्षों या एक निश्चित अवधि तक जीवित रहा तो ये नॉन क्लोनल पेड़ है, क्योंकि इसके तने से कोई और नया पेड़ नहीं उगा। लेकिन इसके विपरीत,
2: क्लोनल पेड़ों में एक ही मूल वृक्ष से कई नए तने और पौधे निकलते रहते हैं। जैसे भारत में मुख्य रूप से पाए जाने वाला बरगद का पेड़, ये पेड़ अपना प्रतिरूप या क्लोन बना लेता है। बरगद की शाखाओं से ही बहुत सारी हवाई जटाएं निकलती हैं, ये भूमि तक पहुंच जाती हैं और उनसे फिर नई शाखाएं निकलने लगती हैं। बांस भी क्लोनल पेड़ों में गिना जाता है, क्योंकि इसके प्रकंदों से कई नए नए बांस के पौधे पनपने लगते हैं।
3: जी विमलेश जी, जब बरगद के पेड़ की बात आई तो मुझे अपने देश के ग्रेट बैनियन ट्री की भी याद आई। ये कोलकाता के आचार्य जगदीश चंद्र बोस इंडियन बोटेनिकल गार्डन में स्थित है।
2: बिल्कुल।
3: बताते हैं कि इसकी आयु 300 से भी अधिक वर्ष आंकी गई है।
2: जी।
3: हवाई जटाओं या एरियल रूट्स के कारण ये पेड़ इतना फैल चुका है कि देखने में एक विशाल जंगल की तरह दिखाई देता है। है तो ये एक ही पेड़, लेकिन इसने अपने हजारों क्लोन बना लिए हैं।
2: जी अजीत जी, विशालता की दृष्टि से एक अद्भुत पेड़ है। इसका मूल तना बिजली गिरने से नष्ट हो गया था, लेकिन अपनी हजारों सहायक जड़ों के कारण ये आज भी जीवित है। जी, तो आज हम बात कर रहे थे दीर्घजीवी पेड़ों के बारे में। एक और पेड़ है जिसका नाम है मतुशेलाह। ये अमेरिका के कैलिफोर्निया में है। इसकी आयु लगभग 4,850 वर्ष से भी अधिक मानी जाती है। ये ग्रेट बेसिन ब्रिसल पाइन कोन प्रजाति का पेड़ है। ये मानव जाति के अधिकांश लिखित इतिहास से भी पुराना माना जाता है।
3: माना जाता है श्रोताओं कि इस पाइन वृक्ष का अंकुरण संभवतः 2,800 ईसा पूर्व हुआ होगा। विमलेश जी, हम बात कर रहे हैं पेड़ों की आयु की, तो हमारे श्रोताओं के लिए ये जानना भी बहुत रोचक होगा ना कि पेड़ों की आयु भला कैसे आंकी जाती है।
2: जी अजीत जी, पेड़ों की आयु को जानने के लिए कई वैज्ञानिक तरीके हैं। सबसे पहला तरीका है पेड़ों के वार्षिक वलयों की गिनती। इन वलयों को ट्री रिंग

0: भी कहते हैं। आपने किसी कटे हुए पेड़ के तने को यदि देखा होगा कि उसमें कई वलय, छल्ले या रिंग्स दिखाई पड़ते हैं।
1: जी, माना जाता है कि एक छल्ला एक वर्ष को दिखाता है। पेड़ के तने में जितने छल्ले होंगे उसकी आयु लगभग उतने वर्षों की होगी। लेकिन विमलेश जी, फिर तो किसी पेड़ की आयु को जानने के लिए उसे काटना होगा।
0: जी नहीं अजीत जी, ऐसी बात नहीं है। इसके लिए वैज्ञानिक एक विशेष विधि से तने के भीतर से पतली लकड़ी का नमूना निकालते हैं और उसका अध्ययन करते हैं। इससे पेड़ों को काटना नहीं पड़ता।
1: और हाँ श्रोताओ, कभी कभी तने की परिधि से भी पेड़ की उम्र का अंदाजा लगाया जाता है। इसके लिए उस पेड़ की वृद्धि की औसत दर का पता लगाना पड़ता है। विमलेश जी, एक और विधि है जिसे हम रेडियो कार्बन डेटिंग कहते हैं।
0: जी अजीत जी, बहुत पुराने या विशेषकर मृत पेड़ों की लकड़ी के नमूनों से वैज्ञानिक उसकी उम्र का पता लगाते हैं।
1: तो श्रोताओ, आपको बता दें कि पेड़ों के वलय मात्र उम्र ही नहीं बताते बल्कि ये भी बताते हैं कि किसी विशेष वर्ष में मौसम कैसा था। चौड़े वाले रिंग्स संकेत देते हैं कि उस वर्ष में अच्छी वर्षा हुई थी, जबकि सकरे वाले सूखा या मौसम की प्रतिकूल परिस्थितियों का संकेत देते हैं।
0: तो श्रोताओ, ये थी हमारी आज की जानकारी विश्व के कुछ दीर्घजीवी पेड़ों के बारे में। साथ ही साथ हमने चर्चा की उनकी आयु जानने की विधियों के बारे में। अब आज का प्रश्न, आज की ही जानकारी से,
1: आज का प्रश्न है क्लोनल और नॉन क्लोनल वृक्षों का एक एक उदाहरण दीजिए। प्रश्न एक बार फिर से सुन लीजिए।
0: क्लोनल और नॉन क्लोनल वृक्षों का एक एक उदाहरण दीजिए।
1: 8800440559 है हमारा IVRS नंबर और audio@cit.nic.in है हमारे ईमेल का पता। संदेश जरूर भेजिएगा।
0: आप इंस्टा, फेसबुक, एक्स और लिंक्डइन पर भी हमें फॉलो कर सकते हैं। इससे आपको CIET NCERT के बारे में ताज़ा जानकारी मिलती रहेगी।
1: और आइए अब सुनते हैं आज के शैक्षिक कार्यक्रम। हमारा पहला कार्यक्रम है भारत तू है सबसे प्यारा।
0: हिंदी की पाठ्य पुस्तक की एक कविता पर आधारित इस कार्यक्रम में भारत भूमि के गौरव और विविधता का बड़े सुंदर ढंग से वर्णन किया गया है और बताया गया है क्यों हमारा देश सभी अन्य देशों से अनूठा है।

भारत तू है सबसे प्यारा। प्यारे बच्चों, अभी आपने सुना ये सुंदर गीत, आशा है आपको जरूर पसंद आया होगा। आपने आज अपने देश भारत के बारे में बहुत सी अच्छी बातों को सुना। आपने सुना भारत की नदियों, समुद्रों, अन्न, फल और फूलों के बारे में। सच में कितना सुंदर है ना हमारा देश। अब जरा सोचिए, अपने देश भारत की और कौन कौन

0: सी बातें आपको बहुत अच्छी लगती हैं? सोचिए और हमें लिख भेजिए। आप हमें audio@ciet.nic.in पर अपना संदेश भेज सकते हैं। अब एक और बात, जरा बताइए कि क्या आपने भारत पर कुछ और भी कविताएं सुनी हैं? यदि सुनी हैं, तो उन कविताओं का संकलन कीजिए और अपने मित्रों के संग मिलकर उसका पाठ कीजिए। अभी आपने सुना कार्यक्रम भारत तू है सबसे प्यारा, और अब सुनते हैं कार्यक्रम उत्तर वैदिक काल।
1: इस कार्यक्रम में उत्तर वैदिक काल के बारे में विस्तार से बताया गया है, विशेषकर उस समय की शासन व्यवस्था और संस्कृति की चर्चा की गई है।
2: आर्य लोग जब भारत में आए तो भारत का अधिकतर भाग जंगलों से ढका हुआ था। यहाँ कुछ लोग पहले से रहते थे।

आर्यों ने उन्हें दस्यु या दास कहा है। आर्य लोग मुख्यतः पशुपालक थे। ये लोग अपने साथ गाय, बैल, भेड़ बकरियां और घोड़े लेकर आए थे। आर्यजन पहले पहले आज के पंजाब, हरियाणा और राजस्थान के कुछ भागों में आकर बसे थे। इस क्षेत्र में सरस्वती नाम की एक नदी बहती थी जिसमें सदा जल रहता था। यह नदी अब सूख गई है। ऋग्वेद की अधिकतर ऋचाओं की रचना इसी नदी के तट पर हुई थी।

इस काल में समाज चार वर्णों में बंटने लगा था। ये वर्ण हैं ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र।

सामवेद, यजुर्वेद और अथर्ववेद की रचना भी इसी उत्तर वैदिक काल में हुई। ब्राह्मण, आरण्यक और उपनिषद ग्रंथों की रचना भी इसी समय हुई थी। आर्यों का जीवन घुमक्कड़ी दशा से स्थायित्व की ओर बढ़ रहा था। कृषि अब उनका प्रमुख धंधा बन गया था। आइए चलते हैं उत्तर वैदिक काल के आर्यों की दुनिया में।

0: काली और लाल दोनों मटकियां तोड़ दिए। हाँ
1: अरे धृताची,
2: हाँ भैया।
1: तू खड़ी खड़ी क्या कर रही है? जा दूध से भरी मटकी माँ को दे। अरे
2: अच्छा
0: अरे अरे देवदत्त, तुम उस घोड़े को संभालो, अरे उसने खूंटा उखाड़ लिया है।
1: नहीं तात, ये काम आप प्रवाहन को ही सौंपिए, मैं बकरी के इस नवजात बच्चे को संभाल रहा हूँ।
3: अरे अरे मगर भाई, ये क्या हो रहा है आज? अभी तक सभी लोग पशुओं की बातचीत में ही लगे हो। इन्हें चराने नहीं ले जाना क्या? अब तो सूरज भी निकलने वाला है। अरे देवदत्त,
1: जी
3: तुम्हारा वो नया खेत बनाने का काम पूरा हुआ या नहीं?
1: पिताजी, बस थोड़ा सा ही काम बाकी है। वो उस खेत में बहुत झाड़ झंकार थे ना, तो उन्हें काटते काटते हमारी लोहे की कई कुल्हाड़ियां टूट गई। यज्ञ दत्त उन्हें ठीक करवाने बढ़इयों और लोहारों के घर गया है, उसके आते ही हम खेत चले जाएंगे।
3: ठीक है ठीक है। और हाँ, तुम वो बड़े बैलों वाली गाड़ी भी ले जाना।
1: जी पिताजी।
3: उसमें रखकर कुछ शीशम के लट्ठे ले आना।
1: ठीक है।
3: टूटे बाड़े को भी ठीक करना है। कल वो काला घोड़ा वहां से निकल भागा था।
1: जी पिताजी, गाड़ी तो हमने पहले ही तैयार कर ली है।
3: अरे प्रवाहन।
0: जी पिताजी।
3: तो मुझे बहुत सुस्त और ढीले लग रहे हो।
0: वो पिताजी,
3: अजीत और हरिराज भी ढीले हो गए हैं। तुम्हारे खेतों की जुताई भी अभी पूरी नहीं हुई। कुछ पता भी है? कार्तिक महीने के भी कुछ दिन चढ़ गए हैं।
0: जी वो
3: तुम्हारे चाचा के परिवार ने तो अपने खेतों में गेहूं और जौ बो भी दिए हैं।
0: पिताजी, हमारे खेत भी गेहूं और जौ की बुआई के लिए तैयारी समझिए, बस एक दो जुताई और करनी है। क्यों अजीत?
4: हाँ हाँ पिताजी, इस बार मैंने बहुत ज्यादा काम किया है। और इस साल हमारी उड़द और धान की खेती बहुत अच्छी हुई है। अरे हाँ, अब तक तो हम उसकी कटाई और मड़ाई में ही लगे रह गए थे। क्यों देवदत्त?
1: हाँ हाँ पिताजी।
0: और पिताजी, हम तो अपने साथ हरिराज शत्रु मर्दन को भी ले जा रहे हैं।
4: हाँ।
0: आज हम चार चार बैलों वाले तीन हलों से जुताई करेंगे। खेत बस तैयारी समझिए।
3: नहीं नहीं, हरिराज और शत्रुमर्दन तुम्हारे साथ नहीं जाएंगे खेतों में।
0: जी?
3: उन्हें कल हस्तिनापुर जाना है।
4: पर क्यों पिताजी?
3: वहां महाराजाधिराज जन्मेजय ने यज्ञ का आयोजन किया है। इन्हें तो जाने की तैयारी करनी होगी। वहां रथों की दौड़ भी होगी।
4: पिताजी, हमारे जाने की पूरी तैयारी हो गई है।
0: जी पिताजी।
4: हमारा रथ और घोड़े दोनों तैयार हैं।
3: बहुत अच्छा।
4: और हाँ पिताजी, हमने अपने घोड़ों को भी खूब खिलाया पिलाया है, और पता है अब तो वो भी बहुत फुर्तीले हो गए हैं।
0: पिताजी, देवों की इच्छा हुई तो रथों की दौड़ में इस बार हम ही जीतेंगे।
4: हाँ पिताजी, हम ही जीतेंगे।
3: देव तुम पर अवश्य प्रसन्न होंगे। देखो, तुम लोग अपने साथ कुछ गेहूं, जौ और चावल ले जाना।
4: जी पिताजी।
3: सम्राट ने यज्ञ के अवसर पर भंडारा भी चला रखा है।
4: अच्छा पिताजी।
3: सभी वर्णों के लोग भोजन कर रहे हैं। यही नहीं, गुरुकुलों के ब्रह्मचारी, गृहस्थ और साधु सन्यासी भी यज्ञ में बुलाए गए हैं।
0: अच्छा पिताजी, हमने अन्न के साथ साथ महाराज को भेंट देने के लिए माँ के द्वारा बुना हुआ उत्तरीय भी रख लिया है। बहन धृताची ने इस उत्तरीय पर सोने के तारों से बहुत सुंदर कढ़ाई भी की है।
3: हाँ।
2: ये मेरा नाम क्यों लिया जा रहा है और कौन कहाँ जा रहा है?
3: आओ पुत्री आओ, तुम्हारे ये भाई हस्तिनापुर जा रहे हैं।
2: अच्छा पिताजी, इनसे मेरे लिए सोने के कंगन मंगवा दीजिए ना। सुना है हस्तिनापुर के सुनार बहुत सुंदर कंगन बनाते हैं।
0: चल चल बढ़िया ही कंगन वाली। पिछले वर्ष तो तुझे सोने के कुंडल और हार ला कर दिए थे मैंने।
5: और क्या,
0: अब कुछ नहीं लाऊंगा। हाँ
2: मेरे अच्छे भैया, मेरे प्यारे भैया, देखो मैं तुम दोनों का कितना ध्यान रखती हूँ। मैंने छुपा छुपा कर तुम्हारे घोड़ों को घी भी पिलाया है।
0: अच्छा अच्छा, चल ठीक है, ले ही आएंगे। अब तो खुश।
3: अरे ये तो खुश हो गई, पर तुम अपनी तैयारी पर ध्यान दो। हाँ, अपने हथियारों को ठीक ठाक करके रख लो।
0: जी पिताजी।
3: कल सूर्योदय से पहले ही चल देना। आजकल इस रास्ते वाले वन में शेरों, चीतों और तेंदुओं का आतंक कुछ ज्यादा ही हो गया है। अंधेरा होने से पहले ही वन पार करके अपनी बुआ के गांव पहुंच जाना।
0: जी पिताजी, हमने लोहे की फाल वाले भाले और लोहे की नोक वाले पहले तीर भी रख लिए हैं। भला हमारे इन तीरों के सामने वो क्या टिकेंगे।
4: और पिताजी, एक परिव्राजक के द्वारा हमने अपने फुफेरे भाइयों को भी सूचित कर दिया है, वो भी हमारे साथ रथों की दौड़ में हिस्सा लेने जाएंगे।
0: भैया, सुना है इस बार रथों की दौड़ में भाग लेने के लिए कौशल, काशी और विदेश से भी रथ आ रहे हैं।
4: हाँ।
0: इस बार कुछ ज्यादा ही बड़ा आयोजन है।
3: हाँ ये तो है।
5: हाँ, हाँ, हाँ, बड़ा आनंद आएगा।
6: और शुरू हो गई रथों की दौड़।

0: इस बार तो हमारा रथ ही जीतेगा।
1: अरे हमने भी पूरी तैयारी की है,
0: याद है पिछले वर्ष रथों की दौड़ में कितना आनंद आया था। मित्र क्या इस बार भी तुम्हारे गांव का वही रथ दौड़ाने वाला आया है?
1: अरे नहीं भाई नहीं, इस बार दूसरा रथ दौड़ाने वाला आ रहा है। गांव में होने वाली प्रतियोगिता में तो उसने सबको पीछे छोड़ दिया था।
0: चलो देखते क्या होता है।
2: सुने सुने सुने, यज्ञ के आयोजन के इस अवसर पर अब प्रारंभ होती है रथों की दौड़।
3: अरे वो देखो वो देखो,
0: क्या
3: रथ की दौड़ शुरू हो गई। अरे वो देखो तो रेस शुरू हो गई।
0: अरे क्या बांके और सजीले सवार है।
3: वाह वाह वाह वाह वाह वाह, देखो देखो वो देखो बीच वाला रथ
2: पहुंच गया।
4: इस वर्ष के रथों की दौड़ के आयोजन में विदेह का रथ विजेता घोषित किया जाता है।

ये आयोजन सिर्फ मनोरंजन के लिए नहीं था, इसमें राजा की शक्ति की परीक्षा भी होती थी। उत्तर वैदिक काल में राज्यों का विस्तार हो रहा था। राजा की शक्ति, पदवी और दबदबा बढ़ गया था। करों की वसूली होने लगी थी। राजकोष में खूब धन जमा होने लगा था। राजकाज चलाने में पुरोहित, सेनापति, रानियां और कुछ अन्य अधिकारी भी मदद करते थे। ग्राम पंचायतें प्रशासन संभालती थी। राजा को गांव से बड़ी मदद मिलती थी। उत्तर वैदिक काल में राजा की कोई स्थायी सेना नहीं होती थी। युद्ध के मौके पर गांव और कबीलों से लोगों को इकट्ठा करके सेना बनाई जाती थी। शिक्षा के लिए बालकों को गुरुकुल में जाना पड़ता था। गुरुकुल वनों के शांत और सुरम्य स्थानों पर बनाए जाते थे।

0: गुरुकुल के सभी ब्रह्मचारी मेरी बात को ध्यान से सुने, सावधान होकर सुने, क्योंकि मैं आपको एक बहुत ही महत्वपूर्ण समाचार दे रहा हूं। और समाचार ये है कि आज शाम तक आचार्य शाकल्य यहां पहुंच जाएंगे। उनके स्वागत का पूरा प्रबंध कर लिया गया है, ये तो आप जानते ही हैं, लेकिन उसी बात को दोहराने के लिए मैं यहां इसलिए उपस्थित हूं क्योंकि मैं चाहता हूं कि हमारे आश्रम की जो प्रतिष्ठा और परंपरा रही है वो सर्वदा बनी रहे। इसके लिए जरूरी है कि स्वागत कार्य के लिए जिस ब्रह्मचारी को जो भी कार्य सौंपा गया है उसे पूरा करने के प्रयास में तुरंत लग जाए। अंत में मैं धन्यवाद कहूंगा कि आपने मेरी बात को पूरी शांति से सुना और समझा, धन्यवाद।
1: मित्र, कुलपति का आदेश सुना तुमने?
2: कैसा आदेश मित्र, मुझे तो कुछ भी नहीं सुनाई पड़ा। मैं तो ब्रह्म सत्यम जगत मिथ्या में ही उलझा था कि आज एक और समस्या आ गई। गुरुजी कह रहे हैं पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते, अर्थात पूरे में से पूरा निकाल देने पर भी पूरा ही बच जाता है।
1: भोले ब्रह्मचारी, अब इस उलझन को छोड़ो और कुलपति के आदेश पर ध्यान दो और आचार्य शाकल्य के स्वागत की तैयारी में लग जाओ। सुना है आचार्य आयुर्वेद आदि अनेक विद्याओं के पंडित हैं।
2: अच्छा,
1: वे हमारे गुरुकुल में कुछ दिन रहकर छात्रों को इन विषयों की

0: तेज शिक्षा देंगे।
1: अरे वो देखो कितना सुंदर घोड़ा है।
2: अरे हाँ चलो पास से देखते हैं।
1: चलो चलो।
2: अरे देखो कितना अच्छा घोड़ा।
0: वाह
2: हाँ
0: इसकी काठी तो देखो कितनी सुंदर है।
2: इसे पकड़ लेते हैं। हाँ इसे पकड़ लेते हैं। चलो
0: चलो।
2: अरे वाह। अरे अरे चलो इसे पकड़ लेते हैं।
1: ये पकड़ा।
0: अरे ये कोलाहल कैसा है?
3: छोड़ दो छोड़ दो। ये महाराजा धीराज जन्मेजय का अश्वमेध यज्ञ का घोड़ा है। तुम्हें इसके मस्तक पर सम्राट का विजय पत्र नहीं दिखा? इस घोड़े की सुनहरी लगाम और काठी तो दूर से दिख जाती है। छोड़ दो छोड़ दो। शीघ्र छोड़ दो नहीं तो हमारे तीरों के तीखे प्रहार सहने पड़ेंगे।
0: अरे ये तो हमारे गुरुकुल के एक क्षत्रिय कुमारों ने घोड़े को पकड़ रखा है। अरे अरे इन पर तो सैनिकों की चेतावनी का भी कोई असर नहीं हो रहा है।
1: अरे चलो चलो भाग चले। आचार्य को बता दे कहीं क्षत्रिय कुमार सैनिकों से युद्ध ही ना कर बैठे।
0: अरे रुको तो सही। अरे देखो देखो
1: क्या
0: आचार्य तो वहीं पहुंच गए हैं। और हाँ वो देखो आचार्य की आज्ञा मानकर क्षत्रिय कुमारों ने उस घोड़े को छोड़ भी दिया है।
1: अच्छा हुआ संकट टल गया। अब ये सैनिक इस घोड़े को सारे राज्यों में घुमाकर हस्तिनापुर ले जाएंगे।
0: हाँ।
1: जहाँ अश्वमेध यज्ञ करके महाराज जन्मेजय चक्रवर्ती सम्राट बन जाएंगे।
0: हाँ।
1: उनका प्रभाव कीर्ति और ख्याति चारों दिशाओं में फैल जाएगी।
4: और इसी तरह राजा की शक्ति और सत्ता धीरे धीरे बढ़ती गई।

0: कबीले के सरदार से वो चक्रवर्ती सम्राट बने, फिर उनके बेटे सम्राट बने और फिर उनके बेटे। इस तरह राज पीढ़ी दर पीढ़ी चलता रहा। उत्तर वैदिक काल धीरे धीरे समाप्त हो गया और ये सम्राट एक काल को दूसरे काल से जोड़ते चले गए।
1: अभी आपने सुना कार्यक्रम उत्तर वैदिक काल, और इसी के साथ अब हमारा आज का उमंग कार्यक्रम यहीं पर समाप्त होता है। तो अपने मित्र अजीत
2: और विमलेश को तकनीकी टीम के साथ कल तक के लिए आज्ञा दीजिए।
1: नमस्कार।
3: उमंग उमंग उमंग उमंग।
4: अभी आप सुन रहे थे NCERT द्वारा प्रायोजित ये कार्यक्रम। ये आकाशवाणी का वाराणसी केंद्र है। थोड़ी देर में आप सुनेंगे कार्यक्रम सुगम संगीत।
5: उपभोक्ताओं तक पहुंचने का सुलभ और सस्ता माध्यम है आकाशवाणी।
6: आकाशवाणी के विभिन्न केंद्रों से कीजिए अपने उत्पादों और सेवाओं का प्रचार विज्ञापनों के माध्यम से।
5: लोकल और राष्ट्रीय स्तर पर कीजिए अपने बिजनेस का विस्तार, क्योंकि आकाशवाणी में विज्ञापन बुकिंग हुई बहुत ही आसान।
6: अब घर, दफ्तर या दुकान पर बैठे बैठे आप कर सकते हैं विज्ञापनों की बुकिंग।
5: डायल कीजिए
7: 0542227658।
6: नंबर एक बार फिर नोट करें
8: 0542227658।
4: आप जुड़े हैं आकाशवाणी के वाराणसी केंद्र के साथ। प्रस्तुत है सुगम संगीत। आज की कलाकार हैं सुहानी शुक्ला। कार्यक्रम के आरंभ में आपके स्वर में प्रस्तुत है कबीर दास की ये रचना।

सुगम संगीत के कार्यक्रम में आज आप सुन रहे हैं सुहानी शुक्ला के गाए भजन। कबीरदास की रचना के बाद अब कार्यक्रम में प्रस्तुत है मीराबाई की एक रचना सुहानी शुक्ला के स्वर में।

अभी आप सुन रहे थे सुगम संगीत। कलाकार थी सुहानी शुक्ला। मीराबाई की इस रचना के साथ ही आज का सुगम संगीत का ये कार्यक्रम अब यही संपन्न होता है। इनके गाए भजनों को आप सुगम संगीत के कार्यक्रम में रात 8 बजे भी सुन सकते हैं। ये आकाशवाणी का वाराणसी केंद्र है। हमारा अगला कार्यक्रम बस थोड़ी ही देर में।

मुझे याद कर कभी श्रद्धा से झुक जाए अगर तुम्हारा सर, तो मान लेना तुम्हारे भीतर ही है मेरा होना। कभी मेरी राह पर चलते हुए चोट खाओ, रुक जाओ फिर भी चलो, तो मान लेना मैं हूं, मैं था, मैं रहूंगा। आकाशवाणी वाराणसी से प्रत्येक शुक्रवार गांधी चर्चा कार्यक्रम में सुबह 6:25 पर सुनिए बापू की आत्मकथा सत्य के प्रयोग का धारावाहिक पाठ।

मीडियम वेव 241.54 मीटर अर्थात 1242 किलोहर्ट्स, डीटीएच डीआरएम 1233 किलोहर्ट्स और मोबाइल ऐप न्यूज़ ऑन एआईआर पर यह है आकाशवाणी का वाराणसी केंद्र। प्रस्तुत है शास्त्रीय संगीत। शास्त्रीय संगीत के आज के कार्यक्रम में आइए सुने उपशास्त्रीय गायन। कलाकार हैं आशीष कुमार मिश्र। कार्यक्रम के आरंभ में आइए सुने राग खमाज में ठुमरी।

शास्त्रीय संगीत के कार्यक्रम में आज आप सुन रहे हैं उपशास्त्रीय गायन। कलाकार हैं आशीष कुमार मिश्र। अभी आप सुन रहे थे राग खमाज में ठुमरी। और कार्यक्रम के आखिर में आइए सुनते हैं राग पहाड़ी में दादरा।

0: शास्त्रीय संगीत के कार्यक्रम में आज आप सुन रहे थे उपशास्त्रीय गायन। अभी कार्यक्रम के आखिर में आप सुन रहे थे राग पहाड़ी में दादरा। इसके साथ ही आज का हमारा शास्त्रीय संगीत का ये कार्यक्रम यहीं संपन्न होता है। आज के कलाकार थे आशीष कुमार मिश्रा, आपके साथ तबले पर संगति प्रीतम कुमार मिश्रा की थी। ये आकाशवाणी का वाराणसी केंद्र है। स्टूडियो की घड़ी में दिन का 1 बजने वाला है। हिंदी में समाचार होगा दिल्ली केंद्र से बस थोड़ी देर में।
1: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं कनकलता। भारत और ऑस्ट्रेलिया ने दोहराया है कि बदलते जटिल रणनीतिक माहौल में रक्षा और सुरक्षा सहयोग दोनों देशों के बीच साझेदारी का प्रमुख आधार है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री एंथनी अल्बनीज ने रक्षा और सुरक्षा सहयोग पर संयुक्त घोषणा पत्र जारी किया है। ये दोनों देशों के द्विपक्षीय रक्षा और सुरक्षा संबंधों में एक महत्वपूर्ण बदलाव को दर्शाता है। घोषणा पत्र में दोनों नेताओं ने भारत ऑस्ट्रेलिया समुद्री सुरक्षा सहयोग रोडमैप के माध्यम से समुद्री सहयोग को और मजबूत करने पर सहमति व्यक्त की। मेलबर्न में संयुक्त वक्तव्य में प्रधानमंत्री मोदी ने शांतिपूर्ण, स्थिर और समृद्ध हिंद प्रशांत क्षेत्र के लिए साझा दृष्टिकोण में समुद्री सहयोग को रेखांकित किया।
2: भारत और ऑस्ट्रेलिया दो वाइब्रेंट डेमोक्रेसीज हैं, दो मल्टी कल्चरल सोसाइटीज हैं और दो महत्वपूर्ण ओशन पावर्स हैं। हमारी ये समानताएं और हमारा कॉमन वर्ल्ड व्यू हमें गहरे आपसी विश्वास के साथ निरंतर आगे बढ़ने की प्रेरणा देते हैं। आज तीसरी एनुअल समिट से हमारे सहयोग में कई नए आयाम जुड़े हैं।

0: ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री एंथनी अल्बनीज ने रक्षा, सुरक्षा और शिक्षा के क्षेत्र में हुए समझौते का उल्लेख किया। उन्होंने बताया कि भारत के लिए यूरेनियम आपूर्ति सुनिश्चित करने पर और सेनाओं के बीच अंतर संचालन क्षमता को बढ़ाने पर सहमति व्यक्त की गई। इससे पहले प्रधानमंत्री मोदी और ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री अल्बनीज ने भारत ऑस्ट्रेलिया मुख्य कार्यकारी अधिकारी मंच और आर्थिक कार्य योजना कार्यक्रम को संबोधित किया। इस अवसर पर प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि भारत ऑस्ट्रेलिया साझेदारी एक परिवर्तनकारी उच्च तकनीकी युग में पहुंच गई है। उन्होंने वर्ष 2030 तक 100 अरब डॉलर के द्विपक्षीय व्यापार को गति देने के लिए एक दूरदर्शी कार्य योजना प्रस्तुत की। ऑस्ट्रेलिया सुपर के 500 मिलियन ऑस्ट्रेलियाई डॉलर के निवेश का भारत ने स्वागत किया है। मेलबर्न में कंपनी के मुख्य कार्यकारी अधिकारी पॉल शोडर ने इसकी घोषणा की। ऑस्ट्रेलिया भारत बिजनेस काउंसिल के प्रमुख सदस्य विश्व विश्वनाथन ने मेक विथ इंडिया पहल के बढ़ते असर पर जोर दिया। ये समूह रणनीतिक कॉरपोरेट पार्टनरशिप को बढ़ावा देकर ऑस्ट्रेलिया में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मेक इन इंडिया दृष्टिकोण को लागू करने का काम कर रहा है। भारत के ब्रिक्स अध्यक्षता में ब्रिक्स परिवहन मंत्रियों की तीसरी बैठक आज महाराष्ट्र के नागपुर में शुरू होगी। इस बैठक में ब्रिक्स सदस्य देशों के मंत्री और वरिष्ठ अधिकारी शामिल होंगे। इसमें परिवहन क्षेत्र और बुनियादी ढांचे जैसे मुद्दों पर चर्चा होगी। ये बैठक भारत की ब्रिक्स अध्यक्षता की थीम बिल्डिंग फॉर रिजिलियंस इनोवेशन कोऑपरेशन एंड सस्टेनेबिलिटी के तहत आयोजित की जा रही है। केंद्र सरकार ने केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर में अंत्योदय अन्न योजना परिवारों से आने वाले कक्षा 9 से 12 तक के विद्यार्थियों के शुल्क को पूरी तरह से माफ करने की मंजूरी दी है। स्कूल शिक्षा विभाग द्वारा जारी एक आदेश में कहा गया है कि यह निर्णय तत्काल प्रभाव से लागू होगा। इसका उद्देश्य आर्थिक रूप से कमजोर परिवारों पर वित्तीय बोझ कम करने और पढ़ाई जारी रखने के लिए उन्हें प्रोत्साहित करना है। गृहमंत्री अमित शाह ने अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के स्थापना दिवस पर परिषद के सभी कार्यकर्ताओं को बधाई दी है। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री शाह ने कहा कि स्वामी विवेकानंद के आदर्शों का अनुसरण करते हुए ये संगठन विद्यार्थियों को संगठित करने और युवाओं में देशभक्ति की भावना का प्रसार करने का कार्य कर रहा है। मौसम विभाग ने अरुणाचल प्रदेश, असम, मेघालय, बिहार, पूर्वी राजस्थान, मध्य प्रदेश, पश्चिम बंगाल के तराई क्षेत्रों, सिक्किम और पश्चिमी उत्तर प्रदेश में आज तेज बारिश का ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। कर्नाटक के तटीय भाग, पूर्वी उत्तर प्रदेश, गांगेय पश्चिम बंगाल, गुजरात, हरियाणा, चंडीगढ़ और दिल्ली में भी दिन में तेज बारिश की संभावना है। हिमाचल प्रदेश, केरलम, माहे, कोंकण, गोवा, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा, पंजाब, दक्षिण कर्नाटक के भीतरी भाग, तमिलनाडु, पुदुचेरी, कारेकाल और उत्तराखंड में भी आज इसी तरह के मौसम की संभावना है। घरेलू शेयर बाजार के संवेदी सूचकांक में दोपहर के सत्र में आधे प्रतिशत से अधिक की बढ़त देखी गई। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: यह आकाशवाणी का वाराणसी केंद्र है। प्रस्तुत है कार्यक्रम विवरण और खोए हुए व्यक्तियों के संबंध में सूचना। पहले आइए दे देते हैं आपको खोए हुए व्यक्तियों के संबंध में सूचना। ये पहली सूचना कार्यालय पुलिस अधीक्षक जनपद चंदौली से प्राप्त है। इस सूचना के अनुसार मीरा देवी जो पति हैं जयप्रकाश पाल की, निवासी हैं गोड़ टुटवा थाना नौगढ़ जनपद चंदौली की। मीरा देवी की उम्र है 29 वर्ष, लंबाई 5 फुट 2 इंच, रंगूरा और चेहरा लंबा है। ये 15 जून 2026 सुबह 8:30 बजे के करीब घर से निकली, फिर लौट के नहीं आई। साथ में एक इनके साथ बच्चा भी है। घटना वाले दिन आपका पहनावा साड़ी था। यदि आपके संबंध में कोई भी सूचना मिले तो नज़दीकी थाना, थाना नौगढ़ जनपद चंदौली अथवा इस नंबर पर भी दे सकते हैं। नंबर है 9277257049। अगली सूचना सोनाली यादव के संबंध में है। सोनाली यादव के पिता राजेश यादव उर्फ गुड्डू यादव हैं, निवासी हैं लोहरा थाना मुगलसराय जनपद चंदौली के। सोनाली यादव की उम्र है 19 वर्ष, लंबाई 5 फुट 3 इंच, रंग सांवला और चेहरा गोल है। ये 4 अप्रैल 2026 भोर में सुबह 4 बजे से लापता हैं। घटना वाले दिन आपका

पहना हुआ काले रंग का सलवार सूट था। यदि इनके संबंध में आपको कोई भी सूचना मिले तो नज़दीकी थाना या थाना मुगल सराय जनपद चंदौली अथवा इस नंबर पर भी सूचना दे सकते हैं। नंबर है 6280261869। खोए व्यक्तियों के संबंध में सूचना अब यहीं संपन्न होती है। कार्यक्रम विवरण के अंतर्गत आइए हम आपको दे दें आज हमारे केंद्र से प्रसारित होने वाले शेष प्रमुख कार्यक्रमों की संक्षिप्त जानकारी। शाम 4 बजे सुनिएगा कार्यक्रम संदेश टू सोल्जर्स। ये कार्यक्रम हम अपने दिल्ली केंद्र से रिले करेंगे। शास्त्रीय संगीत के कार्यक्रम में रात 10:30 पर सुनिएगा बांसुरी वादन। कलाकार होंगे पंडित हरिप्रसाद चौरसिया। आपकी फरमाइश पूरी होगी आपकी पसंद कार्यक्रम में रात 10 बजे। गैर फिल्मी गीतों और गजलों का कार्यक्रम अंजुमन हम लेकर आएंगे रात 9:30 पर। और कहकशा सुनिएगा दिन में 2:30 पर। रात 8 बजे सुगम संगीत के कार्यक्रम में कलाकार होंगी सुहानी शुक्ला। कृषि जगत कार्यक्रम में शाम 6:30 पर किसान भाई सुनेंगे बातचीत। कार्यक्रम होगा हेलो कृषि जगत। साथ में सुनिएगा लोक गीत। कलाकार होंगे नंदलाल राम और साथी। इनके गाए लोकगीत आप दिन में 1:45 पर भी सुन सकेंगे। युवा साथियों का कार्यक्रम युवाणी हम लेकर आएंगे रोज की तरह शाम 5:15 पर, जिसमें होगी आज की बात, मेरी पसंद, यूथ डायरी, इतिहास में आज का दिन, सूचना जानकारी और भी बहुत कुछ। कुमाऊनी लोकगीत आप सुन सकेंगे धरती के गीत कार्यक्रम में शाम 5 बजे। और अब से थोड़ी देर बाद बहनों का कार्यक्रम होगा अंगनैया, जिसमें चर्चा, गीत संगीत के अलावा बहनें सुनेंगी बातचीत। विषय होगा महिलाओं में स्वच्छता और स्वास्थ्य के प्रति जागरूकता। इस विषय पर बातचीत होगी डॉक्टर विजय यादव से। और फिल्म संगीत का कार्यक्रम रसरंग हम लेकर आएंगे शाम 7:31 पर। और रसमाधुरी सुनिएगा रात 8:15 पर। कार्यक्रम विवरण में ये थी संक्षिप्त जानकारी आज हमारे केंद्र से प्रसारित होने वाले शेष कुछ प्रमुख कार्यक्रमों की। ये आकाशवाणी का वाराणसी केंद्र है। स्टूडियो की घड़ी में दिन के 1:10 होने वाले हैं। इलाकाई खबरों का प्रसारण होगा लखनऊ केंद्र से बस थोड़ी देर में। कृपया प्रतीक्षा करें।

0: ये आकाशवाणी लखनऊ है। इलाकाई खबरों के साथ मैं आमिर हुसैन सिद्दीकी। वज़ीर-ए-आला योगी आदित्यनाथ ने आज बांदा में 710 करोड़ रुपए के 229 तरक्याती प्रोजेक्टों का इफ्तिताह किया और संगे बुनियाद रखा। इस मौके पर उन्होंने मुख्तलिफ स्कीमों से मुस्तफीद होने वालों को चेक्स और सर्टिफिकेट तकसीम किए। प्रोग्राम से खिताब करते हुए उन्होंने कहा कि डबल इंजन वाली हुकूमत की बदौलत बुंदेलखंड में बेहतरी आई है, पीने का पानी दस्तयाब है, नई तरक्याती स्कीमें बुंदेलखंड तक पहुंच चुकी हैं, आज समाज की तमाम तबकात बिला तफरीक स्कीमों से मुस्तफीद हो रहे हैं। वजीर आला ने मजीद कहा,
1: नौजवान को प्रदेश के अंदर ही सरकारी नौकरियों या निजी क्षेत्र में निवेश की संभावना के माध्यम से रोजगार और नौकरी मिलने या उसके द्वारा स्वतः अपना रोजगार स्थापित करने के कार्यक्रम का ही परिणाम है कि अब बुंदेलखंड का नौजवान अब प्लान नहीं करता है, अब उसको अपने घर में कार्य मिलता है, सम्मान मिलता है।
0: वजीर आला योगी आदित्यनाथ ने कल चित्रकूट में 951 करोड़ रुपए के 124 तरक्याती प्रोजेक्टों का इफ्तिताह किया और संगे बुनियाद रखा। तकरीब से खिताब करते हुए वजीर आला ने कहा कि मरकजी और रियासती हुकूमतें समाज के हर तबके की तरक्की के लिए काम कर रही हैं। उन्होंने मजीद कहा कि चित्रकूट में अब सरमायाकारी आ रही है।

0: जिससे जिले की तरक्की में तेजी आई है।
1: अब निवेश यहाँ भी आ रहा है, क्योंकि अब भय नहीं है, अब तो निवेश का वातावरण है। 4 लेन की सड़कें हैं, एक सुंदर चित्रकूट हम सबके सामने है और वह आज हम सबको यहाँ पर देखने को मिल रहा है। आज तो यहाँ पे हम लोग एक पर्यटन के नए केंद्र के रूप में, यानी ये आध्यात्मिक टूरिज्म तो था ही, अब इको टूरिज्म के भी एक नए केंद्र के रूप में इसको विकसित करने के लिए हम लोगों ने यहाँ पे रानीपुर टाइगर रिजर्व को भी यहाँ पे के लिए आगे बढ़ाने का कार्य प्रारंभ किया है।
0: अयोध्या में श्री राम जन्मभूमि मंदिर के नजराने में मुबैना बेजाबतगियों की तहकीकात करने वाली पुलिस टीम ने कल 3 मुलजमीन अनुकल्प मिश्रा, लवकुश मिश्रा और करुणेश पांडे को रिमांड पर लेकर पूछताछ की। पुलिस तीनों मुलजमीन के साथ 14 कोसी परिक्रमा के रास्ते पर भी गई। इस दौरान कई संतों ने श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट के खजांची गोविंद देवगिरी से मुलाकात की। मीटिंग के बाद महंत राजकुमार दास ने कहा कि आने वाले दिनों में ट्रस्ट में बड़ी तब्दीलियां होंगी, जिनकी तफसीलात ट्रस्ट की तरफ से जल्द ही शेयर की जाएंगी। लखनऊ में ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती लैंग्वेज यूनिवर्सिटी का 11वां कन्वोकेशन कल मुनक्किद हुआ, जिसकी सदारत रियासत की गवर्नर आनंदी बेन पटेल ने की। राज्यसभा MP डॉक्टर सुधांशु त्रिवेदी ने इस तकरीब में बतौर मेहमान खसूसी शिरकत की। तकरीब में 1246 तलबा को डिग्रियां तकसीम की गईं। शहरी हवाबाजी के मरकजी वजीर के राम मोहन नायडू ने कहा है कि वाराणसी हवाई अड्डे के नए टर्मिनल पर मुल्क का पहला 6 लेन वाला अंडरपास बनाया जा रहा है। एक सोशल मीडिया पोस्ट में उन्होंने बताया कि 450 मीटर लंबा यह अंडरपास नेक्स्ट जनरेशन के बुनियादी ढांचे का हिस्सा है, जहां हवाई जहाज ऊपर चलते रहेंगे जबकि नीचे ट्रैफिक चलता रहेगा। महकमा जंगलात ने रियासत में 12 जुलाई को मुनक्किद होने वाली शजरकारी मुहिम के लिए तमाम तैयारियां मुकम्मल कर ली हैं। इस मुहिम के तहत 350 मिलियन पौधे लगाने का हदफ है। इस मकसद के लिए रियासत भर में 2600 से ज्यादा नर्सरियों में 576 मिलियन पौधे तैयार किए गए हैं। प्रयागराज पहुंचे नायब वजीर आला केशव प्रसाद मौर्य ने कहा कि हुकूमत की कोशिशों से रियासत के जंगलाती रकबे में नुमाया इजाफा हुआ है।
2: पूरी दुनिया इस समय ग्लोबल वार्मिंग के संकट से जूझ रही, और इस बार 35 करोड़ जब हमारे यहाँ पेड़ लग जाएंगे, जब से 9 साल में हम लोग 275 करोड़ पेड़ लगाने का रिकॉर्ड, 35 करोड़ का इस बार का लक्ष्य है, उससे ज्यादा ही लगते हैं जितना लक्ष्य होता है, तो यह हम लगाने का काम करेंगे। उत्तर प्रदेश एक ऐसा राज्य है, वन आच्छादन का जो क्षेत्र है वो घटा नहीं, वो बढ़ा है।
0: कल की बारिश से राजधानी लखनऊ और रियासत के कई दीगर अजला में रहने वालों को गर्मी से राहत मिली है। इस दौरान गोरखपुर समेत कई मशरकी अजला में हल्की बूंदाबांदी जारी है। हवाओं के बावजूद इस खत्ते में नमी बरकरार है। दरियासना महकमा मौसमियात ने रियासत के बेशतर अजला के लिए 3 दिन की शदीद बारिश का अलर्ट जारी किया है। इसके साथ ही आकाशवाणी लखनऊ से इलाकाई खबरों का ये बुलेटिन ख़त्म हुआ। अगला बुलेटिन दोपहर 2 बजे FM पर नशर किया जाएगा।

यह आकाशवाणी का वाराणसी केंद्र है। मीडियम वेव 241.54 मीटर अर्थात 1242 किलोहर्ट्ज़, डीटीएच डीआरएम 1233 किलोहर्ट्ज़ और मोबाइल ऐप न्यूज़ ऑन एआईआर पर। थोड़ी देर में बहनें सुनेंगे अपना कार्यक्रम अंगनैया।

0: अंगनैया कार्यक्रम सुने वाली सब बहिनी लोगन के गुंजा का नमस्ते और संगे संगे लाजो तोहू के नमस्ते।
1: नमस्ते गुंजा दीदी और साथे में देखा अपन कार्यक्रम सुनने वाली भी सब बहनी लोगन के हमार नमस्ते।
0: तो लाजो देखा था ना कुछ दिना से दो मनसा जात हुए।

0: बाकी घेरा तो हवे लेकिन बरसात ना हवे।
1: एकदम दीदी।
0: ऐसने में देखा हो मौसम तो बदलत हो और संगे संगे हम लोगन के बरखा बुन्नी का जो इंतजार हो तो हइए हो। कभो कभो बरस जात हुन तो मन लहलहा जात हो लेकिन बाकी जब रुक जात हुन तो ऐसन उमस ऐसन गरम कि बस मत पूछा, हाल तो
1: दीदी
0: एकदम बेहाल हो जात हो।
1: एकदम दीदी। और देखा बरसरे के बाद जो घाम कर देवत है ना उसे तो शरीर एकदम चुनचुना जाता हो,
0: हाँ
1: मन करत हो कि बस पंखा के नीचे बैठला रही। पानी बरसा तो होकर तो मजा लेता है बहनी लोगन, लेकिन देखा एकरे साथे साथे अपने स्वास्थ्य का भी पूरा ध्यान रखे के हो।
0: हाँ हो लाजो भाई, अब स्वास्थ्य का ध्यान ना रखल जाई ना तो तनके तनके में तो देखते हो पड़ जातो मनई। कहे से कि बरखा बुन्नी का दिन ऐसा होला ना कि अगर इनमें साफ सफाई ना रखल जाए, ध्यान ना देहल जाए तो अपन स्वास्थ्य सबसे जल्दी प्रभावित होला।
1: एकदम दीदी। देखिए यही से ना कहा जाला कि अगर पहले से ही मौसम के समझ के चेत के रहल जाए, ओकरे हिसाब से पहनल ओढ़ल अपन खान पान रखल जाए ना तो मौसम से होए वाले दुष्प्रभाव से बचल जा सकाला। आ देखा घरे में अपने घर परिवार लेकिन बच्चन का देखभाल तो करल बहनी लोगन का ही जिम्मेदारी होला।
0: एकदम
1: और कहे से कि देखा छोट लेकिन बच्चन हन उनके इतना समझ तो नहीं हो कि उनके का करे के चाहिए का ना करे के चाहिए, लेकिन जब वो स्कूले जात हैं ना तो देखा वो स्कूले से पानी बरसत तो उधर से भिजत के आवत हैं, कहीं बरसात का पानी इकट्ठा तो उनमें से खेलत कूदत के आवत हैं। यही सब से देखा यही सब कारण हो जेकरे कारण बीमार पड़ जाता है यान।
0: भाई लाजो तुहार बात तो बड़ा नीक कहो और सही कहलू है भाई कि लइकन बच्चन जब स्कूले जात हुअन अगर मान ला बरखा बरस गए तो वही में भीजल भाजल चलल आवत हुअन, कहियों कहियों पानी भी भरा जाता तो वही में लइकन बच्चन ही थोड़ी देखत हुअन कि हमारे स्कूले का कपड़ा खराब हो तो बस्ता
1: हाँ।
0: खराब हो तो वो तो वही में छपर छपर करत भल चलल आवत हुअन
1: लेकिन
0: आके घर में बीमार पड़ जाते हुए।
1: और देखा जब वो भिजत के आवत है ना दीदी तो बहनी लोगन की चाहिए कि उनके स्वास्थ्य का ध्यान रखे। सबसे पहले तो उनके साफ पानी से पहले नहवा देवे और ओकरे पास ओके अच्छे से सूखा कपड़ा से उनका जो गीला बाल हो के सुखवा के अच्छे से तेल लगवा के उनकी गरम गरम अच्छा मतलब जौन इस समय मौसमी फल साग सब्जी वो खिलाएं जिससे उनका रोग प्रतिरोधक क्षमता मजबूत होए।
0: एकदम सही कहलू है। और जानत हो ना चाहे बरखा बुन्नी का दिन हो चाहे कौनो मौसम हो पढ़ाई लिखाई अपन करल जरूरी हो।
1: एकदम
0: और
1: दीदी।
0: छोट लइकन के लिए तो खास कर कहे से कि भाई ये पढ़ाई लिखाई उनकर आगे जाके भविष्य बनाई, ए लिए कुल जनी का पढ़ल लिखल जरूरी हो। लेकिन का करल जाए मौसम हो तो ऐसने में लइकन बच्चन के स्कूल भेजे के पड़त हो, लेकिन बहनी लोगन इतनी चेत के भेजे कि अगर छतरी हो घरे में तो छतरी लेके भेजे, नहीं तो सही समय पे स्कूल के छुट्टी होए के पहले पहुंच जाए ताकि अपन लेकिन बच्चन के सही समय से सही से घर लिया में। कहे से कि भाई लोग माने लन नहीं, ये लोग बहरे या तो बरखा में भींगिए या तो फिर बहरे जो खुलल सामान मिला तो ना ओके खाई है ओसे अपन तबियत खराब।
1: एकदम दीदी। देखा खाए का बात करो तो लेकिन बच्चन के बहरे का इस मौसम में तो बिल्कुल ना खाए दे। कैसे देखा बरसात के मौसम में ना बीमारी का खतरा ज्यादा रहला, इस समय मच्छर मक्खी बहुत ज्यादा बीमारी का खतरा फैलावल। यही से जब भी अपन लइकन बच्चन के देवे तो घरे का बनावल खाना देवे और पूरा साफ सफाई से बनाए और साथे में खाए पिए वाले चीज के तो हमेशा ढक के ही रखें। अपने घरे के साथे साथे अपने आस पास में गली में भी साफ सफाई रखें। कहे से कि बस घर साफ सफाई के लिए से बीमारी का खतरा कम ना होला।
0: हाँ।
1: मेन बीमारी तो देखा घरे से बहरे आप लोग आवत जात हो वही ढंग से शुरू होला।
0: तो लाजो हो देखा ढेर का जानकारी आज बहनी लोगन के बताए देलू तू, अब इन्हीं लोगन भी एक एक करत रही है। बाकी अपने कार्यक्रम में आगे के बढ़े के पहले ये जो जरूरी संदेश है सुन लेवल जाए।
2: डेंगू मलेरिया चिकनगुनिया जैसे रोग संचारी रोग होते हैं, इनसे बचने के लिए घर के दरवाजे और खिड़कियों पर जाली लगवाएं, मच्छरदानी का प्रयोग करें, पानी की टंकी को ढक कर रखें, पूरी बांह वाले कपड़े पहने, कूलर की नियमित सफाई करें और अन उपयोगी वस्तुओं में पानी ना जमा होने दें।
3: अधिक जानकारी के लिए टोल फ्री हेल्पलाइन नंबर 1800-1805-145 पर कॉल करें।
2: राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन उत्तर प्रदेश द्वारा जनहित में जारी।
4: एक प्रकार से पीएम जय अब गरीबों की जय बन गई है।

0: आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के तहत लगभग 60 करोड़ लोग बने हैं 5 लाख रुपए के मुफ्त उपचार के हकदार। अब तक 12 करोड़ से भी ज्यादा मुफ्त उपचार किए जा चुके हैं, जिससे गरीब परिवारों के चिकित्सा खर्च में लगभग 2 लाख करोड़ रुपए की बचत हुई। आज ही आयुष्मान ऐप डाउनलोड कर आयुष्मान कार्ड बनाएं। ज्यादा जानकारी के लिए 1-4-5-5-5 पर कॉल करें।
1: आकाशवाणी वाराणसी से प्रत्येक सोमवार से शुक्रवार तक दिन

0: 12 बजे सुनिए NCERT द्वारा प्रायोजित कार्यक्रम।
1: सुनो ना।
2: हाँ?
1: सोच रहा हूँ अपना बिजनेस क्यों ना बढ़ा लूँ।
2: तो रोका किसने है? हाँ?
1: रोका तो किसी ने नहीं, पर समझ नहीं आ रहा कि मदद किससे मांगू।
2: मुझसे।
1: तुमसे? तो अच्छा बताओ फिर।
2: आकाशवाणी है ना, मैंने सुना है उसका नेटवर्क देश भर में फैला है।
1: पर उससे मेरा क्या फायदा?
2: देखो फायदा है, जिस शहर में चाहो विज्ञापन की मदद से उपभोक्ताओं तक पहुंच जाओ।
1: पर अब ये भी तो बता दो कि आकाशवाणी से संपर्क कैसे करूं?
2: बहुत आसान है, मैं बताती हूँ। नंबर नोट करो
3: 0542227658।
0: 0542227658।
1: लो अभी फोन लगाता हूँ।
0: 0542227658।
4: तलाजो।
5: हाँ दीदी।
4: देखा हो इस अनेस के पहले हम लोगन बतियावत रहली ना कि इस मौसम में कैसे अपन स्वस्थ रहे के चाहे, कैसन रहन सहन रखे के चाहे।
5: हाँ।
4: तो आज बत कही भी देखा हम लोगन लेके आवल गए लो बहनी लोगन के लिए अपने कि महिला लोगन स्वच्छता और स्वास्थ्य के प्रति कैसे जागरूक बने। एपे देखा डॉक्टर विजय यादव से निशा यादव का बत कही हो, तो सुन लेवल जाए।
5: हाँ, बहनी लोगन सुने।
6: कार्यक्रम सुनने वाले सभी सखियों को निशा का प्यार भरा नमस्कार। सखियों, हमारे समाज में एक बहुत पुरानी और खूबसूरत कहावत है, एक लड़का पढ़ता है तो एक व्यक्ति पढ़ता है, लेकिन जब एक लड़की पढ़ती है तो पूरा परिवार पढ़ता है। ठीक इसी तरह आज मैं इसमें एक और बात जोड़ना चाहती हूँ कि जब घर की एक महिला स्वस्थ रहती है तो पूरा परिवार और पूरा समाज स्वस्थ रहता है। लेकिन सवाल ये है कि क्या हमारी माँ, बहनें और हमारी बेटियां सचमुच अपने स्वास्थ्य को लेकर जागरूक हैं? क्या वे अपनी सेहत को अपनी प्राथमिकताओं में सबसे ऊपर रखती हैं? शायद नहीं। आज इसी जरूरी विषय पर बात करने के लिए हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं डॉक्टर विजय यादव जी। डॉक्टर साहब, आपका बहुत बहुत स्वागत।
7: जी जी नमस्कार, और आपके सभी श्रोताओं को भी मेरा सादर प्रणाम। आज आपने एक ऐसा विषय चुना है जिस पर कि हमारे समाज में बंद कमरों में भी बात करने से लोग कतरा।
6: डॉक्टर साहब, जब हम महिला स्वास्थ्य या स्वच्छता की बात करते हैं तो अक्सर लोग इसे सिर्फ बीमारी न होने से जोड़कर देखते हैं। आप एक डॉक्टर के नजरिए से इसे कैसे परिभाषित?
7: बड़ा महत्वपूर्ण प्रश्न आपने किया है कि विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO भी कहा कि स्वास्थ्य का मतलब सिर्फ बीमारी का होना नहीं, स्वास्थ्य का असली मतलब है कि शारीरिक, मानसिक और सामाजिक रूप से पूरी तरह से ठीक होना। महिलाओं के मामले में यह और भी खास होता है। एक महिला का शरीर जीवन के अलग अलग चरणों से गुजरता है, जैसे किशोरावस्था, मासिक धर्म, गर्भावस्था, प्रसव और फिर मोनोपॉज यानी कि 40 वर्ष के बाद की जो स्थिति। इन सभी चरणों में उनके शरीर में भारी हार्मोनल बदलाव, इसीलिए महिलाओं का स्वास्थ्य सिर्फ उनके व्यक्तिगत जीवन का हिस्सा नहीं है, यह पूरे समाज की नींव है। अगर नींव कमजोर होगी तो उस पर बनी इमारत कैसे सुरक्षित?
6: बिल्कुल सही कहा सर आपने। और नींव की बात से मुझे एक बात और याद आई कि स्वास्थ्य की शुरुआत तो बचपन या किशोरावस्था से ही हो जाती है।
7: जी,
6: हमारे देश में आज भी लड़कियों को उनके पहले पीरियड यानी कह लें कि मासिक धर्म के बारे में पहले से कोई जानकारी नहीं दी जाती, इस पर आप क्या कहेंगे?
7: देखिए, हम दिन प्रतिदिन आधुनिक तो हो रहे हैं।
6: जी,
7: ये भौतिक बात के रूप से हम आधुनिक हो रहे हैं, लेकिन हमें मानसिक तौर पे भी आधुनिक बनना पड़ेगा। और यह आपने बेहद संवेदनशील और कड़वी सच्चाई पर अपने हाथ रखा। आज भी ग्रामीण इलाकों के साथ साथ शहरों में भी लगभग 50-60% लड़कियों को उनके पहले मासिक धर्म के आने तक इसके बारे में कुछ नहीं पता होता। और लड़कियां भी सोचती है कि इस अचानक आए बदलाव से वो कैसे बताए। उन्हें लगता है कि अगर घर परिवार में बताए कहीं कोई पाप न समझ ले। ये एक बड़ा ही गंभीर विषय है, और अगर नहीं बताने की स्थिति में वो गंभीर बीमारी के भी शिकार हो जाते हैं।
6: जी।
7: लेकिन यहाँ हमें समझना होगा कि मासिक धर्म कोई शर्म की बात नहीं है, ना ही कोई अशुद्धता है। यह इस बात का संकेत है कि लड़की का शरीर अब बड़ा हो रहा है और वह भविष्य में एक माँ बनने की क्षमता भी विकसित कर रही है। यह जीवन का एक सुंदर और स्वाभाविक चक्र है जो हरेक माताओं के अंदर में उस उम्र और उस अवस्था में उस दौर से वो गुजरती ही है।
6: और इस अज्ञानता के कारण ही अगर कहा जाए तो स्वच्छता से समझौता शुरू हो जाता है, और आज भी कई जगहों पर कपड़े का इस्तेमाल भी लड़के

0: कर रही हैं, तो इसके क्या नुकसान हैं?
1: देखिए, ऐसे भी भारत में हर तबका की जो आर्थिक स्थिति है बिल्कुल अलग है।
0: जी
1: जो संभ्रांत परिवार के लोग हैं वो तो ठीक हाइजीनिक का प्रयोग करते हैं,
0: जी
1: लेकिन आज भी गांव घर की जो औरतें हैं जो आर्थिक स्थिति से विपन्न हैं
0: जी
1: और जागरूकता के अभाव में वो कपड़ों का प्रयोग करते हैं। मैं कहता हूं ठीक है,
0: जी
1: जहां चीजें नहीं है वहां आप कपड़ों का इस्तेमाल करिए, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन वो भींगे नहीं बल्कि उसको अच्छे तरीके से उसको सुखा लें। आजकल देखिए बारिश का मौसम है,
0: जी
1: तेजी से जो है बारिश हो रही है। आप स्वाभाविक दृष्टिकोण से भी देखें, अगर आपका बिस्तरा या बेड भी अगर भींग जाता है,
0: जी
1: या
0: जी
1: आप तौलिया का सबसे अच्छा उदाहरण, घर में एक तौलिया है, तौलिया अगर भींग जाता है तो देखेंगे एक दुर्गंध या गंध आने लगता है। तो उसी तरह से महिलाएं भी अगर कपड़ों का इस्तेमाल कर रही हैं तो वो भींगे नहीं, अगर भींगे तो उसको आप पहले अच्छे तरीके से सुखा लें। और इसकी वजह से आज महिलाओं में यूटीआई और पेल्विक इन्फ्लेमेटरी डिजीज, और यहां तक कि भविष्य में बांझपन या गर्भाशय के कैंसर का खतरा कई गुना बढ़ जाता है। इसीलिए मेरी सलाह है कि हमेशा ही सैनिटरी पैड का इस्तेमाल जरूर करना चाहिए। अगर कहीं मजबूरी बस में कपड़ा इस्तेमाल करें तो मैंने कहा कि उसको अच्छे तरीके से तेज धूप में सुखा दें, क्योंकि धूप सबसे बड़ा सैनिटाइजर है।
0: जी सर, आपने कहा कि धूप सबसे बड़ा सैनिटाइजर है, और ये बात सही है क्योंकि अगर धूप में कपड़े सुखा लिए जाते हैं तो उसके जो बैक्टीरिया हैं वो
1: जी
0: मर जाते हैं।
1: जी
0: अच्छा डॉक्टर साहब, सैनिटरी पैड को बदलने को लेकर भी महिलाओं में बड़ी लापरवाही देखी जाती है। कुछ महिलाएं पूरा दिन एक ही पैड चला लेती हैं, ये कितना खतरनाक हो सकता है उनके लिए?
1: देखिए, ये तो बहुत ही खतरनाक स्थिति है,
0: जी
1: चाहे वो ब्लीडिंग जैसे खून का जो बहाव है कम हो या ज्यादा हो। एक महिला को एक सैनिटरी पैड मेरे हिसाब से 4 से 6 घंटे में बदल लेना चाहिए।
0: जी
1: अगर आप ऐसा नहीं करती हैं तो जमा हुआ खून बैक्टीरिया के पनपने के लिए सबसे मुफीद जगह बन जाता है, और जिससे त्वचा पे रेशे जैसे खुजली हुआ, दुर्गंध हुआ, गंभीर संक्रमण भी हो सकता है।
0: जी सर, सर एक और चीज़ बाजार में बहुत ज़्यादा बिकती है,
1: जी
0: वो होती है इंटीमेट वॉश, या कह लें कि खुशबूदार साबुन,
1: जी जी
0: जो महिलाओं के इंटीमेट पार्ट की सफाई के लिए बेचे जाते हैं, क्या इनका इस्तेमाल करना सही है?
1: एक साहित्य में है, मन्ना रंगाया जोगी रंगा लिया कपड़ा। ये तमाम चीजें कुछ भी कर लें, आखिर जो खुशबूदार चीजों का हम प्रयोग करते हैं अपने जो बैड बैक्टीरिया है, जो तमाम जो चीजें हैं उससे बचाने के लिए प्रयोग करते हैं, तो क्या आपको लगता है कि उस खुशबूदार चीजों को प्रयोग करने से वो चीजें तो ठीक नहीं होती?
0: जी
1: दरअसल ठीक तो तभी होगा जब इंटरनल रूप से हम उसको साफ सफाई करेंगे। तो जब आप तेज खुशबू वाले साबुन या तेल या इंटीमेट वास का इस्तेमाल करती हैं तो वह प्राकृतिक पीएच संतुलन उसे बिगड़ जाता है, इससे अच्छे बैक्टीरिया तो मर जाते हैं
0: जी
1: और संक्रमण का खतरा बढ़ जाता है। इसीलिए सिर्फ सादे और साफ पानी से सफाई ही करना सबसे सुरक्षित है और यही सबसे बेहतर तरीका है। बस ध्यान रखें कि सफाई हमेशा आगे से पीछे की ओर, यानी फ्रंट टू बैक करनी चाहिए, ताकि मलाशय के बैक्टीरिया मूत्र मार्ग तक ना पहुंचे।
0: जी अच्छा डॉक्टर साहब, अब थोड़ा बात कर लेते हैं महिलाओं के खान पान और पोषण पर।
1: जी
0: अक्सर देखा जाता है कि भारतीय घरों में महिलाएं सबको खिलाने के बाद खुद सबसे आखिरी में खाती, और जो कुछ बच जाता है उसी से काम भी चला लेती हैं, तो इस त्याग की भावना का उनकी सेहत पर क्या असर पड़ रहा है?
1: दरअसल होता क्या है ना, माँ तो माँ ही होती है ना, वो देखती है कि मैं अगर खा लेती हूँ तो कहीं मेरे बच्चों को घट ना जाए। ये जो सुपर वुमेनशिप का जो कॉन्सेप्ट है उनके दिमाग में, ये चीज तोड़ना पड़ेगा। शरीर एक मशीन है, वो ये नहीं देखता है कि कोई पुरुष है या महिला है।
0: जी
1: जहां कमजोर दिखाई पड़ेंगे उस पर बीमारी अटैक करेंगे। एक देखिए, एक बड़ा रिसर्च है, विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO भी कहता है कि स्वास्थ्य का मतलब सिर्फ बीमारी का होना नहीं है, स्वास्थ्य का असली मतलब होता है कि शारीरिक, मानसिक और सामाजिक रूप से पूरी तरह से ठीक होना।
0: जी
1: महिलाओं के मामले में यह और भी खास हो जाता है। एक महिला का शरीर जीवन में अलग-अलग चरणों से गुजरता है, जो कि मैं आपको पहले ही बताया, ठीक है? तो उस स्थिति में बहुत सारे ऑर्गेन्स

0: समय के अनुसार वो कमजोर होने लगता है, और उस परिस्थिति में अगर सही रूप से अगर हम उनका पोषण नहीं करेंगे उन अंगों का, ऑर्गेन्स का, तो फेलो साबित होंगे और बीमार।
1: सर यानी कि जो ये महिलाओं में त्याग की भावना है उसकी वजह से उनमें बहुत सारी मतलब बीमारियां भी हो सकती हैं या उन्हें कमजोरी हो सकती है, एनीमिया हो सकता है। तो इस एनीमिया या खून की कमी को दूर करने के लिए महिलाओं को अपनी डाइट में क्या शामिल करना चाहिए? कोई महंगी चीज बाहर से ले आनी चाहिए या फिर जो घर में आसानी से ऐसी कोई चीज आप बता दीजिए जो उन्हें मिल जाए?
0: देखिए, भारतीय परंपरा में
1: जी
0: समाज का जो बंटवारा कई भागों में किया गया है, जो उच्च वर्ग के लोग हैं
1: जी
0: उनके पास तो सभी सुविधाएं उपलब्ध हैं, लेकिन जो निम्न वर्ग के लोग हैं उनके पास सुविधाओं का अभाव है, और मध्यवर्गीय बेचारे कहीं न कहीं वो संघर्ष करते दिखते हैं। मुझे लगता है कि बिल्कुल महंगी चीजों की कोई जरूरत ही नहीं है। हमारे आसपास जो कुछ भी मौजूद है, खास करके निम्न वर्ग लोगों के परिप्रेक्ष्य में मैं कह रहा हूँ, उच्च वर्ग के लोग तो हर संभव जो उनको चाहिए वो पूरा कर लेंगे, लेकिन जिनके पास संसाधनों का कमी है तो कोई जरूरी नहीं है कि महंगी चीज ही खाएंगे तो हमारे शरीर में जो है आयरन या फोलिक एसिड या तमाम चीजों से पूर्ति होगी। हमारे इर्द गिर्द में जैसे आयरन से भरपूर जो चीजें हैं वो पालक है,
1: जी
0: आसानी से सब्जी मंडी में मिल जाता है, मेथी है, बथुआ है, हरी पत्तेदार सब्जियां हैं, गुड़ है, चना है, अनार है, चुकंदर और खजूर है
1: जी।
0: तो ये सब जो ऐसी चीजें हैं जो आसानी से हर जगह आपको मिल जाएंगे, और इसके साथ साथ ही विटामिन सी बहुत जरूरी है, तो विटामिन सी के बिना शरीर जो है आयरन को सोखता नहीं है। अब सवाल उठता है कि विटामिन सी के लिए क्या करें, तो आप कागजी नींबू का प्रयोग कर सकते हैं, आंवला का कर सकते हैं, संतरा का इस्तेमाल कर सकते हैं, अर्थात जो खट्टापन लिए हुए जो है
1: जिससे विटामिन सी,
0: हाँ विटामिन सी का सबसे बड़ा स्रोत है
1: जी।
0: और कागजी नींबू तो हर जगह उपलब्ध है, लेकिन एक चीज आपको ध्यान में रखना होगा, जो भी हमारी माता बहने सुन रही हैं
1: जी,
0: तो आप अगर चाय कॉफी पीने का लत है तो थोड़ा सा बर्दाश्त करें, क्योंकि शरीर है
1: जी,
0: और शरीर से बढ़ के कुछ नहीं है, शरीर है तो सब कुछ है। हमें अपने स्वास्थ्य को ध्यान में रखते हुए इन तमाम चीजों को हमें करते जाना है
1: जी, यानी कि अपने स्वास्थ्य के लिए सोचना है और स्वास्थ्यवर्धक चीजें खानी है
0: जी
1: जी। अच्छा सर, जीवन के जो हैं दो सबसे बड़े पड़ाव होते हैं,
0: जी जी,
1: एक जब महिला माँ बनने वाली होती है और दूसरा जब उसकी उम्र 45-50 के पार होती है और उसके पीरियड्स बंद होने वाले होते हैं, जिसे हम मोनोपॉज भी कहते हैं, तो इन दोनों समय में किस तरह की सावधानी और जागरूकता की कमी दिखती है?
0: देखिए, होता क्या है ना कि महिलाओं पे जब जिम्मेदारियां बढ़ना शुरू हो जाता है तो उनको लगता है कि मैं अपने लिए क्यों करूं
1: जी?
0: मेरे तो बच्चे हैं, छोटे छोटे बच्चे हैं, उनकी जरूरतें हैं, पतियों के भी कई नखरे होते हैं, ठीक है
1: जी।
0: अब दोनों काम कर रहे हैं लेकिन खाना बनाएंगी तो पत्नी
1: जी,
0: बच्चों के लिए दूध गर्म कर रही है, ठीक है, कुछ भी होगा तो पत्नी करेंगी। मैं पहले ही इसी वार्ता में आपसे मैं अनुरोध किया हूं कि भाई पति लोग भी थोड़ा साथ दें, तभी चीजें सही हो सकता है। और आपने जो प्रश्न पूछा है गर्भावस्था के बाद, ये बड़ी विकट समस्या है
1: जी।
0: क्योंकि 40 वर्ष के बाद जो हमारा जो बॉडी का स्ट्रक्चर है वो ढलान की ओर होता है
1: जी।
0: और उस स्थिति में जब शरीर कमजोर होता है तो एक साथ कई चीजें अटैक करना शुरू होता है, खास करके हड्डियों में D3 का कमी होता है, विटामिन की कमी हो जाती है, आयरन की कमी हो जाती है, फोलिक एसिड की कमी हो जाती है, थायराइड जैसे तेजी से बीमारियां बढ़ने लगती है। तो इस उम्र में अपने डाइट में खास करके कैल्शियम और विटामिन डी की मात्रा को बढ़ा देनी चाहिए, मखाना, रागी, तिल जैसी चीजें को खानी चाहिए और हर साल कम से कम एक बार अपनी पूरी बॉडी का जरूर चेकअप करवाना चाहिए
1: जी। अच्छा सर, आपने रूटीन चेकअप की बात की, तो महिलाओं में आजकल ब्रेस्ट कैंसर यानी कि स्तन कैंसर जो होता
0: जी,
1: है
0: जी, जी,
1: और सर्वाइकल कैंसर जो गर्भाशय के मुख का कैंसर
0: जी,
1: जाता
0: जी,
1: है, इसके मामले बहुत तेजी से बढ़ रहे हैं, क्या इनसे बचने का या इन्हें शुरुआती स्टेज में पकड़ने का, जानने का कोई तरीका है?
0: अमूमन ये समस्या समाज के हर आर्थिक और सामाजिक दायरे में देखने को हमको मिलता है
1: जी,
0: और कई लोग से तो हम रूबरू भी हुए, और सबसे बड़ी जो समस्या है ना वो जागरूकता की कमी है
1: जी।
0: ब्रेस्ट कैंसर की शुरुआती दौर

0: पकड़ने के लिए हर महिला को कम से कम 20 साल जब उनकी उम्र हो जाए तो उनको हर साल कम से कम चेकअप कराना चाहिए, और जब वो नहा रहे हों या कभी हों तो उनको ये समझना पड़ेगा कि हमारे शरीर में कहीं कोई अनावश्यक चीजें तो परिवर्तित दिखाई तो नहीं पड़ रही है। अगर दिखाई पड़ रही है तो तुरंत उनको उसका ट्रीटमेंट करना चाहिए। लेकिन यहाँ ध्यान ये रखना होगा कि हर गांठ कैंसर नहीं होता है, ठीक है, और 40 वर्ष की उम्र के बाद साल में एक बार मेमोग्राफी भी उनको करवा लेना चाहिए। इसी तरह से सर्वाइकल कैंसर से बचने के लिए आजकल 9 से 14 साल की बच्चियों के लिए HPV वैक्सीन भी लगवाई जा रही, और विवाहित महिलाओं को 3 साल में एक बार पैम्प स्मियर टेस्ट कराना चाहिए। यह एक बहुत सरल और दर्द रहित टेस्ट है जो कैंसर होने से सालों पहले ही उसके लक्षणों को पकड़ लेता है। तो हम किसी चीज का बीमारी के इंतजार क्यों करें, उससे पहले हम उसका निवारण कर लें।
1: जी डॉक्टर साहब, आप हमारे स्टूडियो में आए, इतनी महत्वपूर्ण जानकारी साझा की, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।
2: देखा दीदी, कितना निक का जानकारी का बात बहनी लोगों के सुनवाई लूगा कि महिलाओं में स्वच्छता और स्वास्थ्य के प्रति कैसे जागरूक रह के चाहिए। और देखा डॉक्टर भैया बतेला ना कि अगर बहनी लोगों के कोनो भी तरह का दिक्कत परेशानी हो जाए तो मैं शरमाए ना, सबसे पहले ओकर डॉक्टर के दिखाएं, इलाज जाँच कराएं, ओकर बाद ओकर इलाज कराएं।
3: तो लाजो, इतना नीक के जानकारी के बाद अब बहनी लोगन के ई नीक गीत सुनवा देवल जाए, और देखा बहनी लोगन के साथ साथ अपने भी सुनाई जाए।
2: दीदी सुनवा दा।

0: तलाजो।
1: हाँ दीदी,
0: बहनी लोगन के साथ गाना तो के कैसन लगल हो?
1: बड़ा निक का गाना रहा देखा दीदी, मन तो बहुत अच्छा से झूमे लगल। बहनी लोगन भी देखा सुन के झूमते हुई।
0: लेकिन जानत हो अब घड़ियों की ओर देख लेवल जाए। देखा घड़ी कहा तो कि अब हम लोगन के चले का समय हो गए, तो बहनी लोगन से विदा लेवल जाए। कहल जाए नमस्ते।

अभी आप सुन रहे थे हमारी ग्रामीण बहनों का कार्यक्रम अंगनैया। ये आकाशवाणी का वाराणसी केंद्र है। थोड़ी देर में सुनिए कार्यक्रम लोक संगीत। प्रस्तुत है कार्यक्रम लोक संगीत। आज के कलाकार हैं नंदलाल राम और साथी। आज के इस कार्यक्रम के आरंभ में प्रस्तुत है आपके स्वर में ये कहरवा।

अब भले भूल जाई केहू चोटला दरनवा।

आकाशवाणी के वाराणसी केंद्र से आप सुन रहे हैं लोक संगीत। आज के कलाकार हैं नंदलाल राम और साथी। अभी आपने सुना आपके स्वर में कहरवा। कहरवा के बाद अब कार्यक्रम में प्रस्तुत है ये दादरा।

0: of the BRICS Transport Working Group has begun in Nagpur today as part of the third BRICS Transport Ministers meeting under BRICS 2026 chairship of India. Addressing media persons after the working group meeting, Union Transport Secretary V. Umashankar said senior officials deliberated on the main issues of circularity, mobility, urban infrastructure, sustainable development. Similarly, best practices in the transport sector and transportation issues were discussed. Union Home Minister Amit Shah will chair a conference of superintendents of police, SPs from border districts in New Delhi today. Superintendents of police from border states and union territories, including Jammu and Kashmir, Punjab, Uttarakhand, Rajasthan, Gujarat, Uttar Pradesh, Bihar, West Bengal and the northeastern states, will participate in the conference. Apart from infiltration, illegal immigration and demographic changes, border security, drone threats and narcotics trafficking are expected to be discussed. The conference also takes place against the backdrop of the centre's decision to constitute a high-level committee a few months ago to examine the extent of demographic changes taking place in different parts of the country and identify the factors responsible for them. The Indian Pickleball Association has announced the Indian contingent in both men's and women's category to represent India in the pro category at the Pickleball World Cup 2026. The competition will be held at Da Nang in Vietnam from August 30th to September the 6th. Harsh Mehta, a recurring name on the international pickleball circuit, will be leading the charge. Arjun Singh, Anish Walian and Aman Patel have also made the cut in the men's category. Mika Yadav, Alia Ibrahim, Pearl Amal Sadiwala and Naomi Amal Sadiwala will make up the contingent on the women's side. Benchmark domestic equity indices were trading around 0.7% up in the afternoon session today. The Sensex climbed 565 points to 77,069, while the Nifty added 168 points to 24,050 when reports last came in. And now before we end the bulletin, the headlines once again. India and Australia signed landmark deals on uranium supply and dedicated critical minerals corridor. Australia-India partnership on cyber critical technologies and supply chains becomes operational. Prime Minister Narendra Modi holds annual summit with his Australian counterpart Anthony Albanese in Melbourne. Says bilateral relationship entered an expansive era anchored in deep mutual trust. Vice President C.P. Radhakrishnan unveils national mission for sustainable use of high seas fishery resources in Bhubaneswar. And with that, we end the midday news.
1: नमस्कार आकाशवाणी से दोपहर समाचार के साथ मैं कनकलता भारत और ऑस्ट्रेलिया ने यूरेनियम आपूर्ति और महत्वपूर्ण खनिज गलियारे पर ऐतिहासिक समझौतों पर हस्ताक्षर किए साइबर प्रौद्योगिकी और आपूर्ति श्रृंखलाओं पर ऑस्ट्रेलिया भारत साझेदारी की शुरुआत हुई प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री एंथनी अल्बनीज के बीच मेलबर्न में वार्षिक शिखर वार्ता श्री मोदी ने कहा द्विपक्षीय संबंध गहरे आपसी विश्वास पर आधारित विस्तृत युग में प्रवेश कर चुके हैं उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन ने भुवनेश्वर में खुले समुद्र के मत्स्य संसाधनों के सतत उपयोग के लिए राष्ट्रीय मिशन का अनावरण किया मॉनसून पूरे देश में सक्रिय लगातार बारिश से राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में जनजीवन प्रभावित उत्तराखंड राष्ट्रीय शिक्षा नीति के अंतर्गत वयस्कों के लिए निर्धारित साक्षरता मानकों को प्राप्त कर पूर्णतः साक्षर राज्य बना और वियतनाम में होने वाले पिकलबॉल विश्व कप 2026 के लिए भारतीय दल की घोषणा अब समाचार विस्तार से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री एंथनी अल्बनीज विक्टोरिया के गवर्नमेंट हाउस में आयोजित 30वें भारत ऑस्ट्रेलिया वार्षिक शिखर सम्मेलन में शामिल हुए बैठक के बाद प्रधानमंत्री मोदी और प्रधानमंत्री अल्बनीज ने संयुक्त वक्तव्य दिया हमारे संवाददाता ने बताया है कि दोनों नेताओं ने द्विपक्षीय संबंधों में आए परिवर्तनकारी बदलाव का स्वागत किया और क्षेत्रीय स्थिरता ऊर्जा सुरक्षा तथा प्रौद्योगिकी नवाचार के लिए व्यापक रूपरेखाओं को अंतिम रूप दिया
2: यह महत्वपूर्ण शिखर सम्मेलन एक ऐतिहासिक परिवर्तन को दर्शाता है जिसमें भारत और ऑस्ट्रेलिया मिलकर हिंद प्रशांत क्षेत्र के लिए एक मजबूत ढांचा तैयार कर रहे हैं पारंपरिक व्यापार से हाईटेक डिफेंस

0: कॉरिडोर की ओर बढ़ने, महत्वाकांक्षी सीका समझौते में तेजी लाने और ऐतिहासिक परमाणु समझौते के अंतर्गत लंबे समय के लिए यूरेनियम निर्यात शुरू करने जैसी पहलों से दोनों देशों के बीच आपसी भरोसा को अभूतपूर्व स्तर पर पहुंचाया गया है। जहां ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री अल्बानीज ने कहा कि 10 लाख लोगों का भारतीय प्रवासी समुदाय इस साझेदारी की असली धड़कन है, वहीं प्रधानमंत्री मोदी ने दोनों देशों के विकास की गति को क्रिकेट की तरह बताया।
1: क्रिकेट भारत और ऑस्ट्रेलिया के रिश्तों की अपनी डिप्लोमेटिक लैंग्वेज है, इसलिए हमारी मीटिंग भी क्रिकेट जैसी लगती है। एजेंडा वनडे जैसा फोकस है, डिसीजन ट्वीट एंट्री जितने तेज है और पार्टनरशिप टेस्ट मैच जितनी लंबी और गहरी।
0: मेलबर्न से सुहास राम की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से जया भारती।
2: प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि भारत ऑस्ट्रेलिया साझेदारी भविष्य के लिए निर्मित एक सुदृढ़ और स्थायी संबंध है। संवाददाताओं को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री ने कहा कि दोनों देशों के संबंध गहरे पारस्परिक विश्वास के आधार पर एक नए युग में प्रवेश कर चुके हैं। शिखर वार्ता की प्रमुख उपलब्धियों में आर्थिक और व्यापारिक सहयोग को नई गति देना शामिल रहा। प्रधानमंत्री मोदी ने बताया कि दोनों देशों ने यूरेनियम आपूर्ति और महत्वपूर्ण खनिज गलियारे पर ऐतिहासिक समझौतों पर हस्ताक्षर किए।
1: पीएम सूर्यघर योजना को सपोर्ट करने के लिए हमने मिलकर गुजरात में रूफटॉप सोलर ट्रेनिंग एकेडमी बनाई है। ये एकेडमी अनेक महिलाओं और युवाओं की कैपेसिटी बिल्डिंग में योगदान देगी। न्यूक्लियर एनर्जी के क्षेत्र में आज हमने एक महत्वपूर्ण समझौता किया है। इससे ऑस्ट्रेलिया से भारत को यूरेनियम सप्लाई का मार्ग खुलेगा और हमारे क्लीन एनर्जी के उद्देश्यों को नई ताकत मिलेगी।
2: प्रधानमंत्री ने कहा कि रणनीतिक प्रौद्योगिकी और संसाधन सुरक्षा के क्षेत्र में भी महत्वपूर्ण प्रगति हुई है। इसके अंतर्गत ऑस्ट्रेलिया भारत साइबर क्रिटिकल टेक्नोलॉजीज और सप्लाई चेन साझेदारी को क्रियान्वित किया गया और महत्वपूर्ण खनिज कॉरिडोर की स्थापना की गई।
1: हमने सीका पर तेजी से काम करने का निर्णय लिया है, जो दोनों देशों के लिए बैलेंस एम्बिशियस। हम बायलेटरल इन्वेस्टमेंट ट्रीटी पर भी तेजी से आगे बढ़ेंगे। हमारी रिन्यूएबल एनर्जी पार्टनरशिप, क्लीन एनर्जी और क्लाइमेट एक्शन में हमारे प्रयासों को साकार रूप दे रही है। इसके तहत हम इन्वेस्टमेंट, टेक्नोलॉजी ट्रांसफर और इंडस्ट्री टू इंडस्ट्री कोलैबोरेशन पर विशेष बल दे रहे हैं।
2: हिंद प्रशांत क्षेत्र में शांति और स्थिरता सुनिश्चित करने के लिए दोनों नेताओं ने रक्षा और सुरक्षा सहयोग पर ऐतिहासिक संयुक्त घोषणा पत्र पर हस्ताक्षर किए। वार्षिक रक्षा मंत्रियों के संवाद को संस्थागत रूप दिया गया तथा समुद्री सुरक्षा सहयोग रोडमैप का शुभारंभ हुआ।
1: हमारे मैरिटाइम सिक्योरिटी कोलैबोरेशन रोडमैप से इंडो पैसिफिक में हमारे साझा प्रयासों को नई ताकत मिलेगी। हम शिप बिल्डिंग, शिप रिपेयर और मेंटेनेंस में भी मिलकर आगे बढ़ेंगे। फ्रेंड, आज हमने कई क्षेत्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय मुद्दों पर भी विस्तार पूर्वक चर्चा की।
2: शिक्षा के क्षेत्र में भी सहयोग पर अभूतपूर्व प्रगति हुई है। इसके तहत ऑस्ट्रेलियाई विश्वविद्यालयों के नए शाखा परिसर बंगलुरु और गुरुग्राम में स्थापित किए जाएंगे। प्रधानमंत्री अल्बनीज ने भी इस भविष्य उन्मुख साझेदारी को और मजबूत बनाने की बात कही।
3: We share a focus on deepening and diversifying the relationship between our countries.
4: हम दोनों देशों के बीच संबंध को गहरा और विविध बनाने पर ध्यान दे रहे हैं, जिससे हम लगातार मजबूत होते रहें। आज हमने हर पहलू पर चर्चा की। नए और अहम समझौतों के माध्यम से हम रक्षा सुरक्षा, शिक्षा, विज्ञान और तकनीक तथा ऊर्जा सुरक्षा और जरूरी खनिजों के क्षेत्रों में अपने संबंधों का विस्तार कर रहे हैं।
3: And critical minerals.
2: इससे पहले प्रधानमंत्री मोदी और ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री अल्बनीज ने भारत ऑस्ट्रेलिया मुख्य कार्यकारी अधिकारी मंच और आर्थिक कार्ययोजना कार्यक्रम को संबोधित किया। ऑस्ट्रेलिया सुपर के 500 मिलियन ऑस्ट्रेलियाई डॉलर के निवेश का भारत ने स्वागत किया है। मेलबर्न में कंपनी के मुख्य कार्यकारी अधिकारी पॉल शोडर ने इसकी घोषणा की। ऑस्ट्रेलिया भारत बिजनेस काउंसिल के प्रमुख सदस्य विश्व विश्वनाथन ने मेक विद इंडिया पहल के बढ़ते असर पर जोर दिया। ये समूह रणनीतिक कॉरपोरेट पार्टनरशिप को बढ़ावा देकर ऑस्ट्रेलिया में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मेक इन इंडिया दृष्टिकोण को लागू करने का काम कर रहा है। भारत की अध्यक्षता में आज नागपुर में ब्रिक्स 2026 के तहत तीसरे ब्रिक्स परिवहन मंत्रियों की बैठक हुई। कार्यकारी समूह

0: इस बैठक के बाद मीडिया से बातचीत में केंद्रीय परिवहन सचिव वी उमाशंकर ने कहा कि वरिष्ठ अधिकारियों ने गतिशीलता, शहरी बुनियादी ढांचा और सतत विकास जैसे मुख्य मुद्दों पर चर्चा की। ये समाचार हमारे न्यूज ऑन AIRF और हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in पर भी उपलब्ध है। दोपहर समाचार में आपका फिर स्वागत है। उपराष्ट्रपति CP राधा कृष्णन ने भुवनेश्वर में खुले समुद्र के मत्स्य संसाधनों के सतत उपयोग के लिए राष्ट्रीय मिशन का अनावरण किया है। ब्यौरा हमारे संवाददाता से।
1: भारत ने आज गहरे समुद्र में मछली पकड़ने के संसाधनों के टिकाऊ इस्तेमाल के लिए एक अहम राष्ट्रीय पहल शुरू करके अपने समुद्री विकास में एक बड़ा मुकाम हासिल किया। उड़ीसा के एक दिन के दौरे पर आए उपराष्ट्रपति CP राधाकृष्णन ने दूर के समुद्रों में काम करने वाली भारतीय झंडे वाली मछली पकड़ने वाली नावों के लिए अनुमति पत्र जारी करने की राष्ट्रीय प्रक्रिया की शुरुआत की। इससे जिम्मेदारी से गहरे समुद्र में मछली पकड़ने और समुद्री संसाधनों को संरक्षण के लिए एक मजबूत ढांचा तैयार होगा। उन्होंने उड़ीसा डीप सी फिशिंग मिशन डॉक्यूमेंट भी जारी किया, जो राज्य में गहरे समुद्र में मछली पकड़ने को इकोसिस्टम को मजबूत करने और ब्लू इकोनॉमी समुद्री अर्थव्यवस्था को बढ़ाने के लिए एक रणनीतिक योजना है। उपराष्ट्रपति ने युवा भारतीयों से मछली पालन को वैश्विक मौके वाला एक आधुनिक विज्ञान आधारित पेशे के तौर पर अपनाने का आग्रह किया।
2: I urge our institutions to continue supporting our fishing community with knowledge, technology and finance. May this historic initiative bring prosperity to every coastal family and contribute significantly to the realization of Viksit Bharat by 2047.
1: Prakash Das, Akashvani Samachar, Bhubaneswar.
0: गृहमंत्री अमित शाह आज नई दिल्ली में सीमावर्ती जिलों के पुलिस अधीक्षकों के सम्मेलन की अध्यक्षता करेंगे। सम्मेलन का उद्देश्य संवेदनशील सीमावर्ती क्षेत्रों की वर्तमान सुरक्षा स्थिति की समीक्षा करना तथा कानून प्रवर्तन व्यवस्था को और अधिक प्रभावी बनाने के उपायों की पहचान कर देश की सीमा सुरक्षा व्यवस्था को सुदृढ़ करना है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री जगत प्रकाश नड्डा शनिवार को हिमाचल प्रदेश के केलोंग में इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च के हाई एल्टीट्यूड मेडिसिन और पब्लिक हेल्थ रिसर्च सेंटर की आधारशिला रखेंगे। स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय ने कहा है कि ये सेंटर पूरे भारत के हिमालय क्षेत्र में जलवायु अनुकूल हेल्थ केयर और बायोमेडिकल रिसर्च को मजबूत करेगा। कृषि यंत्रीकरण उपमिशन के तहत सरकार ने अब तक देश भर में किसानों को 9,404 करोड़ रुपए मूल्य की लगभग 22 लाख कृषि मशीनें वितरित करने में सहायता प्रदान की है। ये मिशन वर्ष 2014-15 में कृषि मशीनीकरण को बढ़ावा देने के लिए शुरू किया गया था। रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने आज पुणे मुंबई घाट में रेलवे लाइन की मरम्मत के काम की समीक्षा की। भूस्खलन भीषण था और रेलवे लाइन के साथ साथ आसपास के क्षेत्रों को भी भारी नुकसान हुआ था। मध्य रेलवे और पश्चिमी रेलवे की टीमें समन्वय से काम कर रही हैं। नीति आयोग ने उभरते क्षेत्रों के लिए महत्वपूर्ण खनिजों की आवश्यकता पर हितधारकों के साथ परामर्श बैठक आयोजित की। इस बैठक में सरकार, अनुसंधान संस्थानों, शिक्षाविदों और उद्योग जगत के विशेषज्ञों ने हिस्सा लिया। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे न्यूज ऑन AIR ऐप और सोशल मीडिया हैंडल @AIRNews हिंदी को फॉलो कर सकते हैं। ये आकाशवाणी है। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 और उल्लास नए भारत साक्षरता कार्यक्रम के तहत निर्धारित वयस्क साक्षरता मानकों को हासिल करने के बाद उत्तराखंड देश का छठा पूर्णतः साक्षर राज्य बन गया है। शिक्षा मंत्रालय के अधीन विद्यालय शिक्षा एवं साक्षरता विभाग द्वारा निर्धारित मानकों की पूर्ति के बाद राज्यपाल ने 8 जुलाई 2026 को इस घोषणा को मंजूरी दी। दक्षिण पश्चिम मॉनसून पूरे देश में सक्रिय हो गया है। राजस्थान, हरियाणा, पंजाब और उत्तरी अरब सागर के शेष हिस्सों में भी ये आगे बढ़ चुका है। आकाशवाणी समाचार से विशेष बातचीत में मौसम विभाग के वरिष्ठ वैज्ञानिक डॉक्टर नरेश कुमार ने बताया कि पिछले कुछ दिनों से दिल्ली, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र, उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड में मध्यम से तेज बारिश जारी है। दिल्ली वासियों की सुबह मूसलाधार बारिश और आंधी के साथ शुरू हुई। बारिश के कारण कई स्थानों पर जलभराव हो गया, जिससे यातायात बुरी तरह प्रभावित हुआ। मौसम विभाग ने हरियाणा सहित राष्ट्रीय राजधानी में तेज बारिश का रेड अलर्ट जारी किया था।
3: अगर हम आने वाले वर्जनों की बात करें, सबसे पहले एनसीआर दिल्ली की बात करें, तो एनसीआर दिल्ली के लिए आज के लिए हमारा ऑर्गन अलर्ट, हम अनुमान

0: की जहां आज मॉडरेट टू हैवी रेनफॉल एक्टिविटी हो सकती है। इसके अलावा कल ये रेनफॉल एक्टिविटी कम हो जाएगी, परसों हल्का फुल्का रेनफॉल होने का अनुमान। वेस्ट उत्तर प्रदेश के लिए आज के लिए हमारा रेड अलर्ट है, वहां हम एक्सट्रीमली हैवी रेनफॉल अनुमान लगा रहे हैं।
1: मौसम विभाग ने उत्तराखंड के कई जगहों पर मूसलाधार बारिश का रेड अलर्ट जारी किया है।
2: राजधानी देहरादून सहित प्रदेश के अधिकांश जिलों में रुक रुक कर बारिश का दौर जारी है। बारिश और भूस्खलन से पर्वतीय जिलों के कुछ राष्ट्रीय मार्गों, राज्य राजमार्गों और ग्रामीण क्षेत्रों के संपर्क मार्गों पर यातायात प्रभावित हुआ है। बंद सड़कों को खोलने के प्रयास किए जा रहे हैं। आपदा प्रबंधन व पुनर्वास सचिव विनोद कुमार सुमन ने संबंधित विभागों को किसी भी संभावित आपदा से प्रभावी ढंग से निपटने के लिए 24 घंटे सतर्कता बरतने के निर्देश दिए हैं। उन्होंने प्रदेशवासियों से मौसम विभाग द्वारा जारी चेतावनियों का गंभीरता से पालन करने की भी अपील की है। साक्षी सिंह, आकाशवाणी समाचार, देहरादून।
1: केरल के अधिकांश हिस्सों में आज बारिश की तीव्रता कम हो गई है। उत्तरी केरल के 5 जिलों में आज येलो अलर्ट जारी किया गया है। ये जिले कल रेड अलर्ट और ऑरेंज अलर्ट पर थे। वायनाड में 5 से 15 मिलीमीटर तक मध्यम बारिश दर्ज की गई। यहां मंगलवार को भूस्खलन हुआ था। भारतीय पिकलबॉल संघ ने 2026 पिकलबॉल विश्व कप के लिए भारतीय दल की घोषणा कर दी है। ये दल एक प्रतिस्पर्धी चयन प्रक्रिया के बाद चुना गया है। 30 अगस्त से 6 सितंबर तक वियतनाम के दानांग में आयोजित होने वाले पिकलबॉल विश्व कप में पेशेवर वर्ग में देश का प्रतिनिधित्व करेगा। अंतर्राष्ट्रीय पिकलबॉल जगत में एक जाना पहचाना नाम हर्ष मेहता दल की कप्तानी करेंगे। भारत और इंग्लैंड के बीच 5 मैचों की T20 श्रृंखला का चौथा मुकाबला आज रात 10 बजे से ब्रिस्टल के काउंटी ग्राउंड में खेला जाएगा। आज दोपहर के सत्र में घरेलू शेयर बाजार के प्रमुख सूचकांक लगभग 0.7% की बढ़त के साथ कारोबार कर रहे थे। नवीनतम रिपोर्ट के अनुसार सेंसेक्स 565 अंक चढ़कर 77,069 पर और निफ्टी 168 अंक बढ़कर 24,050 पर पहुंच गया। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। भारत और ऑस्ट्रेलिया ने यूरेनियम आपूर्ति और महत्वपूर्ण खनिज गलियारे पर ऐतिहासिक समझौतों पर हस्ताक्षर किए। साइबर प्रौद्योगिकी और आपूर्ति श्रृंखलाओं पर ऑस्ट्रेलिया भारत साझेदारी की शुरुआत हुई। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री एंथनी अल्बनीज के बीच मेलबर्न में वार्षिक शिखर वार्ता। श्री मोदी ने कहा, द्विपक्षीय संबंध गहरे आपसी विश्वास पर आधारित विस्तृत युग में प्रवेश कर चुके हैं। उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन ने भुवनेश्वर में खुले समुद्र के मत्स्य संसाधनों के सतत उपयोग के लिए राष्ट्रीय मिशन का अनावरण किया। मॉनसून पूरे देश में सक्रिय, लगातार बारिश से राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में जनजीवन प्रभावित। इसके साथ ही दोपहर समाचार का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।

0: ये आकाशवाणी का वाराणसी केंद्र है। प्रस्तुत है गैर फिल्मी गीतों और गजलों का कार्यक्रम कहकशा, प्रस्तुति स्तुति मिश्रा की।
1: कहकशा कार्यक्रम में मैं स्तुति आप सबका स्वागत करती हूँ। किसी ने क्या खूब कहा है, चुपचाप बैठे हैं तेरी आने की आस में, हर सांस बंधी है बस एक एहसास में, न शिकवा है न कोई सवाल रखा है, तेरे लौट आने को बस हर हाल रखा है, वो घड़ी भी आएगी ये यकीन है हमें, तू भी महसूस करेगा इंतजार सिर्फ वक्त का नहीं था, प्यार का था।

तुम्हारी मुस्कान में ही सुबह की रोशनी है, तुम्हारी बातों में ही हर शाम की ठंडी हवा सी नरमी है। जब भी थक जाती हूँ दुनिया की भीड़ में, तुम्हारी यादें मुझे घर जैसा सुकून देती हैं। कोई नाम नहीं दिया मैंने इस रिश्ते को, पर सच तो ये है, तुम ही मेरी दुआ हो, तुम ही बंदगी हो और तुम ही जिंदगी हो।

ये कैसी शाम है, कुछ कहती नहीं बस सुनती है, हवा भी धीमे से जैसे तेरे कदमों की आहट चुनती है। सूरज ढल चुका है मगर रोशनी बाकी है, तेरे बिना भी ये फिजा कुछ कुछ तेरे सी लगती है। न कोई शोर है न तन्हाई सी बात है, बस दिल के पास तेरी कोई पुरानी याद है। सच कहूं ये शाम शायद उस पल की दस्तक है जब तू ना होकर भी सबसे ज्यादा करीब लगता है।

आज रास्ते में वो मिला, जैसे कोई मौसम बदल गया। एक पल को वक्त थमा और दिल कहीं फिसल गया। नजर मिली तो कुछ ना कहा, मगर सब कुछ कह गया। एक छोटा सा लम्हा था, पर बरसों जैसा बह गया।

अभी आप सुन रहे थे गैर फिल्मी गीतों और गजलों का कार्यक्रम कहकशा, प्रस्तुति स्तुति मिश्रा की थी। ये आकाशवाणी का वाराणसी केंद्र है। मीडियम वेव 241.54 मीटर अर्थात 1242 किलोहर्ट्ज़, डीटीएच डीआरएम 1233 किलोहर्ट्ज़ और मोबाइल ऐप न्यूज़ ऑन एआईआर पर। स्टूडियो की घड़ी में अपराह्न के 3 बजे हैं। संपन्न होती है आज की ये सभा। शाम 4 बजे दूसरी सभा के कार्यक्रमों के साथ हम आपकी सेवा में पुनः उपस्थित होंगे। तब तक के लिए आप हमें अनुमति दीजिए।

मीडियम वेव 241.54 मीटर अर्थात 1242 किलोहर्ट्स, डीआरएम 1233 किलोहर्ट्स, न्यूज ऑन एआईआर ऐप, वेब्स ओटीटी पर यह आकाशवाणी का वाराणसी केंद्र है। शाम के 4 बज रहे हैं, आरंभ हो रही है हमारी आज की सायंकालीन सभा। सभा की शुरुआत में आइए सुनते हैं संदेश टू सोल्जर्स हमारे दिल्ली केंद्र से।

102.6 देश के नंबर वन रेडियो आपके अपने रेनबो पर प्रोग्राम संदेश टू सोल्जर लेकर हाजिर है शाहिद। और यहां पर संदेश टू सोल्जर में हमेशा हम बात करते हैं अपने वीर साहसी सैनिकों के बारे में और उनकी गाथाएं हम सुनते हैं और आपके साथ शेयर करते हैं और हम उनकी जीवनी उनके करियर के बारे में भी जानते हैं और अपने प्रोग्राम में हम उनकी लाइफ में झांक करके उनकी जिंदगी को समझने की कोशिश करते हैं और उनके स्ट्रगल को, उनके करियर को, उनके जोश और जज्बे को भी हम जानने की कोशिश करते हैं अपने प्रोग्राम संदेश टू सोल्जर्स में। और आज संदेश टू सोल्जर्स के खास प्रोग्राम में शाहिद है आपके साथ। आप हमें व्हाट्सएप मैसेज कर सकते हैं 9868107070 पर। आज के संदेश टू सोल्जर्स के खास मेहमान श्री शिवम कुमार, सहायक कमांडेंट सशस्त्र सीमा बल, असिस्टेंट कमांडेंट सशस्त्र सीमा बल SSB, जो राष्ट्रपति द्वारा अपनी वीरता, अदम्य साहस, सेवा और उत्कृष्ट कार्य के लिए पुलिस मेडल फॉर गैलेंट्री से सम्मानित हैं और इसके अलावा कई सारे कमेंडेशंस, एप्रिसिएशंस से भी नवाजे जा चुके हैं श्री शिवम कुमार, सहायक कमांडेंट SSB। तो बहुत जल्द इस गाने के बाद हाजिर होते हैं और मिलाते हैं आपको आपके आज के हमारे खास मेहमान संदेश टू सोल्जर्स के।

0: 102.6 देश के नंबर वन रेडियो आपके अपने रेनबो पर प्रोग्राम संदेश टू सोल्जर्स शाहिद आपके साथ और आज के हमारे खास मेहमान हैं संदेश टू सोल्जर्स में श्री शिवम कुमार सहायक कमांडेंट सशस्त्र सीमा बल। सर बहुत बहुत स्वागत है आपका संदेश टू सोल्जर्स के हमारे प्रोग्राम आकाशवाणी रेनबो पर।
1: धन्यवाद। सर्वप्रथम मैं सशस्त्र सीमा बल के महानिदेशक इन्फॉर्मेशन एंड डेवलपमेंट सेल और FM रेडियो रेनबो का तहे दिल से शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ।

0: हूं कि आज हमें मौका दिया गया है कि मैं अपने संदेश को पूरे देश और विदेश के सभी लोगों के साथ साझा कर सकूं।
1: बहुत बहुत धन्यवाद सर, आपने समय निकाला, आपने अपना कीमती वक्त दिया और आप हमारे पास आज हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं, यह हमारे लिए बड़े सौभाग्य की बात है। बहुत बहुत धन्यवाद सर आपके आने का।
0: सर धन्यवाद।
1: आपको बता दें कि श्री शिवम कुमार असिस्टेंट कमांडेंट सशस्त्र सीमा बल राष्ट्रपति द्वारा अपनी वीरता, अदम्य साहस, सेवा और उत्कृष्ट कार्य के लिए पुलिस मेडल फॉर गैलेंट्री से भी सम्मानित किए जा चुके हैं और इसके अलावा बहुत सारे अवार्ड्स, मेडल्स, कमेंडेशंस और एप्रिसिएशंस सर्टिफिकेट्स तो उनको मिले ही हैं, वो हम आपको आगे बताएंगे। तो सर एक बार फिर से हम आपका स्वागत करते हैं संदेश सोल्जर्स में और आपसे जानना चाहते हैं कि सर आपके बारे में हमने जब जाना तो आपने फैशन टेक्नोलॉजी में बैचलर डिग्री हासिल की विद डिस्टिंक्शन फ्रॉम नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ फैशन टेक्नोलॉजी। तो SSB और NIFT तो काफ़ी मतलब सिमिलैरिटी नहीं है, तो कुछ बताइए इसके बारे में।
0: सर इसके बारे में मैं शुरुआत करना चाहूंगा कि अंग्रेजी के एक पोएट है रॉबर्ट फ्रॉस्ट, उनकी एक बड़ी अच्छी पंक्ति है, टू रोड्स डाइवर्ज्ड इन अ वुड एंड आई टुक द वन लेस ट्रेवल्ड बाय। मेरी कहानी है कुछ ऐसी ही रही है
1: जी।
0: जब शुरुआत से बचपन से तो यूं मैं नहीं कहूंगा कि मुझे फौज में आने का शौक था
1: जी,
0: लेकिन जब मैं नौकरी कर रहा था NIFT के उपरांत तो हमारे सोसाइटी में एक शहीद मेजर नितेश राय थे जो शहीद हुए थे अफगानिस्तान के इंडियन आर्मी के एक मिशन में और उनके सम्मान में एक कार्यक्रम आयोजित किया गया था हमारे सोसाइटी में जिसमें मुझे होस्ट करने का मौका मिला।
1: अच्छा, तो आप उस जमाने में पढ़ रहे थे?
0: नहीं, मैं कॉलेज के बाद में नौकरी कर रहा था।
1: अच्छा,
0: तो उसके जब उस होस्टिंग के दौरान मुझे उनकी पूरी जीवनी जानने का मौका मिला, उन्होंने क्या क्या त्याग किए हैं देश के लिए इसको जानने का मौका मिला, उनके साहस और शौर्य से वो कहीं ना कहीं मेरे हृदय के किसी कोने में जाके बैठ गई
1: जी।
0: उसके बाद मैंने सोचा कि अब मुझे भी यही करना है, वर्दी तो धारण करनी है देश के लिए और राष्ट्र सेवा में ही
1: जी। तो जो शहीद मेजर थे वो आपके प्रेरणा स्रोत बने और आप फैशन टेक्नोलॉजी से सीधा सशस्त्र सीमा बल।
0: जी बिल्कुल, फैशन से ये सशस्त्र सीमा बल का जो सफर है
1: जी,
0: उसको
1: जी।
0: उनको मैं शहीद मेजर नितेश राय को डेडिकेट करता हूँ।
1: क्या बात है सर। सर यहाँ ये भी बताइए हमें शिवम कुमार जी के ये जो सफर आपका रहा, मतलब आपने जैसे कहा कि मैंने कभी सोचा नहीं था, तो ये जो ट्रांसफॉर्मेशन आया उससे आपकी जिंदगी पर क्या असर पड़ा, आपने क्या महसूस किया उस वक्त, जो जज्बा आपका रहा होगा वो प्लीज बताइए।
0: उस वक्त जब मैंने ये जाना, उनके जीवन के बारे में जाना, उनके महज 25 साल की उम्र में वो शहीद हो गए और उन्होंने देश के जो के लिए जो किया है, तो ये वाकई में एक प्रेरणा स्रोत था मेरे लिए। मैंने देखा कि आपके व्यक्तित्व के कई ऐसे आयाम हैं जिससे कि आप अपरिचित होते हैं, लेकिन जब आप फौज की नौकरी में आते हैं तो ये विभिन्न आयाम से आप परिचित होते हैं, तो आपको लगता है कि व्यक्ति से बड़ा समाज है, समाज से बड़ा राष्ट्र है। इस जज्बे को मैंने पहचाना जब मैं फौज की ट्रेनिंग में आया, जब मैं फौज में आया।
1: क्या बात है सर, देशभक्ति से बढ़कर मोहब्बत कोई नहीं हो सकती।
0: जी बिल्कुल।
1: तो फिर आपका ये सफर नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ फैशन टेक्नोलॉजी से बैचलर डिग्री विद डिस्टिंक्शन हासिल करने के बाद एक फैशन ग्रेजुएट बंदा फिर सशस्त्र सीमा बल का एक सिपाही बन जाता है, तो वो सफर अब आगे जब शुरू होता है उसके बारे में बताइए।
0: जी 2018 UPSC में मैंने फॉर्म भरा और उसके बाद फाइनली मेरा सिलेक्शन हुआ 2020 के जनवरी माह में सशस्त्र सीमा बल अकेडमी में। मैं बतौर डायरेक्ट असिस्टेंट कमांडेंट वहां पे अपनी बेसिक ट्रेनिंग की शुरुआत हुई
1: जी।
0: और एक साल के कठिन परिश्रम के उपरांत, एक साल की कठिन ट्रेनिंग के उपरांत जो कि काफ़ी ज़्यादा डिमांडिंग थी मेरे लिए क्योंकि मैं फिजिकली उस टाइम पर बहुत ज़्यादा साउंड नहीं था, उस ट्रेनिंग के उपरांत मैंने जाकर के फिर वो तमगा हासिल किया, मैं असिस्टेंट कमांडेंट बतौर फील्ड में उसके बाद मेरी नियुक्ति हुई।
1: जी जी, तो वो सफ़र जिस तरीके से रहा आपको फैशन एक बिल्कुल ही अलग एक फील्ड हो गई और उसके बाद आप फौज का एक हिस्सा बनते हैं, आप एक फौजी बन गए, एक सोल्जर बन गए, तो वो जो हथियारों के साथ जब आपका एक रिश्ता बना तो वो कैसा महसूस आपने किया? एक आम जनमानस जो है, एक आम इंसान जो है, वो इस चीज़ को शायद आपकी बातों से कुछ महसूस कर पाए, उस जज्बे को।
0: बिल्कुल बिल्कुल, जब मैं ट्रेनिंग कर रहा था तो हमें एक चीज़ सिखाई जाती थी
1: जी,
0: जननी जन्मभूमिश्च स्वर्गादपि गरीयसी
1: जी,
0: माता और मदरलैंड इससे ये स्वर्ग से भी ऊपर है और इस चीज़ को आपके हृदय में, आपके खून में, आपके अंतर मन में अंतर्निहित कर दिया जाता है ट्रेनिंग के अंदर
1: जी।
0: और यही मेरे साथ हुआ। उसके बाद मैंने ठान लिया कि आज से मेरी दो माएं हैं
1: जी,
0: एक मेरी माँ अपनी जिन्होंने मुझे जन्म दिया है और एक मेरा
1: मातृभूमि।
0: मातृभूमि,
1: क्या बात है सर। यही जो आपके जोशीले और जज्बात से भरे हुए जो जज्बा है आपका, जो शब्द हैं आपके, आप इस मौके पर अभी हम आगे बढ़ेंगे, आपके करियर को जानेंगे, आपके अचीवमेंट्स को जानेंगे, आप हमारे जो देश का युवा है उसके लिए कुछ

0: रहना चाहेंगे इसी जज्बे के साथ?
1: जी, मैं देश के युवाओं के लिए एक पंक्ति है जो मैं उनके लिए कहना चाहूंगा
0: जी,
1: कि देश के युवाओं में अपने आप के अंदर, उसके अंदर पौरुष होना चाहिए। पौरुष सबसे पहले युवाओं में जरूरी है, क्योंकि जिसके अंदर पौरुष है, जिसके अंदर पुरुषार्थ है, आप उसी से, आप उसी के प्रति आप अपनी इज्जत रखते हैं, आप उसी के प्रति अपनी सांत्वना रखते हैं। अगर आपके अंदर पौरुष नहीं होगा तो आप समाज के लिए, अपने देश के लिए, अपने राज्य के लिए कुछ नहीं कर पाएंगे। और ये सब सर्वोपरि है। आप अपने अंदर पुरुषार्थ को धारण करें, चाहे वो किसी भी रूप में हो, वो फौज की सेवा में आके हो, या आप वो टीचर बन के हो, या आकाशवाणी की सेवा में जैसा आप कर रहे हैं, तो पुरुषार्थ होना सबसे आवश्यक है।
0: जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपके इन शब्दों के लिए। और हम समझते हैं कि जो आपने बात की बहुत ही सच्ची और बहुत ही दिल से आपकी जो बात निकली है वो दिल तक पहुंचेगी, हमारे माध्यम से भी और आपके जरिए भी, दिल से दिल तक, आकाशवाणी के माध्यम से। आपने जो SSB जब ज्वाइन किया तो आपने बताया कि किस तरीके से आपकी ये शुरुआत हुई, लेकिन आपने इसके अलावा ज्वाइन करने के बाद भी कई प्रोफेशनल कोर्सेज किए, जैसे कि आइडेंटिफिकेशन एंड हैंडलिंग ऑफ एक्सप्लोजिव और सिक्योरिंग, आपने पहली पोजिशन भी हासिल करी थी। उसके अलावा आपने GIS कोर्स किया SSB की अकेडमी भोपाल से। तो वो जो एक कोर्स आपने किया आइडेंटिफिकेशन एंड हैंडलिंग ऑफ एक्सप्लोजिव, वो कितना, मतलब क्या बहुत खतरनाक, बहुत आसान था? क्योंकि देखने में, पढ़ने में नहीं लग रहा कि बहुत आसान रहा होगा।
1: जी बिल्कुल, ये भारत के बदलते सुरक्षा परिदृश्य में
0: जी
1: एक्सप्लोजिव IED जैसी घटनाएं आमतौर पर कई ज़्यादा देखने को मिलती थी। तो बतौर अ सोल्जर ये एक व्यक्ति को ट्रेन होना चाहिए कि वो आइडेंटिफाई कर सके कि कौन से एरिया में कहाँ एक्सप्लोजिव लगाया जा सकता है, कैसे एक्सप्लोजिव को हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं। इन चीज़ों के विषय में इस कोर्स में बताया गया, ताकि उस क्षेत्र की जो जनता है उस क्षेत्र में फोर्स ऑपरेट कर सके और उस क्षेत्र की जनता को सुरक्षित कर सके।
0: जी, तो शिवम कुमार जी, हमें ये भी बताइए कि आपने GIS कोर्स, क्योंकि ज्योग्राफिकल इन्फॉर्मेशन सिस्टम जो कोर्स आपने किया, उससे आपकी ट्रेनिंग के लिए और आपकी जो सेवाएं हैं उसमें किस तरीके से आप उसको और बढ़ा सके, सेवाएं अपनी और बढ़ा सके आप?
1: जी बिल्कुल, ये हमारे जनरली जो हमारा इलाका होता है जहाँ पे कि हम अपनी सेवाएं देते हैं, वो बहुत सुदूर और रिमोट एरियाज में रहता है। तो वहाँ पे हमको एक रेडी टू अवेलेबल एक मैप चाहिए होता है, जिसको कि हम डिजिटली देख सकें और देख सकें कि कहाँ कहाँ हमारी तैनाती हुई है। तो इसके लिए ज्योग्राफिकल इन्फॉर्मेशन सिस्टम का ज्ञान होना बहुत ही आवश्यक है, जिससे कि हम अपने ट्रूप्स के मूवमेंट पे नज़र रख सकते हैं, वो कहाँ कहाँ हमारी तैनाती है इस पर नज़र रख सकते हैं। इसके लिए GIS कोर्स महत्वपूर्ण है।
0: तो आप ऑलरेडी एक सहायक कमांडेंट थे, उसके बाद भी SSB के ही आप जरिए ये सब कोर्सेस कर पाए, इतना आगे और बढ़ पाए, अपनी स्किल्स को और ज्यादा बढ़ा पाए और इम्प्रूव कर पाए, तो इसमें फिर आपको आगे भी इस तरीके के फिर मौके मिले जहां पर आप अपनी सेवाएं उस तरह से दें?
1: बिल्कुल बिल्कुल, ये जो बेसिक ट्रेनिंग होती है वो हमारे एक जेंटलमैन को वो एक फौजी में तब्दील करती है, लेकिन दैट इज द बेस, वो बेस है, फाउंडेशन है। उसके ऊपर आपको लगातार कोर्सेज करने हैं ताकि आप एक हुनरमंद और एक आप एबल ऑफिसर बन सकें। तो इसके लिए सारे कोर्सेज,
0: मतलब आप अपनी निपुणता को लगातार जो है बढ़ाते रहें।
1: बिल्कुल बिल्कुल,
0: उसमें एडिशन करते रहें। इसी एडिशन में आपकी एक बहुत जबरदस्त जो आपने ग्वालदाम उत्तराखंड में की कमांडो ट्रेनिंग भी आपने की इन सब के साथ साथ, तो उसका एक्सपीरियंस कैसा रहा?
1: जी कमांडो जो है वो एक फिजिकल और मेंटल दोनों तरीके से आपको सशक्त बनाता है कि आप विषम परिस्थितियों में, दुर्गम पहाड़, दुर्गम वनों में आप लंबे लंबे ऑपरेशंस कर सके, अपनी ट्रूप्स को, मोराल को हाई रख सके और ऑपरेशंस में सामरिक रणनीति के साथ ऑपरेशन में विजय हासिल कर सके।
0: तो सर, ये तो ट्रेनिंग बहुत टफ रही होगी, कैसा रहा आपका वो एक्सपीरियंस इस कमांडो ट्रेनिंग वाला?
1: जी बिल्कुल, ये ट्रेनिंग तो टफ होती है, इसमें तो कोई अतिशयोक्ति नहीं है कि ट्रेनिंग तो बहुत टफ रहती है, लेकिन आपके अंदर जो वो जज्बा होना चाहिए वो ऐसा निहित कर दिया जाता है उस्तादों के द्वारा, इंस्ट्रक्टर्स के द्वारा, कि वो समय धीरे धीरे पार हो जाता है। और आप जब बिगर पिक्चर की ओर देखते हैं, जब आप देखते हैं कि यहाँ से जब आप टप के जाएंगे, जब आप निखर के जाएंगे यहाँ से, तो फील्ड में इसके कई फायदे होते हैं, जो कि फायदे आज हमें महसूस कर रहा हूँ मैं।
0: सर, आपने इतनी सब ट्रेनिंग हासिल करी, आपने अपनी एक बहुत ही एक अलग इमेज, एक बहुत ही बड़ी पोजीशन आपने बनाई, और इसकी ही एवज में आपको अपनी सेवाओं के बदले ही बहुत ज़्यादा अवार्ड से भी नवाजा गया, आपको बहुत सारी कमेंडेशंस, एप्रिसिएशंस भी मिले, और साथ ही साथ आपने अपनी जो लीडरशिप स्किल थी, ऑपरेशनल एक्सेलेंस थे, और ख़ास तौर पर एंटी नक्सल ऑपरेशंस, उसमें भी आपने न सिर्फ उनको अच्छे से किया बल्कि उनमें निपुणता हासिल करके एक अपनी एक ऐसी पोजीशन बनाई जिसकी वजह से आपको वो रिकॉग्निशन, वो अवार्ड्स, वो मेडल्स से नवाजा गया।
1: जी बिल्कुल, मेरा ये सौभाग्य था कि एकेडमी से निकलते ही

0: मुझे पहली ही पोस्टिंग एंटी नक्सल ऑपरेशंस के थिएटर में मिली
1: जी,
0: जो कि बिहार के लखीसराय जिले में था। और क्योंकि मैं झारखंड बिहार से मेरा ताल्लुक है
1: जी,
0: तो सन ऑफ सॉइल होने का फायदा मुझे वहां पर मिला। मतलब वहां पे लोगों की क्या पीड़ाएं हैं, नक्सल का मोडस ऑपरेंडी क्या है, वो कैसे कम्युनिकेट करते हैं विलेजर्स के साथ, कैसे उनको ब्रेन वॉश करते हैं, ये समझना मेरे लिए ज्यादा आसान था क्योंकि लोग मुझसे ज्यादा कनेक्ट कर पाते थे बीइंग अ लोकल। मुझे ये फायदा मिला। और फिर फाइनली जो आगे की रणनीति थी, जो सीनियर्स का सपोर्ट था, उसके हिसाब से आगे की प्लानिंग हुई।
1: और आगे हम आपसे जानेंगे कि जो एंटी नक्सल ऑपरेशन आपने किए, एंटी माओइस्ट ऑपरेशंस भी आपने किए, और बिहार का एक बहुत ही ज़बरदस्त और बहुत ही यादगार एक ऑपरेशन था जिसकी ही बदले में आपको उस सेवा की ही एवज में पुलिस मेडल फॉर गैलेंट्री से भी सम्मानित किया गया, और हम उसके बारे में आपसे जानेंगे आगे। और साथ ही साथ हम आपको बता दें कि यहाँ पर लगातार बहुत सारे मैसेजेस आ रहे हैं हमारे सुनने वालों के, हमारे श्रोताओं के, आपके लिए। आज के संदेश टू सोल्जर्स के हमारे खास मेहमान हैं श्री शिवम कुमार, सहायक कमांडेंट सशस्त्र सीमा बल।

0: भारत तुझे सलाम। देश के नंबर वन रेडियो आकाशवाणी रेनबो पर आप सुन रहे हैं प्रोग्राम संदेश टू सोल्जर शाहिद के साथ, और आज के हमारे स्पेशल गेस्ट खास मेहमान हैं श्री शिवम कुमार, सहायक कमांडेंट सशस्त्र सीमा बल। सर, बहुत बहुत स्वागत मैं करना चाहूंगा एक बार फिर आपका आज के इस बहुत ही स्पेशल शो में, जिसमें जोश से भरपूर श्री शिवम कुमार हमारे साथ मौजूद हैं।
1: धन्यवाद साहिद जी।
0: और मैं अपने लिसनर्स को, अपने श्रोताओं को बता दूं कि आप हमें, हमारे पास लगातार आपके मैसेजेस आ रहे हैं और आप हमें व्हाट्सएप मैसेज कर सकते हैं 9868107070 पर, जिन लोगों को अभी तक मैं नंबर नहीं बता पाया था। और आप साथ ही हमारी मोबाइल ऐप न्यूज़ ऑन AIR के माध्यम से दुनिया भर में हमसे हैं जुड़े हुए। तो नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ फैशन टेक्नोलॉजी से हुआ सफर शुरू, बैचलर डिग्री विद डिस्टिंक्शन के साथ श्री शिवम कुमार का, और उसके बाद कुछ ऐसा हुआ कि जिंदगी पूरी तरह से बदल गई और वो बन गए एक जोशीले जांबाज सिपाही सशस्त्र सीमा बल के। सर, आपकी पूरी सर्विस में, अभी तक की आप अभी भी सर्विस में हैं, और सर्विस के दौरान आपकी पोस्टिंग रही SSB एकेडमी भोपाल मध्य प्रदेश में और 32 बटालियन SSB बिहार में, और फिलहाल आप सर्व कर रहे हैं CI & JW स्कूल ग्वालदाम। तो सर, ये जो आप प्रेजेंटली जो सर्विंग है आपकी, ये इसके बारे में थोड़ा सा बताइए, CI & JW स्कूल में आप क्या करते हैं और ये क्या है?
1: काउंटर इंसर्जेंसी एंड जंगल वॉरफेयर स्कूल ग्वालदाम में, उत्तराखंड में स्थापित है। ये हमारे इन सर्विस ट्रेनिंग सेंटर है, जहाँ पे कि जैसा मैंने आपको बताया कि बेसिक ट्रेनिंग के उपरांत कई सारे ऐसे कोर्सेज होते हैं जिसे कि सभी बलकर्मी इरिस्पेक्टिव ऑफ रैंक उस कोर्सेज को पूरा करते हैं ताकि वो अपनी सेवा में और दक्षता हासिल कर सकें। तो हमारे CI & JW स्कूल ग्वालदम में माउंटेनियरिंग विंग है, जहाँ पे कि मैं गर्व से कहना चाहूँगा कि SSB की टीम माउंट एवरेस्ट की सीमाओं पर भी, माउंट एवरेस्ट की चोटी पर
0: जी
1: अपना विजय तिरंगा फहरा चुकी है।
0: बहुत खूब सर, क्या बात है।
1: इसके अतिरिक्त वहाँ पे एक्सप्लोजिव की ट्रेनिंग होती है, कमांडोज की ट्रेनिंग होती है, बहुआयामी ट्रेनिंग सेंटर है ये।
0: तो आप इस ट्रेनिंग सेंटर में एज ए ट्रेनर अपनी सेवाएं दे रहे हैं?
1: जी बिल्कुल, मैं यहाँ पे बतौर इंस्ट्रक्टर या ट्रेनर के रूप में अपनी सेवाएं दे रहा हूँ।
0: जी, तो सर किस तरीके का एक्सपीरियंस है, क्योंकि आप पहले सर्व कर चुके उसके बाद फिर आप अब ट्रेनिंग भी दे रहे हैं, तो सीखना और फिर सिखाना, इन दोनों में कितना अंतर आप पाते हैं और क्या ज़्यादा कठिन आपको लगता है?
1: मुझे ऐसा लगता है कि दोनों ही का अपना अपना महत्व है
0: जी।
1: जिस व्यक्ति ने धरातल पर कार्य किया है, जिसे धरातल की जो भी कठिनाइयां हैं, चुनौतियां हैं, वो पता है, वह बेहतर तरीके से उसको अपने आने वाली पीढ़ी को या जो भी ट्रेनीज रहते हैं उसको बता सकता है। और यही करने की मैं कोशिश करता हूँ, जो भी मैंने ग्राउंड में अपने अनुभव से और जो हमारा एक वहाँ पर टेन्योर रहा है उससे सीखा है, उसको ट्रेनिंग्स को बताने की मेरी चेष्टा होती है ताकि वो ग्राउंड के लिए रेडी बन सके।
0: जी, अच्छा शिवम कुमार जी, हम यहाँ पर एक बात जानना चाहेंगे कि एक जब फौजी बन रहा होता है तो उसके दिल में क्या अरमान, क्या जज्बा होता है देश सेवा को लेकर के? क्या वो सब चीज़ें चाहता है कि वो जाएगा फ्रंट पर और जैसे दुश्मनों का मुकाबला करेगा, और वो बिल्कुल एकदम बेखौफ होकर के, निडर, बिल्कुल साहस के साथ उनका सामना करेगा, भले ही फिर वो अपनी जान की परवाह ना करे, कुछ भी हो जाए, वो जज्बा कैसा होता है?
1: बिल्कुल शाही जी, इसमें ऐसा है कि जब हम बेसिक ट्रेनिंग के उपरांत धीरे धीरे हमारी नौकरी आदि बढ़ती जाती है
0: जी,
1: तो हमें ये समझ में आ जाता है कि एक फौजी के जीवन का ध्येय वाक्य होता है कि लड़ाई ना तो अधूरी होती है और ना ही अधूरे मन से लड़ी जाती है।
0: क्या बात है।
1: तो एक फौजी अपने पूरा जीवन न्यौछावर करता है, इसी के लिए वो तपता है ताकि जब मौत सामने नाच रही हो
0: जी,
1: तो फौजी उसका डट कर सामना करे और अपने देशवासियों का, अपने राष्ट्रवासियों का, जिसकी सुरक्षा का जिम्मा उसे दिया गया है
0: जी,
1: उसे बखूबी निभाए।
0: क्या बात है, ये जोशीले स्वर आ रहे हैं हमारी तरफ श्री शिवम कुमार, जो हैं असिस्टेंट कमांडेंट सशस्त्र सीमा बल। सर, ये जज्बा और ये जोश आप जो जिस तरीके से हम महसूस कर रहे हैं आपको देख करके और आपसे सुन करके, तो इस जज्बे के साथ ही हमारा युवा अगर इसमें जाना चाहता है तो किस तरीके से आप उसको गाइड करना चाहेंगे?
1: जी, युवाओं के लिए सशस्त्र सीमा बल में जाने के 3 रास्ते हैं
0: जी।
1: अगर कोई कांस्टेबल लेवल पे भर्ती होना चाहता है तो SSC द्वारा GD की परीक्षा आयोजित की जाती है, जिसका मिनिमम एजुकेशनल क्वालिफिकेशन उसकी मैट्रिकुलेशन

0: होती है।
1: ठीक है।
0: इसके उपरांत कोई अगर सबऑर्डिनेट ऑफिसर या सब इंस्पेक्टर के पद पे जाना चाहे
1: जी,
0: तो एसएससी द्वारा सीपीओ की परीक्षा आयोजित की जाती है, जिसका मिनिमम क्वालिफिकेशन क्राइटेरिया ग्रेजुएशन होता है किसी भी स्ट्रीम में। और बतौर डायरेक्ट क्लास ए ऑफिसर असिस्टेंट कमांडेंट अगर इसमें कोई जाना चाहे
1: जी,
0: तो यूपीएससी द्वारा आयोजित सेंट्रल आर्म्ड पुलिस फोर्सेस एग्जामिनेशन करवाई जाती है, जिसके लिए मिनिमम आपको ग्रेजुएट होना जरूरी है।
1: ओके, जैसे कि आपने यूपीएससी पास करके
0: जी बिल्कुल
1: एज एन असिस्टेंट कमांडेंट आपने ज्वाइन किया
0: जी बिल्कुल।
1: लगातार हमारे पास हमारे आज के मेहमान श्री शिवम कुमार के लिए यहाँ पर मैसेजेस का सिलसिला लगातार जारी है। शिवम कुमार जी, मैं आपको वो मैसेज पढ़ के सुनाऊंगा और मैं चाहता हूँ कि मैं आपसे आपका जो बहुत ही ज़्यादा एक यादगार मैं कहूँ और वो हर तरह से यादगार एंटी माइस्ट ऑपरेशन आपने जो किया लखीसराय बिहार में फरवरी 2022, उसके बारे में हम बात करेंगे कि वो कितना क्रिटिकल था वो ऑपरेशन, कितना कामयाब था और कितना खतरनाक था वो ऑपरेशन।
0: जी बिल्कुल, ये मेरा सौभाग्य था कि मुझे अपनी नौकरी के पहले एक दो वर्षों में ही
1: जी
0: ऐसे नक्सल एंटी नक्सल ऑपरेशन में शामिल होने का मौका मिला और इसके लिए मैं तहे दिल से शुक्रिया अदा करना चाहूँगा श्री सोमी जोशी सर जो इंस्पेक्टर जनरल थे
1: जी,
0: श्री दीपक सिंह जो मेरे बटालियन के कमांडेंट थे 32वीं वाहिनी के, इसके अतिरिक्त मेरे जो सीनियर्स थे श्री नरपत सिंह
1: जी,
0: श्री जसवीर सिंह तोमर, श्री गुलशन झा, और जो मेरे सबऑर्डिनेट्स और कलीग थे ऋतुराज, अरविंद
1: जी,
0: राणा और प्रदीप का, जिन सबके टीम वर्क ने जिन्होंने मुझे मोटिवेट किया, मुझे ग्रूम किया इस चीज़ के लिए, क्योंकि मैं बिल्कुल नया था फौज के लिए, मुझे ग्रूम किया ताकि मैं इस ऑपरेशन में पार्टिसिपेट कर सकूँ, लीड कर सकूँ और विजय हासिल कर सकूँ
1: जी। और आपको हम बताना चाहेंगे कि शिवम कुमार जी हमारे पिछले संदेश सोल्जर्स में कुमार ऋतुराज जी भी हमारे साथ इस शो में मौजूद थे, तो वो आपके सीनियर थे, उन्होंने भी बहुत गाइड किया आपको।
0: जी जी बिल्कुल, वो मेरे साथ काम करते थे, वो मेरे सबऑर्डिनेट थे और उनका भी सहयोग रहा है इस चीज़ में
1: जी। तो हम यहाँ पर ये जानना चाहेंगे ये ऑपरेशन किस तरीके से आपने कंप्लीट किया और कितना टफ था, कैसे प्लानिंग करी और कितने चैलेंजेस का आपको सामना करना पड़ा, आपका टीम वर्क कैसा था?
0: जी बिल्कुल, सर्वप्रथम यह है कि किसी भी ऑपरेशन को
1: जी
0: सिर्फ आप असले और बारूद के बल पे आप नहीं जीत सकते हैं। ऑपरेशन जीता जाता है टीम वर्क से, साथियों के सहयोग से
1: जी,
0: एक उचित मार्गदर्शन से और सामरिक रणनीति से। इस ऑपरेशन में भी हमने सबसे पहले जो किसी भी ऑपरेशन का मूल आधार होता है वो है इंटेलिजेंस इकट्ठा करना
1: जी।
0: सबसे पहले हमने इंटेलिजेंस इकट्ठा की माओवादियों के बारे में, जिस एरिया में मैं काम करता था
1: जी
0: लखीसराय बिहार में, वहाँ जितेंद्र कोड़ा, विनोद कोड़ा और अर्जुन कोड़ा, ये सब आतंक के प्रतीक थे जिनके ऊपर 50 से अधिक हत्याओं के मामले चल रहे थे। ये सभी नक्सली टीम के मेंबर्स थे और 50 से अधिक हत्याओं के इन पे मामले थे। हमने उनके बारे में आसूचना हासिल की, इंटेलिजेंस हासिल किया उनके बारे में, इसमें कि हमारे ह्यूमन इंटेलिजेंस भी थे
1: जी,
0: और टेक्निकल चीज़ों का भी हमने मदद लिया, गैजेट्स का हमने मदद लिया। उसके बाद उनको हमने एक चक्रव्यूह में फंसाया, जिस चक्रव्यूह में सभी नक्सली फंसते चले गए और फाइनली ये ऑपरेशन, एक लंबी कहानी है ये, एक दिन का सफर नहीं था, 3 महीने तक इसकी तैयारी चली।
1: ओके, तो आपने ये जो ड्रेडेड क्रिमिनल्स थे इनको न्यूट्रलाइज भी किया और इनको मतलब इनके उन जो काम थे इनके, उनके जो क्रिमिनल एक्टिविटीज थी उनको भी आपने पूरी तरीके से खत्म कर दिया इस ऑपरेशन के माध्यम से।
0: जी बिल्कुल, उनका उनका जो शैली था उनका, वो किडनैपिंग करते थे, एबडक्शन करते थे
1: जी,
0: लोगों में उनका आतंक था, कभी भी रात में किसी भी घर किसी के घर घुस जाना और बंदूक की नोक पे उससे ऐसे कार्य करवाना जिसको कि वो नहीं चाहता है करना, और उनके डर के कारण वहाँ की जो जनता थी कभी खुल के हमसे बात नहीं करती थी, अपनी शिकायतों को नहीं रखती थी। तो इस चीज़ पे हमने काम किया और फिर ये एक पूरी प्रक्रिया थी जिसको कि हमने किया इंटेलिजेंस जनरेशन से लेकर के और ऑपरेशन एग्जीक्यूशन तक।
1: और जाहिर है कि जब इस ऑपरेशन को सक्सेसफुली एग्जीक्यूट किया गया तो फिर वो जो एक भरोसा जो टूट रहा था वो जनता में भी फिर दोबारा से कायम हुआ होगा।
0: जी बिल्कुल, इसमें ऑपरेशन के एग्जीक्यूशन के उपरांत असली खुशी तो वही होती है, असली खुशी ये नहीं है कि आपने नक्सली को मार दिया या आतंकवादी को मार दिया, असली खुशी वो है कि जब आप जम्मू कश्मीर के जवाहर टनल से निकले, जब आपका कॉन्वॉय निकले
1: जी,
0: या छत्तीसगढ़ के दंतेवाड़ा या बिहार के भीमबांध से जब आपकी गाड़ी निकले और तब कोई बच्चा हाथ में झंडा लिए जय हिंद आपको करता है,
1: क्या बात है,
0: तब जो उसके चेहरे की जो वो सुरक्षा का भाव उसके चेहरे पे रहता है, ये आपकी असली जीत है बतौर फौजी।
1: क्या बात है। तो उस झंडे के साथ और उस जय हिंद के नारे के साथ वो जो

0: मिलती है वो खुशी सबसे बढ़कर होती है।
1: जी बिल्कुल, वो हमारे लिए सबसे बड़ी खुशी वही है कि जनता का विश्वास जो हमने जीता है
0: जी
1: वो हमारे लिए सबसे बड़ी खुशी है, और इस ऑपरेशन के माध्यम से हम ये करने में सक्षम हुए थे।
0: जी बिल्कुल, क्या बात है। और यही वो ऑपरेशन था जिसकी वजह से आपको प्रेस्टीजियस पुलिस मेडल फॉर गैलेंट्री से नवाजा गया राष्ट्रपति द्वारा 2024 में।
1: जी बिल्कुल, इस ऑपरेशन में सबका सहयोग था, सीनियर से लेकर के जूनियर सबका सहयोग था।
0: जी
1: मैं आपको छोटा सा वृतांत इस ऑपरेशन का बताना चाहता हूँ।
0: जरूर जरूर।
1: ये हमारी प्लानिंग चल रही थी, जो बिहार के लखीसराय में मैं लोकेटेड था, वहाँ पे मेरी पोस्टिंग थी, तो हमारी प्लानिंग चल रही थी कि वहाँ का जो नक्सल ग्रुप है उसको कैसे ट्रैप किया जाए, अपने चक्रव्यूह में कैसे लाया जाए। तो जिन सीनियर्स के मैंने नाम बताया आपको,
0: जी
1: उनके सानिध्य में हमारी प्लानिंग चली। फिर हमने एक गुप्तचर को प्लांट किया उनके नक्सली टीम में, और फिर उसके द्वारा दी गई सटीक जानकारी के बेसिस पे हमें ये पता चला कि दिनांक 2 फरवरी 2022, जो मुठभेड़ का दिन था,
0: जी
1: उस दिन ये नक्सली जंगल में आने वाले थे। कोई एक खास जगह थी जहाँ पे वो आने वाले थे, तो उसके लिए हम पहले से ही तैयार थे, हमने पहले से एक लंबी प्लानिंग कर रखी थी। तो हमारी टीम उसके अंदर लॉन्च हुई,
0: जी
1: लगभग हम अपने पूरे फुल स्ट्रेंथ स्क्वाड के साथ लॉन्च हुए, और हमारे हमारे जो कमांडेंट जो थे श्री दीपक सिंह एवं श्री सुशील कुमार जो लखीसराय बिहार के SP थे, एवं श्री मनोरंजन पांडे हमारे कमांडेंट सर थे, उनके मार्गदर्शन में हमारी पूरी टीम लॉन्च हुई, जिसमें नरपत सिंह डिप्टी कमांडेंट, गुलशन झा सर, जसवीर तोमर सर और मैं, और मेरे साथ अलग अलग रैंक्स के लड़के थे। हमने दो टीमें बनाई, और जंगल की अपनी चुनौतियां हैं।
0: बिल्कुल,
1: जंगल में आपको ये नहीं पता होता है कि गोली कब किधर से आएगी,
0: जी
1: क्योंकि कोई फिक्स्ड पॉइंट नहीं होता है। तो हमें एक जनरल इलाका पता था कि यहाँ पे नक्सली आने वाले हैं,
0: जी
1: तो हम उस इलाके की तरफ बढ़ रहे थे अपनी पूरी फुल स्ट्रेंथ स्क्वाड के साथ। और 2 तारीख को लगभग 9 बजे सुबह की बात है ये,
0: जी
1: सीधे गोलियों की बौछार हम पे आई।
0: ओके,
1: तो
0: यानी कि आपकी जब आंख खुलती है तो सीधा गोलियों से आपका स्वागत करते हैं वो
1: जी
0: लोग।
1: जी बिल्कुल, हम जब आगे बढ़ रहे थे उस एरिया की तरफ जा रहे थे, तो
0: जी
1: एकदम से हमारी गोलियों की बौछार हमारे ऊपर आई। क्यों? और जंगल में एक सिद्धांत चलता है,
0: जी
1: यू मिस एंड आई हिट, और
0: ओके
1: पहली गोली जो थी नक्सलियों की वो उन्होंने मिस कर दिया था। वो हम
0: ओके
1: में से किसी को भी वो उनकी पहली गोली नहीं लगी। तब हमें पता था कि अब हमें क्या करना है, उसने मिस कर दिया, वी आर गोइंग टू हिट देम।
0: एग्जैक्टली, मतलब हम नहीं मिस करेंगे किसी भी कीमत पर।
1: बिल्कुल, एक हमारी ट्रेनिंग ही इसलिए होती है
0: जी
1: कि हमको उसको हिट करना है। तो हमने वहीं पर रणनीति बनाई कि कौन किधर से कैसे अटैक करेगा, और फिर जवाबी जो हमारी कार्रवाई थी वो हमने फुल स्ट्रेंथ में जवाबी कार्रवाई की नक्सलियों के ऊपर। क्रॉस फायरिंग चली, बहुत देर तक फायरिंग चलती रही, लगभग आधे घंटे तक ये फायरिंग चली, उसके उपरांत जा कर के ये फायरिंग समाप्त हुई। तो ये जो यज्ञ, ये जो नक्सल एनकाउंटर होता है ना, ये हम फौजियों के लिए एक यज्ञ जैसा है, एक धार्मिक अनुष्ठान जैसा है, जिसमें कि हम अपना तन मन धन सब झोंक देते हैं। तो फिर जब ये फायरिंग ख़त्म हुई
0: जी,
1: उसके बाद जा कर के हमने देखा, तो हमने पाया कि 2 बॉडीज़ वहाँ पर हमें मिली, और संयोग से वो दोनों बॉडीज थी जितेंद्र कोड़ा और विनोद कोड़ा की,
0: मतलब जो उनके लीडर्स थे।
1: जी बिल्कुल, जो उनके लीडर्स थे, जिनका आतंक जो है वो पूरे पूरे लखीसराय क्षेत्र में, कहें पूरे बिहार क्षेत्र में फैला हुआ था, और जिनके आतंक के कारण जनता हमसे कुछ बात नहीं करती थी, हमारे नज़दीक नहीं आती थी, उन दोनों की बॉडीज हमें वहाँ मिली। और उसके अतिरिक्त एक उनका और लीडर था, अर्जुन कोड़ा
0: जी,
1: जिसको कि उसके राइट थाई में जा करके हमारी गोली फंस गई थी, और फिर आगे आने वाले 1 महीने बाद
0: जी
1: उसने उसने सरेंडर किया एक दूसरी फोर्स के सामने, और उसने ये बताया
0: जी
1: कि उस दिन SSB के साथ हुई मुठभेड़ में वो गोली जो है मेरे थाई में आके फंस गई है, और अगर मैंने सरेंडर इसलिए किया है क्योंकि अगर मैं इलाज नहीं करवाऊंगा तो मैं
0: मर जाऊंगा,
1: मैं मर
0: जी
1: जाऊंगा।
0: तो उसके बाद इसके अलावा कोई दूसरा चारा नहीं बचा।
1: जी बिल्कुल, तो हमारे लिए ये एक बहुत बड़ी जीत थी, मैं इसे अपने जीवन का सबसे स्वर्णिम पल, अविस्मरणीय क्षण मानूंगा, जहां पे कि मुझे गर्व है कि मैं अपनी पूरे टीम के साथ ऐसे राक्षस से लड़ा
0: जी
1: और उसे पराजित किया, और उसका जो फल मिला वो सबसे सुखद फल था कि जो हमारा ध्येय वाक्य है, सेवा, सुरक्षा, बंधुत्व,
0: जी
1: हमने सेवाएं दी वहां की जनता को, उनके मन में नक्सलियों को मारने के उपरांत
0: जी
1: उनके मन में एक सुरक्षा का भाव पैदा हुआ।
0: बिल्कुल,
1: और अंततः वो बंधुत्व में तब बदला जब मैं उसी गांव वाले के साथ जो हमसे बात नहीं करता
0: जी
1: था, उसी के साथ मैं बैठ करके चाय पीता था और
0: क्या बात
1: बैठ
0: है?
1: के खाना खाता था।
0: क्या बात है
1: तो
0: सर,
1: ये सशस्त्र सीमा बल की जीत थी।
0: बेशक बेशक, बिल्कुल इसमें कोई दो राय नहीं कि ये जो आपका इतना डायरिंग ऑपरेशन था, उसके बाद इसमें जो आपने कामयाबी हासिल करी, तो यही सबसे बड़ी जीत थी कि जो विश्वास जो आपने बनाया उन लोगों में जो आपसे पहले बात करने में डरते थे।

0: यहाँ जिस तरीके से शिवम कुमार आप अपनी जिस तरीके से ऑपरेशन के बारे में बता रहे थे, भाई इमेजिन कर रहा था स्टूडियो बैठ करके कि वो क्या सिचुएशन वो मंजर रहा होगा। तो मैं सर ये जानना चाहता हूँ, एक शायद लिसनर भी जानना चाहता है, और इतने मैसेजेस मेरे पास आ रहे हैं मैं उनको अभी ले नहीं पा रहा, बाद में लूंगा। तो क्या ये जो हम अक्सर मैं बात करता हूँ कि हम इस तरीके की कुछ सिचुएशंस देखते हैं, आप आमने सामने से दो ग्रुप में जो फायरिंग चल रही है, बैटल चल रही है, वॉर सिचुएशन है, तो हम फिल्मों में जो देखते हैं तो बड़ा एक्साइटमेंट सा होता है, लेकिन आप उस सिचुएशन को फेस कर रहे हैं, वहाँ पर मौजूद हैं और आप अपने देश के लिए अपनी जान की बाजी वहाँ पर लगा रहे हैं उन क्रिमिनल से, उन आतंकवादियों से लड़ने के लिए। सर वो मोमेंट, वो जज्बा, वो जो एक फीलिंग होती है वो क्या होती है, वो खौफ, वो डर, वो सिचुएशन, वो थोड़ा सा हम जानना चाहेंगे आपके अपने शब्दों में।
1: सबसे पहले तो मैं जो सुन रहे हैं जितनी भी श्रोतागण हैं, मैं उनको बताना चाहूँगा कि ये फिल्मों में जो ग्लैमराइज किया जाता है, फौज में आने के सबसे पहले दिन तो आपका ग्लैमर जाता है, वो ग्लैमर छूटता है सबसे पहले, क्योंकि आप ग्लैमर के बल पे आप ये बहुत लंबी सेवा नहीं दे सकते हैं
0: जी।
1: इसमें आपके अंदर जो राष्ट्र प्रेम की भावना
0: जी,
1: जो राष्ट्र के प्रति जो आपकी सेवा भाव है जो अंतर्निहित किया जाता है, वही आपको लंबे समय तक बतौर फौजी आपको खींचेगा। तो जैसा आप बता रहे हैं कि जब गोलियां चलती हैं
0: जी,
1: तो हमारी तैयारी इसी क्षण के लिए होती है। एक फौजी के जीवन में ये सबसे बड़ा क्षण होता है कि जब उसको सामने एक ऐसा व्यक्ति है जिसने समाज के में कई हत्याएं की हैं
0: जी,
1: कई बेगुनाहों की जान ली है, जब वो उसका खात्मा करता है तो हम इसे किलिंग नहीं, इसे हम वध मानते हैं। और एक राक्षस का वध करते हुए जो अनुभूति होती है, जो आनंद आता है, वो
0: उसके कहने क्या है,
1: उसको लफ्जों में बयान नहीं किया जा
0: सकता। क्या बात है। और इसीलिए देश की मिट्टी को सलाम करने को जी चाहता है उसी जज्बे के साथ, जिस जज्बे के साथ शिवम कुमार ने इस खतरनाक ऑपरेशन को कामयाबी के साथ अंजाम दिया। सर मैं और अब इंतजार नहीं कर सकता, मैं आपको एक एक करके कुछ मैसेजेस पढ़ करके सुनाऊंगा। शुरुआत जो सबसे पहले मैसेज आया हमारे पास यहां पर, बोथ आरजे एंड असिस्टेंट कमांडेंट शिवम जी एंड ऑल एआईआर न्यू दिल्ली फ्रॉम, ये मुबारकबाद दे रहे हैं, वणक्कम नमस्कारम। और ये हैं श्रीरंगम राजेश, श्रीरंगम त्रिची त्रिचुपल्ली तमिलनाडु से
1: जी, धन्यवाद और जय हिंद राजेश जी आपको।
0: और इसके बाद है एक मैसेज, जय हिंद साहब, बहुत बहुत मुबारक सर आपको, एसएसबी के जरिए पूरे देश का नाम रोशन कर रहे हैं आप, आपके साथ
1: कजरा लिखा है,
0: हाँ कजरा में काम कर रहे, बहुत कुछ सीखने को मिला साहब, जय हिंद। सर ये आपके कोई एसोसिएट, कोई आपके साथी या जूनियर लगते हैं?
1: बिल्कुल ये मेरे साथ के हैं, मेरे अच्छा। जूनियर और सीनियर तो है, ये पूरी टीम की बात है क्योंकि
0: जी बिल्कुल बिल्कुल
1: मेरे टीम के साथी हैं,
0: साथी हैं,
1: कार्य किया है हमारे साथ।
0: और इसके बाद ये जय हिंद टू रेस्पेक्टेड गेस्ट सर एंड आरजे सर हियर, आई वुड लाइक टू पे माय ग्रेटिट्यूड टू शिवम सर एंड ऑल आवर इंडियन आर्मी फ्रॉम बॉटम ऑफ माय हार्ट, इट्स बिकॉज देयर सेल्फलेस सर्विस विद डेडिकेशन डिवोशन दे डिस्चार्ज देयर ड्यूटी फेयरलेसली, दे आर रियल हीरोज, I bow my hat to them, so I would say Jai Hind, Bharat Mata ki Jai, Vande Mataram. Myself, Shankar Lodh, and my wife, Anjali Lodh, offer obedience to all my, to them. My request to Arjun sir, please forward my message, Shivam sir. Thank you. Sir, aapka message humne pahuncha diya hai, Shivam sir sun rahe hain.
1: Ji, dhanyawad, Mrs. and Mr. Lodh ji. Main आशा करता हूं कि आप ये सभी संदेश जो फौजियों के द्वारा दिया जा रहा है उसको सुन रहे हैं
0: जी,
1: और इस चीज के लिए आपका धन्यवाद
0: जी। इसके अलावा मैसेज है, ये शुभ संध्या कह रहे हैं, जय हिंद, राजेश भल्ला एडवोकेट है कंकड़खेड़ा मेरठ से
1: जी। बिल्कुल धन्यवाद आपको राजेश जी, मुझे और खुशी है कि
0: जी
1: एडवोकेट से लेकर के टीचर सभी वर्ग के लोग हमारा इस संदेश को सुन रहे हैं।
0: बिल्कुल सर, अपने कर्म और मजबूत इरादों के लिए पहचाने गए नक्सल उन्मूलन हेतु कृत संकल्प राष्ट्र प्रेमी को सैल्यूट है। ललन मिश्र रांची झारखंड से सर ये मैसेज कर रहे हैं आपको
1: जी। बिल्कुल, रांची मेरी जन्मभूमि कर्मभूमि रही है, तो यहां से मैसेज आया।
0: बिल्कुल, आपके अदम्य साहस और त्याग के कारण ही हम अपने घरों में सुरक्षित चैन की नींद सो पाते हैं, आप हमारे असली नायक हैं, जय हिंद जय भारत, यह है नेहा मिश्रा सर।
1: मुझे खुशी है कि समाज के सभी लोग फौज के कार्यों का, फौज की जो भी ड्यूटीज होती हैं उसका इतना सम्मान कर रहे हैं।
0: और ये है सर, जय हिंद सर, प्लीज एक कविता भारत माँ के नाम कहिए, रोहित मेहर हैं ये विजयपुर बारगढ़ उड़ीसा से
1: जी। रोहित जी धन्यवाद, मैं कविता सुनाऊंगा आपको अंत में
0: जी। बिल्कुल बिल्कुल, हम जरूर सुनना चाहेंगे सर। हम लोगों का शिवम सर के साथ काजरा बिहार में कार्य करने का अनुभव बहुत उम्दा रहा, शिवम सर का पुलिस को जनता से करीब लाने का बहुत बड़ा योगदान रहा है काजरा लखीसराय बिहार में। सर ये भी आपके कोई साथी लगते हैं, सौम्य झा इनका नाम आ रहा है
1: जी। बिल्कुल, ये मेरे

0: साथ के ही हैं, और हमारा उद्देश्य यही होता था कि जनता और पुलिस के बीच, फोर्स के
1: जी
0: बीच की जो खाई है,
1: जी
0: उसको, उस खाई को पाटना ही हमारा
1: पाटना है,
0: उद्देश्य था।
1: बिल्कुल करीब लाना है। जय हिंद सर, मैं आपको सुन रही हूं, आपकी बातें और आपकी, आपके जज्बे को सलाम करती हूं। उम्मीद करती हूं हमारे देश के नौजवान प्रभावित होकर देश सेवा के लिए आगे बढ़ेंगे। धन्यवाद। मैं शबनम हूं, बी के दत्त कॉलोनी नई दिल्ली से। गैलेंट्री अवार्ड के लिए बहुत बहुत बधाई दे रही है सर ये आपको।
0: धन्यवाद शबनम जी, जय हिंद।
1: और ये हैं शिवम जी, यू आर अ पर्सन ऑफ ग्रेट विल पावर एंड करेज, एट द सेम टाइम यू आर वेरी काइंड ह्यूमन, अ ट्रू इंस्पिरेशन फॉर आर यंगर जनरेशन। मैसेज आया सर ये विश्वजीत बिहार से, प्राइड ऑफ नेशन, प्राइड ऑफ बिहार, शिवम कुमार
0: धन्यवाद विश्वजीत जी हमारे कार्यों की सराहना करने के लिए।
1: जी। और यह है सर, हेलो सर, ग्वालदाम में महिलाओं की ट्रेनिंग के लिए बहुत अच्छे से आपने काम किया है। ये हैं मृदुल झा।
0: जी धन्यवाद मृदुल जी आपको, ये मुझे उम्मीद है कि ये शायद हमारे यहाँ माउंटेनियरिंग कोर्स जो महिलाओं का चल
1: जी
0: रहा
1: जी
0: है
1: जी
0: उसकी
1: ये
0: ट्रेनिंग।
1: उसकी जरूर जरूर पार्टिसिपेंट रही होंगी। मैं नरपत सिंह, उप कमांडेंट सशस्त्र सीमा बल अंतागढ़ कांकेर छत्तीसगढ़, अपने 60 जवानों के साथ आपका कार्यक्रम सुन रहे हैं सर। ये FM रेनबो की पूरी टीम को हार्दिक आभार। कार्यक्रम अत्यंत प्रेरणादायक और आनंददायक है। हमारे साथ श्री दकेश्वर प्रसाद चंद्र, सहायक कमांडेंट भी उपस्थित हैं। उनकी ओर से भी शिवम जी एवं पूरी टीम को विशेष रूप से जय हिंद।
0: नरपत सर 4 बार के गैलेंट्री विनर हैं, मैं इनको
1: ओके
0: अपना गुरु मानता हूं, और हमारे टीम के ये ग्राउंड कमांडर्स में से एक थे, तो
1: ओके,
0: जो
1: क्या
0: जो मैंने सीखा है इन्हीं सीनियर्स से सीखा है,
1: बात
0: तो
1: है सर। तो नरपत सिंह
0: धन्यवाद
1: जी भी हम बहुत बहुत आभार प्रकट करते हैं अपने इस शो के माध्यम से। आपने हमें मैसेज भी किया सर, बहुत बहुत धन्यवाद। और यह है शिवम सर, एन इंस्पिरेशन फॉर मेनी, फीलिंग वेरी प्राउड ऑफ हिम। ही ट्रूली डिजर्व ऑल द एक्लेड्स बिकॉज ऑफ हिज टीम एंड देयर डेडिकेटेड एफर्ट्स। अ लॉट ऑफ पीपल टुडे लिव टेरर फ्री, प्राउड ऑफ हिम। आयुष दाडिच हैं ये नई दिल्ली से।
0: जी बिल्कुल, ये हमारे जूनियर हैं और मैं उम्मीद
1: अच्छा
0: करता हूँ कि जिस पहल की शुरुआत हम लोगों ने की है
1: जी
0: उस पहल को आगे आने वाले जितने भी अधिकारी हैं उसको मकाम तक ले जाएंगे अपनी टीम के साथ।
1: बिल्कुल, और आयुष भी उसका हिस्सा रहेंगे।
0: जी बिल्कुल,
1: और यह है नक्सली ऑपरेशन को सक्सेसफुल बनाने के लिए बहुत बहुत बधाई शिवम जी, प्राउड ऑफ। शालिनी पाठक लिख रही है आपके लिए।
0: धन्यवाद शालिनी जी आपका।
1: और यह है मैं सोता हूं रातों को चैन से, क्योंकि मैं जानता हूं मेरे लिए कोई जाग रहा है। शिव है ये मेरठ से।
0: ये हमारा फर्ज है, हमने राष्ट्र सेवा की कसम खाई है, और आप ऐसे ही आप चैन से सोएं यही हमारी कल्पना है।
1: और यह है सर, शिवम सर के साथ कचरा में काम करने का अवसर मिला। कई ऑपरेशन में उन्होंने अपनी टीम का नेतृत्व किया। शिवम सर का नक्सलियों के लिए डायलॉग था कि या तो तुम अपनी हरकत छोड़कर समर्पण कर दो या ये देश, वरना अंजाम तो जानते ही हो। टीम को सदा फ्रंट से लीड किया है, ये कह रहे हैं पंकज लखीसराय से। सर आपके साथ ही हैं भी।
0: जी पंकज हमारे साथ के थे, और ये सभी जांबाज ये टीम मेंबर्स हैं मेरे, जिन्होंने
1: जी
0: गोलियों के सामने जिन्होंने सभी ऑपरेशंस को अंजाम दिया
1: जी
0: है।
1: जी जी और आपका पूरा पूरा साथ दिया और अपने आपको बिल्कुल कदम से कदम मिला करके।
0: जी बिल्कुल, ये इनके बिना ये सारी उपलब्धि या ये सारा ऑपरेशन ये
1: जी
0: संभव ही नहीं था।
1: बिल्कुल। और एक और मैसेज है सर, जय हिंद सर, जब भी आपका प्रोग्राम सुनते हैं संदेश टू सोल्जर, हमारे रोंगटे खड़े हो जाते हैं। सर आपको बहुत बहुत बहुत जय हिंद। हम भी सर अपने बच्चों के को आर्मी में भेजना चाहते हैं। हम संजय बोल रहे हैं उत्तम नगर से नई दिल्ली, और आपका प्रोग्राम बहुत बहुत अच्छा है, और हमारे आर्मी के सभी जवानों को जय हिंद कह रहे हैं ये।
0: ये धन्यवाद संजय जी, और एक बार फिर से जैसा इन्होंने कहा मैं FM रेडियो को, FM रेनबो को धन्यवाद देना चाहता हूँ
1: जी
0: कि जो देश विदेश के सभी लोगों को फौज के द्वारा जो भी कार्य किए जा रहे हैं उससे अवगत करा रहा है, और फौज के
1: बिल्कुल
0: राष्ट्रप्रेम की झागना को, भावना को प्रज्वलित कर रहा है लोगों के अंदर।
1: बिल्कुल सर, आकाशवाणी रेनबो का ये हमारे आर्म्ड फोर्सेस को डेडिकेटेड शो है ये, और ये है संदेश टू सोल्जर्स। सर आपके साथ बातचीत का ये सिलसिला जारी रहेगा। जो समय हमारे पास बचा है वो बहुत तेजी के साथ गुजर रहा है, आपके साथ बातचीत करते हुए इस जोश और जज्बे के साथ। हमारे साथ हैं श्री शिवम कुमार, असिस्टेंट कमांडेंट सशस्त्र सीमा बल। आप सुन रहे हैं संदेश टू सोल्जर्स शाहिद के साथ।

102.6 नंबर वन रेडियो आपके अपने रेनबो पर प्रोग्राम चल रहा है संदेश टू सोल्जर्स. आप हैं शायद के साथ और हमारे साथ हमारे आज के खास मेहमान श्री शिवम कुमार, सहायक कमांडेंट हैं सशस्त्र सीमा बल. सर, हम आपसे बहुत ही शानदार और जोश और जज्बे से भरी हुई बातें यहां पर कर रहे हैं और लगातार मैसेजेस का भी सिलसिला जारी है. मैं आपको जैसे भी बता रहा था तो हम यहां पर अब आगे बढ़ेंगे सर और जानना चाहेंगे कि आपकी जो लीडरशिप स्किल्स हैं, आपका ऑपरेशनल एक्सेलेंस है जो आपने एंटी नक्सल ऑपरेशंस में दिखाया, उसके अलावा आपने कई खतरनाक वांटेड एक्सट्रीमिस्ट और क्रिमिनल्स को भी ढेर करा, उनको पकड़ने में पूरे पूरे सक्सेसफुल ऑपरेशन चलाए. उसके अलावा आपने इसके अलावा भी कई हाई रिस्क ऑपरेशंस अंजाम दिए हैं जिनके लिए आपको बहुत सारे अवार्ड से नवाजा गया है, जिसमें सबसे पहला प्रेस्टिजियस अवार्ड था पुलिस मेडल फॉर गैलेंट्री 2024 में. उसके अलावा आपको कई सारे मेडल्स, कमेंडेशंस और एप्रिसिएशन मिले हैं, सर्टिफिकेट्स मिले हैं डायरेक्टर जनरल SSB से, इंस्पेक्टर जनरल डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट से, सुपरिनटेंडेंट ऑफ पुलिस से और कमांडेंट से और अदर सीनियर ऑफिसर से भी. आपको आपकी परफॉर्मेंस के लिए, आपकी ऑपरेशनल अचीवमेंट्स के लिए, आपकी लीडरशिप के लिए, आपके

0: प्रोफेशनलिज्म के लिए, पब्लिक स्पीकिंग, और साथ ही एक चीज और भी जो आपके साथ जुड़ी हुई, इतनी सारी आपकी जो खूबियां हैं उनके साथ साथ, कि आपकी जो लीडरशिप स्किल है, पब्लिक स्पीकिंग है, आप किस तरीके से मोटिवेट करते हैं यंगस्टर्स को, और साथ ही साथ फोर्स लेवल डिबेट कॉम्पिटिशंस भी आप कंडक्ट कर चुके हैं और बहुत ही शानदार तरीके से उसको परफॉर्म करते हैं, तो इसके बारे में कुछ बताइए
1: जी। शाजी जी, इसमें सबसे प्रथम ये है कि आप जिसके साथ भी कार्य करते हैं, तो हमारे के जितने भी टीम मेंबर्स होते थे, हमारे जितने भी साथी होते हैं, इरेस्पेक्टिव ऑफ रैंक,
0: जी
1: आपको ये समझना पड़ेगा कि आप फर्स्ट अमंग द इक्वल्स हैं, आप उनके साथ के ही हैं। जब आप उनकी परिस्थिति को समझेंगे, जब आप उनके शूज़ में आएंगे, तभी आप उनको मोटिवेट कर सकते हैं। तो एक कमांडर का सर्वप्रथम यह कार्य है कि वो अपने साथियों की परेशानियों को समझे,
0: जी
1: उनको

0: कि वो अपने साथियों की परेशानियों को समझे,
1: जी
0: उनको बेस्ट से बेस्ट फैसिलिटीज़ मुहैया करवाए और उनको मोटिवेटेड रखे कि हर परिस्थिति में, चाहे वो प्रोफेशनल हो या पर्सनल इश्यूज हो,
1: जी
0: लगातार उसको केटर करे, उसकी उसकी समस्या का निराकरण करने की कोशिश करे और हर वक्त उसके साथ खड़ा हो, उसके अच्छे दिन में, उसके बुरे दिन में। तभी जा करके वो फौजी या वो जो भी आपका सबॉर्डिनेट है,
1: जी
0: वो आपसे आगे, जब भी बाधा आएगी, जब भी गोली आएगी, तभी वो आपसे आगे, कमांडर के आगे वो खड़ा होगा। जब उसको पता होगा कि उसका कमांडर उसके लिए हर क्षण खड़ा है,
1: बिल्कुल,
0: तभी वो आपके लिए खड़ा होगा।
1: तभी वो खड़ा होगा क्योंकि आप उसके लिए पहले से खड़े हैं। सर, हम आपके अवार्ड्स और जो कमेंडेशंस हैं और जो आपके मेडल्स हैं उनकी बात करते हैं। नवंबर 2025 में एंटी नक्सल ऑपरेशंस और शानदार लीडरशिप के लिए ऑनरेबल गवर्नर साहब और चीफ मिनिस्टर ऑफ झारखंड ने भी आपको अवार्ड से सम्मानित किया था। वो कौन सा अवार्ड था?
0: जी, मुझे एंटी नक्सल ऑपरेशंस के लिए 2024 के नवंबर में,
1: जी
0: 2025 के नवंबर में,
1: 2025 नवंबर, जी
0: 2025 के नवंबर में, क्योंकि मैं झारखंड का रेसिडेंट हूँ,
1: जी
0: तो मुझे झारखंड के ऑनरेबल गवर्नर एवं ऑनरेबल सीएम के द्वारा सम्मानित किया गया था, क्योंकि मैं वहाँ का वासी हूँ, मेरा स्टेट झारखंड है और मैंने अपने फोर्स के लिए और अपने देश के लिए या अपने टीम के साथ मिलकर मुझे ये कार्य करने का अवसर मिला था,
1: जी
0: इसका सम्मान किया गया था झारखंड सरकार के द्वारा।
1: जी और सर, इसके अलावा आपको उत्तराखंड सरकार की तरफ से भी, चीफ मिनिस्टर साहब की तरफ से भी जनवरी 2026 में भी आपको सम्मानित किया गया था। आपकी जो जो एज ए ट्रेनर CINJW स्कूल SSB गोलदाम में आपने जो अपनी सेवाएं दी एज ए ट्रेनर, उसके लिए भी आपको ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर ऑफ उत्तराखंड ने भी सम्मानित किया था।
0: जी, मेरी अभी जो करेंटली जो मेरी पोस्टिंग है
1: जी
0: वो CINJW स्कूल SSB ग्वालदम में, उत्तराखंड में है, जहाँ मैं बतौर ट्रेनर हूँ। तो पिछले 2 वर्षों से मेरी सेवाओं को फैसिलिटेट करने के, उसको सम्मानित करने के लिए मुझे ये मौका मिला कि मेरे सीनियर्स के द्वारा मेरा नाम नामित किया गया। मेरे
1: जी
0: DIG सर थे, श्री DN बॉम्बे सर, उन्होंने मेरा नाम नामित किया और मुझे झारखंड उत्तराखंड के माननीय मुख्यमंत्री द्वारा ये पुरस्कार दिया गया।
1: जी तो ये सर इतने सारे पुरस्कार हैं, इतने सारे आपके जो कमेंडेशंस हैं, मेडल्स हैं, अवार्ड्स हैं, इनको पा करके आप सर कैसा महसूस कर रहे थे और करते हैं?
0: सच पूछूं तो जब भी कोई ये कार्य करता है, अपने एंटी नक्सल ऑपरेशंस में मैं जा रहा था, तो सर्वप्रथम इसमें ऐसा नहीं था कि पुरस्कार के लिए ये चीज़ें की जाती हैं,
1: जी
0: क्योंकि
1: बिल्कुल
0: तब सिर्फ राष्ट्र हित और देश हित का जो जज्बा है वही आपको इन चीज़ों के लिए मोटिवेट करता है, लेकिन पुरस्कार उसका फल है। तो मैंने जितने भी ऑपरेशंस किए, मैंने अपने सीनियर से सीखा है कि आप फल के पीछे ना भागें, क्योंकि ये ऐसी चीज़ है जहाँ पे कि जिंदगी और मौत जो है वो लाइन पे खड़ी होती है। तो इसके लिए पुरस्कार सिर्फ आपका मोटिवेटिंग फैक्टर नहीं हो सकता, ये टीम एफर्ट है, राष्ट्रहित की भावना है जिसके
1: जी
0: लिए मैं ये कर रहा था,
1: जी
0: और जब पुरस्कार से इसको नवाजा जाता है तो निश्चित रूप से ये अच्छा प्रतीत होता है।
1: बेशक, और हौसला और भी बढ़ता है और आपके जो भी साथी होते हैं उनको भी हौसला मिलता है। सर, ये सब ऑपरेशंस में, इतनी सारी आपकी ट्रेनिंग में, इतने आपके कोर्सेज में और फैशन टेक्नोलॉजी से SSB में आने में, परिवार का आपका किस तरीके से पूरा एक रोल रहा, सहयोग रहा, कैसी सपोर्ट रही, ये भी बताइए।
0: जी, मैं बताना चाहूँगा कि मैं सौभाग्यशाली हूँ कि मैं बड़े परिवार से आता हूँ, जिसमें कि तीन, हम लोग चार भाई बहन हैं और मेरे माता पिता हैं और मेरी शादी हो चुकी है, मेरी धर्म पत्नी भी हैं।
1: जी
0: तो मेरे पिताजी ने और मेरी माँ ने इसका खुले दिल से इसका सपोर्ट किया जब मैं फोर्स में
1: जी
0: आना चाहता था। हालांकि मेरी माँ डरती थी इस चीज़ से, लेकिन
1: ओके
0: मेरे पिताजी ने बहुत बार मुझे मोटिवेट किया। और मेरे जितने भी भाई बहन हैं और जितने मेरे रिलेटिव्स हैं, मेरे बड़े भाई, मेरी बड़ी बहन, मेरी दो बहनें बड़ी हैं, एक मेरे बड़े भाई साहब हैं,
1: अच्छा
0: उन्होंने मुझे मोटिवेट किया इस चीज़ के लिए लगातार। और अंत में जिस व्यक्ति का एक और बहुत महत्वपूर्ण योगदान रहा है, वो है
1: जी
0: मेरी पत्नी। उन्होंने लगातार, क्योंकि सबसे ज़्यादा उनको ही इस कठिनाई को झेलना पड़ता था जब मैं बाहर रहता था,
1: जी
0: 3-4 दिनों तक मेरी बात नहीं होती थी उनसे, तो
1: तो
0: वो
1: जाहिर है ये
0: बहुत
1: सपोर्ट तो सबसे इम्पोर्टेंट
0: सबसे
1: सपोर्ट।
0: हाँ ये ऐसा सपोर्ट था जिसकी कि मैं कल्पना नहीं की थी मैंने, तो मैं उसके लिए सौभाग्यशाली हूँ कि मुझे ऐसा परिवार मिला है।
1: सर बिल्कुल, समय हमारे पास खत्म हो चुका है और बातें बहुत सारी बची हुई हैं और मैसेजेस इतने आ चुके हैं मेरे पास कि अगर मैं पढ़ना शुरू करूं तो मुझे लग रहा है कि 15-20 मिनट उसी में निकल जाएंगे। लेकिन मैं बस चलते चलते आपसे एक दो मैसेज पढ़ने के बाद चाहूंगा कि आप युवाओं को मोटिवेट करने के लिए कोई बात कहना चाहें तो वो कहें, और साथ ही अपनी वो एक स्पेशल कविता की चंद पंक्तियां भी जरूर सुनाइएगा। और मैं आपको तब तक एक दो पैसेज बता दूं सर, ये है वी आर प्राउड ऑफ यू शिवम सर, रागिनी है गुवाहाटी से। इसके अलावा जय हिंद सर, रजनीकांत रघुनाथ पाटिल महाराष्ट्र वार्ड 1 से। इसके अलावा ये हैं हमारे देश के फौजी भाइयों की हमारे को हमारे ओर से सल्यूट, और काफी लंबा मैसेज है, ये है पंडित चनप्पा सौंदर्य तेजस्विनी सरवाद से। और

0: आप इसी तरह सभी को प्रेरणा देते रहें। और जय हिंद कह रहे हैं, यह हैं सरिता मिश्रा जी। और इसके अलावा प्रसाद दुबासी, एच सी आर्मर सर, योर लीडरशिप इज इंस्पायरिंग एंड यू आर एन एक्सेलेंट ऑफिसर और योर वी अप्रिशिएट योर डेडिकेशन एंड प्रोफेशनलिज्म। शायद ही आपके साथ ही होंगे।
1: बिल्कुल मेरे साथ ही हैं और मुझे इस बात का गर्व है कि इसमें से मोस्टली जितने हैं उन्होंने मेरे साथ कार्य किया है, तो ये एक अच्छी बात।
0: सर बहुत बहुत धन्यवाद आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। आप हमारे शो में आए और अपना समय निकाला। श्री शिवम कुमार सहायक कमांडेंट सशस्त्र सीमा बल आज के संदेश सोलो के हमारे खास मेहमान। धन्यवाद बहुत बहुत सभी लिसनर्स का और हमारे आज के खास मेहमान का।
1: धन्यवाद सर।
0: जय हिंद।
1: जय हिंद। जय भारत।

आपने ट्यून किया है आकाशवाणी का वाराणसी केंद्र। धरती के गीत कार्यक्रम में प्रस्तुत है कुमायुनी गीत। कलाकार हैं विमला बोरा और साथी। सबसे पहले लीजिए सुनिए ये छपेली।

विमला बोरा और साथी की आवाज़ में आप सुन रहे थे ये छपेली। अब आइए सुनते हैं एक और छपेली।

धरती के गीत कार्यक्रम में अभी आप सुन रहे थे कुमायुनी गीत। कलाकार थी विमला बोरा और साथी। ये कार्यक्रम आप आकाशवाणी के वाराणसी केंद्र से सुन रहे थे।

हम आकाशवाणी के वाराणसी केंद्र से बोल रहे हैं। प्रस्तुत है युवा साथियों का कार्यक्रम युववाणी।

0: जब नाम तुम्हारा खोजा जाए और काम तुम्हारा जग पर छाए, उत्कृष्टता का तुम उदाहरण बनो, आम जन में असाधारण बनो।
1: दोस्तों, कभी भी हमें दूसरों की तरह नहीं बनना चाहिए, बल्कि अपनी खुद की एक पहचान बनानी चाहिए और दूसरों को भी इसके लिए प्रेरित करना चाहिए।
0: और दोस्तों, इन्हीं बातों के साथ स्वागत है आपका आज के कार्यक्रम युवाणी में। मैं हूं आपकी दोस्त आलिया
1: और मैं हूं प्रगति।
0: नमस्कार।

0: वीडियो लाइक करने के पैसे मिलेंगे। सो इजी।
1: अनजान लिंक्स पर क्लिक मत कीजिए। आरबीआई कहता है,
2: जानकार बनिए, सतर्क रहिए।
3: आकाशवाणी वाराणसी से प्रत्येक सोमवार से शुक्रवार तक दिन में 12 बजे सुनिए NCERT द्वारा प्रायोजित कार्यक्रम।
4: सुनो ना।
5: हाँ?
4: सोच रहा हूँ अपना बिजनेस क्यों ना बढ़ा लूँ।
5: तो रोका किसने है? हाँ?
4: रोका तो किसी ने नहीं, पर समझ नहीं आ रहा कि मदद किससे मांगूं।
5: मुझसे।
4: तुमसे? तो अच्छा बताओ फिर।
5: आकाशवाणी है ना, मैंने सुना है उसका नेटवर्क देश भर में फैला है।
4: पर उससे मेरा क्या फायदा?
5: देखो फायदा है, जिस शहर में चाहो विज्ञापन की मदद से उपभोक्ताओं तक पहुंच जाओ।
4: पर अब ये भी तो बता दो कि आकाशवाणी से संपर्क कैसे करूं?
5: बहुत आसान है, मैं बताती हूँ। नंबर नोट करो,
6: 0542227658।
4: ओ
3: 0542227658।
4: लो अभी फोन लगाता हूँ।
3: 0542227658।
7: दोस्तों आज का जो दौर है वो पूरी तरह डिजिटल हो चुका है। हम ज्यादातर कामों के लिए फोन्स, कंप्यूटर्स, टेक्नोलॉजी से जुड़े हुए हैं और उन पर ही निर्भर भी हैं। और ऐसे में भारत सरकार का डिजिटल इंडिया मिशन लोगों की जिंदगी को पहले से कहीं ज्यादा आसान बना रहा है।
8: जी हाँ, इसका मकसद है कि शहर ही नहीं बल्कि गांव-गांव तक तेज इंटरनेट पहुंचे, सरकारी सेवाएं ऑनलाइन मिले और लोग मोबाइल, UPI, QR कोड जैसी सुविधाओं का इस्तेमाल करके घर बैठे सुरक्षित और आसानी से पैसों का लेन देन कर सके। इससे बैंक के चक्कर भी कम लगाने पड़ेंगे, समय की बचत भी होगी और काम भी जल्दी होगा।
7: बिल्कुल, लेकिन सवाल ये है कि क्या सिर्फ डिजिटल सुविधा मिल जाने से सब कुछ बदल जाएगा? नहीं, जब तक लोगों के पास अपना काम शुरू करने का मौका नहीं होगा तब तक इन सुविधाओं का तो पूरा फायदा मिल नहीं पाएगा।
8: बिल्कुल दोस्तों, डिजिटल इंडिया मिशन मुख्य रूप से तीन चीजों पर केंद्रित है। प्रत्येक नागरिक के लिए एक उपयोगिता के रूप में बुनियादी ढांचा तैयार करना, सरकारी सेवाओं को रियल टाइम में ऑनलाइन और मोबाइल प्लेटफॉर्म पर अवेलेबल करवाना, सभी नागरिकों को डिजिटल रूप से साक्षर बनाना और डिजिटल संसाधनों तक उनकी पहुंच को आसान करना है।
7: बिल्कुल, और दोस्तों डिजिटल होने के साथ हमें अपने रोजगार का भी तो ध्यान रखना है ना। तो जब स्टार्टअप इंडिया योजना है और आप ऑनलाइन सक्रिय हैं, खास करके डिजिटली आप एक्टिव हैं, तो दिक्कत कहाँ है? इस योजना की मदद से हमें व्यवसाय में मदद मिलती है।

0: है, साथ ही कई लोगों को तो रोजगार भी मिलेगा।
1: स्टार्टअप इंडिया योजना के अंतर्गत सरकार नए उद्यमियों को वित्तीय सहायता, कर में छूट, सरल पंजीकरण प्रक्रिया, प्रशिक्षण, मार्गदर्शन तथा निवेशकों से जुड़ने जैसी अनेक सुविधाएं प्रदान करती हैं। इससे देश में नवाचार यानी इनोवेशन और आत्मनिर्भरता को भी बढ़ावा मिलता है।
0: और दोस्तों, अगर किसी ने इस योजना की मदद से अपना छोटा सा बिजनेस शुरू किया है, स्टार्टअप शुरू किया है, तो वो अपने ग्राहकों से यूपीआई या क्यूआर कोड के जरिए भुगतान भी ले सकता है, अपने कारोबार का प्रचार ऑनलाइन भी कर सकता है और सरकारी सुविधाओं का लाभ भी आसानी से उठा सकता है। मतलब आप डिजिटल इंडिया पूरी तरह से बन रहे हैं।
1: जी हाँ, भारत में युवाओं की बढ़ती प्रतिभा, नए विचारों और उद्यमिताओं को बढ़ावा देने के उद्देश्य से भारत सरकार ने स्टार्टअप इंडिया योजना की शुरुआत 16 जनवरी 2016 में की थी। इस योजना का उद्देश्य देश में ऐसे नए व्यवसायों को प्रोत्साहित करना है जो नवीन तकनीक, नए उत्पाद, सेवाएं या व्यावसायिक मॉडल विकसित करके रोजगार के अवसर प्रदान करते हैं।
0: बिल्कुल, यानी डिजिटल इंडिया लोगों को तकनीक से यानी टेक्नोलॉजी से जोड़ता है, जबकि स्टार्टअप इंडिया क्या करता है, उन्हें अपने पैरों पर खड़े होकर आगे बढ़ने का अवसर देता है। जब ये दोनों योजनाएं साथ मिलकर काम करती हैं ना दोस्तों, तो देश में रोजगार बढ़ता है, छोटे कारोबार मजबूत होते हैं और भारत आत्मनिर्भर बनने की दिशा में तेजी से आगे बढ़ता है। अभी कार्यक्रम में और भी बातें हैं, पर उससे पहले आइए सुनते हैं ये गीत।

0: तो दोस्तों, अब वक्त है अपनी भाषा को और मजबूत बनाने का। आइए जानते हैं आज के हमारे खास हिंदी और इंग्लिश के शब्द यूथ डायरी में। तो आज का हमारा हिंदी का शब्द है विवेचना, जिसका अर्थ है किसी विषय, वस्तु या घटना की गहराई से विश्लेषण, जांच और विस्तृत व्याख्या करना। इसके अंतर्गत सही गलत का निर्णय लेने और किसी निष्कर्ष पर पहुंचने के लिए तार्किक रूप से सभी पहलुओं पर विचार किया जाता है।
1: दोस्तों, हमारा अंग्रेजी शब्द है इम्पिटस। इम्पिटस की स्पेलिंग है IMPETUS। इम्पिटस इज अ ड्राइविंग फोर्स, मोटिवेशन और स्टिमुलस दैट इनकरेजेस एन एक्टिविटी और प्रोपेल्स अ प्रोसेस फॉरवर्ड। इट प्रोवाइड्स द वाई और द पुश बिहाइंड एन एक्शन, एन इनिशिएटिव और अ फिजिकल मूवमेंट। इट्स सिम्टम्स आर मोमेंटम, इम्पल्जन और प्रोपल्जन। It can be used in sentence as the debate seems to have lost much of its initial impetus.
0: और अब बारी है आज के क्वेश्चन ऑफ द डे जानने की। तो चलिए बिना देर किए हम जानते हैं कल का क्वेश्चन और उसका सही आंसर देने वाली।
1: दोस्तों के नाम। और दोस्तों, कल का हमारा आपसे सवाल था कि हाल ही में यूनेस्को द्वारा किस भारतीय शहर को संगीत का शहर घोषित किया गया है, और इसका सही जवाब है ग्वालियर। दोस्तों, हाल ही में यूनेस्को ने ग्वालियर को इसकी समृद्ध शास्त्रीय संगीत परंपरा के लिए सिटी ऑफ म्यूजिक का दर्जा प्रदान किया है। एक विशेष बात ये भी बता दें कि बहुत से दोस्तों ने वाराणसी में जवाब भेजा था, वो भी एक तरह से सही है दोस्तों, क्योंकि वर्ष 2015 में सिटी ऑफ म्यूजिक के रूप में वाराणसी को क्रिएटिव सिटीज नेटवर्क यूनेस्को ने चुना था, और इसे भी सिटी ऑफ म्यूजिक का खिताब मिला था। और आज के हमारे विनर्स के नाम है ये।
0: ग्राम जसवाड़ी, जिला खंडवा, मध्य प्रदेश से दुर्गेश नागनपुरे, राधेश्याम नागनपुरे, वंदना, भावना, बिंदु, गोलू, कुसुमबाई बाबू, दिव्यांश और सूरज कुमार ढाक से। ग्राम खैगांव, तहसील महेश्वर से प्रेमलाल वर्मा, वेदिका वंश, निकेश धर्मेंद्र, मेघा नंदिनी, हर्षिता और ममता बाई वर्मा। रिंग रोड, नर्मदा नगर, मध्य प्रदेश से सूरज वर्मा, नीरज शिवम, धीरज चिंता वर्मा, ऋषभ कनक और भावना वर्मा। नेपानगर, मध्य प्रदेश से प्रभु दयाल शिवदे, शिवा, बसंती बाई और गणेश शिवदे। संगीत की नगरी खंडवा से श्याम बाई।
1: श्याम भाई रायकवार। और दोस्तों, उत्तम कुमार बघेल, रुक्मणी बघेल, साहिल भारती।

0: गिल लगान पंडरिया छत्तीसगढ़ से, चंदा चंदौली से। और इसी के साथ दोस्तों बारी है आज के सवाल को जानने की, तो अपनी रेडियो की आवाज़ थोड़ी बढ़ा लीजिए और ध्यान से सुनिए हमारा आज का सवाल, जो है कि ब्रिज मैन ऑफ इंडिया किसे कहा जाता है। सवाल एक बार फिर से सुन लीजिए, ब्रिज मैन ऑफ इंडिया किसे कहा जाता है।
1: तो आप अपना जवाब हमें भेज सकते हैं हमारी इंस्टा आईडी youth AIR वाराणसी, या फिर हमें मेल कर सकते हैं हमारी ईमेल आईडी youth AIR VNS@gmail.com पर। तो फटाफट से अपना फ़ोन उठाइए और हमें भेजिए अपना जवाब।
0: बिल्कुल। और प्रगति, मुझे क्या लगता है ना कि जब हम नए नए शब्द लेकर के आते हैं, नई जानकारियाँ देते हैं या नए सवाल पूछते हैं जिनसे हमारे दोस्तों को ढेर सारी जानकारियाँ मिलती हैं, तो उन्हें बहुत पसंद आता होगा ये, क्यों?
1: बिल्कुल आलिया, जब पूरी जानकारी इतने अच्छे से बताई जाए तो पसंद तो आएगी ही। वैसे तुम्हें क्या पसंद है?
0: मुझे पसंद है हमारे दोस्तों से बातें करना, फोन चलाना, कुछ नया सीखना, खाना खाना और बनाना भी। और तुम्हें क्या पसंद है?
1: आलिया, मुझे तो सबसे ज्यादा पसंद है गाने सुनना और सबको सुनवाना।
0: तो हाँ, गाने सुनना तो भाई हमारे दोस्तों को भी पसंद है, तो तुम अभी किसका इंतजार करोगी? वो सुनवाओ ना अपनी पसंद का कोई गाना।
1: हाँ बिल्कुल, सुनो।

0: दोस्तों, अब कार्यक्रम में आगे बढ़ते हुए आइए जाने कि आज के दिन इतिहास में क्या क्या खास हुआ था। तो भारत के सबसे बड़े शेयर बाजार यानी बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज की स्थापना आज के ही दिन वर्ष 1875 में हुई थी, और विंबलडन चैंपियनशिप की शुरुआत भी आज के दिन ही हुई थी वर्ष 1877 में।
1: 9 जुलाई 1762 में कैथरीन द ग्रेट अपने पति सम्राट पीटर तृतीय के खिलाफ तख्ता पलट करके रूस की महारानी बनी थी।
0: और दोस्तों, आज ही के दिन वर्ष 1925 में भारतीय सिनेमा के सबसे सशक्त अभिनेताओं एवं बेहतरीन निर्देशकों में शुमार गुरुदत्त का जन्म हुआ था। इनकी लोकप्रिय फिल्मों में प्यासा, कागज के फूल, साहिब बीवी और गुलाम, सुहागन, काला बाजार, CID और 14वीं का चांद शामिल हैं।
1: और 9 जुलाई 1948 में अपने सशक्त अभिनय से हिंदी सिनेमा को समृद्ध बनाने वाले अभिनेता संजीव कुमार का जन्म भी आज ही के दिन हुआ था, जिसमें शोले, सीता और गीता, त्रिशूल, अनामिका, सिलसिला, मौसम जैसी फिल्मों में इन्होंने काम कर भारतीय सिनेमा को एक नए आयाम दिए।
0: दोस्तों, आज ही के दिन वर्ष 1951 में देश में पहली पंचवर्षीय योजना, जो वर्ष 1951 से 1956 तक थी, वो प्रकाशित की गई थी।
1: और आज ही के दिन 1969 में वन्य जीव बोर्ड ने शेर को देश का राष्ट्रीय पशु घोषित किया, और 1973 में शेर के स्थान पर बाघ को राष्ट्रीय पशु भी घोषित किया गया।
0: और दोस्तों, अल्पसंख्यकों हेतु 15 सूत्री कार्यक्रम में आज हम बात करने वाले हैं हमारी धरोहर योजना की। हमारी धरोहर योजना का मुख्य उद्देश्य भारत के अल्पसंख्यक समुदायों की समृद्ध सांस्कृतिक विरासत, पांडुलिपियों और कला के रूपों को संरक्षित करना है, बढ़ावा और दस्तावेजीकरण करना है। वित्तीय वर्ष 2022-2023 से इस योजना के तहत एकीकृत किया गया था, और इसका उद्देश्य है सांस्कृतिक संरक्षण को और कौशल विकास, आर्थिक सशक्तिकरण के साथ जोड़ना। लुप्त हो रही कलाकृतियों, लिपियों और सांस्कृतिक प्रथाओं पर शोध और उनका डिजिटल रिकॉर्ड तैयार किया जाता है इसमें। साथ ही दोस्तों, इस योजना के अंतर्गत प्रदर्शनियों, कार्यशालाओं और सेमिनारों के माध्यम से युवा पीढ़ी को देश की साझा विरासत से परिचित भी कराया जाता है।
1: तो दोस्तों, अगर हम बात करते हैं रोज़गार की, तो इंस्टीट्यूट ऑफ बैंकिंग पर्सनल सिलेक्शन IBPS ने प्रोबेशनल ऑफिसर PO मैनेजमेंट ट्रेनिंग भर्ती का नोटिफिकेशन जारी कर दिया है। इस भर्ती के तहत 6,715 पदों पर नियुक्तियां की जाएंगी। आवेदन प्रक्रिया शुरू हो चुकी है और इच्छुक अभ्यर्थी 21 जुलाई तक ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं, और इसकी अधिक जानकारी के लिए आप इसकी ऑफिशियल वेबसाइट www.ibps.in पर भी विजिट कर सकते हैं।
0: और दोस्तों, कार्यक्रम में आगे बढ़ेंगे, पर उससे पहले आइए सुनते हैं ये गीत।

0: अच्छा प्रगति, तुम्हें पता है अभी जब कुछ दिन पहले बारिश नहीं हो रही थी, इतनी गर्मी थी, तो हमें कितना दिक्कत होता था ना।
1: हाँ
0: और कई जगह पे तो सूखा भी पड़ गया था, मतलब पानी का बहुत ज्यादा कमी हो गया था कई
1: हाँ
0: जगह पे। लेकिन अब जैसे देखो बारिश हो रही है मुंबई में, तो लगातार हो ही रही है, वहां कितनी सड़कों पर पानी भी भर गई है ना।
1: हाँ बिल्कुल
0: और हमारे यहाँ भी बारिश हो रही है, आज भी खूब हुई है और
1: हाँ
0: शायद अभी भी हो रही हो, है ना। तो अब जो बारिश है, इसके पानी को हमें बचाना भी तो होगा,
1: हाँ बिल्कुल क्यों नहीं,
0: तो इस पानी को हम कैसे बचाएं, क्यों ना इसी पे बात कर ली जाए।
1: ठीक है आलिया।
0: तो दोस्तों, बारिश का जो पानी है, ये प्रकृति का अमूल्य उपहार है। यदि इसे हम सही तरीके से संचित करें, तो यह भविष्य में पानी की कमी को काफी हद तक दूर कर सकता है। और पता है, इसके कुछ उपाय भी हैं, जिनमें एक है रेन वाटर हार्वेस्टिंग, यानी वर्षा जल संचयन। घरों या स्कूलों और अन्य इमारतों की छत पर जो गिरने वाला पानी होता है, इसको एक पाइप के माध्यम से एक टैंक या भूमिगत जलाशय में एकत्र कर लें, तो आपकी रेन वाटर हार्वेस्टिंग हो जाएगी।
1: और इसमें दूसरा है भूजल,
0: पुनर्भरण,
1: इसमें सोखता हुआ गड्ढा और रिचार्ज वेल और रिचार्ज पीट।

0: बनाकर वर्षा जल को जमीन के अंदर पहुंचाया जाता है, जिससे भूजल स्तर बढ़ता है।
1: बिल्कुल, और साथ ही ये बारिश का पानी तो हम बचा ही रहे हैं, लेकिन हमें तालाब और झीलों का संरक्षण भी करना होगा। पुराने तालाबों, कुओं और झीलों की नियमित सफाई करना, संरक्षण करना, ताकि उनमें अधिक वर्षा जल जमा हो सके, है ना?
0: हाँ आलिया, और इसके साथ साथ हमें खेतों में भी जल का संरक्षण करना बहुत ज़रूरी होता है, जिससे किसान मेड़बंदी, छोटे तालाब और चेक डैम बनाकर वर्षा के जल को रोक सकते हैं। इससे सिंचाई के लिए पानी भी उपलब्ध हो जाएगा और गर्मी के दिनों में इतना मेहनत भी नहीं करना पड़ेगा किसानों को।
1: बिल्कुल, अब देखो ना, अगर अच्छी बारिश नहीं होगी तो अच्छी फसल नहीं मिलेगी, अच्छी फसल नहीं मिलेगी तो भाई हर चीज़ के दाम बढ़ेंगे,
0: हाँ बिल्कुल,
1: फिर
0: और हम कहीं कहीं लोग भूखे भी मरते हैं उससे।
1: बिल्कुल, तो बारिश होना ज़रूरी है, और उससे भी ज़्यादा ज़रूरी है कि जो भी पानी है, भले वो बारिश का ना भी हो दोस्तों, हम उसको बचाएं हमेशा, जैसे अनावश्यक बहाव रोक दें। अगर बारिश का जो पानी है वो सीधे नलियों में हम बहा दे रहे हैं, तो उसके बजाय अगर हम उसको एक जगह इकट्ठा कर लें तो उसमें क्या बुराई है? हाँ, वो पानी साफ हो, अगर साफ नहीं है तो साफ करने के भी कई तरीके हैं दोस्तों। और अब तो भाई हम डिजिटल हैं, तो हमें हर चीज़ मोबाइल पे उपलब्ध है, तो
0: बिल्कुल,
1: हमें सारी टेक्निक्स मोबाइल से ही पता चल जाएंगी।
0: और घरेलू उपयोग में जैसे एकत्रित वर्षा का जल उपयोगी पौधों को देना, वाहन धोने और घर की सफाई और फर्श वगैरह जैसे कार्यों में भी हम इसका प्रयोग कर सकते हैं।
1: बिल्कुल, हम अगर पोछा ओछा लगा रहे हैं या फिर हम अपनी गाड़ी धो रहे हैं, तो हम उसमें तो यूज़ कर ही सकते हैं
0: हाँ
1: बारिश के पानी
0: बिल्कुल,
1: को। तो दोस्तों, लोगों को वर्षा जल संरक्षण के लिए बताएं, इसके बारे में शिक्षित करें, इसके बारे में जागरूक करें उन्हें, और हर घर में वर्षा जल संचयन प्रणाली को अपनाने के लिए प्रेरित भी करें। देखिए दोस्तों, यदि हम आज बारिश के पानी की एक एक बूंद को बचाने का प्रयास करेंगे ना, तो भविष्य में जल संकट को काफ़ी हद तक कम कर देंगे। वर्षा जल संरक्षण न केवल पर्यावरण की रक्षा करता है, बल्कि आने वाली पीढ़ियों के लिए भी स्वच्छ और पर्याप्त जल उपलब्ध कराने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। और भी बातें करनी है ना प्रगति अभी,
0: हाँ हाँ बिल्कुल।
1: पर उससे पहले कुछ एंटरटेनमेंट हो जाए।
0: हाँ, तो आइए सुनते हैं ये गाना।

0: प्रगति, तुम्हें क्या लगता है हमारे दोस्तों ने क्वेश्चन ऑफ द डे जो आज का है उसको सुन लिया होगा सही से?
1: कुछ जो लापरवाह होंगे उन्होंने तो नहीं सुना होगा।
0: अब देखो, ऐसे तुम हमारे दोस्तों को लापरवाह तो मत बोलो। हाँ, हो सकता है वो किसी काम में बिजी हो, या हो सकता है वो लोग नेटवर्क की वजह से ना सुन पाए हो। क्यों
1: हाँ लिया, बिल्कुल ऐसा हो सकता है।
0: तो दोस्तों, एक बार फिर से सुन लीजिए हमारा आज का क्वेश्चन ऑफ द डे, यानी हमारा आज का प्रश्न, ब्रिज मैन ऑफ इंडिया किसे कहा जाता है? प्रश्न एक बार फिर से सुनिए, ब्रिज मैन ऑफ इंडिया किसे कहा जाता है? और आपको तो पता ही है कि आप अपना जवाब हमें भेज सकते हैं हमारे इंस्टा आईडी youth AIR वाराणसी पर, या फिर हमें मेल कर सकते हैं youth AIR VNS@gmail.com पर। अब फटाफट से अपना फोन उठाइए और हमें अपना जवाब भेज दीजिए, क्योंकि ये सवाल सुनने का आखिरी मौका था। और दोस्तों, जरा सोचिए कि अभी फोन की बात हो रही है तो सुबह आंख खुलते ही सबसे पहले हम किसके दर्शन करते हैं? तुम बताना प्रगति, भगवान का दर्शन हम पहले करते हैं या फिर मोबाइल का?
1: वैसे आलिया, आजकल तो हम मोबाइल का दर्शन ही सबसे पहले करते हैं,
0: बिल्कुल
1: और फिर शुरू हो जाती है भाग दौड़ वाली ज़िंदगी। कॉलेज, ऑफिस, असाइनमेंट, सोशल मीडिया, ट्रैफिक, और रात तक हमारी हालत ऐसी हो जाती है जैसे मोबाइल की बैटरी 1% पे आ गई हो।
0: बिल्कुल बिल्कुल सही कहा तुमने। लेकिन ये पता है तुम्हें कि इसके लिए एक ना चार्जर है जो ना बिजली से चलता है ना ही इंटरनेट से। मतलब आपका ये फोन तो आपका चार्जर नहीं है। तो इसका नाम है योग। वैसे प्रगति, तुमने कभी योग किया है या तुम कुछ जानती हो योग के विषय में?
1: हाँ आलिया, योग का मतलब सिर्फ कठिन आसन करना या घंटों तक एक पैर पे खड़े रहना नहीं होता, बल्कि योग का असली मतलब है अपने शरीर, दिमाग और भावनाओं को एक ही टीम में खिलाना, क्योंकि जब ये तीनों साथ होते हैं तभी जिंदगी आसान लगती है।
0: बिल्कुल, आजकल हम क्या करते हैं, छोटी छोटी बातों पर ना तनाव ले लेते हैं। कभी पढ़ाई का प्रेशर होता है, कभी नौकरी की चिंता होती है, कभी रिश्तों की उलझन होती है। तो ऐसे में योग जो है, जो योगा है, वो कोई जादू की गोली तो नहीं है कि 5 मिनट में हमने कर लिया योग और सब ठीक हो गया। लेकिन अगर हम इसमें इसकी रोज़ आदत डाल लें कि हम रोज़ योग करेंगे, तो धीरे धीरे हमारे शरीर और मन दोनों को मजबूती मिलेगी। क्यों?
1: हाँ आलिया, और आज के डॉक्टर्स भी यही मानते हैं कि नियमित योग करने से तनाव कम होता है, याददाश्त भी बेहतर होती है हमारी, और हमें नींद भी अच्छी आती है। हमारा जो शरीर है उसमें लचीलापन बना रहता है और कई बीमारियों का खतरा भी कम होता है। और सबसे बड़ी बात, योग हमें सिर्फ शारीरिक रूप से नहीं बल्कि मानसिक और भावनात्मक रूप से भी मजबूत बनाता है।
0: बिल्कुल दोस्तों, अगर हम रोज़ सोशल मीडिया के लिए समय निकाल सकते हैं, तो अपने स्वास्थ्य के लिए क्यों नहीं निकाल सकते हैं? भाई देखिए, हमें 1-1.5 घंटा तो योग करना नहीं है, सिर्फ 20 मिनट या 30 मिनट कर लीजिए। याद रखिए, स्वस्थ शरीर और शांत मन ही सफलता की सबसे मजबूत नींव है।
1: तो आइए हम सब मिलकर आज एक छोटा सा संकल्प लें, हर दिन थोड़ा समय योग के नाम, क्योंकि जब तन मन स्वस्थ होगा, मन प्रसन्न होगा और विचार सकारात्मक होगा, तभी जीवन भी बेहतर होगा।
0: और दोस्तों, आज के लिए कार्यक्रम में इतना ही। फिर मिलेंगे एक नए विषय के साथ। तब तक के लिए आलिया
1: और प्रगति को दीजिए इजाजत।
0: नमस्कार।
1: नमस्कार।

युवा साथी सुन रहे थे अपना कार्यक्रम युववाणी। हम आकाशवाणी के वाराणसी केंद्र से बोल रहे हैं। शाम के 6 बजने वाले हैं। अब आप सुनेंगे भोजपुरी में समाचार हमारे गोरखपुर केंद्र से।

0: नमस्कार। समाचारों के साथ ही हम वेद प्रकाश पाठक। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आज बांदा में 710 करोड़ रुपया से बेसी के लागत का कई गो परियोजना का लोकार्पण आ शिलान्यास कैले। ए मौका पर वहां के कहने की प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मार्गदर्शन में आज बुंदेलखंड बढ़िया कनेक्टिविटी से जुड़ के विकास का नया ऊंचाई छू रहा हो।
1: हमने हर एक्सप्रेस वे पर हर जनपद में इंडस्ट्रियल क्लस्टर के निर्माण के कार्यक्रम को आगे बढ़ा रहे हैं। एक बृहद क्लस्टर का कार्यक्रम और बुंदेलखंड को तो हम यूपी का सबसे बड़ा औद्योगिक शहर देने जा रहे हैं, बीड़ा के रूप में देने जा रहे हैं। आने वाले समय में हमारे बुंदेलखंड के नौजवानों को प्लान नहीं करना पड़ेगा, बल्कि देश और दुनिया के लोग और नौजवान बुंदेलखंड में नौकरी मांगने के लिए आएंगे और बुंदेलखंड को ऐसा भव्य और दिव्य बुंदेलखंड के रूप में स्थापित करना है।
0: यह मौका पर मुख्यमंत्री कई गो योजना के लाभार्थियों के नियुक्ति पत्र, स्वीकृति पत्र, चेक, आयुष्मान में मुख्यमंत्री कैशलेस चिकित्सा कार्ड, आवास का चाबी और टूल किटो बदले। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आज चित्रकूट में कामतगिरी पर्वत का परिक्रमा कैले। यह मौका पर वहां के भगवान श्री कामतानाथ और प्रभु श्रीराम से प्रदेशवासियों बदे सुख शांति समृद्धि और कल्याण का प्रार्थना कैले। मुख्यमंत्री परिक्रमा के दौरान श्रद्धालुओं को अभिवादन स्वीकार कैले और लेखन के साथ ही बातचीत कैले। एक राष्ट्र एक चुनाव पर गठित संयुक्त संसदीय समिति बिहने से 15 जुलाई ले लखनऊ का दौरा करी।
2: इस अभियान दल का उद्देश्य क्षेत्रीय स्तर पर संवाद की प्रक्रिया को आगे बढ़ाना तथा विभिन्न हितधारकों के साथ व्यापक विचार विमर्श करना है। पीपी चौधरी की अध्यक्षता में गठित संयुक्त संसदीय समिति इस अध्ययन दौरे के दौरान उच्च संवैधानिक पदाधिकारियों, निर्वाचित जनप्रतिनिधियों, राजनीतिक दलों, राज्य प्रशासन, द्वितीय शैक्षणिक संस्थानों, शिक्षाविदों, राज्य बार परिषदों, संबंधित उच्च न्यायालय के अधिवक्ता संघों, विभिन्न पेशेवर संगठनों तथा नागरिक समाज के प्रतिनिधियों के साथ परामर्श करेगी। समिति के अध्ययन दौरे में विभिन्न हितधारकों के साथ व्यापक और सार्थक विचार विमर्श होने की अपेक्षा है। लखनऊ से मुमताज अली की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से प्रेमचंद गुप्ता।
0: केंद्रीय नागरिक उड्डयन मंत्री के राम मोहन नायडू कहने की वाराणसी हवाई अड्डा के नया टर्मिनल पर देश का पहला 6 लेन का अंडरपास बनावल जा रहा बा। एगो सोशल मीडिया पोस्ट में वहां के बतौनी की 450 मीटर लम्हर अंडरपास देश के अगला पीढ़ी के बुनियादी ढांचा का हिस्सा हो। ओजा ऊपर विमानन के संचालन के दौरान नीचे सड़क यातायात सुचारू रूप से चल सके। प्रदेश सरकार की ओर से राज्य में शिक्षकन और गैर शिक्षण कर्मचारियों बदे नकदी रहित स्वास्थ्य योजना शुरू हो चुकल हो। ए बारे में प्रस्तुत बा आकाशवाणी संवाददाता का एगो खास रिपोर्ट।
3: योजना के तहत राज्य भर के शिक्षकों और उनके परिवारों को 5 लाख रुपए तक की कैशलेस चिकित्सा सुविधा मिलेगी। प्राथमिक और माध्यमिक शिक्षा से जुड़े लगभग 15 लाख शिक्षक और गैर शिक्षण कर्मचारी इस योजना से लाभान्वित होंगे। नियमित शिक्षकों के अलावा इस योजना से शिक्षा मित्रों, प्रशिक्षकों, रसोइयों और कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालयों के पात्र कर्मचारियों को भी लाभ मिलेगा। शिक्षकों और उनके परिवारों को सामाजिक सुरक्षा कवर प्रदान करने के लिए भारतीय स्टेट बैंक के साथ एक समझौता ज्ञापन पर भी हस्ताक्षर किए गए हैं। उत्तर प्रदेश प्राथमिक शिक्षा विभाग के कर्मचारियों के लिए ये व्यापक सामाजिक सुरक्षा और बीमा कार्यक्रम देश में अपनी तरह की पहली पहल है। इस योजना के तहत 10,000 रुपए से ज्यादा मासिक वेतन पाने वाले संविदा कर्मचारियों को 30 लाख रुपए से 80 लाख रुपए तक का व्यक्तिगत दुर्घटना बीमा कवर मिलेगा। सुशील चंद्र तिवारी, आकाशवाणी समाचार, लखनऊ।

मौसम विभाग प्रदेश में 11 जुलाई ले भारी वर्षा का अलर्ट जारी कैले हो। विभाग के मुताबिक प्रदेश के पूर्वी जिलन में यह दौरान करीब सब्जो जगहिन पर बरखा आ गरज चमक के साथे बौछार पड़े का संभावना बा। ए बीचे गोरखपुर एकरे लगे के जिलनों में आज दिन में रुक रुक के बुन्ना बानी का सिलसिला जारी रहल। वहीं चंदौली चित्रकूट आ अयोध्या के सतही कई जिलन में बरखा भइले से लोगिन के भीषण गर्मी से राहत मिलल हो। समाचार पूरा भइल, नमस्कार।

आकाशवाणी का ये वाराणसी केंद्र है। कार्यक्रम विवरण में आइए हम आपको जानकारी दे दें हमारे केंद्र से प्रसारित होने वाले आज के शेष और कल के प्रमुख कार्यक्रमों के बारे में। आज रात्रि 10:30 पर शास्त्रीय संगीत के कार्यक्रम में आप सुनेंगे पंडित हरि प्रसाद चौरसिया का बांसुरी वादन। शाम 6:30 पर कृषि जगत में किसान भाई सुनेंगे फोन इन कार्यक्रम हेलो कृषि जगत। साथ ही होगा नंदलाल राम और साथी का गाया लोकगीत। और रात्रि 8:00 सुगम संगीत में सुहानी शुक्ला के गाए भजन सुनेंगे। ये थी जानकारी आज के कार्यक्रमों की। अब आइए हम आपको जानकारी दे दें कल के प्रमुख कार्यक्रमों के बारे में। कल आप शास्त्रीय संगीत के कार्यक्रम में सुनेंगे 7:31 पर अमरेंद्र मिश्रा का सितार वादन। दिन में 12:45 पर और रात्रि 10:30 पर शास्त्रीय संगीत के ही कार्यक्रम में आप सुनिएगा डॉक्टर शनीश कुमार ग्यावली का बांसुरी वादन। सुबह 6:05 पर खेती की बातें कार्यक्रम में लोबिया की खेती विषय पर जानकारी देंगे दिनेश कुमार सिंह। आराधना सुबह 6:10 पर। सुबह 6:25 पर सुनेंगे गांधी चर्चा बापू की आत्मकथा सत्य के प्रयोग का धारावाहिक पाठ। वाचन और प्रस्तुति है अरुण पांडे की। सुबह 6:40 पर सुनिएगा श्री रामचरितमानस से संगीतमय पाठ।

दिन में 12 बजे सुनिए एनसीईआरटी द्वारा प्रायोजित कार्यक्रम सुगम संगीत के कार्यक्रम में कल आप दिन में 12:30 पर और रात्रि 8 बजे प्रिया गुप्ता के गाए भजन सुनिएगा। दिन में 1:15 बजे गृहलक्ष्मी कार्यक्रम में महिलाएं सुनेंगी फोन इन कार्यक्रम, जिसका विषय होगा क्या आप भी विज्ञापन देखकर करते हैं खरीदारी। साथ ही सुनिएगा गीत संगीत। शाम 5:15 बजे युवा साथी सुनेंगे अपना कार्यक्रम युवाणी, जिसमें आप सुनेंगे आज की बात, सीने दर्पण, यूथ डायरी, इतिहास में आज का दिन, रोजगार सूचना और सुनिए गीत संगीत। 6:30 पर कृषि जगत में किसान भाई धान की फसल में लगने वाले प्रमुख कीट एवं उनका प्रबंधन विषय पर सुनेंगे डॉक्टर संदीप कुमार की बातचीत। साथ ही होगा शिवापति मिश्रा का गाया लोकगीत। शिवापति मिश्रा के गाए लोकगीत आप 9:50 पर और दिन में 1:45 पर भी सुनिएगा। और रात्रि 10 बजे विज्ञान पत्रिका में सुनेंगे संपादकीय भेंटवार्ता सुनिएगा, विषय होगा कॉस्मेटिक और सौंदर्य प्रसाधनों के पीछे का विज्ञान, जानकारी देंगे डॉक्टर राघवेंद्र प्रताप।

सिंह और नीरू सिंह की वार्ता होगी भविष्य के ईंधन। कार्यक्रम विवरण में हम आपको जानकारी दे रहे थे आज के शेष और कल के प्रमुख कार्यक्रमों के बारे में। हम आकाशवाणी के वाराणसी केंद्र से बोल रहे हैं। थोड़ी देर में आप सुनेंगे फिल्म संगीत।

0: उपभोक्ताओं तक पहुंचने का सुलभ और सस्ता माध्यम है आकाशवाणी।
1: आकाशवाणी के विभिन्न केंद्रों से कीजिए अपने उत्पादों और सेवाओं का प्रचार विज्ञापनों के माध्यम से।
0: लोकल और राष्ट्रीय स्तर पर कीजिए अपने बिजनेस का विस्तार, क्योंकि आकाशवाणी में विज्ञापन बुकिंग हुई बहुत ही आसान।
1: अब घर, दफ्तर या दुकान पर बैठे बैठे आप कर सकते हैं विज्ञापनों की बुकिंग।
0: डायल कीजिए
2: 0542227658।
1: नंबर एक बार फिर नोट करें
3: 0542227658।

हम सभी का एक ही नारा, साफ सुथरा हो देश हमारा, सफाई अपनाएं, बीमारी भगाएं, स्वच्छ भारत स्वस्थ भारत। हम सब ने ये ठाना है, भारत को स्वच्छ बनाना है। स्वच्छता का दीप जलाएंगे, चारों ओर उजियारा फैलाएंगे। सभी रोगों की एक दवाई, घर में रखो साफ सफाई।

कीर्ति सर गठिया और साथियों की आवाज़ में ये गीत आप सुन रहे थे OMG Oh My God फिल्म से। इस गीत को लिखा था स्वानंद किरकिरे ने। अब आइए सुनते हैं आदि पुरुष फिल्म का ये गीत सचेत टंडन और परंपरा टंडन की आवाज़ में। इस गीत को लिखा है मनोज मुंतशिर ने, संगीतकार हैं अजय अतुल।

0: इयम् आकाशवाणी सम्प्रति वार्ताः श्रूयन्ताम् प्रवाचकः जतिन शर्मा। आदौ मुख्य वार्ताः। प्रधानमन्त्रिणः नरेन्द्रमोदिनः उद्घोषः एकविंशतिशताब्द्याः नूतन भारतं विकसित राष्ट्रनिर्माणस्य लक्ष्यं प्रति द्रुतगत्या अग्रेसरति। मेलबोर्न नगरे भारतीय समुदायस्य भव्यं सम्मेलनं चासौ सम्बोधयति। भारत ऑस्ट्रेलिया देशयोः मध्ये रक्षा सुरक्षा सहयोगाय ऐतिहासिकं संयुक्त घोषणापत्रं हस्ताक्षरितम्। अनेन सहैव ऑस्ट्रेलिया देशस्य यूरेनियम धातोः दीर्घकालिक आपूर्तेः महत्वपूर्ण सन्धिः अपि निष्पादितः। उपराष्ट्रपतिना सीपी राधाकृष्णनेन भुवनेश्वरे गभीर समुद्र मत्स्यपालन सम्पदः शाश्वत उपयोगाय राष्ट्रियाभियानस्य विहितं विधिवत् अनावरणम्। राष्ट्रिय शिक्षानीतेः अन्तर्गतं वयस्क साक्षरता मानदण्डानवाप्य उत्तराखण्ड राज्यं देशस्य पूर्णसाक्षर राज्यानां गौरवपूर्ण सूच्यां सम्मिलितम्। प्रावृष्टावत् कृत्स्नेहि देशे व्याप्ता दिल्ल्यां विगतरात्रिकालात् अश्रान्त वृष्ट्या सामान्य जनजीवनम् अत्यन्तं बाधितम्। अपि च भारत इंग्लैण्डयोः मध्ये पञ्च क्रीडात्मिकायाः चतुर्थी अन्ताराष्ट्रिय प्रतिस्पर्धा अद्य रात्रौ तावत् दशवादने क्रीडिष्यते। अथ वार्ताः विशदीकृत्य। प्रधानमन्त्री नरेन्द्रमोदी प्रावोचत् यत् एकविंशतिशताब्द्याः भारतं विकसित भारतं भवितुं संकल्पबद्धो वर्तते। तेनोदीरितं यत् साम्प्रतं भारतं तादृशः देशः यः अधिकविकासे विश्वसिति।
1: 21वीं सदी का भारत आज विकसित होने के लक्ष्य पर काम कर रहा है। ये वो भारत है जो कहता है ग्रो मोर एचीव मोर। हम 140 करोड़ एस्पिरेशन से भरे राष्ट्र है। हम अधीर है, बेसब्र है। हम दुनिया की सबसे तेजी से बढ़ती इकोनॉमी है।
0: विगत द्वादश वर्षेषु स्वस्य तृतीयम् ऑस्ट्रेलिया भ्रमणं हैट्रिक इति विज्ञापयता तेन प्रतिपादितं यत् एषः प्रवासः भारत ऑस्ट्रेलिया सम्बन्धानां ऊर्ध्वगामितां सूचयति। अत्रावसरे ऑस्ट्रेलिया देशस्य प्रधानमन्त्री एन्थनी अल्बनीज इत्यसावपि तत्र उपस्थितः आसीत्। तेन तत्रत्यं जन उत्साहं दृष्ट्वा एषा सहभागिता दृढतरा इत्युक्तम्। अस्मात् पुरा उभयोः देशयोः नेतृभ्यां मेलबर्न नगरे तृतीये भारत ऑस्ट्रेलिया वार्षिक शिखर सम्मेलने भागं गृहीत्वा शिष्टमण्डलस्तरीया द्विपाक्षिकी वार्ता विहिता। हिन्द प्रशान्त क्षेत्रे शान्तिं स्थिरतां च स्थापयितुं द्वाभ्यां नेतृभ्यां रक्षा सुरक्षा सहयोग संयुक्त घोषणापत्रे हस्ताक्षरं विहितम्।
1: हमारे मैरिटाइम सिक्योरिटी कोलैबोरेशन रोडमैप से इंडो पैसिफिक में हमारे साझा प्रयासों को नई ताकत मिलेगी। हम शिप बिल्डिंग, शिप रिपेयर और मेंटेनेंस में भी मिलकर आगे बढ़ेंगे। फ्रेंड, आज हमने कई क्षेत्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय मुद्दों पर भी विस्तार पूर्वक चर्चा की।
0: वार्ताहरान संबोधयन प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी न्यगादीत् यत् भारत ऑस्ट्रेलिया देशाभ्यां परमाणु ऊर्जा क्षेत्रे कश्चन ऐतिहासिकः सहयोगः साधितः। अनेन ऑस्ट्रेलिया देशात् भारताय यूरेनियम इत्यस्य आपूर्तिः सुलभा भविष्यति। अयं संयोगः भारतस्य स्वच्छोर्जा लक्ष्याय नवीनां गतिं प्रदास्यति। अनेनैव सह साइबर क्रिटिकल टेक्नोलॉजी एवं सप्लाई चेन प्रणाल्याः संचालनम्

0: आकाशवाणी का ये वाराणसी केंद्र है। थोड़ी देर में आप सुनेंगे किसान भाइयों का कार्यक्रम कृषि जगत।
1: एक प्रकार से पीएम जय

आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के तहत लगभग 60 करोड़ लोग बने हैं 5 लाख रुपए के मुफ्त उपचार के हकदार। अब तक 12 करोड़ से भी ज्यादा मुफ्त उपचार किए जा चुके हैं, जिससे गरीब परिवारों के चिकित्सा खर्च में लगभग 2 लाख करोड़ रुपए की बचत हुई। आज ही आयुष्मान ऐप डाउनलोड कर आयुष्मान कार्ड बनाएं। ज्यादा जानकारी के लिए 1455555 पर कॉल करें।

0: पंचो राम राम। मोहन भैया।
1: हाँ सत्तू भैया,
0: देखा हो आज तो ऐसा दिन है और ऐसा कार्यक्रम है ना।
1: हाँ।
0: कि भाई जुड़ के बड़ा खुशी होता है और कार्यक्रम ये है कि भाई देखा हेलो कृषि जगत, और हेलो कृषि जगत में हमनी कहल जाओ कि प्रत्यक्ष रूप से अपने श्रोता भैया लोगों से जुड़े नहीं जाए और उनकी सवाल कर अपन सवाल का हमनी लोग अपने विशेषज्ञ से उत्तर दिलवावे नहीं जाए।
1: अच्छा, तो कहे का मतलब कि डॉक्टर भैया आयल हुआ, उनसे जो ना कि जो हमारे किसान भाई लोग हुआ वो अपन समस्या भी पूछ सके ना।
0: बिल्कुल
1: आ कौने बारे में पूछी है यो बता दा।
0: बिल्कुल भाई, अगर उनके पेट से संबंधित कोनो बीमारी है, कोनो रोग है, या
1: हाँ
0: कोनो अगर इलाज भी चलत है, तो ओकरी बारे में डॉक्टर विनोद कुमार जी आयल हुआ, जे कि गैस्ट्रोलॉजी विभाग BHU में कार्यरत हैं।
1: हाँ
0: और भैया अपने किसान भैया उनके हर सवाल के हर कहल जाओ कि बीमारी का उत्तर दी हैं, तो भैया
1: हाँ
0: लोग जल्दी से हमने के फ़ोन लगाई। हमने के यहाँ का फ़ोन नंबर है 0542-222-1050, यानी कि
1: 222 10 50 और 222 10 52
0: बिल्कुल। और यहाँ
1: आ
0: का स्टडी कोड है 0542। तो भैया
1: हाँ
0: लोग फ़ोन करें, तो सबसे पहले तो कार्यक्रम हमने की कृषि जगत में डॉक्टर साहब आपका स्वागत है।
2: धन्यवाद।
0: डॉक्टर साहब, जैसे कि आज का विषय है भाई पेट से संबंधित बीमारी का, तो हमारे किसान भैरों के ये बताएं कि सबसे पहले अपने पेट की बीमारी से बचे बजे का का सावधानी रखे लोग।
2: पेट से बचने के लिए, पेट से बचने के लिए
0: डॉक्टर साहब,
2: तो सबसे पहले पेट से बचने के लिए तो समय से आपको खाना है, समय से उठना है, मतलब ना नियम दिनचर्या बहुत ही समय अनुसार रखना है। सबसे आजकल जो हम लोग की भाग दौड़ की जो ज़िंदगी हो गई है, तो उसमें हम लोग ना ढंग से सो पाते हैं, ना ढंग से खा पाते हैं, ना तरीके से खा पाते हैं। तो अपना दिनचर्या अगर हम नियम से रखें तो पेट का आधा से ज़्यादा बीमारी जो है आपका छू मंतर हो जाएगा। तो एक तनाव नहीं लेना है। दूसरा होता है कि भाई तनाव बहुत है, तो अब तनाव कम करने का क्या तरीका है? तनाव कम करने का दो तरीका है बहुत बढ़िया, कि एक तो नींद पूरा करें बढ़िया है, और दूसरा कि थोड़ा व्यायाम करें, कसरत करें, पसीना बहाएं। अगर ये दो काम करेंगे तो तनाव अपने आप कम हो जाएगा।
1: जी, तो डॉक्टर साहब जी से बहुत बार देखल जाला कि खान पान का असर जो ना कि पेट पर ज़्यादा पड़ेला, तो खान

0: खानपान में का चीज का ज्यादा प्रयोग करें कि किसान भाई लोग कि उनके पेट बढ़िया से रहे और उनके पेट संबंधी बीमारी ना हो कहें।
1: हाँ देखिए, अगर किसी को बीमारी नहीं है, जैसे मान लीजिए कि अब अलग अलग बीमारी का खान पान थोड़ा अलग होता है,
0: जी
1: लेकिन एक अगर स्वस्थ आदमी है जिसको थोड़ा अपने पेट का ख्याल रखना है, तो उसके लिए आपको भाई हरा सब्जी सलाद हो गया, थोड़ा मतलब जिसमें कि फाइबर ज़्यादा होता है, मतलब
0: जी
1: मोटा अनाज जिसको हम लोग कह सकते हैं, थोड़ा फाइबर रिच खाना खाना है। हरा सब्जी सलाद हो गया, मोटा अनाज हो गया, जैसे रागी हो गया, ज्वार हो गया, बजरा हो गया, आजकल हम लोग चोकर निकाल देते हैं गेहूं से,
0: जी
1: उसको चोकर सहित खाना है ताकि उसमें फाइबर जाए कुछ। पानी खूब पीना है, कसरत करना है थोड़ा, है ना, पसीना बहाना
0: जी
1: है, वही नींद पूरी करनी है आपको। और खान पान में जा बाहर का सामान ना खाएं, जो इस समय बारिश का टाइम है, थोड़ा गंदगी बाहर थोड़ा ज़्यादा फैल जाता है, इस समय भाई बीमारी फैलने का समय भी है, तो
0: जी
1: थोड़ा आराम से जैसे कि बाहर का सामान, कोई फल का जूस हो गया बाहर, कोई अगर खुले मक्खियों की दिख रही है कहीं भी दुकान भाई है, तो वहाँ पे आप थोड़ा ध्यान रखें सब चीज़ का कि
0: जी
1: कहाँ से खा रहे हैं या पी रहे हैं। जो लोग ज़्यादा ट्रैवल करते हैं, मतलब जो ज़्यादा टहलते वहलते हैं,
0: जी
1: तो वो अपना थोड़ा ज़्यादा ख्याल, उनको ख्याल रखना कि भाई पीने का पानी अपना थोड़ा साफ रखें, यही
0: जी
1: सब है आपको।
0: जी तो किसान भाई लोग, आज अपने कार्यक्रम में देखा डॉक्टर विनोद कुमार
1: भैया आयल
0: साहब
1: हुआ
0: आयल हुन आ इनसे जो है कि आज हमन बात कर रहे थे जहाँ कि पेट से संबंधित जो होने वाली बीमारी है ओकरे बारे में। अगर आप लोग भी कोनो तरह का बीमारी से पीड़ित हुआ तो आप लोग जो है कि बनारस का जो कोड हुआ 0542 आ फोन नंबर हुआ 22 10 52
1: दो
0: आप
1: सौ
0: बा
1: बाईस 10 52 222 10 50
0: हाँ दो
1: हमने के
0: नंबर है
1: यहाँ फोन नंबर है, यहाँ फोन करे लगत है ना भैया कि फोन आवत है।
0: हाँ
1: हेलो,
2: हेलो, हम चंदौली से राजेश यादव बोलो थे भैया।
1: हाँ भैया बताएं क्या समस्या आपका।
2: अरे भैया फ्रेश लैट्रिन ना होले तो डॉक्टर साहब से बात कराऊं।
1: हाँ डॉक्टर साहब आपका समस्या सुनत हूँ। डॉक्टर साहब इनका फ्रेश लैट्रिन ना होता है, इमें का समस्या हो सकेला तनी बताइए मेरे भैया के।
2: राजेश जी, आपको हाँ प्रणाम
1: कोई
2: प्रणाम प्रणाम
1: पहले से,
2: डॉक्टर साहब।
1: प्रणाम प्रणाम कह रहे हैं, आपको कोई पहले से दिक्कत तो नहीं है?
2: सर दिक्कत नहीं, हल्का फुल्का गैस बनती थी तो बीच में दवा किए थे तब तो गैस बहुत नहीं बनती, लेकिन 2-3 बार में फ्रेश होती है लैट्रिन, तो अगर कोई उपाय हो तो बताइए सर।
1: आप देखिए, वही जैसे हम लोग अभी बात कर रहे थे, तो आप फाइबर इसबगोल की भूसी का प्रयोग कर सकते हैं, पानी की
2: जी,
1: मात्रा बढ़ाएं, थोड़ा टहलें, और अगर नींद पूरी नहीं हो रही तो नींद पूरी करें किसी
2: पानी
1: तरह
2: तो
1: का।
2: बहुत पीते हैं सर, 3-4 किलोमीटर डेली टहलते हैं
1: बढ़िया,
2: भैया।
1: बहुत अच्छा करते हैं। इसबगोल की भूसी, हरी सब्जी सलाद ही थोड़ा सा बढ़ाइए, दूध
2: जी,
1: और मीठा चीज़ का सेवन अगर आप ज़्यादा करते हैं तो उसको थोड़ा सा आप कम कर सकते हैं। अगर
2: अच्छा
1: इसके
2: अच्छा
1: बावजूद भी दिक्कत ठीक नहीं हो रही है तो फिर आपको किसी डॉक्टर से मिलना पड़ेगा। हाँ एक
2: अरे
1: चीज़,
2: आपसे ही सर मिलेंगे ना,
1: हाँ
2: कहाँ
1: ठीक
2: बैठते
1: है,
2: हैं सर?
1: हम तो BHU में हैं, गैस्ट्रो विभाग में
2: जी,
1: है ना।
2: आपसे ही बाई फेस मिलेंगे सर।
1: ठीक,
2: अच्छा
1: अगर
2: अच्छा
1: आप मिलल चाहब तो आप BHU में डॉक्टर साहब से मिल सकी नहीं। डॉक्टर साहब जैसन कि बहुत लोगों के देखे में आवला कि ऐसे में दस्त का रोग हो जाता, कई बार लेटरिंग हो जाता, तो एकर का वजह हो सकेला का खान पान में सावधानी लोग रखें। तो इस समय देखिए बारिश का टाइम आ गया है, तो अभी ये जो कई बार क्या होता है, जो आपका खाने पीने का जितना भी पानी पीने का जगह है और खाना जो होता है वो मिक्स होता है, थोड़ा गंदगी फैलती है इस समय, मक्खियाँ फैलती हैं, कीड़े मकोड़े अभी बढ़ जाएंगे एकदम से,
0: डॉक्टर साहब
1: तो
0: एगो
1: हाँ
0: फोन आवत है, तनी
1: ठीक
0: पहले
1: ठीक ठीक
0: फोन लिया
1: हाँ
0: जाए।
1: उसको।
0: हेलो हेलो,
2: हेलो,
0: हाँ भैया के बोला था, अपन नाम बताएं।
2: भैया नमस्कार, हम तो कालीचरण यादव बोलत बाड़ी, प्रयाम चंदौली जिला से। हाँ
0: का समस्या
2: भैया,
0: बा?
2: हाँ भैया ऐसा भाई कि हम कृषि जगत कार्यक्रम आप लोग का हम रोज सुनीला। अब भैया ये बताओ, डॉक्टर साहब जो आल बाणन, तो थोड़ा सा उनसे ही जानकारी हमके चाहत भाई कि हमारे थे गदेला भाई, मतलब बेटवा भाई, तो बेटवा के भैया गैस पड़ाते बने ले, तो ओकर का इलाज करे जा या डॉक्टर साहब के दिखाओ जा तनिक
0: आपका
2: हमके डॉक्टर
0: गदेला
2: साहब
0: का
2: को।
0: उम्र कितना है?
2: गदेला का उम्र तो भैया बा ये 12 साल।
0: डॉक्टर साहब
1: हाँ
0: इनका बेटा बाना 12 साल का, उनके गैस का परेशानी है, तनी बताएं उनके इलाज।
1: आप गैस के साथ, नमस्कार, आपका जो बेटा
2: जी
1: है,
2: डॉक्टर साहब नमस्कार।
1: नमस्कार, कह रहे हैं जो आपके बेटे जी हैं वो, उनका गैस के साथ और कोई दिक्कत है, उल्टी होना या ऐसा कुछ प्रॉब्लम, कोई और
2: नहीं
1: दिक्कत?
2: डॉक्टर साहब, उल्टी उल्टी तो नहीं, खाली गैस ज्यादा बने लिया, रिलीज भी करा ना, आज ऐसे लगी कि पेटवा वेटवा भारी बना रहा है।
1: अच्छा, कोई पेट में दर्द तो नहीं है ना?
2: नहीं डॉक्टर साहब, वैसा तो दर्द तो ना, मतलब कभी कदा बहुत

0: दू चार छह महीना पर साल भरि में कबू कबू तरह तरह हो गए जैसे कुछ इधर उधर खाए पी लेन जैसे बजारे उजारे का तब है।
1: बुखार उखार भी नहीं है?
0: बुखार उखार तो डॉक्टर साहब नहीं है।
1: चलिए ठीक है, ठीक है। तो आप इनको ऐसा कर सकते हैं ना कि थोड़ा देखिए इनके खान पान का आप थोड़ा ध्यान रखें, समय से खाएं। पहले तो देखिए आजकल के बच्चे क्या हैं कि जो घर का खाना छोड़ के बाहर का ज़्यादा खाते हैं, उसकी वजह से भी गैस बनता है। अगर समय से आप नहीं खाएंगे, जैसे सुबह का नाश्ता भाई एक टाइम फिक्स होना चाहिए, दोपहर का फिक्स होना चाहिए, रात का फिक्स होना चाहिए, नींद पूरी होनी चाहिए, ज़्यादा मोबाइल में ना रहें, टीवी भी कम देखें, थोड़ा सा टहलें खेलें कूदें। देखिए गैस की बीमारी बच्चों को मतलब होना नहीं चाहिए, जितना वो एक्टिव रहते हैं उस हिसाब से। तो अगर ये सब चीज़ों का अगर ध्यान रखेंगे तो ठीक हो जाएंगे। अगर लग रहा है कि ये सब करने के बावजूद भी अगर दिक्कत नहीं है तो एक बार उनको आपको थोड़ा सा दिखा लेना चाहिए कि भी कोई और दिक्कत तो नहीं है। उनका हाइट वेट वो सब ठीक है ना? वेट वेट कम तो नहीं है उनका?
0: वेट डॉक्टर साहब तो ये समय तो हम पौड़े रही डॉक्टर साहब के दिखोले ली तो मान के चली कि 49 किलो के लगभग रहा।
1: तो आप 12 साल के हैं ना,
0: हाँ 12 साल का बात है।
1: तो ठीक है, मतलब ज़्यादा वजन भी ठीक है। तो ये सब चीज़ देखें, समय से खाना पीना अपना रखें, अगर नहीं ठीक होता है तो फिर किसी को दिखा लें।
0: अच्छा ठीक है डॉक्टर साहब, आप उपलब्ध हो सकेला कहाँ जिसे जिसे आप ही अगर जिसे हो तो दिखावल जाए।
1: हम BHU में बैठते हैं, गैस्ट्रो विभाग में, है ना?
0: जी जी ठीक। अच्छा
2: डॉक्टर
0: धन्यवाद
2: साहब,
0: डॉक्टर साहब, बहुत
2: हमने
0: अच्छी जानकारी देलन।
2: बात करते हैं दस्त पर, तो दस्त के बारे में तनी बताएं कि अगर दस्त लोगों के हो तो ओकर का उपाय करें।
1: देखिए दस्त जैसे कि ज़्यादातर आजकल तो वायरल होता है वायरस की वजह से, तो
3: डॉक्टर सर
1: उस
3: लगा था कि कोनो फोन आवा था
1: ठीक
3: कोनो
1: ठीक
3: श्रोता
1: देख
3: का।
1: लेते हैं।
3: हेलो
2: हेलो, लगा था कट
1: कट
2: गई।
1: गया। हाँ
2: हाँ तो दस्त के बारे में
1: दस्त के
2: तनी।
1: लिए देखिए जैसे अभी तो ज़्यादातर क्या है कि दस्त दो तरह का हो सकता है ना, एक एक खूनी हो सकता है, इसमें ब्लड आता है जो इन्फेक्शन की वजह से होता है, एक वायरल होता है, तो इसमें वायरल ज़्यादा हो सकता
2: लगा था कि फोन आवा था। हेलो हेलो,
3: फोन आवट है लेकिन फोन कनेक्ट
1: चलिए
3: ना हो
1: ठीक है कोई
3: पावत
1: बात नहीं, हम लोग तब
2: है।
1: तक चर्चा करते हैं। तो मान लीजिए बहुत ज़्यादा दर्द हो, बुखार हो, पैखाने में खून आ रहा है और एकदम से लस्त हो जाते हैं, तो ज़्यादातर इन्फेक्शन की वजह से होता है, वो बैक्टीरियल यानी कि इन्फेक्शन जिसके लिए एंटीबायोटिक की ज़रूरत पड़ सकती है। अदरवाइज़ आपको खाली आप ORS का घोल बना सकते हैं, एक एक लीटर साफ पानी लीजिए अगर घर में मिल जाए बढ़िया, या नहीं तो फिर आप उसको एक पानी नल का पानी लेकर उसको बॉयल करिए अच्छे से 10 मिनट के लिए, बॉयल करने के उसको ठंडा करने के लिए रख लीजिए। 1 लीटर पानी आप उसमें से निकाल लीजिए, उसमें नमक डालिए एक चुटकी और 2 चम्मच आप उसमें चीनी डाल दीजिए, ये आपका ORS घर का बना हुआ तैयार हो गया। आप उसकी जगह चावल का माड़ भी यूज़ कर सकते हैं, नारियल पानी यूज़ कर सकते हैं, आप नींबू भी डाल सकते हैं, इससे आपका एक ORS का घोल घर में बन जाएगा। नहीं तो इलेक्ट्रॉल मिलता है दुकानों में, आप वो भी ले सकते हैं।
2: अच्छा
1: इसको आप एक साफ जार में रख लीजिए और जितनी बार आप दस्त जाएं उतनी बार आप इसको पी लीजिए, तो उससे वो धीरे धीरे वायरल होगा तो वो ठीक हो जाएगा। वायरल में कोई आपको एंटीबायोटिक की ज़रूरत नहीं पड़ती, खाली आप ORS से ही ठीक कर सकते हैं। बच्चों में ज़्यादा कॉमन है, जो बूढ़े लोग हैं उनमें ज़्यादा कॉमन है। अगर मान लीजिए पैखाने में खून आ रहा, बुखार आ रहा, बहुत ज़्यादा दर्द हो रहा, दस्त उल्टी हो गया एकदम पस्त हो जाए, तो फिर आप किसी डॉक्टर को दिखा के एंटीबायोटिक शुरू कर सकते हैं, उसके लिए फिर आपको किसी से मिलना पड़ेगा।
2: डॉक्टर साहब, एगो ई पेप्टिक अल्सर लोग कहत हुआ जो सुने में आवत हो, या बहुत से तमाम लोग के हमने गांव गांव में हो जाता है, एकरी बारे में बताइए कि ई का चीज है।
1: पेप्टिक अल्सर से कि घाव हो गया आपके आंत, मतलब पेट में घाव हो गया, पेप्टिक अल्सर हो गया कि आपका पेट या आंतों में घाव हो जाना, तो उसमें ज़्यादातर ये होता है कि भाई आजकल क्या है कि लोग, एक तो बहुत इंपॉर्टेंट कॉज हो गया तनाव, एसिड, किसी भी कारण जिस कारण से आपके पेट का एसिड बढ़ जाए तो अल्सर बनने की संभावना बढ़ जाती है। अगर आप
2: जी
1: दर्द की दवा ले रहे हैं भाई, अनावश्यक लिए जा रहे हैं, वो अल्सर का बन सकता है, तो उसको हम लोग एनएसएड बोलते हैं, या फिर जैसे कि कॉम्बिफ्लेम हो गया, इस तरह की दवाइयाँ जो होती हैं वो थोड़ा पेट के लिए ठीक नहीं होती, वो अल्सर कर सकती है।
2: जी
1: उसमें एक इन्फेक्शन भी होता है किसी किसी के पेट में, अगर वो दोनों मिल जाए तो अल्सर की संभावना और बढ़ जाती है। इसी तरह से अगर आप मान लीजिए बहुत आपके पेट में एसिड ज्यादा बनता है, उसके कई कारण हो सकते हैं, अगर वो बन रहा है तो वो अल्सर का रूप ले लेता है। तो अल्सर में क्या होता है, बहुत आपको दर्द बहुत ज्यादा होता है, दो तरह के अल्सर हो सकते हैं। एक अल्सर होता है जब खाना खाने जाएंगे खाली पेट रहेंगे तो ज्यादा दर्द करेगा, एक अल्सर में होता है खाना खा लेंगे तो आराम हो जाएगा और खाना खाने पर भी दर्द हो सकता है। तो अलग जगह जहाँ जहाँ जिस जगह पे अल्सर होता है उस हिसाब से उसका दर्द होता है, कई बार खून की उल्टी भी होती है उसमें। तो अगर ऐसा कुछ हो रहा हो, ऐसा कोई दर्द की दिक्कत हो जो आपको बार बार हो जाती हो, तो उसके लिए देखिए अल्सर के लिए तो बेस्ट तरीका है कि इंडोस्कोपी करके उसको पकड़ लिया जाए, और उसमें एक बैक्टीरिया होता है जो कि इसका इलाज करेंगे तो वो जड़ से भी खत्म हो सकता है।

0: अच्छा डॉक्टर साहब, देखे में आवला कि बहुत से लोगन का बार बार खाना खाई है, रात में सुबह पेट फूल जाला, ऐसा समस्या सुने में आवेला गांव गिराव में, सबके सबकी घरे में ही, अब तो ये घर घर भी हो गया, सब सुने में आवता कि भाई हमारे बच्चा का या हमारी माता जी का गैस बन जाता, पेट फूल जाता, तो ओकरी बदे प्राथमिक लोग गाँव ही इलाज का करे, ये बारे में तनि बताएं।
1: देखिए, गैस बनने का जो सबसे बड़ा कारण जो होता है वो ये होता है कि आपकी आंतों की जो गति है, मतलब पेट की जो गति है, वो स्लो हो जाती है। तो जब आंतों की गति स्लो हो जाएगी तो आपके पेट में कुछ बैक्टीरिया होते हैं जो कि उस खाने को तोड़ते हैं और उससे गैस रिलीज होता है। तो उसमें दो चीज़ें होती हैं, एक होता है कि आपके कई लोगों को गैस ज़्यादा पता चलती है, तो एक मतलब ऐसा एक ग्रुप होता है जिनको ज़्यादा पता चलता है, और एक होता है जिनको कि आंत की गति भी स्लो होती है। तो दोनों अगर मिल जाएगा तो उसको सिम्टम गैस पेट फूलने का ज़्यादा होने लगेगा।
0: डॉक्टर साहब, इरिटेबल बावेल सिंड्रोम एगो शब्द
1: सिंड्रोम।
0: आयल बा, लोग कहते ना कि डॉक्टर साहब के लोग जात हों तो लोग डॉक्टर साहब लोग एकरी बारे में बताओ
1: इरिटेबल
0: तन।
1: बाल सिंड्रोम।
0: हाँ, तो ई का चीज है, एकरी बारे में तुम बताएं,
1: देखिए,
0: आई कैसे होता।
1: इरिटेबल बाल सिंड्रोम जो है आपका, बेसिकली ये जो ये एक तरह से बहुत बड़ा ग्रुप है जिसमें कि अगर आपका पेट सही से काम नहीं करता, बेसिकली इसमें तीन मेन मैकेनिज्म होता है। एक होता है कि आपका दिमाग से पेट का एक कनेक्शन है, अगर आपका दिमाग शांत नहीं रहता है तो उसका पेट पे असर पड़ता है। इसीलिए हम लोग तनाव पे इतना जोर दे रहे हैं कि तनाव नहीं लेना है, तनाव नहीं, क्योंकि आपने ध्यान दिया होगा जब आप परीक्षा देने जाते हैं तो आपको आपको मोशन जाने का मन करता है, वो इसी का एक रूप है। या छोटे बच्चे होते हैं जब वो दूध पीते हैं तो तुरंत उनको पॉटी लग जाती है, आप देखो दूध पीते हैं वो पॉटी करते हैं। तो ये बचपन से हमारे शरीर में एक एक एक्सिस होता है, मतलब गट ब्रेन एक्सिस उसको बोलते हैं, मतलब दिमाग और गट का कनेक्शन। तो हाँ, ये कनेक्शन है। दूसरा हो गया कि भाई किसी को, जैसे मैंने बताया, किसी किसी को ज़्यादा पता चलता है, और एक होता है कि आपके पेट में गैस ज़्यादा बन रहा है। तो ये तीनों मिला करके, ये जो तीनों जो सिम्टम बनता है उसको हम लोग एक कॉमन टर्म दे देते हैं, इरिटेबल बाउल सिंड्रोम। एक्चुअली क्या है कि इसमें कोई बीमारी मिलती नहीं है ना, खाली आपको प्रॉब्लम होता है गैस का। अगर आप इसमें जांच कराएंगे तो सारी जांचें नॉर्मल आएंगी, मतलब आप सीटी करा लें, आप कोलोनोस्कोपी करा लें, आप हीमोग्लोबिन का जांच करा लें, सब नॉर्मल रहेगा, लेकिन फिर भी आपको पेट लगेगा कि आपको पच नहीं रहा है। उसी को हम लोग इरिटेबल बाउल सिंड्रोम, इरिटेबल माने कि हो गया कि चिड़चिड़ा पेट आपका, इरिटेबल मतलब चिड़चिड़ा होता है ना, तो इरिटेबल बाउल सिंड्रोम एक पूरा एक ग्रुप होता है। तो इसमें बेसिकली ये गैस का ही प्रॉब्लम है। अब यही वही है, खान पान अगर आप सही से नहीं करते हैं, देखिए ज़्यादातर लोगों का तो यही होता है कि अगर आप रूटीन अपना फिक्स कर लें तो ठीक हो जाएगा, लेकिन किसी किसी शरीर का बनावट भी ऐसा होता है, गैस ज़्यादा पता चलती है उनको, तो उनके लिए अगर उनको या तो वो समझ लें कि भाई हमारा शरीर ही ऐसा है और उसके साथ ही रहें, क्योंकि उसमें आगे कोई दिक्कत नहीं होती है। लेकिन ये कई लोग उसको घबरा जाते हैं कि क्या हो रहा है, पहले नहीं होता था अब हो रहा है, तो उसके लिए परेशान होकर और उसको चूंकि तनाव लेते हैं तो और ज़्यादा वो बढ़ जाता है और वो एक्सेसरबेट माने बढ़ जाता है एकदम से। तो उसको ध्यान रखना है कि इसको अगर ऐसा कुछ होता है, चूंकि हम लोग के पास आप आएंगे तो हम लोग उसको जांच करते हैं, क्योंकि ये ज़्यादातर क्या होता है कि इस तरह की इसी रूप में कुछ और बीमारियां भी आ सकती है, इसलिए हम लोग ये सारी जांचें करके, भाई दूसरी बीमारी तो नहीं है, जैसे टीबी हो गया या कोई और आंतों की बीमारी तो नहीं है, वो देख के अगर उसमें कुछ ऐसा नहीं आता है तो आप चिंता मत करें, आराम से रहें। थोड़ा मोड़ा दवा की जरूरत पड़ेगी कभी कभार, वो अपने आप को समझ ले कि भाई हमारा शरीर ऐसा है, तनाव नहीं लेंगे तो हमको लगता है कि ज़्यादा चीज़ें कंट्रोल लेंगे। फिर बाहर के खाने से छोटा मोटा इन्फेक्शन अगर हो जाता है तो किसी किसी को वो बड़े दिन तक परसिस्ट करता है। ज़्यादातर आप देखेंगे कई लोगों क्या होता है कि जैसे बाहर कुछ खाया, पेट उनका खराब हो गया और वो ऐसे ही रह गया बहुत दिन तक, तो वो उनको फिर IBS डेवलप कर जाता है धीरे धीरे।
2: तो डॉक्टर साहब, जैसे सामान्य तौर पर देखल जाला कि समाज में मांसाहारी और शाकाहारी दोनों तरह के लोग हुआ, आ मांसाहारी लोग जैसे कुछ लोग हुआ कि लगातार हफ्ता में 5ों दिन खाए वाला हुआ, तो उसे जो कुछ बीमारी का जन्म हो सकेला का, कि जैसे लगातार खाद बने था।
1: देखिए, जैसे कि अब ये अब देखिए जो मैं बात करूंगा ना, इसका थोड़ा हाइपोथेसिस है, तो माने कि एक ये थ्योरी है कि देखिए प्रोटीन जो भी आप लेते हैं, जैसे मांस हो गया या अंडा हो गया, अगर वो कच्चा रहता है तो उसमें प्रोटीन में प्रोटीन ज़्यादा होता है, तो अगर वो पचेगा नहीं बढ़िया से तो जाके वो आपके आंतों में आपकी इम्यूनिटी को, माने आपकी प्रतिरोधक क्षमता को थोड़ा चैलेंज करता है, तो कई बार उसको एक एलर्जी तरह का रूप हो जाता है वो, तो वो लोग उसको थोड़ा सा आंतों में आपके इरिटेबल बाउल सिंड्रोम जैसा रूप ले सकता है वो। लेकिन ये कि आपको गैस ज़्यादा बन सकता है उम्र के साथ, कई बार क्या होता है कि आपका आपका जो जो मेटाबॉलिक रेट होता है बॉडी का, मतलब पचाने की जो क्षमता होती है वो भी कम होती जाती है, तो वो गैस का रूप ले सकता है आगे चल के।
2: मतलब गैस का कारण बन जाए अगर लगा।

0: लगातार अगर आदमी
1: हाँ हाँ
0: ओके सेवन में करी तो।
2: अच्छा डॉक्टर साहब, देखे में आया, सुने में भी आवेला कि लोग पेट की गैस से उनके सर में भी दर्द होके लगेला, ऐसा कुछ होला का?
1: हाँ, देखिए मैं अभी आपको बता रहा था ना, जो मैं बोल रहा था गट ब्रेन एक्सिस, माने दिमाग और पेट का जो संबंध है, एक एक्सिस है, तो क्या होता है उसको ब्रेन फॉग बोलते हैं हम लोग इंग्लिश में, या फिर उससे क्या होता है कि आपको लगेगा कि आपको अच्छा नहीं लगेगा, आप झुंझलाए रहेंगे, आपका दिमाग ऐसा लगेगा मतलब गैस दिमाग में चढ़ गया है, लोग मरीज बोलते हैं गैस दिमाग में चढ़ गया। तो एक फिनोमेना है जो इरिटेबल बाइल सिंड्रोम के मरीजों में देखा गया है कि अगर उनका पेट साफ नहीं रहता है तो उनको थोड़ा सा धुंधलापन रहता है, मानसिक धुंधलापन जैसा रहता है, वो चीज़ों को क्लियर वो नहीं, कंसनट्रेट नहीं कर पाते।
2: अच्छा डॉक्टर साहब, गांव गिराव में या अपने यहाँ बार बार ये देखे के मिला था कि लोगों के बड़ा ज़्यादा पथरी भी होता, तो पथरी भी कई बार देखल जाओ तो भाई पित्ताशय में होता या कह लो कि किडनी में या जहाँ भी, तो ओकरी बारे में बताई कि उससे लोग कैसे पहले से ही बचाव करे और हो जाएला के बाद ओकर का इलाज हो?
1: देखिए जो किडनी का पथरी है, अब उसके लिए तो सीधा है आपको कि आप पानी ज़्यादा पिए, पानी अगर आप अच्छे से पी रहे हैं, किडनीज आपकी ठीक है, मतलब आपका किडनी ठीक है, तो फिर होने का बहुत कम चांस है, क्योंकि इसमें वो सब आपका फ्लश हो जाएगा एक तरह से ना, पानी ज़्यादा पीने से, जब आप कम पानी पीते हैं तभी आपको प्रॉब्लम होगा, अदरवाइज वो किडनी वाला स्टोन का ज़्यादा दिक्कत नहीं होता। हाँ कुछ बीमारियाँ होती हैं जिसमें हो सकता है, वो तो फिर आप जब डॉक्टर से मिलेंगे तभी उसका पकड़ में आएगा। ज़्यादातर लोगों के लिए आप पानी ज़्यादा पिए और अच्छे से रहेंगे तो आपका पेशाब अगर बढ़िया से हो रहा है तो उसमें स्टोन बनने का चांस बहुत कम रहता है। दूसरा आप गॉल ब्लैडर जो आप अभी बोल रहे थे, गॉल ब्लैडर की पथरी के लिए ना, तो उसमें क्या होता है कि पित्ताशय में जो पित्त जो बनता है, तो जैसे रात में आप जब आप सुबह उठते हैं तो सुबह उठ के अगर आप समय से खा लेंगे तो सबसे पहला जो निवाला आप लेंगे तो पित्त जो होता है वो एक पिचकारी की तरह अपना सारा जूस जो होता है वो पेट में रिलीज कर देता है। तो कई बार क्या होता है, जैसे मान लीजिए कई लोगों को, ज़्यादातर आप देखेंगे इनको जैसे जो समय से नहीं खा रहे हैं तो उनको होने की संभावना ज़्यादा रहती है, या फिर आप पित्त किसी कारण से गाढ़ा हो जाए, पित्त गाढ़ा होने का जैसे प्रेगनेंसी में हो सकता है या कुछ दवाइयों की वजह से हो सकता है, या आप अचानक से वेट लॉस करते हैं बहुत ज़्यादा, या तेल एकदम से आप कम कर दें तो वो पित्त गाढ़ा होकर के पथरी का रूप ले सकता है। तो ये सब चीज़ों से बचना चाहिए आपको, जैसे अचानक से आप फास्टिंग शुरू कर दें और आप या फिर सही से नहीं खा रहे हैं, सही समय से नहीं खा रहे हैं, या फिर आपने वेट लॉस के लिए कोई दवाई ले ली, उससे भी पथरी होने की संभावना रहेगी। प्रेगनेंसी का जो पथरी होता है वो ज़्यादातर अपने घुल के निकल मतलब घुल के खत्म भी हो जाता है, वो रिवर्सिबल होता है ज्यादातर, और बाकी तो दवाई से भी हो सकता है, तो वो दवाई वाला तो आप डॉक्टर से मिलेंगे तभी बता पाएंगे कि कौन सी दवाई से हो सकता है।
0: किसान भाई लोग आज अपने पंचायती में हेलो कृषि जगत जोन कार्यक्रम चलत है, में डॉक्टर विनोद कुमार जी आयल हूँ, आप काशी हिंदू विश्वविद्यालय के जो बीएचयू हुआ हॉस्पिटल में गेस्ट्रोलॉजी विभाग में डॉक्टर हुआ, आज आपसे हमन बात करते थे जहाँ कि पेट से संबंधित जितना भी बीमारी होए वाली है ओकरी बारे में, अगर आपके भी कोनो परेशानी
2: परेशानी
0: हो
2: हो
0: है, कोनो दिक्कत होकर पेट में या परिवार में पास पड़ोस में, तो आप हमारे नंबर पर डॉक्टर साहब अभी बैठल हुआ, आप फोन करके पूछी,
2: नंबर भी
0: आप
2: बता दो भैया एक बार।
0: नंबर देखा ही हुआ, देखा कोड हुआ बनारस का 0542, आप फोन नंबर हुआ 222-1050, और दूसरा एक नंबर है 222-1052, ये पर फोन करा लोग और डॉक्टर साहब से सीधे जो है कि बात करा, अपन समस्या बताओ, डॉक्टर साहब बगैर ही बताओ तो हुआ। हाँ तो डॉक्टर साहब, जैसे कि जब हमन बात करते हैं पेट से संबंधित बीमारी का, तो जैसे बहुत बार जैसे होला कि सुबह में लोग जब शौच कर जाना तो पानी पी के जाना है, उनका री मतलब थ्योरी रहला कि ऐसे जो ना कि पेट पूरा शौच बढ़िया से होला, तो इसमें का वास्तविकता है कि इससे कुछ असर पड़ला पेट पे सफाई पे?
1: हाँ देखिए, जैसे आप कुछ खाते हैं तो आप जब खाना खाते हैं तो आपका जो पेट में वो एक कॉन्ट्रैक्शन होता है, कॉन्ट्रैक्शन माने कि आपका अगर गर्म पानी, जैसे कई लोग गर्म पानी पी के भी जाते हैं, तो गर्म पानी पीने से जो आपकी बड़ी आंत होती है उसमें थोड़ा सा संकुचन बढ़ता है, माने कॉन्ट्रैक्शन बढ़ता है। तो इसमें सच्चाई है कि अगर आप पानी पिएंगे या फिर आप कुछ गर्म चीज़ लेके जाएंगे तो वो आपके आंतों को थोड़ा सा मूवमेंट करने में हेल्प करता है।
2: अच्छा डॉक्टर साहब, देखे में अब प्रचलन ई है, प्रचलन का बहुत ही तो बूढ़ पुरनिया की जमाने से चलत है कि लोग सुबह उठ के गर्म पानी भी पिए हैं, और अक्सर ही लोग गर्म पानी पिए ना, और जब से कोरोना काल आयल हमके लगा था कि सभी लोग अब गर्म पानी पिए शुरू कर दिले हुआ, का एकर पेट बदे कोनो अच्छाई है, ऐसे कोनो पेट खातिर मैंने अच्छापन है?
1: अच्छाई बुराई तो नहीं बोल सकते, लेकिन हाँ ये है कि उससे फायदा हो सकता है, जैसे कि जल्दी देखिए ज़्यादातर लोगों को अगर देखिए जैसे उम्र बढ़ेगा आपके आंतों का संकुचन कम हो जाएगा, कॉन्ट्रैक्शन कम हो जाता है, बिकॉज

0: उसकी मांसपेशियां थोड़ी कमजोर हो जाती है।
1: हाँ
0: तो
1: जी
0: अगर आप उसको किसी भी चीज़ से अगर गर्म पानी पी करके उसको थोड़ा सा बढ़ा सकते हो तो बढ़ा लीजिए, उसमें कोई हर्जा तो है नहीं। लेकिन वही कि अगर इसको मतलब, और ये ऐसा भी नहीं है कि आप करेंगे तो उससे कोई घाटा होगा, तो
1: जी
0: कर सकते हैं अगर आपको दिक्कत है तो। ज़्यादातर तो यही कि अगर आप यही काम अगर कर रहे हैं तो आप हरा सब्जी सलाद फाइबर बढ़ाइए खाने में, पानी
1: जी
0: पीजिए बढ़िया से, तो वो अपने आप बढ़िया से आपको समय पर हो, सुबह होगा बढ़िया से, है ना, आपका
1: जी
0: मोशन पास होगा बढ़िया से।
1: जी एक और चीज़ हम आपसे जानना चाहब डॉक्टर साहब, कि गांव गिराव में देखे कि ही मिलेला कि भाई पेट दर्द करता लोगन का, घर में केहू का पेट दर्द करता, तो लोग जो नज़दीकी डॉक्टर हुआ वो चाहे कोनो प्रकार का डॉक्टर हुआ तो जाके तुरंत दवा लेवे लागे लोग, या कुछ जाके खुद से भी सीरप या दवा लेवे लागेला लोग, तो उन्हों के कोना समय डॉक्टर से मिले के चाहिए, और कैसे सोनोग्राफी जो अल्ट्रासाउंड

0: डॉक्टर से मिले के चाही और कैसे सोनोग्राफी जो नेगो अल्ट्रासाउंड कहल जाता है ओके कब लोग करावें और कहाँ करावें तो सबसे अच्छा रहे।
1: देखिए, सबसे ज़रूरी बात यह है कि चूंकि आप समझिए कि जब आप जितना आप गांव की तरफ जाएंगे, यानी मतलब जितने लोगों में आप देखेंगे, तो गंभीर बीमारी का प्रतिशत कम होता जाता है। तो चाहे आप हमारे हॉस्पिटल में देखेंगे तो हो सकता है 100 में से आपको 40 मरीज बहुत सीरियस दिखेगा, लेकिन वहीं अपने गांव में जाके देखेंगे तो 100 में हो सकता है एक को ना मिले आपको, 1000 में एक मिलेगा। तो हर किसी को अल्ट्रासाउंड करने का ज़रूरत नहीं है। अगर आपको बार बार दर्द हो रहा है, अगर आपको लग रहा है कि बहुत कमजोरी हो गया है या फिर बहुत ज़्यादा उल्टी हो रहा हो, दवाओं से ना मान रहा हो, पेट में अगर आपको छूने पे लगता है कोई गांठ है, बुखार आ रहा है, वजन घट रहा है, पैखाने में खून आ रहा है, तो अगर ऐसा कोई लक्षण है तभी आप उसके लिए जांच कराएं। तो उसमें आपको है कि अल्ट्रासाउंड, अगर पेट में दर्द है तो ज़्यादातर डॉक्टर के पास अगर आप जाएंगे तो वो अल्ट्रासाउंड पहला टेस्ट किया जाता है। अल्ट्रासाउंड के अच्छे सेंटर पे कराइए जहाँ पे कि भाई अल्ट्रासाउंड का वॉल्यूम ज़्यादा होता है, क्योंकि आजकल क्या है कि अल्ट्रासाउंड बहुत सारे सेंटर्स हो गए हैं, लोग मतलब क्वालिटी थोड़ी उतनी अच्छी नहीं होती, तो आप एक बार थोड़ा पता कर लेंगे भाई जहाँ कहाँ अच्छा होता है वहीं कराएं, और अगर आप आसपास कोई बड़ा हॉस्पिटल है तो वहाँ जाके करवाएं तो ज़्यादा अच्छा रहेगा।
2: तो डॉक्टर साहब, जैसे बहुत सारे लोग ऐसा हुआ जो उनकी हुक्का का प्रयोग करी हैं, बीड़ी सिगरेट भी पी हैं, गुटखा भी ओकर प्रयोग करे ना, ओकर ये सब जितना भी पदार्थ हुआ
0: मैं नशा
2: एकर
0: वाला पदार्थ
2: नशा का पदार्थ हुआ एकर पेट पर असर पड़े लगा जौन एकर को इससे कोई बीमारी भी जनित होले।
1: देखिए, जैसे आप गुटखा और तंबाकू का बात कर रहे हैं, देखिए इसका तो ये तो कैंसर के जनक है बहुत सारे, इसमें से
2: जी
1: गुटखा तंबाकू मुंह का कैंसर हो सकता है ना, आपका आहार नली का कैंसर हो सकता है, तो ये तो रिस्क तो है ही देने में जो आप बोल रहे हैं। लेकिन पेट पे क्या असर है? पेट पे कई लोगों को इससे उनका आंतों का थोड़ा मूवमेंट अच्छा होता है मोशन पास करने में, क्योंकि वो आदत हो गया एक तरह से उनको, तो उसके ये है कि जितना वो बहुत अच्छा नहीं है, आप उसको जितना हो सके, जितना जल्दी हो सके उसको बंद कर दें, क्योंकि ये सब चीज़ें भाई आगे चल के प्रॉब्लम करेगा।
2: नहीं, बहुत बार इसे देखल गया है गांव में कि जैसे महिला हैं या पुरुष हों उनका पेट दर्द करी तब कहीं कि तरह से हुक्का पीला, तो ये जैसे अभी तो एक तरह का मानसिक उनका अवस्था हुआ कि ये तरह का
1: नहीं,
2: सोचा नहीं, तो एक डॉक्टर के रूप में आपका सलाह देवल जी।
1: ये ठीक नहीं है करना, ये
2: जी
1: ठीक नहीं है करना, है ना, ये
2: जी
1: अच्छा चीज़ नहीं।
2: जी हाँ, तो ये तो बहुत अच्छी बात डॉक्टर साहब बता देना जो
0: डॉक्टर
2: ना।
0: साहब, इतनी लीवर से संबंधित कुछ बताएं, कहें से कि बार बार सुनने में आवेला कि भाई हमारे लीवर में सूजन आ गई है, हमारे लीवर बढ़ गई है, हमारे उसमें फैटी हो गई है, तमाम शब्द आवेला लोगन के बीमारी में, तो एक करीब बताएं कि वो लीवर के अपने कैसे लोग गाँव गिराव के ठीक रखें, खान पान का रखें अगर कोनों में दिक्कत आओ तो।
1: देखिए, फैटी लीवर जो आजकल है एक तरह से ये मतलब इसकी महामारी की तरह दिखाई दे रहा है, हर अल्ट्रासाउंड में आपको फैटी लीवर दिखाई दे जाएगा। तो इसमें क्या है कि आपको आप सबसे कि ये जीवन शैली का मतलब वो है बीमारी है, जैसे शुगर हो गया, बीपी हो गया, तो ये अगर आप अपना वजन कंट्रोल में रखें, खान पान कंट्रोल में रखें, तो ये नहीं होगा। सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है आपको कि खाना पीना कंट्रोल में रखना है। होता क्या है, हम लोग समय के साथ जैसे आजकल जैसे जैसे जीवन बदल रहा है हम लोगों का, हम लोग आराम तलब हो गए हैं, तो जब हम आराम तलब हो गए हैं तो हम लोग खाना वही खा रहे हैं, हमको भाई
2: जी
1: घी चाहिए, मक्खन चाहिए पूरा, लेकिन हम उतना पसीना नहीं बहा रहे जैसे पहले बहाते थे।
2: जी
1: तो हो क्या रहा है कि जो भी है हमारा शरीर उसको अब्जॉर्व करके रख लेता है, तो आपके शरीर में वो फैट के रूप में अब्जॉर्व हो जाता है, तो
2: जी
1: वो जाएगा लिवर में जमा हो जाएगा, तो वही फैटी लिवर का रूप लेता है। इसमें क्या होता है, बहुत अगर लंबे समय तक अगर फैट जमा रहे तो फिर प्रॉब्लम होगा और वही लीवर
0: तो मैंने
1: खराब हो
0: एक
1: सकता
0: प्रकार से लोग अपने शरीर का, अपने खान पान का, अपने व्यायाम का या जितना आप उपाय बताइए डॉक्टर
2: विशेष रूप
0: साहब,
2: से पेट का जो है। हाँ
0: अगर ध्यान रखी लोग तो उनके भाई कम से कम पेट की बीमारी हुई। तो डॉक्टर साहब के मोन भैया, अब
2: हाँ
0: धन्यवाद दिया जाए अपने ये कार्यक्रम में अला खातिर
2: डॉक्टर
0: डॉक्टर।
2: विनोद कुमार भैया जो ना
0: हाँ
2: कि आप अला जो कार्यक्रम में हमारे जो श्रोता लोग रहना है जो फोन से या
0: सुन
2: फोन
0: के
2: से सुन के अपन जानकारी बढ़ो उनका ज्ञानवर्धन भी आप कहना है, एक लिए बहुत बहुत धन्यवाद।
0: और साथ ही धन्यवाद दिया जाए एक कार्यक्रम के प्रस्तुतकर्ता रहने अपने दिलीप यादव भैया उन्हों
2: हाँ
0: के, और मोहन भैया अब
2: हाँ
0: अपनी
2: हाँ
0: भैया
2: सब
0: लोन
2: तो
0: से
2: भैया
0: विदा लिया जाए। तो
2: हाँ
0: पंचो राम
2: राम राम।
0: राम।

आकाशवाणी का ये वाराणसी केंद्र है। लीजिए सुनिए खोए हुए व्यक्तियों के संबंध में सूचना। कार्यालय पुलिस अधीक्षक जनपद चंदौली से प्राप्त सूचना के अनुसार सोनाली यादव पुत्री राजेश यादव निवासी लोहरा थाना मुगलसराय जनपद चंदौली, जिनकी उम्र 19 वर्ष है, ये दिनांक 4 अप्रैल 2026 को अपने घर से भोर में लगभग 4 बजे बिना बताए कहीं चली गई हैं। अब तक घर वापस नहीं है लौटी हैं। इनका रंग सांवला है, लंबाई 5 फीट 5 इंच है। लापता होने के समय इन्होंने काले रंग का सूट और सलवार पहना हुआ था। इनके बारे में जानकारी मिलने पर कृपया थाना मुगलसराय को सूचित करें या नज़दीक के किसी भी थाने को सूचित करें। कार्यालय पुलिस अधीक्षक जनपद चंदौली से प्राप्त सूचना के अनुसार मीरा देवी पत्नी जयप्रकाश पाल निवासी गोड टुटवा पोस्ट अमदाहा चरणपुर नौगढ़ जिला चंदौली, ये 15 जून 2026 को सुबह लगभग 8:30 बजे एक बच्चे के साथ घर से लापता हैं। लापता होने के समय इन्होंने साड़ी पहनी हुई थी। इनका रंग गोरा है, लंबाई 5 फीट 2 इंच। इनके बारे में जानकारी मिलने पर सूचित करें थाना नौगढ़ को या नज़दीक के किसी भी थाने को सूचित करें। आप सुन रहे थे खोए हुए व्यक्तियों के संबंध में सूचना। हम आकाशवाणी के वाराणसी केंद्र से बोल रहे हैं। थोड़ी देर में आप सुनेंगे प्रादेशिक समाचार हमारे लखनऊ केंद्र से।

हम सभी का एक ही नारा, साफ सुथरा हो देश हमारा, सफाई अपनाएं, बीमारी भगाएं, स्वच्छ भारत स्वस्थ भारत। हम सब ने ये ठाना है, भारत को स्वच्छ बनाना है। स्वच्छता का दीप जलाएंगे, चारों ओर उजियारा फैलाएंगे। सभी रोगों की एक दवाई, घर में रखो साफ सफाई।

प्लेटो का कथन है, बुद्धिमान लोग इसलिए बोलते हैं क्योंकि उनके पास कहने के लिए कुछ होता है, और मूढ़ व्यक्ति इसलिए बोलते हैं क्योंकि उन्हें कुछ भी बोलना होता है।

0: जीवन कठिन प्रतीत हो सकता है, लेकिन आपके करने योग्य हमेशा कुछ न कुछ होता है जिसे करके आप सफल हो सकते हैं। ये विचार है स्टीफन हॉकिन के। महात्मा गांधी के अनुसार युद्ध भूमि से भागने से अच्छा है हम लड़खड़ाएं, गिर जाएं, लेकिन फिर से शक्ति बटोर कर खड़े हो जाएं।
1: निश्चित रूप से बहुत।
2: आकाशवाणी लखनऊ से प्रस्तुत है प्रादेशिक समाचार।

0: मुख्य समाचार। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने बांदा में 710 करोड़ रुपए से अधिक लागत की 229 विकास परियोजनाओं का किया लोकार्पण और शिलान्यास। कहा, डबल इंजन सरकार ने बुंदेलखंड में बदली विकास की तस्वीर। श्री राम जन्मभूमि मंदिर के चढ़ावे में अनियमितता के मामले में पुलिस ने तेज की जांच। 8 आरोपियों समेत संदेह के दायरे में आए परिजनों के 30 बैंक अकाउंट सीज। प्रदेश सरकार 12 जुलाई को लगाएगी 35 करोड़ पौधे। प्रदेश के वन राज्य मंत्री अरुण सक्सेना ने कहा, हरित क्षेत्र को बढ़ावा देने के लिए प्रतिबद्ध है सरकार। और प्रदेश में कई जनपदों में भारी वर्षा से जनजीवन प्रभावित। मौसम विभाग ने 11 जुलाई तक बारिश का ऑरेंज अलर्ट किया जारी। नमस्कार, प्रदेश के समाचारों के साथ मैं तनवीर फातिमा, और अब समाचार विस्तार से। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने आज बांदा में 710 करोड़ रुपए से अधिक लागत की 229 विकास परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास किया। इस दौरान उन्होंने विभिन्न योजनाओं के लाभार्थियों को स्वीकृति पत्र, चेक और आयुष्मान कार्ड वितरित किए। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि बुंदेलखंड के विकास का सपना डबल इंजन सरकार ने साकार किया है। सरकार इस क्षेत्र को यूपी के सबसे बड़े औद्योगिक शहर बीड़ा के रूप में विकसित कर रही है।
1: मैं उन्हें आश्वस्त करता हूं कि हमारे बुंदेलखंड के विकास के लिए, यहां की विरासत के संरक्षण के लिए जो भी प्रोजेक्ट शासन के संज्ञान में आएगा, उसको आगे बढ़ा करके बुंदेलखंड को धरती का स्वर्ग बनाने का काम हम लोग करेंगे, आगे बढ़ाने का कार्य करेंगे।
0: मुख्यमंत्री ने बांदा में वीरांगना रानी अवंतीबाई लोधी की प्रतिमा का अनावरण भी किया। इससे पहले मुख्यमंत्री ने आज अपने चित्रकूट दौरे के दूसरे दिन कानून व्यवस्था और विकास परियोजनाओं की समीक्षा कर अधिकारियों को निर्देश दिए। उन्होंने भगवान श्री कामतानाथ के दर्शन किए और पावन कामदगिरी की परिक्रमा कर प्रदेश की सुख समृद्धि की कामना की। अयोध्या के श्रीराम जन्मभूमि मंदिर में चढ़ावे में अनियमितता के मामले में पुलिस की विशेष टीम ने जांच तेज कर दी है। पुलिस ने 8 आरोपियों समेत संदेह के दायरे में आए परिजनों और रिश्तेदारों के करीब 30 बैंक अकाउंट सीज कर दिए हैं। पुलिस ने आरोपी अनुकल्प मिश्रा के चाचा को हिरासत में लिया है। इसके साथ ही इनायत नगर स्थित एक सर्राफा प्रतिष्ठान के संचालक को भी हिरासत में लेकर पूछताछ की जा रही है। इस बीच श्रीराम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट के कोषाध्यक्ष गोविंद देवगिरी महाराज ने बताया कि संत समाज ने ट्रस्ट के फैसलों पर संतुष्टि जताई है। उन्होंने बताया कि ट्रस्ट ने मंदिर में चढ़ावा गिनती स्थल का निरीक्षण किया है और ऐसी व्यवस्था की जा रही है जिससे भविष्य में कोई अन्य घटना दोबारा न हो सके।
2: इस बात का विश्वास रखिए कि हम लोग इस कार्य को अब अधिक दक्षता के साथ करेंगे, किसी पर निर्भर नहीं रहेंगे, और जब यहाँ का सीईओ नियुक्त तो हो जाएगा उसके पश्चात तो सारी कार्य पद्धति में एक निखार आएगा।
0: श्री राम जन्मभूमि मंदिर में दर्शन के लिए जारी किए जाने वाले वीआईपी पास की व्यवस्था में बदलाव किया गया है। ट्रस्ट के महासचिव रहे चंपत राय, ट्रस्टी अनिल मिश्रा और गोपाल के रेफरेंस आईडी सस्पेंड कर दी गई है। इसके चलते उनके माध्यम से विशेष दर्शन पास जारी नहीं हो रहे हैं। नई रेफरेंस आईडी अभी तक जारी नहीं की गई है। ऐसे में पहले से जारी किए गए विशेष पास मान्य किए जा रहे हैं। नए पास नई रेफरेंस आईडी जारी होने के बाद बन सकेंगे। केंद्रीय राज्य मंत्री और भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष पंकज चौधरी ने आज मिर्जापुर में पार्टी पदाधिकारियों और जनप्रतिनिधियों के साथ बैठक कर संगठनात्मक गतिविधियों पर चर्चा की। मीडिया से बात करते हुए श्री चौधरी ने अयोध्या के राम मंदिर में चढ़ावे की चोरी के मामले को गंभीर बताते हुए कहा कि जांच में जो भी दोषी पाया जाएगा उसके विरुद्ध कठोर कार्रवाई होगी।
3: मंदिर बनने के बाद उसका एक प्रभावित ट्रस्ट बना हुआ है, ट्रस्ट की ही देख रेख में होता है, सरकार का उसमें कोई इंटरफेरेंस नहीं होता है, और निश्चित तौर से जो भी ट्रस्ट का हेड है वो भी जवाबदेह होगा, और जो जांच में दोषी पाया जाएगा निश्चित तौर से कड़ी से कड़ी सजा।
0: एक राष्ट्र एक चुनाव पर पीपी चौधरी की अध्यक्षता में गठित संयुक्त संसदीय समिति 10 से 15 जुलाई तक पणजी और लखनऊ का दौरा करेगी। इस अध्ययन दौरे का उद्देश्य क्षेत्रीय स्तर पर संवाद की प्रक्रिया को आगे बढ़ाना तथा विभिन्न हितधारकों के साथ व्यापक विचार विमर्श करना है। समिति इस दौरान उच्च संवैधानिक पदाधिकारियों, निर्वाचित जनप्रतिनिधियों, राजनीतिक दलों, अधिवक्ता संघों और विभिन्न पेशेवर संगठनों के साथ परामर्श करेगी। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कृषि क्षेत्र में उत्कृष्ट नीतिगत नेतृत्व के लिए उत्तर प्रदेश को

0: सत्रहवें एग्रीकल्चर लीडरशिप अवार्ड 2026 से सम्मानित किया। नई दिल्ली में आयोजित एक समारोह में यह सम्मान प्रदेश के कृषि मंत्री सूर्य प्रताप शाही को प्रदान किया गया। इस मौके पर कृषि मंत्री ने कहा कि उत्तर प्रदेश आज कृषि के क्षेत्र में नए कीर्तिमान स्थापित कर रहा है। उन्होंने कहा कि आज उत्तर प्रदेश का खाद्यान्न उत्पादन 543 लाख मीट्रिक टन से बढ़कर 750 लाख मीट्रिक टन हो गया है। देश के कुल उत्पादन में अकेले यूपी 22% योगदान कर रहा है। ये समाचार आप आकाशवाणी लखनऊ से सुन रहे हैं। ताज़ा समाचार जानने के लिए आप हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in पर लॉग इन कर सकते हैं। इसके साथ ही आप प्रादेशिक समाचारों का ये बुलेटिन हमारे यूट्यूब चैनल newsonair लखनऊ पर भी सुन सकते हैं। प्रदेश सरकार की ओर से 12 जुलाई को 35 करोड़ पौधे लगाए जाएंगे। इस महाअभियान के तहत मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ गोरखपुर में एक पेड़ मां के नाम लगाएंगे। प्रदेश के वन राज्य मंत्री अरुण सक्सेना ने कहा कि सरकार हरित क्षेत्र को बढ़ावा देने को लेकर प्रतिबद्ध है और ये कीर्तिमान आसानी से हासिल करेगी।
1: 35 करोड़ का लक्ष्य बड़ा है, लेकिन उत्तर प्रदेश और माननीय योगी जी की सरकार और यहाँ की जनता के लिए बहुत बड़ा नहीं। हमने पिछली बार भी 35 करोड़ का टारगेट था तो हमने 36 करोड़ पेड़ लगाए थे एक ही दिन में, तो हमारे लिए 35 करोड़ का लक्ष्य बड़ा जरूर है लेकिन बहुत बड़ा नहीं है, हम इससे कहीं ज्यादा पेड़ लगाएंगे।
0: राज्यपाल आनंदीबेन पटेल की अध्यक्षता में आज कानपुर के छत्रपति शाहूजी महाराज विश्वविद्यालय का दीक्षांत समारोह संपन्न हुआ। इस मौके पर विद्यार्थियों को 1 लाख से अधिक डिग्रियां और 51 पदक प्रदान किए गए। पदक पाने वालों में 9 छात्र और 42 छात्राएं शामिल हैं। इस मौके पर आंगनबाड़ी केंद्रों के लिए किट का वितरण और 800 बालिकाओं का HPV टीकाकरण कराया गया। इस मौके पर राज्यपाल ने कहा कि अब तक लगभग 3 लाख बालिकाओं का निशुल्क HPV टीकाकरण कराया जा चुका है। उत्तर प्रदेश शिक्षक पात्रता परीक्षा 2026 की प्रोविजनल उत्तर कुंजी को लेकर अभ्यर्थी 14 जुलाई तक ऑनलाइन आपत्ति दर्ज कर सकते हैं। उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग के अध्यक्ष डॉ. प्रशांत कुमार ने ये जानकारी दी है। TET परीक्षा 2 और 3 जुलाई को प्रतिदिन 2-2 पालियों और 4 जुलाई को प्रथम पाली में सम्पन्न हुई थी। भातखंडे संस्कृत विश्वविद्यालय ने प्रवेश के लिए आवेदन की अंतिम तिथि 15 जुलाई तक बढ़ा दी है। अभ्यर्थी विश्वविद्यालय की वेबसाइट पर आवेदन कर सकते हैं। प्रदेश के कई जनपदों में बारिश ने आम जनजीवन को प्रभावित किया है। राजधानी लखनऊ समेत फर्रुखाबाद, मुजफ्फरनगर, संभल, नोएडा, अयोध्या, चित्रकूट, बिजनौर सहित कई जिलों में आज बारिश हुई। बारिश और जलभराव के चलते संभल और मुजफ्फरनगर में जिला प्रशासन ने आज स्कूलों में अवकाश घोषित कर दिया। अमरोहा में बारिश और बैराज से पानी छोड़े जाने के बाद गंगा का जलस्तर बढ़ गया है, जिससे कई गाँवों में जलभराव की स्थिति उत्पन्न हो गई है। बाढ़ की आशंका को देखते हुए यहां 11 बाढ़ चौकियां स्थापित की गई हैं। लगातार बारिश के कारण गंडक नदी कुशीनगर के खड्डा में खतरे के निशान के करीब पहुंच गई है। लखनऊ स्थित मौसम विज्ञान केंद्र के मौसम वैज्ञानिक अतुल कुमार सिंह ने बताया कि 11 जुलाई तक प्रदेश में कई स्थानों पर भारी बारिश का ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है।
2: पिछले 24 घंटों के दौरान वेस्ट यूपी में हेवी टू वेरी हेवी रेन के साथ कहीं कहीं एक्सट्रीमली हेवी रेन हुई है, और अगर आगे आने वाले दिनों में बात करें तो ये उत्तरोत्तर मध्य उत्तर प्रदेश और उसके बाद पूर्वी उत्तर प्रदेश की ओर आगे बढ़ेगा। यद्यपि यह उत्तरोत्तर कमजोर होता जाएगा, परंतु इसके प्रभाव से कल जो है इसके सेंट्रल यूपी की तरफ आने पर और थोड़ा कमजोर होने पर वर्षा की मात्रा में थोड़ी कमी आएगी, लेकिन भारी से बहुत भारी वर्षा का दौर पश्चिमी उत्तर प्रदेश में कल यानी कि 10 जुलाई को भी जारी रहेगा, और इसके बाद 11 जुलाई को पश्चिमी उत्तर प्रदेश में इसमें व्यापक तौर पर कमी आ जाएगी और तराई इलाकों में यह कहीं कहीं भारी वर्षा तक सीमित हो जाएगा।
0: और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने बांदा में 710 करोड़ रुपए से अधिक लागत की 229 विकास परियोजनाओं का किया लोकार्पण और शिलान्यास। कहा, डबल इंजन सरकार ने बुंदेलखंड में बदली विकास की तस्वीर। श्री राम जन्मभूमि मंदिर के चढ़ावे में अनियमितता के मामले में पुलिस ने तेज की जांच। 8 आरोपियों समेत संदेह के दायरे में आए परिजनों के 30 बैंक अकाउंट सीज। प्रदेश सरकार 12 जुलाई को लगाएगी 35 करोड़ पौधे। प्रदेश के वन राज्य मंत्री अरुण सक्सेना ने कहा, हरित क्षेत्र बढ़ाने को लेकर प्रतिबद्ध है सरकार। और प्रदेश के कई जनपदों में भारी वर्षा से जनजीवन प्रभावित। मौसम विभाग ने 11 जुलाई तक बारिश का ऑरेंज अलर्ट किया जारी। इसी के साथ प्रादेशिक समाचारों का ये बुलेटिन समाप्त।

0: महात्मा गांधी ने कहा था, स्वयं के साक्षात्कार का अनुपम रास्ता है दूसरों की सेवा में स्वयं को होम कर देना।
1: आपने ट्यून किया है आकाशवाणी का वाराणसी केंद्र। प्रस्तुत है फिल्म संगीत का कार्यक्रम रसरंग।

लगे रहो मुन्ना भाई, ये फिल्म का नाम था जिसका ये गीत अभी आप सुन रहे थे सोनू निगम, श्रेया घोषाल और साथियों की आवाज़ में। इस गीत को लिखा था स्वानंद किरकिरे ने, संगीत शांतनु मोइत्रा का था। अब आइए हम आपको सुनवाने जा रहे हैं, चमेली फिल्म का ये गीत है, आवाज़ है सुनिधि चौहान की। इस गीत को लिखा है इरशाद कामिल ने, संगीत संदेश शांडिल्य का।

अब आइए सुनते हैं श्रेया घोषाल और विनोद राठौर की आवाज़ में, ये गीत है फिल्म मुन्ना भाई एमबीबीएस से।

फुकरे फिल्म के इस गीत के साथ ही फिल्म संगीत का कार्यक्रम रसरंग समाप्त करने की हमें अनुमति दीजिए। हम आकाशवाणी के वाराणसी केंद्र से बोल रहे हैं।

प्रस्तुत है सुगम संगीत। आज की कलाकार हैं सुहानी शुक्ला। इनकी आवाज में सबसे पहले आइए सुनते हैं सूरदास का ये भजन।

0: विचारों की अभिव्यक्ति और अधिकार प्राप्ति का आधार सत्याग्रह।
1: आइए अपने जीवन में सत्य, अहिंसा और प्रेम को अपनाएं।
2: राष्ट्रपिता महात्मा गांधी के बताए मार्ग का अनुसरण करें।
3: आकाशवाणी का ये वाराणसी केंद्र है।

आप सुन रहे हैं सुगम संगीत, कलाकार हैं सुहानी शुक्ला। अब आइए सुनते हैं सूरदास के इस भजन को।

सुगम संगीत के कार्यक्रम में आप सुन रहे थे सुहानी शुक्ला के गाए भजन। हम आकाशवाणी की वाराणसी केंद्र से बोल रहे हैं। प्रस्तुत है फिल्म संगीत का कार्यक्रम रसमाधुरी।

आराधना फिल्म का ये गीत अभी आप सुन रहे थे किशोर कुमार की आवाज़ में। आनंद बख्शी ने इस गीत को लिखा था, संगीत HD बर्मन का। अब आइए सुनते हैं

मजरूह का लिखा ये गीत अभी आप सुन रहे थे गीता दत्त और साथियों की आवाज़ में। फिल्म का नाम मिस्टर एंड मिसेज 55, संगीतकार ओपी नैयर। अब हम आपको सुनवाने जा रहे हैं आरडी बर्मन के संगीत निर्देशन में फिल्म नमक हराम फिल्म का ये गीत। आवाज़ है किशोर कुमार, इस गीत को लिखा है आनंद बख्शी ने।

लिखा था, संगीत आरडी बर्मन का, आवाज़ किशोर कुमार और आशा भोसले की। अब आइए हम आपको सुनवाने जा रहे हैं कविता कृष्णमूर्ति की आवाज़ में, ये गीत है फिल्म ऐसा प्यार कहाँ। इस गीत को लिखा है आनंद बख्शी ने, संगीतकार हैं लक्ष्मीकांत प्यारेलाल।

0: ऐसा प्यार कहाँ फिल्म के इस गीत के साथ ही फिल्म संगीत का कार्यक्रम रसमाद्री समाप्त करने की हमें अनुमति दीजिए। हम आकाशवाणी के वाराणसी केंद्र से बोल रहे हैं। रात्रि के 8:45 हो रहे हैं। थोड़ी देर में आप सुनेंगे समाचार प्रभात हमारे दिल्ली केंद्र से।
1: आकाशवाणी से समाचार संध्या के साथ मैं प्रियंका अरोड़ा। मुख्य समाचार। भारत और ऑस्ट्रेलिया ने शांतिपूर्ण और स्थिर हिंद प्रशांत क्षेत्र के लिए रक्षा और सुरक्षा सहयोग पर संयुक्त घोषणा पत्र को स्वीकार किया। ऑस्ट्रेलिया से यूरेनियम की आपूर्ति के लिए भी समझौता हुआ। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, भारत अधिक विकास अधिक उपलब्धि के मंत्र के साथ दुनिया की शीर्ष 3 अर्थव्यवस्थाओं में से एक बनना चाहता है। मेलबर्न में भारतीय समुदाय को संबोधित किया। राष्ट्रीय महिला आयोग ने IVF केंद्रों को नियंत्रित करने वाले नियमों और कानूनों की समीक्षा के लिए उच्च स्तरीय विशेषज्ञ समिति का गठन किया। सरकार ने इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों के घरेलू उत्पादन को बढ़ावा देने के लिए उनमें इस्तेमाल

0: होने वाले मुख्य पुर्जों पर मूल सीमा शुल्क में छूट दी। ईरान ने अमेरिका पर बुशहर परमाणु ऊर्जा संयंत्र के पास हवाई हमला करने का आरोप लगाया। जवाब में बहरीन, कुवैत और कतर में अमेरिकी ठिकानों पर हमले किए। और फीफा विश्व कप के पहले क्वार्टर फाइनल में आज रात फ्रांस का मुकाबला मोरक्को से। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री एंथनी एल्बनीज के बीच आज मेलबर्न में तीसरी ऑस्ट्रेलिया भारत वार्षिक शिखर वार्ता हुई। इस दौरान दोनों नेताओं ने प्रतिनिधिमंडल स्तर की वार्ता में द्विपक्षीय संबंधों को और सशक्त बनाने पर चर्चा की। दोनों नेताओं ने द्विपक्षीय संबंधों में आए परिवर्तनकारी महत्वपूर्ण बदलाव का स्वागत करते हुए क्षेत्रीय स्थिरता, ऊर्जा सुरक्षा और प्रौद्योगिकी नवाचार के लिए व्यापक सहयोग ढांचे को अंतिम रूप दिया। हिंद प्रशांत क्षेत्र में शांति और स्थिरता सुनिश्चित करने के उद्देश्य से दोनों देशों ने रक्षा और सुरक्षा सहयोग पर ऐतिहासिक संयुक्त घोषणा पत्र को स्वीकार किया, वार्षिक रक्षा मंत्रियों के संवाद को संस्थागत स्वरूप प्रदान किया तथा समुद्री सुरक्षा सहयोग का प्रारूप जारी किया।
1: हमारे मैरिटाइम सिक्योरिटी कोलैबोरेशन रोडमैप से इंडो पैसिफिक में हमारे साझा प्रयासों को नई ताकत मिलेगी। हम शिप बिल्डिंग, शिप रिपेयर और मेंटेनेंस में भी मिलकर आगे बढ़ेंगे। फ्रेंड, आज हमने कई क्षेत्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय मुद्दों पर भी विस्तार पूर्वक चर्चा की।
0: प्रधानमंत्री मोदी ने बताया कि दोनों देशों ने यूरेनियम आपूर्ति और महत्वपूर्ण खनिज गलियारे पर ऐतिहासिक समझौतों पर हस्ताक्षर किए।
1: पीएम सूर्यघर योजना को सपोर्ट करने के लिए हमने मिलकर गुजरात में रूफटॉप सोलर ट्रेनिंग एकेडमी बनाई है। यह एकेडमी अनेक महिलाओं और युवाओं की कैपेसिटी बिल्डिंग में योगदान देगी। न्यूक्लियर एनर्जी के क्षेत्र में आज हमने एक महत्वपूर्ण समझौता किया है। इससे ऑस्ट्रेलिया से भारत को यूरेनियम सप्लाई का मार्ग खुलेगा और हमारे क्लीन एनर्जी के उद्देश्यों को नई ताकत मिलेगी।
0: प्रधानमंत्री ने कहा कि रणनीतिक प्रौद्योगिकी और संसाधन सुरक्षा के क्षेत्र में भी महत्वपूर्ण प्रगति हुई है। इसके अंतर्गत ऑस्ट्रेलिया भारत साइबर महत्वपूर्ण प्रौद्योगिकी तथा आपूर्ति श्रृंखला साझेदारी को कार्यान्वित किया गया है। बाद में प्रधानमंत्री मोदी ने ऑस्ट्रेलिया के मेलबर्न में मेलबर्न मीट्स मोदी कार्यक्रम में कहा कि भारत ऑस्ट्रेलिया गठबंधन नई ऊंचाइयों पर पहुंच गया है। 12 वर्षों में ऑस्ट्रेलिया की अपनी तीसरी यात्रा में प्रधानमंत्री ने 10 लाख से अधिक प्रवासी भारतीयों को द्विपक्षीय मित्रता का आधार स्तंभ बताया। श्री मोदी ने कहा कि 21वीं सदी का भारत एक विकसित राष्ट्र बनने के लक्ष्य की ओर बढ़ रहा है।
1: 21वीं सदी का भारत आज विकसित होने के लक्ष्य पर काम कर रहा है। ये वो भारत है जो कहता है ग्रो मोर अचीव मोर। हम 140 करोड़ एस्पिरेशन से भरे राष्ट्र है। हम अधीर है, बेसब्र है। हम दुनिया की सबसे तेजी से बढ़ती इकोनॉमी है, लेकिन हम जल्द से जल्द दुनिया की टॉप 3 इकोनॉमी बनना चाहते हैं।
0: श्री मोदी ने कहा कि भारत में चिप से लेकर जहाजों तक के विनिर्माण का तंत्र विकसित किया जा रहा है।
1: आज चिप से लेकर शिप तक मैन्युफैक्चरिंग का भारत में एक नया इकोसिस्टम डेवलप किया जा रहा है। भारत के बड़े सपनों, बड़ी एस्पिरेशंस की नींव है पीपल फर्स्ट, यानी नागरिक देवो भव का मंत्र। ये आज के भारत की गवर्नेंस का मूल मंत्र बन गया।
0: इस अवसर पर ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री एंथनी अल्बनीज ने कहा कि इस आयोजन की ऊर्जा स्पष्ट रूप से महसूस की जा सकती है। एक रिपोर्ट।
2: भारत ऑस्ट्रेलिया के रिश्ते सामान्य कूटनीति से कहीं आगे बढ़ चुके हैं। ये मार्बल स्टेडियम में गूंजती तालियां और लोगों के उत्साह से बयां होता है। प्रधानमंत्री मोदी का एक महत्वाकांक्षी और विकसित भारत का दृष्टिकोण, जिसमें वैश्विक विनिर्माण में कामयाबी से लेकर ऑपरेशन ब्रह्मा के अंतर्गत अहम मानवीय मदद तक शामिल है, साबित करता है कि भारत मानवता के हित में लगातार काम कर रहा है। प्रधानमंत्री अल्बनीज ने ऑस्ट्रेलिया में भारतीय समुदाय को दोनों देशों के बीच महत्वपूर्ण सेतु बताया। इससे ये साफ होता है कि भारतीय समुदाय दोनों देशों की अर्थव्यवस्था और रणनीतिक रक्षा गलियारे को मजबूती दे रहा है जिससे हमारा साझा भविष्य सुरक्षित और समृद्ध बना रहे और हम आपसी भरोसे से जुड़े रहें। मेलबर्न से सुहास राम की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष।

0: से शक्ति सिंह।
1: विदेश सचिव विक्रम मिश्री ने आज कहा कि तीसरा वार्षिक भारत ऑस्ट्रेलिया शिखर सम्मेलन ऊर्जा सुरक्षा के क्षेत्र में भारत के लिए एक महत्वपूर्ण उपलब्धि है। विदेश सचिव ने संवाददाता सम्मेलन में कहा कि शिखर सम्मेलन में भारत को ऑस्ट्रेलिया से यूरेनियम की दीर्घकालिक आपूर्ति सुनिश्चित करने को अंतिम रूप दिया गया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ऑस्ट्रेलिया की बेहद सफल राजकीय यात्रा का कल समापन हो रहा है। प्रधानमंत्री मोदी ने कल ऑस्ट्रेलिया के विपक्ष के नेता एंगस टेलर से मुलाकात करेंगे। प्रधानमंत्री मोदी ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री एंथनी एल्बनीज के साथ प्रतिष्ठित मेलबर्न क्रिकेट ग्राउंड का दौरा करेंगे। इसके बाद प्रधानमंत्री न्यूजीलैंड के लिए रवाना होंगे। न्यूजीलैंड में प्रवासी भारतीय समुदाय के आर्थिक योगदान पर आधारित एक रिपोर्ट आज ऑकलैंड में जारी की गई। हमारी संवाददाता ने बताया है कि इस अवसर पर न्यूजीलैंड के राजस्व और जलवायु परिवर्तन मंत्री तथा न्यूजीलैंड में भारत के उच्चायुक्त सहित कई गणमान्य व्यक्ति उपस्थित थे।
2: ऑकलैंड में वाइटाकरे इंडियन एसोसिएशन द्वारा आयोजित एक समारोह में न्यूजीलैंड में बसे भारतीय समुदाय के आर्थिक योगदान पर आधारित एक रिपोर्ट जारी की गई। इस रिपोर्ट में न्यूजीलैंड की अर्थव्यवस्था में भारतीय समुदाय की बढ़ती भागीदारी और उसके व्यापक आर्थिक प्रभाव का आकलन किया गया है। रिपोर्ट में बताया गया है कि भारतीय समुदाय उद्यमिता, सूचना प्रौद्योगिकी, स्वास्थ्य, शिक्षा, आतिथ्य, खुदरा व्यापार तथा अन्य क्षेत्रों में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा है। रिपोर्ट के प्रमुख निष्कर्ष प्रस्तुत करते हुए इन्फोमेट्रिक्स के मुख्य कार्यकारी अधिकारी ब्रेड ऑल्सन ने कहा कि भारतीय समुदाय न्यूजीलैंड के सबसे तेजी से आगे बढ़ने वाले समुदायों में से एक है। मंजू मीना, आकाशवाणी समाचार, ऑकलैंड।
1: ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं।

0: भारत अभियान।
1: निक्षय मित्र तो हम सबका साथ निभाते, टीबी रोगी व परिजन को पोषण, जांच, इलाज और आजीविका संबंधी सहायता पहुंचाते। जब मिल जाएगा सबको अपना निक्षय मित्र तैयार, तब पक्की हो जाएगी हमारी जी और टीबी की हार।
2: निक्षय मित्र, इस अभियान ने एक बड़े चैलेंज से निपटने में टीबी के मरीजों की बहुत मदद की है। आपको जानकर हैरानी होगी, हमारे देश में 10-12 साल के बच्चे भी निक्षय मित्र बनकर टीबी के खिलाफ लड़ाई को आगे बढ़ा रहे हैं।
1: अधिक जानकारी के लिए नजदीकी आयुष्मान आरोग्य मंदिर जाएं। स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा जनहित में जारी।
3: समाचार संध्या में आपका फिर स्वागत है। राष्ट्रीय महिला आयोग ने आईवीएफ केंद्रों को नियंत्रित करने वाले नियमों और कानूनों की समीक्षा के लिए उच्च स्तरीय विशेषज्ञ समिति का गठन किया है। इस समिति का गठन सहायक प्रजनन प्रौद्योगिकी एआरटी क्षेत्र में अनियमितताओं के कारण किया गया। ये समिति आईवीएफ क्लिनिक, एआरटी केंद्रों और गैमीट बैंकों को नियंत्रित करने वाले नियामक ढांचे और संबंधित कानूनों की व्यापक समीक्षा करेगी। इसमें महिलाओं के प्रजनन अधिकारों, गरिमा और सुरक्षा की रक्षा पर विशेष ध्यान दिया जाएगा। दिल्ली उच्च न्यायालय की पूर्व न्यायाधीश न्यायमूर्ति आशा मेनन इस विशेषज्ञ समिति की अध्यक्षता करेंगी। उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन ने आज कहा कि वर्ष 2047 तक भारत को एक विकसित राष्ट्र बदलने के लिए बुनियादी विज्ञान में मजबूत आधार होना अत्यंत आवश्यक है। भुवनेश्वर में राष्ट्रीय विज्ञान शिक्षा और अनुसंधान संस्थान के 15वें दीक्षांत समारोह को संबोधित करते हुए उन्होंने ये बात कही। एक रिपोर्ट।
4: उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन ने कहा कि वैज्ञानिक क्षमता विकसित भारत की आधारशिला है। नाइजर के 15वें दीक्षांत समारोह को संबोधित करते हुए उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि ज्ञान आधारित अर्थव्यवस्था बनाने, राष्ट्रीय सुरक्षा को मजबूत करने और टिकाऊ विकास सुनिश्चित करने के लिए बुनियादी विज्ञान में मजबूत नींव का होना बहुत जरूरी है। उपराष्ट्रपति ने कहा कि ये ऐसे युवा शोधकर्ताओं को तैयार कर रहा है जो जलवायु परिवर्तन, सार्वजनिक स्वास्थ्य आपात स्थितियों, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और क्वांटम टेक्नोलॉजी जैसे उभरती वैश्विक चुनौतियों का सामना करने में सक्षम है। प्रकाश दास, आकाशवाणी समाचार, भुवनेश्वर।
3: महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने आज राज्य में समान नागरिक संहिता यूसीसी लागू करने के लिए रूपरेखा तैयार करने के लिए सर्वोच्च न्यायालय की पूर्व न्यायाधीश न्यायमूर्ति रंजना देसाई की अध्यक्षता में 7 सदस्यीय समिति के गठन की घोषणा की। प्रस्तावित कानून

में धर्म की परवाह किए बिना विवाह, तलाक, विरासत, उत्तराधिकार और गोद लेने जैसे मामलों को शामिल किए जाने की उम्मीद है। उन्होंने कहा कि समिति राज्य सरकार को अपनी सिफारिशें सौंपने से पहले प्रस्तावित कानून के कानूनी, संवैधानिक और सामाजिक पहलुओं की जांच करेगी। सरकार ने स्मार्टफोन, लैपटॉप, पहनने योग्य स्मार्ट उपकरणों और स्मार्ट टीवी जैसे इलेक्ट्रॉनिक उपकरण

0: स्मार्ट टीवी जैसे इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों के निर्माण को बढ़ावा देने के उद्देश्य से डिस्प्ले असेंबली, लिथियम आयन सेल और इंडक्टर कॉयल मॉड्यूल के निर्माण में उपयोग होने वाले सामान पर मूल सीमा शुल्क में छूट देने का फैसला किया है। ईरान ने अमेरिका पर आज बुशहर परमाणु ऊर्जा संयंत्र के पास हवाई हमला करने का आरोप लगाया। ईरान की सरकारी समाचार एजेंसी ने बताया कि ये कार्रवाई उस पर हमले समाप्त करने की अमेरिकी सेना की घोषणा के कुछ घंटों बाद हुई। अमेरिकी केंद्रीय कमान ने इसकी पुष्टि नहीं की है। अमेरिका ने आज सुबह ईरान पर फिर हवाई हमले किए। ईरान ने भी खाड़ी क्षेत्र में अमेरिका के सहयोगी देशों को निशाना बनाकर जवाबी कार्रवाई की। ईरानी मिसाइलों ने कुवैत और कतर को निशाना बनाया। इन हमलों से पश्चिम एशिया में युद्ध समाप्त करने का अंतरिम समझौता खतरे में पड़ गया है। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज ऑन एआईआर ऐप पर भी उपलब्ध हैं। ये आकाशवाणी है। मौसम विभाग ने बताया है कि दक्षिण पश्चिम मानसून ने पूरे देश को अपनी चपेट में ले लिया है। उत्तराखंड में कल तेज वर्षा और कुछ स्थानों पर मूसलाधार वर्षा की चेतावनी जारी की है। अरुणाचल प्रदेश, असम, मेघालय, पश्चिम बंगाल में हिमालय के तराई क्षेत्रों, सिक्किम तथा उत्तर प्रदेश के कुछ भागों में शुक्रवार को तेज वर्षा होगी। फीफा फुटबॉल विश्व कप के क्वार्टर फाइनल मुकाबले आज से शुरू हो रहे हैं। पहले मुकाबले में आज रात 1:30 बजे बोस्टन में फ्रांस का सामना मोरक्को से होगा। वहीं दूसरे क्वार्टर फाइनल मुकाबले में कल देर रात स्पेन और बेल्जियम आमने सामने होंगे। भारत और इंग्लैंड के बीच चौथा T20 मैच आज रात 10 बजे से ब्रिस्टल में खेला जाएगा। 5 मैचों की श्रृंखला में 2-0 से पीछे भारत की टीम को सीरीज ड्रॉ कराने के लिए हर हाल में आज का मैच जीतना होगा। विंबलडन टेनिस टूर्नामेंट में चेक गणराज्य की कैरोलिना मुखोवा ने महिला सिंगल्स के फाइनल में प्रवेश कर लिया है। कैरोलिना ने सेमीफाइनल में अमेरिका की कोको गॉफ को हराया। दूसरे सेमीफाइनल में मार्टा कोत्स्यूक का मुकाबला लिंडा नोस्कोवा से होगा। पुरुष सिंगल्स के सेमीफाइनल मुकाबले कल खेले जाएंगे। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। भारत और ऑस्ट्रेलिया ने स्वतंत्र और मुक्त हिंद प्रशांत क्षेत्र के लिए रक्षा और सुरक्षा सहयोग पर संयुक्त घोषणा पत्र स्वीकार किया। ऑस्ट्रेलिया से यूरेनियम की आपूर्ति के लिए भी समझौता हुआ। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, भारत अधिक विकास, अधिक उपलब्धि के मंत्र के साथ दुनिया की शीर्ष 3 अर्थव्यवस्थाओं में शामिल होने का इच्छुक। मेलबर्न में भारतीय समुदाय को संबोधित किया। राष्ट्रीय महिला आयोग ने IVF केंद्रों को नियंत्रित करने वाले नियमों और कानूनों की समीक्षा के लिए उच्च स्तरीय विशेषज्ञ समिति का गठन किया। सरकार ने इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों के घरेलू उत्पादन को बढ़ावा देने के लिए उनमें इस्तेमाल होने वाले मुख्य पुर्जों पर मूल सीमा शुल्क में छूट दी। ईरान ने अमेरिका पर बुशहर परमाणु ऊर्जा संयंत्र के पास हवाई हमला करने का आरोप लगाया। जवाब में बहरीन, कुवैत और कतर में अमेरिकी ठिकानों पर हमले किए। और फीफा विश्व कप के पहले क्वार्टर फाइनल में आज रात फ्रांस का मुकाबला मोरक्को से। इसके साथ ही समाचार संध्या का यंग समाप्त हुआ। नमस्कार।
1: गुड इवनिंग, this is Akashvani. I am Anuja Kumar with the news at 9. The headlines. India and Australia adopt a joint declaration on defense and security cooperation to ensure free and open Indo-Pacific. Also ink deal for supply of uranium from Australia. Prime Minister Narendra Modi says India aspires to be one of world's top 3 economies, driven by motto of grow more, achieve more, addresses Indian diaspora in Melbourne. National Commission for Women forms a high-level expert committee to review regulatory framework and laws governing IVF clinics. Government waives basic customs duty on key components used in electronic devices to promote their domestic production. Iran accuses US of conducting airstrike near Bushehr nuclear power plant, attacks US bases in Bahrain, Kuwait and Qatar. And in FIFA World Cup, France to face Morocco in the first quarter final at Boston in US tonight.

आपने ट्यून किया है आकाशवाणी का वाराणसी केंद्र। प्रस्तुत है कार्यक्रम अंजुमन। इस कार्यक्रम में सबसे पहले आइए सुनते हैं यारो सब दुआ करो एल्बम से, ये रचना है आवाज़ रामशंकर की।

अब आइए सुनते हैं गुलमोहर एल्बम से, ये रचना है आवाज़ भूपिंदर सिंह की।

आप सुन रहे हैं कार्यक्रम अंजुमन। अब आइए सुनते हैं समवन समवेयर, ये एल्बम का नाम है। चित्रा सिंह की आवाज़ में आइए सुनते हैं ये गज़ल।

अब आइए सुनते हैं यार का दीदार चाहिए एल्बम से ये गीत रामशंकर की आवाज़ में।

ये आवाज़ थी रामशंकर की। एल्बम का नाम यार का दीदार चाहिए। इसी के साथ अंजुमन कार्यक्रम को समाप्त करने की हमें अनुमति दीजिए। हम आकाशवाणी के वाराणसी केंद्र से बोल रहे हैं।

आइए आज से ही स्वच्छता ही सेवा की मूल भावना को अपनाएं, जीवन में नव ऊर्जा का संचार करें। स्वच्छता ही सेवा है, स्वच्छता ही संस्कृति है। स्वच्छता बनाए रखना हमारी जिम्मेदारी है। स्वच्छ रहेगा भारत तो समृद्ध रहेगा भारत। नदियों को रखो साफ, ये है हमारी सभ्यता की पहचान। स्वच्छता को आदत बनाए, रोज सफाई करना भूल न जाए। गांधी जी के सपनों का भारत हमें बनाना है। पूरा भारत स्वच्छ रहे, यही हमारा नारा है। स्वस्थ भविष्य के लिए आज से ही स्वच्छता अपनाए। हर नागरिक का हो ये सपना, स्वच्छ हो संपूर्ण भारत अपना। जब हमारा भारत स्वच्छ होगा तभी तो हर सपना सच होगा। देश तभी साफ होगा जब स्वच्छता में सबका हाथ होगा। मन में रखो एक ही सपना, स्वच्छ बनाना है भारत अपना। जब देश का कोना कोना स्वच्छ रहेगा तब देश का हर एक बच्चा स्वस्थ रहेगा। अविरल गंगा अविरल यमुना, स्वच्छ भारत संकल्प है अपना। न फैलाएंगे कूड़ा कचरा, स्वच्छ बनाएंगे भारत अपना।

आपने ट्यून किया है आकाशवाणी का वाराणसी केंद्र। प्रस्तुत है फरमाइशी गीतों का कार्यक्रम आपकी पसंद। इस कार्यक्रम में आपके पत्रों के साथ है ज्योति स्वरूप। नमस्कार। सबसे पहले हम आपको आपकी पसंद का गीत सुनवाने वाले हैं सरस्वती चंद्र फिल्म से। आवाज़ है मुकेश और लता मंगेशकर की। इस गीत को लिखा है इंदिवर ने, संगीत कल्याण जी आनंद जी का है, इसे पसंद किया है। बाबा बैजनाथ धाम से मनोज केशरी, पूजा केशरी, महादेव केशरी, श्रद्धानंद केशरी, रोशनी केशरी, ग्राम कुटकुहा, जिला पन्ना, मध्य प्रदेश से प्रताप सेन, सविता सेन, प्रशांत, नेहा अम्बेश, कृष्णा सांसी सेन, भिलाई छत्तीसगढ़ से मुकेश शर्मा, सरिता शर्मा, गौरव शर्मा, गरिमा शर्मा। इसी गीत को पसंद किया है छत्रपति संभाजी नगर से राजेश साबले पाटिल, राजदीप राजेश, राशि राजेश, श्रीमती शीतल राजेश। इसी गीत को सुनना चाहा है महागौरी मंदिर खजूरी खास दिल्ली से पृथ्वी सिंह नेगी, सौरभ सिंह नेगी, गौरव सिंह नेगी, मिट्टी कुहू। राजा बाजार भिया से सुरेश केसरी, पूनम केसरी, प्रतीक केसरी, नया बाजार बक्सर से राजेश केसरी, पंकज केसरी, रोहन केसरी। और इसी गीत को पसंद किया है तिवर्ता डबरी पारा छत्तीसगढ़ से महेंद्र प्रताप मरकाम, श्रीमती जया मरकाम, जागेंद्र सिंह मरकाम, गजेंद्र सिंह मरकाम।

मरकाम, जयंती मरकाम, ममता मनीषा सुरेंद्र मरकाम, मोहन सिंह सहद्री बाई, मंजू मानसी, मनमोहन सिंह, गिरजाबाई मरकाम, ग्राम अलगी डांड पाली से चंद्रपाल मरावी, ओम प्रकाश मरावी, राम प्रकाश मरावी। तो आइए सुनते हैं मुकेश और लता मंगेशकर की आवाज़ में ये गीत है फिल्म सरस्वती चंद्र से।

0: अब आइए सुनते हैं आप सभी के पसंद पर सरफरोश फिल्म का ये गीत। आवाज़ है आमिर खान और अलका याग्निक की। समीर के लिखे इस गीत को संगीत दिया है जतिन ललित ने। पसंद आप सभी की है। अमलेश्वर से डोमन ठाकुर, श्रीमती सुमन ठाकुर, मिथिलेश ठाकुर, तारिणी ठाकुर, सूरज ठाकुर, ज्योति ठाकुर, रियांश ठाकुर, गुड़िया ठाकुर, नाज मंजिल महसौल सीतामढ़ी। बिहार से अकरम हुसैन बेगम, इशरत अकरम, नवासी हुमेरा नाज, नाजिया नूरी नाज, वसीम अकरम, नदीम अकरम, शमीम अकरम, बाबू अमन अकरम, बच्चू शेख, चीना शेख, शेख टोली। समस्तीपुर से मोहम्मद शहनवाज परवेज, मुसर्रत जहां नाज, शाहपुर बघौनी। समस्तीपुर से मोहम्मद मशकूर आलम, तलत जहां नाज। छत्तीसगढ़ देवरी से के आर साहू, भाटापारा से हिमकेश्वर, लेवई से गुलाबदास, दंतरेगी से भागवत वर्मा। तो आइए सुनते हैं ये गीत आप सभी के पसंद पर।
1: अजी डोंट माइंड, लेकिन इतना अच्छा मौसम है और तुम इन बीमारियों के अलावा और कुछ नहीं सोचता। गुलफाम साहब के फैन हो, कोई शायरी वायरी नहीं आती क्या?
2: बिल्कुल आती है, सुनाओ।
1: सुना।
2: अर्ज है, दवा भी काम ना आए कोई दुआ न लगे, दवा भी काम ना आए कोई दुआ न लगे, मेरे खुदा किसी को प्यार की हवा न लगे। आदाब।

अर्ज है, कुछ मजनू बने, कुछ रांझा बने, कुछ रोमियो कुछ फरहाद हुए, इस रंग रूप की चाहत में जाने कितने बर्बाद हुए। वो देखो,

इसे देखो, दिल की धुनी रमाता। अरे ये मंदिर नहीं है, शिवाला नहीं है, हसीनों से कह दो कहीं और जाएं। मेरा दिल है दिल, धर्मशाला नहीं है।

0: फूल खिलते हैं, बहारों का समा होता है, ऐसे मौसम में ही तो प्यार जवां होता है। दिल की बातों को होंठों से नहीं कहते, ये फसाना तो निगाहों से बयां होता है।
1: अब आइए सुनते हैं इंदिवर का लिखा है ये गीत, कल्याण जी आनंद जी के संगीत निर्देशन में। फिल्म का नाम है सफर, आवाज किशोर की। इसे पसंद किया है कालका से शुभचंद्र बजाज, साहिल बजाज, भिट्टा बजाज, सेक्टर 67 मोहाली से टीटी मल्होत्रा, ऋतिक मल्होत्रा, प्रतीक मल्होत्रा, जातुका किशनपुर से आलम दिलकश, शबाना नाज, रिजवान राही, इमरान राजा, आलम शेख, फिरोज आलम, चांदनी नाज, मॉडल टाउन पानीपत से संदीप गुगलानी, आशा गुगलानी, पूजा बाबू, नेहा सागर, गुंबर, हिमांशु गुगलानी। इसी गीत को पसंद किया है कच्ची सराय दाल मंडी वाराणसी से मोहम्मद नसीम, मोहम्मद सैफी, मोहम्मद हसन, तबस्सुम बानो, नाजिया रहनुमा, चोरहट नई बस्ती पड़ाव से रोशन अली, सिराज आलम, मोहम्मद समद, रोजी अलीसा, नई सड़क वाराणसी से शाहिद, सद्दू मलका, मुमताज, इंशा एली तारिक, कपड़ा मार्केट से गुड्डू, शमारुमा, इशरा, शालू, आमिर, सारिक, दुल्हीपुर बंजर से रफीक, रिजवाना, रेहान, मुकित, आदर्श नगर मलोट से इसी गीत को पसंद किया है पंजाब से राज शर्मा, मीना शर्मा, योगेश शर्मा, सौरभ शर्मा। तो आइए सुनते हैं सफर फिल्म का ये गीत किशोर कुमार की आवाज़ में।

अब आइए सुनते हैं शैलेंद्र का लिखा ये गीत रवि के संगीत निर्देशन में। फिल्म का नाम है दिल्ली का ठग, आवाज़ किशोर कुमार और आशा भोसले की। इस गीत को सुनना चाहा है धरसीवा से छेदूलाल यादव, श्रीमती सीता यादव, अर्चना अरुणा यादव, अनुराधा अल्पना यादव, दुर्गापारा संतोषी नगर से छन्नूलाल यादव, अनुराग, अभिषेक, अलका, अनामिका, बलदाऊ यादव, कुमारी रानू, खुशी, प्रवीण साहू, सी एल यादव, पाकुड़ झारखंड से उत्तम कुमार भगत, श्वेता भगत, किशु वासु, अर्णव आनंद, सत्यम आनंद, डोंगरगांव जिला राजनांद गांव छत्तीसगढ़ से राष्ट्र पाल गजभिये, राधिका गजभिये, बेबी अनिष्का और तन्मय गजभिये। अनारकली बाजार जगराओं से सुनील पाठक, इसी गीत को पसंद किया है दिल्ली शहर मोरी गेट से कन्हैया लाल, रीता देवी, शिल्पा रानी और आकाश कुमार।

और अब आइए सुनते हैं आमने सामने फिल्म का ये गीत लता मंगेशकर और मोहम्मद रफ़ी की आवाज़ में। आनंद बख्शी के लिखे इस गीत को संगीत दिया है कल्याण जी आनंद जी ने। पसंद आप सभी की एयरपोर्ट रोड वंदना नगर इंदौर से कुमारी वंदना मराठा, भाऊ मराठा, गणेश दादा मराठा परी, कार्तिक भाऊ मराठा परी, संजना मराठा, मालती चौधरी, स्वाति प्रयाग चौधरी, ललिता नारायण खर्चे। कनेरा मोहल्ला पटियाला से बत्ता परिवार, मुकेश बत्ता, नीलम बत्ता, नितिन पालक, करण, गीतू, निहारिका, हार्दिक, वंश बत्ता, इसी गीत को पसंद किया है दिनेश कुमार, रागनी श्रीवास्तव और मुस्कान, बरेली कैंट रेलवे केबिन के पास चनहटी बरेली से। तो आइए सुनते हैं आप सभी के पसंद पर आमने सामने फिल्म का ये गीत मोहम्मद रफ़ी और लता मंगेशकर की आवाज़ में।

आमने सामने फिल्म के इस गीत के साथ ही फरमाइशी गीतों का कार्यक्रम आपकी पसंद समाप्त करने की ज्योति स्वरूप को अनुमति दीजिए। हम आकाशवाणी के वाराणसी केंद्र से बोल रहे हैं। शास्त्रीय संगीत के कार्यक्रम में प्रस्तुत है पंडित हरि प्रसाद चौरसिया का बांसुरी वादन, राग है बागेश्वरी। आपके साथ तबले पर संगत कर रहे हैं शुभांकर बनर्जी।

0: शास्त्रीय संगीत के कार्यक्रम में अभी आप सुन रहे थे पंडित हरि प्रसाद चौरसिया का बांसुरी वादन। राग था बागेश्वरी। आपके साथ तबले पर संगत कर रहे थे शुभांकर बनर्जी। ये कार्यक्रम आप आकाशवाणी के वाराणसी केंद्र से सुन रहे थे। रात्रि के 11 बज रहे हैं। थोड़ी देर में आप सुनेंगे समाचार हमारे दिल्ली केंद्र से।
1: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं प्रशांत कुमार। भारत और ऑस्ट्रेलिया ने स्वतंत्र और मुक्त हिंद प्रशांत क्षेत्र के लिए रक्षा और सुरक्षा सहयोग पर संयुक्त घोषणा पत्र को स्वीकार किया। ऑस्ट्रेलिया से यूरेनियम की आपूर्ति के लिए भी समझौता हुआ। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री एंथनी एल्बनीज के साथ आज मेलबर्न में तीसरी ऑस्ट्रेलिया भारत वार्षिक शिखर वार्ता हुई। इस दौरान दोनों नेताओं ने प्रतिनिधिमंडल स्तर की वार्ता में द्विपक्षीय संबंधों को और सशक्त बनाने पर चर्चा की। दोनों नेताओं ने द्विपक्षीय संबंधों में आए परिवर्तनकारी महत्वपूर्ण बदलाव का स्वागत करते हुए क्षेत्रीय स्थिरता, ऊर्जा सुरक्षा और प्रौद्योगिकी नवाचार के लिए व्यापक सहयोग ढांचे को अंतिम रूप दिया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बताया कि दोनों देशों ने यूरेनियम आपूर्ति और महत्वपूर्ण खनिज गलियारे पर ऐतिहासिक समझौते पर हस्ताक्षर किए।
2: पीएम सूर्यघर योजना को सपोर्ट करने के लिए हमने मिलकर गुजरात में रूफटॉप सोलर ट्रेनिंग एकेडमी बनाई है। यह एकेडमी अनेक महिलाओं और युवाओं की कैपेसिटी बिल्डिंग में योगदान देगी। न्यूक्लियर एनर्जी के क्षेत्र में आज हमने एक महत्वपूर्ण समझौता किया है। इससे ऑस्ट्रेलिया से भारत को यूरेनियम सप्लाई का मार्ग खुलेगा और हमारे क्लीन एनर्जी के उद्देश्यों को नई ताकत मिलेगी।
1: बाद में प्रधानमंत्री मोदी ने आज ऑस्ट्रेलिया के मेलबर्न में मेलबर्न मीट्स मोदी कार्यक्रम में कहा कि भारत ऑस्ट्रेलिया गठबंधन नई ऊंचाइयों पर पहुंच गया है। 12 वर्षों में ऑस्ट्रेलिया की अपनी तीसरी यात्रा में प्रधानमंत्री ने 10 लाख से अधिक प्रवासी भारतीयों को द्विपक्षीय मित्रता का आधार स्तंभ बताया। श्री मोदी ने कहा है कि 21वीं सदी का भारत एक विकसित राष्ट्र बनने के लक्ष्य की ओर बढ़ रहा है। विदेश सचिव विक्रम मिश्री ने आज कहा कि तीसरा वार्षिक भारत ऑस्ट्रेलिया शिखर सम्मेलन ऊर्जा सुरक्षा के क्षेत्र में भारत के लिए एक महत्वपूर्ण उपलब्धि है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ऑस्ट्रेलिया की बेहद सफल राजकीय यात्रा का समापन हो रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल ऑस्ट्रेलिया के विपक्ष के नेता एंगस टेलर से मुलाकात करेंगे। प्रधानमंत्री मोदी ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री एंथनी एल्बनीज के साथ प्रतिष्ठित मेलबर्न क्रिकेट ग्राउंड MCG का भी दौरा करेंगे। दोनों नेता इस अवसर पर ऐतिहासिक भारत ऑस्ट्रेलिया खेल सहयोग

0: सहयोग रोड मैप का अनावरण भी करेंगे। भारतीय जनता पार्टी ने पश्चिम बंगाल में होने वाले राज्यसभा उपचुनाव के लिए सुखेंदु शेखर रॉय, सुष्मिता देव और प्रकाश चिक बराइक को अपना उम्मीदवार घोषित किया है। इन तीनों सीटों के लिए 24 जुलाई को मतदान होगा। ये तीनों नेता हाल ही में अखिल भारतीय तृणमूल कांग्रेस छोड़कर भारतीय जनता पार्टी में शामिल हुए। केंद्र सरकार जल्द ही फ्लेक्स फ्यूल वाहनों के लिए E85 ईंधन शुरू करने की योजना बना रही है। पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने कहा है कि इसकी कीमत E20 पेट्रोल से लगभग 20 रुपए प्रति लीटर कम होगी। एक निजी समाचार चैनल को दिए साक्षात्कार में श्री पुरी ने कहा कि इस पहल का उद्देश्य उपभोक्ताओं को आर्थिक राहत देना और सरकार के एथेनॉल मिश्रण कार्यक्रम को बढ़ावा देना है। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने आज राज्य में समान नागरिक संहिता UCC लागू करने के लिए रूपरेखा तैयार करने के लिए सर्वोच्च न्यायालय के पूर्व न्यायाधीश न्यायमूर्ति रंजना देसाई की अध्यक्षता में 7 सदस्यीय समिति के गठन की घोषणा की। ईरान ने अमेरिका पर आज बुशहर परमाणु ऊर्जा संयंत्र के पास हवाई हमला करने का आरोप लगाया। ईरान की सरकारी समाचार एजेंसी ने बताया कि ये कार्रवाई उस पर हमले समाप्त करने की अमेरिकी सेना की घोषणा के कुछ घंटों बाद हुई। अमेरिकी केंद्रीय कमान ने इसकी पुष्टि नहीं की है। विंबलडन टेनिस टूर्नामेंट के महिला सिंगल्स में लिंडा नोस्कोवा ने फाइनल में जगह बना ली है। सेमीफाइनल में आज नोस्कोवा ने मार्ता कोस्तियुक को 6-4, 6-4 से हराया। महिला सिंगल्स का फाइनल मुकाबला 11 जुलाई को लिंडा नोस्कोवा और कैरोलिना मुचोवा के बीच खेला जाएगा। वहीं पुरुष सिंगल्स के पहले सेमीफाइनल में कल आर्थर फेरी का मुकाबला अलेक्जेंडर ज्वेरेव से और मौजूदा चैंपियन यानिक सिनर का सामना नोवाक जोकोविच से होगा। भारत और इंग्लैंड के बीच चौथा T20 क्रिकेट मुकाबला ब्रिस्टल में जारी है। ताजा समाचार मिलने तक भारत ने 13 ओवर में 3 विकेट पर 94 रन बना लिए हैं। 5 मैचों की श्रृंखला में इंग्लैंड 2-0 से आगे है। फीफा फुटबॉल विश्व कप के क्वार्टर फाइनल मुकाबले आज से शुरू हो रहे हैं। पहले मुकाबले में आज रात 1:30 बजे बोस्टन में फ्रांस का सामना मोरक्को से होगा। वहीं दूसरे क्वार्टर फाइनल मुकाबले में कल देर रात स्पेन और बेल्जियम आमने सामने होंगे। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: This is Akashwani. The news read by Abhineet Shukla. India and Australia today adopted a new joint declaration on defense and security cooperation and a maritime security collaboration roadmap to promote a free, open and inclusive Indo-Pacific. The deals were signed following delegation-level talks between Prime Minister Narendra Modi and his Australian counterpart Anthony Albanese during the 3rd Australia-India Annual Leaders Summit in Melbourne. In a joint press statement after the talks, Prime Minister Modi said, "The Indo-Pacific is not just a meeting point of two oceans, but showcases the shared aspirations of like-minded democracies like India and Australia." Later, briefing the media, Foreign Secretary Vikram Misri said, "Both the sides finalized the administrative arrangement for a long-term supply of Australian uranium to India. The agreement is expected to strengthen India's clean energy program and support its net zero goals." Prime Minister Narendra Modi today said, "India's aspiration to become one of the world's top three economies at the earliest is driven by the motto of Grow More, Achieve More." Mr. Modi was addressing the Indian community at the Marvel Stadium in Melbourne.
2: 21वीं सदी का भारत आज विकसित होने के लक्ष्य पर काम कर रहा है। ये वो भारत है जो कहता है ग्रो मोर अचीव मोर। हम 140 करोड़ एस्पिरेशन से भरे राष्ट्र है। हम अधीर है, बेसब्र है। हम दुनिया की सबसे तेजी से बढ़ती इकोनॉमी है, लेकिन हम जल्द से जल्द दुनिया की टॉप थ्री इकोनॉमी बनना चाहते हैं।
1: Speaking at the Melbourne Meets Modi event, Prime Minister Modi also referred to Operation Sindoor. He said, "The operation demonstrated the effectiveness of India's homegrown defense systems in carrying out anti-terror operations." Mr. Modi said, "The India-Australia partnership has reached new heights, driven by shared values, strong people-to-people ties, and expanding cooperation across key sectors." He described the 1 million strong Indian diaspora as a vital pillar of bilateral relations. Speaking on the occasion, Australian Prime Minister Anthony Albanese described the Indian community as a living bridge between the two countries. Union Home Minister